ओम शांति। कितनी खुशी और नशे की बात है कि स्वयं भगवान परम धाम छोड़कर रोज हमें पढ़ाने आते हैं। हम सभी को जन्म जन्म से सत्य ज्ञान की तलाश थी। हम यहां वहां भटकते थे, शास्त्र ग्रंथ पढ़ते थे, परंतु हमारी सत्य की पिपासा कभी तृप्त नहीं होती थी। बाबा ने आकर सत्य ज्ञान देकर हमारी खोज समाप्त कर दी और वो रोज आकर हमें पढ़ाते हैं, कितना सुख देते हैं, सामने बैठकर हमें स्मृतियां दिलाते हैं, हमारी बंद बुद्धि को खोलते हैं, हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और उसी मुरली में अनेक समस्याओं का हमें समाधान भी दे देते हैं। अगर मुरली को हम बहुत आनंद पूर्वक सुने तो ये मुरली का रस, मुरली का सुख जीवन को अनेक कष्टों से मुक्त कर देता है। ध्यान दें, यहां से हम लोगों ने भी मुरली की क्विज प्रारंभ की है और उसमें स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, उन्हें इनाम भी दिए गए हैं और अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी चुना जाएगा। तो इससे सभी पुरुषार्थियों में एक सुंदर कंपटीशन रहता है, मुरली की लहर रहती है और अनेक लोग 80 से अबव मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी हमारी पढ़ाई की लगन है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो क्यों ना इस स्टूडेंट लाइफ को हम एंजॉय करें, पढ़े लिखें, मनन चिंतन करें, अपनी स्मृतियों में वो सब चीजें भरें। तो बाबा ये मुरली हम सभी के लिए वरदान लेकर आया है। सचमुच मुरली रोज हम सभी के लिए वरदान है। जो लोग मुरली नहीं सुनते, जो लोग क्लास में नहीं जाते, जो अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें भगवान के महावाक्य सुनने का भी समय नहीं मिलता, वो तो सोच लें उनको हम क्या कहें। ये अपने भाग्य को कम करने वाली बात है। रोज भाग्य मिलता है हमें ईश्वरीय महावाक्यों से। यही वो मुरली है जिसकी तान पर सभी गोप गोपियां सुदबुद भूल जाते थे और आज भी लाखों गोप गोपियां हैं जो मुरली के बिना रह नहीं सकते। तो हम क्लास में पहुंचे, मुरली सुने। जो किसी भी कारण से नहीं पहुंच सकते, बहुत ज्यादा परिस्थिति है, वही केवल नेट पर या टीवी पर देखें सुने। बाकी सभी को ध्यान देना चाहिए कि मुरली का आनंद क्लास में बैठकर ही आता है। जब हम अपनी सुंदर स्थिति में बैठें और इस फीलिंग में बैठें कि बाबा हमें बहुत कुछ याद दिला रहा है, क्योंकि हमें फुल पास होना है, तो चारों ही सब्जेक्ट्स में हम फुल बने। ज्ञान मनन से ज्ञान का बल प्राप्त करें, ज्ञान का चिंतन हमारे अंदर चलता रहे, ज्ञान की गंगा हमारी बुद्धि में बहती रहे, योग का बल, उससे सब परिचित हैं। धारणाएं हम कुछ ऐसी चुन लें जिनके द्वारा हमें धारणा के सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स मिलें, और वो हैं संतुष्टता, सरलता, सहनशीलता, निरहंकारिता। ये सब बहुत सुंदर धारणाएं हैं। प्योरिटी, शुभ भावनाएं, इन पर अगर हम ध्यान देंगे तो बाकी सब धारणाएं स्वतः ही हमारे जीवन में आती रहेंगी। सेवा, सेवा का फील्ड भी हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। लेकिन जो निमित्त भाव से सेवा करते हैं, जो निरहंकारी होकर सेवा करते हैं, जो सेवाओं में मैंपन का अभाव रखते हैं, जो सेवा के फील्ड को टकराव का फील्ड नहीं बनने देते, सेवा उनके लिए वरदान बन जाती है। तो इस तरह हम चारों सब्जेक्ट में फुल होने का लक्ष्य रख लें। लेकिन सभी का बीज है ज्ञान, ज्ञान की मुरली, इस पर हम विशेष ध्यान दें। तो आओ हम मुरली का रस स्वयं में भरते हुए ज्ञान के बल से स्वयं को संपन्न करें और आज सारा दिन याद रखें, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, वाह क्या मेरी तकदीर, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं, अपना धाम छोड़कर मुझे दिव्य विवेक प्रदान करने आते हैं, मुझे वरदानों से सजाने आते हैं, और फिर परम धाम में बाबा को देखें, उनका आह्वान करें, हे प्यारे बाबा आ जाओ, और फील करें बाबा नीचे उतर रहे हैं,
सूक्ष्म लोक में ब्रह्मातन में प्रवेश किया। फिर दोनों नीचे आ रहे हैं और आ गए हमारे सम्मुख, सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। इस तरह बार बार बाबा का आह्वान करेंगे, घंटे में कम से कम एक बार अवश्य, और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का नशा रखेंगे। ओम शांति।

0: भाई रुको भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? भाई अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। एक वृद्ध महिला का कहना है, मैंने आशा करना तो अपनी जीवन का स्वभाव बना लिया है। प्रत्येक प्रातः जब मैं सोकर उठती हूँ तो आशा करती हूँ कि आज का दिन गौरवपूर्ण होगा। मैं प्रत्येक आने वाले दिन को ऐसा समझती हूँ कि मानो मुझे एक नई यात्रा पर जाना है और जिसमें नए नए आनंदपूर्ण दृश्य देखूंगी और मुझे अधिक सुखदायी अनुभव प्राप्त होगा। उसका यह विश्वास प्रतिदिन सही होता है। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए हमें अपने मन को विश्वास तरंगों से तरंगित करना चाहिए, जिससे हमारा उत्साह निरंतर बढ़ता रहे, हमारी आशाएं उज्जवल होती रहें। निराशा को स्थान नहीं होगा, हमें सीधे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और प्रत्येक पग विश्वास पूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे भय हमारे मन में जगह ही न पा सके। यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें अपने मन की प्रवृत्ति को इस प्रकार का बनाना चाहिए कि हमें प्रत्येक व्यक्ति पदार्थ या दृश्य को देखकर आनंद प्राप्त हो। यदि हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो हमें सब प्रकार की शंकाओं से मुक्त होना पड़ेगा। हमें रचनात्मक कार्य करना चाहिए। हर प्रकार का रचनात्मक कार्य करने के लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। जिस समय मन आशंका और भय से भरा हुआ हो, उस समय मनुष्य किसी भी मूल्यवान कार्य को उचित ढंग से नहीं कर सकता। मन को मुक्त अवश्य होना चाहिए, अन्यथा कार्य के लिए आवश्यक शक्ति न रह जाएगी। कार्य कुशलता एकाग्रता से आती है। एकाग्रता उसी समय संभव है जब मन भय मुक्त पर सामंजस्य पूर्ण हो। उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोच सकते हैं जो मोटर गाड़ी चलाते समय उसकी स्पीड तो बहुत बढ़ा देना चाहता है परंतु ब्रेक काम नहीं कर रहा होता? उसकी क्या दशा होगी? जो व्यक्ति उन्नति करने के लिए निरंतर चिंता करता है, जो उन्नति करना चाहता है, जो आगे बढ़ जाना चाहता है परंतु जिसका ब्रेक यानी कि संयम शक्ति काम नहीं कर रही, वह अपनी प्रत्येक नस नाड़ी को थकाता है, आगे धकेलता है और तोड़ फोड़ देता है। उसका शरीर भली भांति काम नहीं कर सकता। बुरा वह है जो चलता नहीं और धैर्य छोड़ देता है, निराश होकर प्रलोभनों में फंसकर अपनी मंजिल से हट जाता है और मंजिल पर बढ़ने वाले व्यक्ति को पागल कहता है और तरह तरह की सफाई की दलीलें देता है। कठिनाइयां, गिरना, चोट खाना आदि तो जीवन का नियम है। निसंदेह इस तप से तपा हुआ जीवन शुद्ध स्वर्ण बनकर निकलेगा। आज हमारे समाज में दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले, केवल बातें करने वाले और दूसरों के मार्ग में रोड़े अटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, जो स्वयं दुखी हैं और कष्टों को सहकर भी अपने उद्देश्य को पाने का प्रयत्न करते नहीं हैं और न ही दूसरों को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में हैं, इसीलिए हम इनके डर से अपनी मंजिल छोड़ दें और उन्हीं लोगों की पंक्ति में खड़े होकर वैसा ही राग आलापना आरंभ कर दें, यह ठीक नहीं। इनकी चिंता किए बिना हमें तो आगे ही बढ़ना है। कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है।

मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें इच्छा से कर्म करने की छूट है। मैं अपनी जीवात्मा की उन्नति कर सकती हूँ और प्रभु की प्यारी बन सकती हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरा यह जीवन कब तक है, मुझे कब तक जीना है। इसलिए मैं अपने को भुलावे में क्यों रखूं? अपने को भगवान की इच्छा पर छोड़ दूं और प्रभु की सांसारिक लीला में एक पात्र के नाते काम करूं। इस संसार रूपी मंच पर मनुष्य वही अभिनय करता है जो उसे करने को कहा गया है। यह स्थिति आने से फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के एक विद्यार्थी ने अपने परिवार पर दो बार पड़ी विपत्ति का हाल बताया था। पहली विपत्ति तब आई जब उसकी आंखों की पुतली, उसकी 5 वर्ष की बालिका, इस संसार से चल बसी थी। उसे और उसकी पत्नी को लगा कि वे इस विपत्ति को सह नहीं सकेंगे, किंतु उसके 10 महीने बाद ही भगवान ने उसे एक दूसरी लड़की दी और वह भी 5 दिन के बाद चली बसी। यह दोहरा वियोग उसके लिए अत्यंत असह्य हो उठा था। उसने कहा, मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। मेरा खाना पीना सोना सभी हराम हो गया। न कोई आराम कर सकता हूँ, न निश्चिंत होकर जी सकता हूँ। मेरी आत्मा टूट चुकी है। आखिर वह डॉक्टरों के पास गया। एक ने नींद लेने की गोलियां लेने को कहा, दूसरे ने यात्रा पर जाने का सुझाव दिया। उसने वे दोनों बातें की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसने बताया, मुझे ऐसा लगता मानो मेरा शरीर शिकंजे के बीच रख दिया गया है और मैं अधिकाधिक कसता जा रहा हूँ। यदि आपने भी कभी अनुभव किया हो तो जानते होंगे कि शोक का उद्वेग कितना भीषण होता है। भगवान की कृपा से उसे एक 4 वर्षीय बालक और था। उसने मुझे अपने समस्या का समाधान सुझाया। एक दिन अपराह्न में जब मैं खिन्न बैठा था, वह आया और पूछने लगा, बापू मेरे लिए एक नाव बना दोगे? नाव बनाने की मनस्थिति मेरी न थी। वस्तुतः मैं कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं था, फिर भी उस हठी बालक की बात मुझे माननी पड़ी। नाव का खिलौना बनाने में मुझे 3 घंटे लगे। बना चुकने के पश्चात मैंने मानसिक शांति और राहत का अनुभव किया। ऐसा अनुभव मैं कई महीनों से नहीं कर पाया था। इस अनुभव ने मुझे उदासीनता से छुटकारा दिलाया, मुझे कुछ सोचने की प्रेरणा दी। कई महीनों के बाद मैं पहली बार कुछ सोच सका। मुझे लगा कि जिस काम को करने में आयोजन एवं सोच विचार की आवश्यकता हो, उस कार्य को करते समय चिंता नहीं रहती। मेरे इस नाव बनाने के कार्य ने मेरी चिंता को समूल उखाड़ दिया और मैंने अपने को व्यस्त रखने का निश्चय किया। दूसरी रात को अपने को व्यस्त रखने का निश्चय कर घर के प्रत्येक कमरे में गया और उसमें किए जाने वाले कुछ आवश्यक कार्यों की सूची तैयार कर ली। बीसियों जगह मरम्मत की जरूरत थी। बुककेस, सीढ़ियां, खिड़कियों के छज्जे, टपकते हुए नल आदि कई वस्तुओं की मरम्मत करनी थी। आपको आश्चर्य होगा कि 2 सप्ताह के भीतर मैंने 242 कार्यों की सूची बना ली जिन पर ध्यान देना जरूरी था। गत 2 वर्षों में मैंने उसमें से अधिकांश काम पूरा कर लिया है और अपने जीवन को उत्साहवर्धक कार्य प्रवृत्तियों से भर दिया है। सप्ताह में 2 रात के लिए मैं न्यूयॉर्क की प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कक्षाओं में भाग लेता हूँ। अपने कस्बे की कई नागरिक प्रवृत्तियों में भी भाग ले चुका हूँ। आजकल एक स्कूल बोर्ड का चेयरमैन हूँ। रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं के लिए चंदा जुटाने में सहयोग भी करता हूँ। अब मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि चिंता के लिए समय ही नहीं मिलता। जब गत महायुद्ध उग्रता से चल रहा था और चर्चिल को 18 घंटे काम करना पड़ता था, तब उन्होंने भी यही शब्द कहे थे। जब पूछा गया कि इतनी अधिक जिम्मेदारियों से आपको चिंता नहीं होती,
उन्होंने बताया कि मेरे पास समय ही कहाँ है। सचमुच उस प्रौढ़ व्यक्ति और चर्चिल की इस बात को लेकर हम यह समझ सकते हैं कि जितना भी हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं कुछ क्रिएटिव कार्य करने में, तब हम चिंताओं से मुक्त रहते हैं, क्योंकि हमारा मन उस रचनात्मक कार्य करने में बिजी हो जाता है, उसके पास चिंता करने का समय

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है, संपत्ति संपत्ति को खींचती है। आप पैसा जुटाएं, फिर उससे और पैसा खींचें। इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता है। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है, अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन बिताओ। संसार में सब कुछ है, पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते हैं। जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह एकदम सरल काम है। आप मनचाही संपत्तियां पा सकते हैं। इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए कुछ न कुछ कुर्बानी करनी होगी, दुख उठाने होंगे। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। इसके लिए कुछ योजना बनाइए, अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार। अपने अनावश्यक खर्च कम से कम न्यूनतम कर दीजिए, फिर जी जान से लग जाएं। यहाँ पर एक व्यक्ति के उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। एक दिन एक व्यक्ति ने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद कर दिया। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था, वह एक डिब्बे में डालता गया। यह समझ कर कि सिगरेट में लग गया। एक वर्ष तक ऐसा करने पर उसने डिब्बा खोला और उस पैसे से परचून की एक दुकान कर ली, व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान हैं, कार हैं। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी अपना कितना महत्व रखती है। एक अर्थशास्त्री का कहना है कि मनुष्य का 87% खर्च, यानी कि 87% खर्च अनावश्यक होता है। इतना पैसा वह अपने व्यर्थ के व्यसनों पर खर्च करता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन और कपड़ा, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े। बस यही दो जरूरतें हैं जिनको वह अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकता है। आपसे ही एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या 500 का सूट पहनना जरूरी है? 50 रुपए के सूट से आपका काम नहीं चल सकता? खाना आप घर पर बनाएं और खाएं, वही खाना 5-सितारा होटल में, 5-स्टार होटल में खाना क्या जरूरी है? जो चीज फुटपाथ पर आपको 1 रुपये में मिलती है, वही अगर आप बड़ी ठाट बाट वाली दुकान से लें तो 3-4 रुपये लगेंगे। क्या जरूरी है वहीं से खरीदें? फुटपाथ पर खरीदने में क्या आपको शर्म आती है? सबसे पहले आप अपने खर्च यथासंभव सीमित कर दें। कष्ट होगा, दुख होगा, आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना होगा। ठीक है, भविष्य में सुख पाने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। इस प्रकार आप अपनी जमा पूंजी बढ़ाएं। जब वह बढ़ जाए तो फिर उसको उचित कार्य में लगाएं। इस प्रकार आप संपत्तिशाली बन सकते हैं। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, धैर्य और संयम से अपना काम बराबर करते चले जाइए, आपको सफलता मिलकर रहेगी। पूरी आशा और विश्वास के साथ लगातार कर्म करते रहें, अपना अधिक से अधिक समय लगाएं। इस प्रकार आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आप जरूर मैदान फतह करेंगे।

0: ओए रुको रुको रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

रॉकफेलर से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ, हड़बड़ाहट या शीघ्रता से काम नहीं करता और न ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ। रॉकफेलर का यह जवाब बड़ा कीमती है, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर खूब मनन कीजिए। मान लीजिए आप अपनी पूंजी की सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर विचार करिए, व्यापार का अध्ययन करिए, उस व्यापार की सारी संभावनाओं का पता करिए। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उसमें हाथ लगाएं। बिना पूर्ण रूप से विचार किए किसी भी काम को या व्यापार को शुरू कर देना अपने आप को खतरे में डालना है। जोखिम या खतरे, नुकसान की जरा भी संभावना या आशंका हो तो उस काम में हाथ न डालें। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं, अपना पैसा न फंसाएं। उतना ही काम करें जितना आपके बूते में है, बूते के बाहर की योजना न बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पर निर्भर रहकर किसी कार्य को न करें, अपने बूते पर ही करें। किसी के कंधे पर बैठकर चलना हमेशा खतरा है, आप लंगड़े हो जाएंगे, वह कभी भी आपको पटक कर चलता बनेगा। इस प्रकार आप फिर कहीं के न रहेंगे। योजना बनाइए, मनन करिए, कमाया गया अथवा पैसा संभालिए, आने वाला पैसा मुट्ठी भींच कर रखिए, अनावश्यक रूप में एक भी खर्च मत करिए। एक नियम बनाएं कि इतना खर्च करूंगा, भले ही उसमें आपको केवल एक वक्त खाना मिले। संपत्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कार्लाइल का कहना है, मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर नहीं निर्भर करता, उसके कर्म

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाने की मुहिम अगर हर व्यक्ति झेल ले तो बीमार पड़ना मुश्किल हो जाएगा, स्वस्थ रहना आसान हो जाएगा। व्यक्ति जब स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना चाहता है तो प्राय यही चीज सुनने और देखने को मिलती है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा आहार हो, अच्छा विहार हो, अच्छा व्यवहार हो। लोग एक्सरसाइज करते हैं, सैर करने जाते हैं, वॉकिंग इत्यादि करते हैं, भोजन के प्रति भी बहुत सारे लोग परहेज करते हैं। मगर ज्यादातर लोग भोजन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में तब तक जागरूक नहीं होते जब स्वास्थ्य के कुछ एक चीजें गड़बड़ा न जाए। प्रायः ये देखा जाता है कि हम कमाई करने में, अपने रोज की दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को लास्ट नंबर पे रखते हैं, और इसकी वजह से जब शरीर बीमार पड़ता है तो हमारा धनोपार्जन या हमारा काम या जो भी चीज हम करते हैं उससे छुट्टी लेनी पड़ जाती है अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। क्या ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखें ताकि हमें स्वास्थ्य के लिए छुट्टी लेना ना पड़े। वैसे भी स्वस्थ रहना एक वरदान ही है। आइए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और क्या करने की जरूरत है, इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से ये एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां से आज ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली है कि व्यक्ति बीमार पड़ता है तो छुट्टी लेना पड़ता है कि भाई शरीर को आराम दें, ठीक करें गाड़ी को, तब जाके वापस मैं काम पे लौट सकूं। और अक्सर ये चीज देखा जाता है कि हम काम या मेरी पढ़ाई या जो भी चीज मैं कर रहा हूँ धनोपार्जन के लिए, उसमें इतना ज्यादा मैं मशरूफ हो जाता हूँ कि मैं ये भूल जाता हूँ कि शरीर मुझे कोई सिग्नल्स भी दे रहा है कि भाई गाड़ी में थोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसे ध्यान देते तो शायद छुट्टी लेके अस्पताल जाके ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो छोटे सिग्नल्स को ही देख के मैं घर पे उसे रिपेयर कर लेता, क्या ऐसा संभव नहीं?
1: भैया, सबसे पहली बात कि आदमी पहले अपना शरीर खर्च करता है पैसा कमाने के लिए और फिर पैसा खर्च करता है अपना शरीर बचाने के लिए। तो हमारा और आपकी सोच ये है कि हम अपने शरीर को इतना न खर्च करें कि हमको बीमार पड़ना पड़े। हम अगर अपने शरीर को ऑप्टिमम भोजन, अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज और उसको अच्छी तरीके से रखेंगे तो हमारा शरीर अच्छी तरह से चलेगा। जैसे आपने, हमने मैकेनिक्स की बात की, गाड़ी की बात की, तो गाड़ी खराब होने से पहले ही अगर हम उसको समय समय पर सर्विस कराते रहें, उसको अंदर से पोछ के उसमें धूल न जमने दें, उसको साफ रखें, तो गाड़ी ज्यादा सुंदर से लगती है और लंबे समय तक चलती है। वही चीज हमारे शरीर के साथ है। अगर हम शरीर की देखभाल ठीक से करेंगे, उसे अच्छा भोजन देंगे, अच्छा व्यायाम देंगे और अच्छा आराम देंगे। सबसे जरूरी है कि कोई भी अगर मशीन रेगुलर चल रही है तो उसे आराम की भी जरूरत है। तो स्वास्थ्य अपने शरीर को देने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम और अच्छा आराम, ये तीन चीज अगर दे दीजिए तो पूरी उम्मीद है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर कोविड का एग्जाम्पल लूंगा, जिन्होंने अच्छी एक्सरसाइज की थी, जिन्होंने अच्छा भोजन किया था, उनकी सीवियरिटी कम रही। जिसको कोई साइडलाइन डिजीज थी, जो बीमार थे या जिनको कोई और बीमारियां चल रही थी, उनको ज्यादा परेशानी। तो ये हम देख चुके हैं कि अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो सुंदर शरीर भी रहेगा।
0: ये बड़ी मजेदार बात आपने कही और गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई महामारी या कोई स्वास्थ्य संबंधी विश्वव्यापी समस्या भी हमारे सामने आती है, कोई नई मुसीबत भी आती है, तो भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, जिसका आहार अच्छा है, जो अच्छा व्यायाम कर रहा है, अच्छा आराम कर रहा है, वो बेहतर तरीके से नई समस्याओं को, नई बीमारियों को डील कर सकता है, बजाय उसके जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी न किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है या फिर उसके स्वास्थ्य संबंधी जो आदतें हैं वो ठीक नहीं है। अगर आप गलत भोजन करते हैं, गलत दिनचर्या आपकी है, तो ये आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक है, आपको एक रिस्क पर डाल देता है। दोस्तों ये हम सब के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात है और मैं समझता हूँ इस चीज को समझ कर हम अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन अपने शरीर को ख्याल रखने के लिए लाना भी शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि आहार के बारे में जब बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं एक संतुलित आहार की आवश्यकता है, एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा किया, हमने प्रोटीन्स के बारे में भी चर्चा की। अब एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोग सुनते तो हैं और इस शब्द से कुछ लोगों को डर भी लगने लगता है, वो है फैट। और जब भी हम फैट कहते हैं तो अंग्रेजी में फैट शब्द को हम मोटापा कह के ट्रांसलेट कर देते हैं, अरे वो तो बहुत मोटा है फैट। तो फैट की बात ही जब कही जाती है कि ये फैट खाने में भी जरूरी है ऐसा कहा जाता है और फिर व्यक्ति फैट हो भी जाता है ये भी चीज कही जाती है, तो ये समझा जाए कि ये फैट और ये फैट अलग है या ये फैट इस फैट से आता है?
1: बोलचाल की भाषा में फैट को मोटे के रूप में समझा जाने लगा, मगर भोजन की भाषा में फैट को एक हमारे भोजन का अभिन्न अंग माना जाता है। साधारण भाषा में समझें तो जो भी तेल, मक्खन, घी, नट्स हुए या कोई भी हम लोग तेल खा रहे हैं उसको हम फैट मानते हैं। जितना जरूरी हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी देने के लिए, जितना जरूरी प्रोटीन है हमारे लिए शरीर की संरचना बनाने के लिए, उतना ही जरूरी हमारे लिए फैट है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप मोटा मोटी ये समझिए कि जो मोटा होता है वो थोड़ा थुलथुला होता है, थोड़ा सा वो फ्लफी होता है, तो फैट का सबसे बड़ा जो काम है वो सारे अंगों को कुशन देना। जितने भी हमारे अंग हैं, जो हमारे शरीर की सुडौलता है उसमें भी फैट का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी में फैट को वसा कहते हैं और ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और ये हमारा भोजन का सुपर स्टोरेज है। आप देखिए ठंडे देशों में कहा जाता है कि अच्छा फैट खाओ क्योंकि शरीर गर्म रहेगा। इवन हमारे इंडिया में भी ठंडक के समय फैट खाओ शरीर गर्म रहेगा। और आपके और हमारे राजस्थान में तो ये कहा जाता है अरे घी डालो भाई, हाँ शरीर की ताकत कहां से आएगी। तो आप ये देखिए ये बॉडी फ्यूल है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे बॉडी को शेप देता है। और हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ADEK, अगर हमारे भोजन में फैट नहीं होगा तो ये चारों विटामिन हमारे शरीर में मिल ही नहीं सकते हमको, क्योंकि ये चारों विटामिन फैट में ही मिलते हैं, उनमें ही घुलते हैं, उनमें ही इनका या सॉल्वेंट फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो इनकी हमको बहुत जरूरत है। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारे भारत के सैनिक जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, जो माएं बच्चा पैदा कर रही हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन सबको फैट की जरूरत है, उनको ताकत की जरूरत है, हर बढ़ते बच्चे को भी फैट की जरूरत है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी फैट की जरूरत है, क्योंकि जो विटामिन्स के बारे में मैंने बताया वो हमारे हार्मोन्स हैं उनको फैट की जरूरत है, हमारी कुछ मेम्ब्रेन्स हैं शरीर में या झिल्लियां हैं हमारे शरीर के अंदर जिनमें हमको फैट की जरूरत है, तो इसलिए फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: ये तो बात समझ में आती है कि हाँ फैट को मतलब कहते ही मोटा नहीं समझना होता है, ये भोजन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है और ये भी भोजन में अगर ना हो तो फिर ये भोजन का एक हिस्सा कम हो गया ये समझ सकते हैं, और ये कैसे शरीर के लिए लाभदायक है ये बात समझ में आ रही है। अब जब फैट की आवश्यकता हमें समझ में आ रही है कि भाई व्यक्ति के शरीर में गर्मी देने के लिए अंगों को जो कुशन देने का वो काम करता है, एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये बात समझ में आती है। जैसे आपने कहा सर्दियों के दिनों में तो हम ये कहते ही हैं, और राजस्थान में जैसे सर्दियों के दिन आते हैं वैसे घी में बनी हुई मिठाइयां ज्यादा हो जाती हैं, हर चीज के ऊपर घी एक्स्ट्रा से लगा के आपको दिया जाता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये भी एक दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है कि फैट कितना खाया जाना चाहिए, भोजन में उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या हर दिन हमें फैट खाने की जरूरत है, वसा की मात्रा हर दिन चाहिए, अगर चाहिए तो कितना।
1: रोज भोजन में जितना इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उतना ही इंपॉर्टेंट फैट है। मोटा मोटी 12 से 14 ग्राम फैट प्रतिदिन एक वयस्क व्यक्ति को लेना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। फैट हमको दो मेजरली दो सोर्सेस से मिलता है, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। और प्लांट सोर्सेस में जितने भी ऑयल्स हैं, घी हुआ, हमारा सरसों का तेल हुआ, सूरजमुखी का तेल हुआ, वो उन सब में हमको फैट मिलता है। और कुछ बीजों में जैसे जितने ड्राई फ्रूट्स हुए, बादाम हुआ हमारा, उसमें हेजलनट हुआ हमारा, काजू हुआ, उन सब में फैट है। और आप एनिमल सोर्स में चाहिए तो फिश ऑयल्स हैं, या जितने भी हम मीटी प्रोडक्ट्स खाते हैं, रेड मीट है, उसमें भी जरूर थोड़ा सा जो फैट है वो है। तो हमको एनिमल सोर्स, जानवरों से जैसे दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, उन सब में भी थोड़ा मोटापा है। तो एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स दोनों से हमें फैट मिलता है। ये देखा गया है कि प्लांट सोर्स इज मच मोर इजिली डाइजेस्टेबल देन द एनिमल सोर्स। और अब थोड़ा सा जो फैट की बुराई हुई है वो एक्सेसिव एनिमल सोर्स से लेने की वजह से हुई है, कि उसकी वजह से बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स लोगों को हुई है, इसीलिए फैट बदनाम हुआ। और फैट दूसरा बदनाम हुआ कि स्वाद के लिए जिन्होंने ज्यादा घी डाल लिया वो मोटे हो गए, और उससे शरीर थोड़ा सा बिगड़ गया, और कुछ लोगों ने ज्यादा बिगाड़ लिया अपने आप को, तो इसीलिए फैट बदनाम हो गया। अगर हम देखा जाए तो पुराने लेक्चर्स में जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेकर भी हम मोटे हो गए, ज्यादा फैट लेके भी हम मोटे हो गए। तो हर चीज को अगर हम एक बैलेंस रूप में खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो अच्छा भी रहेगा और वो हमारे शरीर की सेहत को भी ठीक रखेगा।
0: जैसे आपने ये बात कही, ये बात समझ में आती है कि आज हम फैट की आवश्यकता को समझते हैं, फैट कहाँ से आता है ये भी चीज समझ में आता है। ज्यादातर लोग फैट को तेल के रूप में जब हम देखते हैं, वो सारे तेल बीजों से हमें मिलते हैं, मूंगफली का तेल हो गया या सूरजमुखी के बीजों का हो गया, अलग अलग चीजों से हम तेल निकालते हैं और उन तेलों को हम इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे पशुओं की बात अगर हम करें तो मक्खन, घी इत्यादि तो हम दूध से निकालते ही हैं, जो गाय से, भैंस से हमें मिलती है। अब भोजन के लिए जितना आवश्यक है, मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा इतने ग्राम की आवश्यकता है, 20 ग्राम से कम की आवश्यकता एक दिन में है। और मैं अगर अपने ही बारे में सोचूं तो मैं समझता हूं मैं एक दिन में तो कई गुना ज्यादा फैट का इस्तेमाल मेरे भोजन में हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तेल में बनती हैं। अगर मैं दिन में 3 वक्त नाश्ता करता हूँ, दोपहर का भोजन करता हूँ, रात्रि का भोजन करता हूँ, तो हर चीज में लगभग तेल का इस्तेमाल है। सब्जियां बन रही हैं, दाल बन रहा है, नाश्ते की चीजें बन रही हैं, अगर उसके ऊपर मैंने पूरियां खा ली या फिर कुछ तले हुए पकौड़े खा लिए, तो उसमें तो फैट जितना आप कह रहे हैं उस लिमिट से तो बहुत ज्यादा ही हर दिन मेरे भोजन में जा रहा है।
1: अगर आप रोज पूड़ी और रोज पकौड़ी खा रहे हैं तब जा रहा है, और अगर आप रोज पूड़ी पकौड़ी और अच्छी अच्छी तली हुई चीजें खा रहे हैं और अपनी कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, पानी पीने के लिए भी कहीं दूसरे आदमी को आवाज दे के कह रहे पानी ले आओ, आप अपने जो आपके घर में आपके सेवक हैं या स्टाफ हैं उनको बोल रहे हैं अरे जरा पंखा चला दो, अरे ट्यूबलाइट बंद कर दो, तो इस तरीके की अगर आप काम कर रहे हैं तो सच्ची आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मगर आप जो भी खा रहे हैं उसको अच्छे से पचा रहे हैं और फिर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप जो मात्रा है उससे ज्यादा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फैट का

0: इंटेक आपके भोजन में मौसम के ऊपर भी असर करता है। ठंडी जगह के लोग ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं एज कंपेयर टू गर्म जगह के लोग। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप जिस जगह रहते हैं उस तरह का फैट आप खाना शुरू करते हैं और वो चीज आपके लिए हमेशा लाभकर और हितकर रहती है। जैसे राजस्थान में घी का प्रचलन है, सनफ्लावर ऑयल का प्रचलन है, आप डाउन साउथ में जाइए तो आपको कोकोनट ऑयल का प्रचलन है, हमारे अप नॉर्थ में आपको सरसों का तेल और घी का प्रचलन है। तो जो चीज जिस एरिया में बनती है, आप बंगाल साइड चले जाइए वहां फिश ऑयल बहुत कॉमन है, जो चीज जिस एरिया में बनती है जिस एरिया में मिलती है वो आपके एरिया के हिसाब से बेस्ट है और आपके शरीर के लिए भी बेस्ट है। हम लोग जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो हमें भोजन का स्वाद अलग लगने लगता है और हमको लगता है अरे यार क्या बना दिया, इसमें तो ये डाल दिया। तो लोकल बना हुआ तेल उस एरिया के लिए बेस्ट माना जाता है।
1: ये बात समझ में आती है कि भोजन जो हम खा रहे हैं उसमें फैट या वसा एक आवश्यक चीज है और उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए वो हमें ध्यान रखना है और जहां जो चीज मिलती है फैट के जो सोर्स हैं उसके आधार पर वो चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। और जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि अगर मैं अधिक मात्रा में वसा या फैट की चीजों को अपने शरीर के अंदर डाल रहा हूँ, खा रहा हूँ तली हुई चीजें इत्यादि और अधिक मात्रा में तेल घी इत्यादि जा रहा है तो उसी मात्रा में उसका खपत भी होना आवश्यक है, उतना खर्चा होना भी आवश्यक है। अगर मैं घूमता फिरता हूँ, फिजिकल वर्क ज्यादा करता हूँ तो फिर वो चीज होती है, अगर हम बैठे रहते हैं या फिर हमारा काम ज्यादा फिजिकल नहीं है, शारीरिक क्रियाएं ज्यादा नहीं हो रही हैं हमारे से, हाथ पैर हम नहीं चला रहे हैं तो फिर ये नुकसानदायक हो सकता है। अब जैसे आप थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि फैट के बारे में एक ऐसा कहा जा रहा है, यूं कहें सोशल मीडिया में हो या मीडिया में हो या लोग यहाँ जो चीजें सुन रहे हैं, आजकल फैट को एक बहुत ही बुरी नजर से देखा जा रहा है, उसको मतलब एक शत्रु की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अरे अरे ये तो बहुत तेल हो गया, अरे नहीं नहीं घी बिल्कुल नहीं खाना है, इसमें ये डालना नहीं है, इत्यादि चीजें कही जाती हैं। अक्सर लोग कभी घर पे मेहमान घर आ भी जाते हैं, कोई घी वाली चीज दे दी जाए या कोई तली हुई चीज दी जाए तो भी वो कहते नहीं बस एक पीस काफी है, हम ज्यादा नहीं लेते। तो ये भी चीज एक बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है आजकल के युवाओं में भी, हम ये चीज देखते हैं। एक तरीके से कोई अच्छी भी चीज हो सकती है मगर खासकर जो कन्याएं हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, वो अपने डाइट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, वो कुछ भी तली हुई चीजों को नहीं खा रही, कोई घी नहीं खा रहे हैं, वो बोलते हैं नहीं हम मोटा नहीं होना चाहते, हम बस सलाद पे जी रहे हैं और ये सारी चीजें भी सुनने को मिलती है। तो ये चीजें क्या है
0: भैया? सबसे बुरी बात है स्पेशली फॉर कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, वो अच्छी चीज छोड़कर बुरी चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी भी कॉलेज की कैंटीन में चले जाइए, आपको वहां पे बर्गर और पिज्जा मिल जाएगा, आपको मैगी मिल जाएगी, आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी, आपको जूस की बोतल और डब्बे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी पूरी सब्जी अब बहुत कम कैंटीन्स में सर्व हो रहा है, हर कॉलेज कैंटीन एक पैक्ड फूड ही बना के बेच रहे हैं। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा, ओ प्लीज डोंट सर्व मी पूरी, इट हैज वेट, और वही बच्चा फिर मुझे किसी एक बड़े जॉइंट में जाके बर्गर खाते हुए दिख जाता है। आपको बच्चे मिठाई के लिए मना करते हुए दिख जाएंगे और वही बच्चा एकदम एक कोल्ड ड्रिंक की बड़ा ग्लास पीते हुए दिख जाएगा। मैं सबको बोलता हूं ईट गुड क्वालिटी फूड प्लीज, आपके घर का बना हुआ पूरी लाख गुना अच्छी है बाजार में बने हुए एक फ्राइड बर्गर से, आपके घर में मतलब जो मिठाई हम देसी मिठाई खा रहे हैं वो लाख गुना अच्छी है उस कोल्ड ड्रिंक से। उसमें आप सरप्राइज्ड होंगे, लोग बोलते हैं वो मैं चीनी का शरबत पी सकता हूँ, जरूर पीजिए सर। आप कोल्ड ड्रिंक में जहां 13 से 26 चम्मच चीनी है वहां आप 2 चम्मच चीनी पी रहे हैं, एक जो शिकंजी बना के पी रहे हैं, आप घर में कोई शरबत पी रहे हैं, आप देखिए कितना डिफरेंस है उस चीनी में और इस चीनी में। तो मैं सबको बोलता हूं और यू नीड फैट बिकॉज अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो आपके 4 विटामिन्स आपके शरीर में नहीं जाएंगे और प्लस आपके बहुत सारे हार्मोन्स नहीं बनेंगे जो आपके शरीर को ठीक करने में बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा फैट नहीं खाएंगे आपके त्वचा खराब हो जाएगी, आपको जल्दी झुर्रियां बढ़ जाएंगी। लोग क्या कर रहे हैं, वो आधा ज्ञान लेकर पूरा पागल हो गए हैं और पीपल आर मच मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स। मैं एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। वाइल ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड मुझे रशियन बैलेरिनाज मिली जो कि बैले करती थी और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उनके बॉडी में थी, एंड देन दे बिकेम योगा टीचर्स। तो वो फिजिकल आसन कर रही थी, वो अपने शरीर को बेस्ट मतलब हम लोग से ज्यादा अच्छा वो आसन कर दे रही थी, बट वो और वो कह रही थी दे आर वेरी गुड योगा टीचर्स, दे वर नॉट योगा टीचर्स, दे वर ओनली डूइंग वन पार्ट ऑफ योगा विच वॉज आसन। यम नियम के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम था, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में कुछ नहीं मालूम था, बस वो आसन और प्राणायाम पे लगे थे। तो वो जो कहते हैं ना योग का जो फिजिकल पार्ट है उसी पे वो कंसंट्रेटेड थे। तो हमारे यहाँ लोग फैट जो है उसको इसलिए हीन भावना से देख रहे हैं कि वो हमारे फिजिकल पार्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम एक्सरसाइज करें, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम घूमें टहलें, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात नहीं खाओ।
1: डॉक्टर साहब इसी मोड़ पर मुझे रुकना होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि घड़ी इशारा कर रही है कि बातों बातों में वक्त इतना हो रहा है। यानी ये बात आज की बातचीत से समझ में आती है कि फैट भोजन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये हमें पता है कि भाई हम एक दिन में 20 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं खाएं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए फैट क्या करता है, शरीर में गर्मी प्रदान करता है, साथ ही साथ वो बॉडी के अंगों को कुशनिंग प्रदान करता है, और साथ साथ फैट के प्रति ये जो घृणा का भाव है कि भाई ये बहुत नुकसानदायक, ये सही नहीं है, हेल्दी फैट्स भी हैं, उन चीजों को समझना है, जो लोकल वैरायटी है फैट्स जहां से आते हैं, जैसे पेड़ पौधों से आ रहा है, जो बीजों से आ रहा है, मूंगफली ही सरसों की बात की या सूरजमुखी के सीड्स की, या दक्षिण के क्षेत्रों में जहां पर नारियल से तेल इत्यादि निकलता है, इन सभी चीजों को हम समझ रहे हैं। और सही मात्रा में फैट का इंटेक आवश्यक है और उतना ही कसरत करना भी जरूरी है, शारीरिक क्रियाकलाप भी करना जरूरी है। और भी फैट से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे, और आज डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और फैट के बारे में इतनी अच्छी समझानी दी। मैं सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
0: धन्यवाद, ओम शांति।
1: दोस्तों आज फैट के बारे में जो चीजें समझी है उसकी उपयोगिता को समझकर सही इस्तेमाल करना सीखें। सिर्फ यहाँ वहां की जानकारियों को सुनकर किसी चीज को बुरा कहना सही नहीं है, ये हमारे संतुलित आहार का एक अभिन्न अंग है। वसा का होना आवश्यक है मगर उसकी मात्रा पर ध्यान दीजिए। अगर आप फैट खाते हैं, हर दिन आपकी मात्रा में फैट की मात्रा ज्यादा है, उसे कम करने पर भी ध्यान दें, और साथ ही साथ शारीरिक कसरत के बारे में, टहलने के बारे में, जो आप खा रहे हैं उसको पचाने के लिए जो मेहनत चाहिए उस पर भी ध्यान रखें। कल फिर होगी मुलाकात सहज स्वास्थ्य में। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ खुशी की बात कर रहे थे, तो एक बात जो हमारे सामने आई थी वो ये कि जब तक अपनी सही पहचान नहीं होगी, जहाँ तक मैं ये शरीर थी तब तक मेरी सारी चीज़ें इससे जुड़ गई थी, चाहे वो परफेक्शन की बात थी, चाहे मेरी खुशी की बात थी, चाहे मेरी अचीवमेंट्स की बात थी। लेकिन यहाँ जहाँ मैंने थोड़ा सा माइंड सेट शिफ्ट किया, अगर हम आपको पिछली कड़ी याद दिलाएं, तो बात यहाँ तक आई थी कि क्या मैं दिन भर ये मान के चल सकता हूँ कि जो ड्रेस मैंने पहनी है वो मैं हूँ। अगर ये ड्रेस जो मैं हूँ ये मैं बन जाऊँगा, तो फिर मेरी पूरी की पूरी जो एनर्जी थी, जो कॉन्सेंट्रेशन थी, वो इस ड्रेस पर थी। तो बात यहाँ पर आई थी असली पहचान की, कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो कॉन्शियस बीइंग हूँ, ये पता चल जाए और कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस रहे तो आगे बात बढ़ाएंगे। पता चल गया, समझ में भी आ रही है, और जब हम बार बार ये कह रहे थे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी दिखा। अब कंटिन्यूस रिमेम्बर कैसे करना है, लगातार याद कैसे रखना है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जहाँ हम बात यहाँ पर आए थे कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, हमने ये कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ये भी मान लें कि मैं यही हूँ। तो जिस तरह की बात की थी उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस कड़ी में यहाँ बैठकर बात करते हैं बिल्कुल क्लियर लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो सारी बातें जो हैं, जो जिन पर मैं अभी तक जी रहा था, वो फिर लौटती हैं। तो ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? जस्ट वॉन्ट टू रिवाइव दैट।
1: सी द प्रायोरिटी गेट्स सेट। मैं कौन, मेरा क्या क्या, जैसे हमने शुरू में भी देखा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरों के प्रति, परिवार के प्रति, काम के प्रति, लेकिन मेरे प्रति। तो जब हम कह रहे थे मेरे प्रति, तब हमने देखा कि कई बार आया, हाँ मेरे प्रति भी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता ना, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता, बट आई लुक आफ्टर द बॉडी। सो आई थॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेड विद लुकिंग आफ्टर द बॉडी, बिकॉज आई थॉट हु एम आई एम द बॉडी। बट बिकॉज आई डिडंट नो कि मैं ये चैतन्य शक्ति, आई एम दिस कॉन्शियंट बींग, आई नेवर पुट दैट इन द लिस्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, द माइंड, द इंटेलेक्ट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ये नहीं सोचा सारा। जैसे हमने देखो कितनी सारी बातें चेंज होंगी, मैं एनर्जी हूँ तो मृत्यु किसकी होगी, हु विल डाई, शरीर की डाई, फियर ऑफ डेथ विल फिनिश। You know, this is just a thought right now. हमें सिर्फ लग रहा है, हाँ fear of death finished. लेकिन जिस आत्मा से fear of death निकल जाता है, उनको जीवन में कोई और बात का डर नहीं लगता है. When you're talking of निर्भय जीवन, fearless life, वो वही experience कर सकता है जिसको death का डर नहीं हो. और death का डर, अपनी death का डर नहीं है, family की, किसी की death.
0: एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि आज जिस स्थिति में है ना लोग, वो डेथ को आत्मसात करने को तैयार है, यू नो, मे बी पेन के कारण, बट देन राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज इवन लाइक फॉरगेट अबाउट द एज, ये नहीं कह रही मैं कि बुजुर्ग ही ये मान रहे हैं, आज बहुत कम एज से भी लोग अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को खत्म ही करते जा रहे हैं।
1: लेकिन वो क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते, हाँ। तो अपनी इम्पोर्टेंस क्या जानेंगे? अगर अपने आप को सिर्फ क्वालिफिकेशन और पोजिशन ही समझा, तब तो मार्क्स के लिए सुसाइड किया ना, क्यों किया? जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स उतने नहीं आए, आई हैड नो वैल्यू फॉर माई लाइफ, बिकॉज आई थॉट लाइफ वॉज ऑल अबाउट ओनली परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, फिजिकल लुक्स, पोजेशन। तो वो सारे क्राइटेरिया जहाँ फुलफिल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, सो वॉट हैपन, वी सेड आई डोंट वॉन्ट टू लिव। रिलेशनशिप्स में मैंने समझा मैं कौन। आज बहुत सारे लोग ई मेल्स लिखते तो वो कहते, यू नो, मेरा ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। सो डेथ इज स्टिल नॉट यू नो एक्सेप्टेड कि हाँ भले कभी भी, तो वो लगता है क्योंकि वी आर फेड अप ऑफ लाइफ, कि यू नो नथिंग इज वर्किंग आउट, सक्सेस नहीं आ रही है। लेकिन ये सारी चीज़ों का पर्स्पेक्टिव चेंज हो जाएगा जब सक्सेस भी समझ में आ जाएगा, मेरी सक्सेस, नॉट मेरी सक्सेस, वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, माई होल पर्पज ऑफ लाइफ विल चेंज। जब मैंने ये समझा कि आई एम द बॉडी, तब मैंने समझा जीवन कितना है, यहां से इतने स्पैन में मुझे सब कुछ अचीव कर लेना है और जल्दी जल्दी करना है। दैट्स वेयर द बिलीफ केम कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, एवरी वन इज इन द रेस, क्योंकि हर एक ने सोचा इतने से इतना टाइम है, सभी ने रेस में भागना है, जो करना है अभी कर लो।
0: और क्योंकि जगह भी उतनी है, उतने ही लोग हैं, तो मुझे मतलब जो ज्यादा यू नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो थ्योरी,
1: तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी जब हमने बोला तो फिटेस्ट क्या, क्योंकि हमने सोचा दिस इज हु आई एम, पोजिशन इज हु आई एम, तो फिटेस्ट कौन है, जो ज्यादा फिजिकली हेल्दी है, जिसके पास ज्यादा धन है, पोजिशन है, वो फिटेस्ट है, भले वो इमोशनली बिल्कुल कमजोर हो, वो फिटेस्ट। तो उसको फिटेस्ट बनाने के लिए, सक्सेस को उस मात्रा में अचीव करने के लिए, हम गलत भी करने के लिए तैयार हो गए, हम अनएथिकल मेजर्स भी यूज करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमने सोचा इतने स्पैन में सब कुछ अचीव करना है। फिर हमने अपने आप को ये समझा तो हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू किया कि बेटर वो है जिसके पास ज्यादा
0: चीजें हैं,
1: जो ज्यादा शारीरिक सुंदर है, बेटर वो है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज किसके पास ज्यादा है। तो सारा पर्सपेक्टिव ही तो चेंज हो गया, क्योंकि मैं कौन हूँ की डेफिनेशन चेंज हो गई, सारा कुछ चेंज हो गया।
0: वैल्यूज की वैल्यू ही नहीं है।
1: आई डिड अ प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड वो इतने स्वीट से छोटे छोटे बच्चे, और हमने टॉपिक लिया, दे गेव द टॉपिक, हाँ, डज ऑनेस्टी वर्क इन टूडेज टाइम, एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रन वॉज कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल, मतलब वो भी एक क्वेश्चन मार्क था कि कैन अ ऑनेस्ट पर्सन बी सक्सेसफुल,
0: सब्जेक्ट वी आर कमिंग,
1: और ये सब्जेक्ट उन्होंने ही दिया तो, लेकिन बहुत छोटे छोटे, एंड चिल्ड्रन कैन बी मोल्डेड वेरी इजिली, तो हमने उनसे ऐसे करते गए, आधे पौने घंटे के अंदर दे सेड यस वी प्रॉमिस वी विल बी ऑनेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, वो चले गए अपनी क्लास में। टीचर्स आकर बाद में बोलते हैं क्या फायदा है ये सब उनको सिखाने का, बट ऑनेस्टी रियली डजंट वर्क इन डे टू डे लाइफ। आई सेड देन लेट्स गो बैक टू देम एंड टेल देम दैट, यू नो, लेट्स गो एंड टेल देम कि ऑनेस्टी डजंट वर्क, डिसऑनेस्टी चलती है। फिर देन दे से वो थोड़ी कर सकते हैं, उनको तो यही बोलना, आई मीन We don't know what we are doing. We really don't know. And ये आप सोचो कि जो हम instruments हैं, चाहे हम parents हैं, चाहे हम teachers हैं, जो हम बच्चों को values सिखा रहे हैं, अगर at the back of my mind I don't believe in it, what will I teach?
0: It's of no use.
1: I shared with those teachers. I said, अगर आप class में जाकर बोल भी रहे हो, believe it before. Why not believe it? They said, नहीं जी, practical में तो नहीं चलता है। और फिर अगर आपकी अंदर की सोच है कि प्रैक्टिकल में ऑनेस्टी वर्क नहीं करती, आप कितना भी जाकर वो बच्चों को समझाओ, एक तो आपकी सोच की वो वाइब्रेशन, सी दैट्स वेयर वाइब्रेशन प्लेज सच अ बिग रोल, आपकी वो कन्विक्शन ही नहीं जाएगी, आपकी वाइब्रेशन नहीं जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी।
0: तभी तो बच्चे डिसऑनेस्ट होके फिर आते हैं, फिर हम कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप डिसऑनेस्ट हो।
1: दैट वाज द थिंग, सो we need to understand ki and why is all this happening, kyunki I don't mind ki main jhoot bol lu, lekin mujhe materialistically achieve karna hai. Aur fir wo yehi kehte, sabhi ka ek common belief tha ki jo honest hota hai usko life mein bahut struggle karni padegi, jo dusre tarah ke measures use karte hain wo bahut jaldi jaldi success. To success kya, materialistic, kyun, main kaun hu, मैं शरीर को जितने कंफर्ट्स मिले उतना मैं कंफर्टेबल। व्हाट वी डिडंट अंडरस्टैंड कि हम जितनी बार झूठ बोलेंगे, जितनी बार हम अनएथिकल मेजर्स यूज करेंगे, हम अपने लिए यहाँ पीसलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए शांति ढूंढनी पड़ रही है।
0: यू नो अनदर वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम इट जस्ट कम टू केम टू माय माइंड इज कि झूठ बोल दो, डिसऑनेस्ट हो जाओ, पकड़े नहीं जाना चाहिए। यू नो वो आपकी एक्सपर्टीज है। यू नो समवेयर ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है।
1: तो झूठ बोलना दूसरे ने नहीं पकड़ना है, पकड़े पहले हम यहाँ जाते हैं। जो हम कितनी बार बोलते हैं ना कि यहाँ क्यों वो क्लटर हो रहा है, क्यों वो ब्लॉकेज हो रहा है, हम यहाँ पकड़े जाते हैं। जैसे ही वी हैव डन समथिंग विच इज़ अगेंस्ट माय ओरिजिनल नेचर ऑफ ऑनेस्टी, यहाँ आई हैव क्रिएटेड, भले हम उसको दबा देते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ क्रिएट हो गया। और जब एनर्जी गलत गई, रिजल्ट उसका कभी पॉजिटिव, हाँ वो वाला रिजल्ट आ जाएगा, आप जो ढूंढ रहे हैं वो वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ साथ ये भी आएगा। अब जब मुझे ये पर्सपेक्टिव मिला कि ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, किसका ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। तो फिर मैं ये प्राप्त करने के लिए इसको यहाँ तकलीफ नहीं दूंगा, एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग विल चेंज। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स टू गेट मटेरियलिस्टिक सक्सेस,
0: बिकॉज़ दैट्स मी। यू नो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड,
1: क्या आपको अगर आज पता चले कि आपको ये अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने हाथ पैर काट के देने पड़ेंगे, आप दे देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे मर्सिडीज तो मिल जाए, मुझे एक बड़ा सा बंगलो मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं अपना एक हाथ काट के दे दूंगा, आप देंगे अपना हाथ, नहीं ये मैं हूँ, यू नो ये मैं हूँ, तो ये नहीं कटना चाहिए। यहाँ कुछ काट के देना, ओ एक मिनट भी नहीं लगेगा आज झूठ बोल, क्योंकि ये मैं हूँ. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस वन इल्यूशन. और ये एक बिलीफ सिस्टम जिस दिन रियली आपको समझ में आया और आपने इसको चेंज किया, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. कई बार कई लोग कहते हैं उस टाइम सोचना पड़ता है, सच बोले या झूठ बोले, यू नो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट. बट जहाँ फोकस राइट है कि ये मैं हूँ, आपके पास दो थॉट नहीं आते हैं कि ये बोलो या ये बोलो, ये ही बोलना है सच, चाहे उसका कोई भी रेपरकशन होने वाला है. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डर्टी myself.
0: I need to protect myself. You know, my innate values जो हैं, जो मैं हूँ वो तो. और actually अगर हमें ये realization, basically वही बात है, जिस दिन हमारे अंदर ये realization हो गया, ये remembrance रह गई, तब मैं उसको protect करूँगा.
1: बिल्कुल, क्योंकि आपको जब समझ में आ गया, देखो हमें पता है, हमें आज तक ये सोच के चल रहे थे कि मैं शरीर हूँ, तो इसका ध्यान रखते हैं ना, रखते हैं ना हमेशा हर चीज़ क्या हो रही. एक्चुअली सब कुछ हो किस लिए रहा है, सारा कुछ जो अर्न करना है, प्राप्त करना है, वो किसके लिए है, इसके कंफर्ट के लिए है. नेवर माइंड कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ.
0: आई थिंक देन हमें अपने आदर्शों पर चलने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.
1: वही बोल रही हूँ ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है उसमें कोई भी. इट्स नेचुरल, इट इज ना. आई मीन व्हाई वुड वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि ये करो या नहीं करो. मेरा सारा धन चला जाए, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली जाए, जो जाना
0: है जाए. That's not important, you know, that will not remain important actually.
1: प्रायोरिटी राइट हो जाएगी.
0: आज जो बहुत बार लोग अपने आदर्शों पर खड़े हुए हैं, वो पेन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हुआ तो हूँ नहीं, मैं खड़ा रहा अपने आदर्शों पर.
1: लेकिन ये सोच भी तो क्वेश्चन मार्क है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो. मैं बोलती हूँ आई पर्सनली फील कि जो अपने वैल्यूज पर खड़ा हुआ, दैट इटसेल्फ इज सक्सेस. एंड उसकी सक्सेस की रिजल्ट वो ये है कि दैट सोल विल ऑलवेज बी peaceful, calm and comfortable. And जहाँ तक materialistic success की बात आती, I don't think it's possible कि आप ethics पर चलें और आपको materialistic success नहीं मिलेगा. ये भी एक belief system है, ये भी हमने कहीं ना कहीं जोड़ दिया है. हाँ ये हो सकता है बहुत fast और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिले, लेकिन फाइनली ये नहीं होगा कि यू नो यू आर टोटली गॉन एंड आपके पास कुछ नहीं.
0: हम अवेयरनेस में यही है. आज मैं अपने आदर्शों पर चलने वाली बनूं भी कि मैं सत्यता, मैं ऑनेस्टी, मैं इस पे रहूंगी, लेकिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम तो है कि मैं हूं तो ये बॉडी ही, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है कि मुझे सत्यता पर चलना है लेकिन मेरी नीड तो इन्हीं को फुलफिल करने
1: की, सक्सेस की डेफिनेशन
0: यही थी. तो जहां जिस दिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम आ गया मेरे पास कि मैं वही हूँ जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आई थिंक देन मेरा पेन खत्म हो जाएगा.
1: नेचुरल, क्योंकि फिर आप अभी पेन क्यों हो रहा है कि मैं ऑनेस्टली चला
0: लेकिन मुझे चाहिए तो वही.
1: हाँ, मेरी प्रमोशन रुक गई या ये हो गया, यू नो ये सारी चीजें पर जहाँ ऑब्स्टेकल, या मेरी ट्रांसफर हो गई, तो फिर मैं वैल्यूज पर था लेकिन मुझे सफर करना पड़ा. यू नो सफर किसको करना पड़ा? आपकी पोजिशन को सफर करना पड़ा, आपको सफर नहीं करना पड़ा. हाँ आपको तब सफर करना पड़ता जब आपको फिर ये बात हर्ट होती जाती कि मेरी प्रमोशन रुक गई, वो मेरे से आगे निकल गए, क्योंकि अब हमने अपनी वैल्यू को छोड़कर हमने जेलसी क्रिएट करनी शुरू कर दिया. एंड दैट्स व्हाई वी सेड एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, एवरीथिंग. तो सारा पर्सपेक्टिव नहीं चेंज हो जाएगा.
0: वेरी ट्रू. कुछ यू नो अच्छा, और होगा ये, उससे क्या होगा, जिस टाइम मैंने ये सोच लिया, एक तरफ अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं सच्चाई पे खड़ा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, हाँ, और दूसरी तरफ ये हुआ तो जेलसी तो हुई डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सोचा यही मुझे चाहिए था. जहाँ आई थिंक दिस वे नाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो वर्क. द मोमेंट आई से आई जस्ट वॉन्टेड दिस मच, प्रमोशन विल ऑल्सो कम
1: ऑटोमेटिक.
0: जहाँ मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं,
1: जहाँ हर्ट नहीं क्रिएट हुआ ना, तो आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रही, और वो ही चाहिए था, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स. सक्सेस जो भी चाहिए, मतलब जिसके लिए आप वो क्रिएट कर रहे थे, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली. तो फिर सारा दिन में याद रखना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कि
0: मैं नाउ लेट्स ट्राई टू वेट एंड वॉच, यू नो, कि अगर हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, लेट्स सी हाउ आवर लाइफ चेंजेस.
1: एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग. एंड इसलिए आज दिन तक भी फिलोसफी में, रिलीजन में, हर एक ने यही कहा कि हु एम आई अगर आंसर हो गया तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आंसर हो जाएंगे. सिर्फ छोटी सी जो बात हुई वो कहा कि हु एम आई आंसर होना बहुत मुश्किल है.
0: मैं इस पे एक्चुअली आना चाहती थी. आई जस्ट हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद समबडी और उन्होंने मुझे इतनी लंबी बात ये कही कि मैंने बोला कि मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ. ही सेड ये अगर इतना आसान होता ना, तुम ये आज यू नो सोच रही हो कि ये हो, बट ट्रुथ इज एब्सोल्यूट. यू नो इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग सिस्टर शिवानी, एंड आई थिंक ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर. तो ही सेड इट विल नेवर गेट आंसर, इट इज द ओनली क्वेश्चन विच डजंट गेट आंसर्ड. So that's what I'm saying. Ki kyun
1: who am I is the only question who doesn't get answered. Even just look at the statement. Matlab hum puri apni jeevan jeene wale hain without knowing ki main kaun hoon. Ye jeevan kaise hoge? Ye to jaise you know movies mein dikhate hain ki actor ko bhool gaya ki wo kaun hai. To uski jeevan kaise hoti hai? Confused, lost, without purpose. Ye, that's why our life is like that. Aur isliye fir hum beech beech mein ruk kar kehte, why am I here?
0: Main kya kar rahi hoon? Haan.
1: Because why am I here? तो I कौन है? अभी हम I का आंसर देते mother. बच्चे तो बड़े हो गए, set हो गए. Why am I here? You know that's why this identity crisis comes. अब तो मैं retire हो गया. मेरे जीवन का purpose क्या है? क्योंकि मैं कौन था? Profession. वो तो खत्म हो गया.
0: तो फिर वो एक major depression set in होता है. Yes.
1: So many things are going up and down only because of not knowing. Who am I?
0: You know, जिस दिन आपके हाथ से जॉब चला जाता है, जिस दिन कोई लव्ड वन चला जाता है, जिसको जिसको अपने अपनी पूरा फोकस बनाया हुआ है, मतलब कितना कुछ अगर ऐसे चला जाता है, देन आपकी लाइफ का यू नो देन वी से कि हमें जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा.
1: कोई उद्देश्य नहीं बचा. क्योंकि जब हमारे ये अक्वायर्ड चीजों में कोई ना कोई चीज पर कुछ ऊपर नीचे होता, पोजिशन पर, तो हम कहते मेरे जीने का कोई.
0: पर अगर ये इतना आसान है तो हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ इसे?
1: That I don't have an answer कि हमने उसको को कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया, लेकिन ये आंसर है कि अब जब ज्ञान मिल जाता कि ये इतना सिंपल है, तो अब तो एटलीस्ट उसको हम स्टडी कर सकते. इतना कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आई एम अ सोल, वी से माई सोल, मेरी आत्मा. यू नो इतना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा मैं शरीर हो, तो हमने आत्मा को क्या कहा? मेरी आत्मा. It went all up and down. It's like saying, मैं ड्रेस हूँ, ये मेरी बॉडी है. That's how much we are confused. और फिर जब अगर आत्मा के बारे में सोचा, तो we connected it only with, you know, भूत, प्रेत, spirits, eerie. या जब कोई funeral पर गए, तो we'll think of आत्मा. सत्संग में गए, आत्मा, okay, समझ में आया. लेकिन practical life में आए, फिर मैं कौन हूँ? तो इट वॉज एवरीथिंग एल्स. सारा दिन में अगर हम चेक करें, सब कुछ याद है एक्सेप्ट फॉर रिमेम्बरिंग
0: कि मैं कौन हूँ.
1: मैं वो आत्मा हूँ. मैं कौन हूँ सारी लिस्ट याद आएगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ वो नहीं याद आएगा. तो फिर जीवन कैसी होगी? तो जो हम हर एक घंटे के बाद एक मिनट करते हैं, वो एक्चुअली ये याद दिलाने के लिए करते अपने आप को. क्योंकि भले अभी समझ में आ गया है, नॉलेज भी है, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत डीप रूटेड संस्कार है. तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के अपने आप को फिर से रिमाइंड करते, इस शरीर का मालिक मैं वो आत्मा हूँ. इससे एक और चीज़ भी होती, मैं मालिक हूँ तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, दिस ऑल कम्स बैक अंडर माय कंट्रोल. इट्स लाइक द ड्राइवर इज वेकिंग अप. यू नो एक गाड़ी चल रही है, ड्राइवर अंदर सो गया है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी तो फिर भी चल रही है. गाड़ी चल रही है, और वही हमारी जीवन की गाड़ी का हिसाब है. यात्रा पर चल रही है, ड्राइवर अंदर सोया हुआ है. एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज अवेकनिंग. अवेकन दिस ड्राइवर विद इन, कि उठे और अपनी गाड़ी को संभाले, नहीं तो सारी गाड़ियां ऐसे चल रही है विद ड्राइवर्स ऑल
0: स्लीपिंग
1: एंड देन वी गो लाइक दिस. तो दिस जो कॉन्शंट एनर्जी है, ये समझने में क्योंकि थोड़ा सा हमें यू नो लगता कि ये बहुत पता नहीं किस बारे में बात कर रहे, तो ये बहुत सिंपल है कि जब मैं सोचने का काम करती हूँ, आई थिंक, डज एनीबडी नीड प्रूफ कि मन है या नहीं है? एवरी वन नोज, एक बच्चे को भी पता है कि मन सोचता है. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, इट्स द माइंड. वेन आई क्रिएट थॉट्स, आई टेक अ डिसीशन ऑन इट, इंटेलेक्ट. एंड जो डिसीशन मैंने लिया कर्म में आया, कोई भी कर्म बार बार रिपीट हुआ, हैबिट, संस्कार. तो हम क्या कहते हैं? ये संस्कार, बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है. कभी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाला शरीर है. तो संस्कार किसके हैं? आत्मा के. तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये मैं आत्मा हूँ. कुछ और अजीब सी चीज तो है ही.
0: आई नो, सो मेनी टाइम्स जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, बड़े बूढ़े बहुत बार बोल रहे होते हैं कि ये बहुत संस्कारी आत्मा है. तो हमें, मैं ये सोचती हूँ, जब भी मैं बच्चे को उसको देखती थी पहले, तो मैं कहती थी अच्छा कोई और चीज़ है, मतलब कोई एक ऐसा पोटली है जिसमें वो संस्कार भरे हुए हैं.
1: इट इज दिस एनर्जी कि मैं क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स क्रिएट करती हूँ, कार्य करती हूँ, ये मैं आत्मा हूँ. क्यों वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती. तो जब ये सब कुछ पीछे रह जाएगा तो फाइनली साथ में क्या जाएगा? सिर्फ कर्म, और वो कर्म से क्रिएट किए गए संस्कार. तो जीवन में चलते हुए कम से कम ये तो याद रखना पड़ेगा कि क्या पीछे रह जाएगा और क्या साथ में जाने वाले हैं. अब ये सारी बातें हम सुनते तो हैं, कब करते हैं, लेकिन जब हम किसी के फ्यूनरल पर जाते तो हमें तब याद आता कि यू नो, और जिसको हम कहते हैं शमशानी वैराग, कि उस टाइम वैराग्य आता है कि क्या सब कुछ तो रह जाएगा, यही लेकर जाना है. तो वैराग्य इन चीज़ों से नहीं करो, सब कुछ यूज़ करो, लेकिन सब कुछ यूज़ करते हुए ये तो याद रखना है कि क्या साथ में लेकर जाना है. उस टाइम याद नहीं है, फिर जब कोई कर्म का हिसाब किताब सामने आता तो कहेंगे हमें क्या

0: के स्कूल में हम जाते, कुछ संस्कार हम अपने विल पावर से क्रिएट कर सकते. यू नो, हमने आज डिसाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, वी कैन डू इट. हम अपने झूठ के संस्कार को कट करके ऑनेस्टी का संस्कार क्रिएट करते. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे अपने ओरिजिनल संस्कार, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेचर ऑफ दिस एनर्जी. तो आज हर एक को क्या चाहिए, हम इस पूरी सीरीज में भी क्या ढूंढते आए हैं, खुशी, हैप्पीनेस. सो एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी. ये चीज़ें चाहिए, शांति, खुशी, प्रेम. क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं, दिस इज माई ओरिजिनल नेचर. लेकिन आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस इट टुडे. तो मुझे ये नहीं पता कि कहाँ ढूंढूं, बिकॉज मुझे नहीं ये पता कि मैं ये हूँ. तो मैंने उनको कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया,
1: चीजों में ना, बेसिकली. अच्छा, ये भी कह रहे हैं हम, यू नो, हम इतने मटेरियलिस्टिक बेसिकली. अगर ये पूरे सेंटेंस को भी देखें, हम कह रहे हैं हमें चाहिए. तो चाहिए में ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज पकड़ूंगी मैं जिससे मुझे खुशी मिल जाएगी.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बॉडी हूँ ना, मैं बॉडी हूँ. खुशी किसको चाहिए? इसको चाहिए. इसको खुशी कब मिलेगी? जब इसको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, जब इसको एक अच्छा, तब इसको खुशी मिलेगी. लेकिन फिर हमने रियलाइज किया, गाड़ी तो आ गई, कंफर्ट मिला इसको, लेकिन खुशी नहीं मिली. क्योंकि खुशी इसको नहीं चाहिए थी, इसको कंफर्ट चाहिए. बॉडी नीड्स कंफर्ट, लेकिन इसको खुशी नहीं चाहिए क्योंकि डजंट फील. खुशी किसको चाहिए थी? यहाँ. वो हमें पता नहीं था, तो हमने कहाँ ढूंढा? बाहर ढूंढा. अब राजयोग हमें ये सिखाता कि ढूंढना नहीं है, इट इज माय ओरिजिनल नेचर. आई एम अ पीसफुल बीइंग. ओम शांति हमारा जो ग्रीटिंग है, दैट इटसेल्फ मींस आई एम अ पीसफुल बीइंग. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम अ लवफुल बीइंग. आई एम अ हैप्पी बीइंग, अ ब्लिसफुल बीइंग. हैप्पीनेस बाहर नहीं ढूंढनी है, कहीं से, किसी में, लोगों में नहीं. आई एम अ हैप्पी बीइंग, प्योर बीइंग, पावरफुल बीइंग. अब कल इस कॉन्शियसनेस के साथ काम पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने बारे में भी यही कॉन्शियसनेस, एंड
1: कि दूसरे के भी अपना इननेट उसका जो है संस्कार है उसका. इनफैक्ट अभी तक हम ये कहते थे कि जब हमें बड़े बूढ़े कहते थे कि बाहर नहीं मिलेगी, अंदर तलाशो, तो अमेजिंग थिंग था कि मैं ये सोचती थी कि अंदर कैसे तलाशूं, कहां मैं, यू नो, क्योंकि अंदर भी तो कोई चीज ही तो मुझे देगी हैप्पीनेस.
0: एब्सोल्युटली,
1: यू नो, लाइक बिकॉज आई वाज थिंकिंग, वी ऑल वर थिंकिंग दिस वे, कि अंदर ही कोई चीज, मुझे अपने अंदर ही शांति को ढूंढना है, तो वो कहाँ ढूंढूं मैं अपने अंदर?
0: और तब नहीं पता चला, तब फिर कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, फिर हमने
1: फिर बाहर गए.
0: राइट, सो नाउ लेट्स चेंज आवर वोकैबुलरी. देयर इज नो फाइंडिंग पीस. हमने फाइंड नहीं करनी है पीस, पीस ऑलरेडी है. आई एम अ पीसफुल बीइंग. तो कुछ समय उसके ऊपर करके देख
1: कर सकते हैं,
0: बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम रोज सुबह कर सकते हैं, अपने आप को फिर से याद दिलाएं. यू नो, इट्स लाइक समवन जिसकी याददाश्त चली गई है, तो जब मेमोरी चली जाती तो उनको क्या कराया जाता? धीरे धीरे धीरे धीरे याद करो तुम कौन हो. तो राजयोग भी यही है, धीरे धीरे हमें याद दिलाता कि तुम कौन हो. यू आर अ पीसफुल बींग. आई हैव टू रिमाइंड दिस टू माई सेल्फ. सो लेट्स सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स करके अपने आप को देखें. आज शायद पहली बार अपने आप को देखेंगे. आज दिन तक अपने बारे में सोचा तो शरीर तक ही सीमित रह गए. ये शरीर मेरा है. आज अपने को देखते, शरीर को चलाने वाली शक्ति, क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग. I, the conscient being, the energy which runs this body of matter in the center of the forehead. Ek sundar chamakta hua sitara, point of light. This is me, eternal, immortal, peaceful and pure. शांति, प्रेम और खुशी मैं बाहर ढूंढ रही थी. ये तो मेरी अपनी नेचर है. आई एम अ पीसफुल बींग. एज आई गो आउट टूडे विथ फैमिली एंड वर्क, आई जस्ट नीड टू रिमेंबर आई एम अ पीसफुल बींग. इंटरैक्टिंग विथ अदर peaceful and pure beings.

0: Om Shanti.
1: Om Shanti. Sister Shivani, thank you so much.
0: Om Shanti.
1: अगर हम अपने लिए देखें जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसे चेंज करें कि मैं हूँ कौन. यहीं से बेस है, यहीं से शुरुआत होती है. रिफ्लेक्ट ज़रूर करें, इसे अपना हिस्सा बनाएं ज़िंदगी का, सुबह का हिस्सा. और जैसे याददाश्त की बात की है कि वो याद अपने आप को हर पल दिलाएं कि मैं हूँ कौन. उम्मीद करते हैं आज जो हमने बात की है उसे हम ज़रूर आत्मसात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, नए किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज सोमवार है और सोमवार के दिन सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, सभी शिव को मानते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखते हैं, कौन सोमवार की पूजा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारे से शिव के गीत के साथ करते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो शुरुआत में सुनते हैं शिव जी का प्यारा गीत।

शिव अनादि है, शिव अनंत है। शिव के इस गीत के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी में हर एक युवा हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो, हर एक को आत्मविश्वास की जरूरी होती है। जी हाँ, आत्मविश्वास जीवन में बहुत हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। हर एक को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, बच्चा हो, आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो हम आपको आत्मविश्वास के बारे में बताएंगे। आत्मविश्वास का अर्थ ही है स्वयं पर विश्वास रखना। जी हाँ, सबसे पहले हम स्वयं पर विश्वास रखो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। अगर पहले कोई भी कार्य करने के पहले विश्वास खो जाएंगे, मेरे को आएगा नहीं, मेरे से होगा या नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास को आपने कमजोर किया। तो पहले स्वयं का विश्वास रखो, जो हमें कठिन परिस्थितियों से भी आगे बढ़ने के लिए ये साहस देता है। जिस व्यक्ति को अपनी क्षमता पर भरोसा होता है, वह चुनौती का सामना करने से नहीं घबराता, वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करता रहता है। आत्मविश्वास सफलता की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ियों में से एक माना जाता है। जैसे कि समझो कोई मैराथन है, मैराथन 10 किलोमीटर की है। अगर हम रोज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो हमें आत्मविश्वास होता है कि हाँ, ये 10 किलोमीटर की रेस में हम दौड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमें विश्वास कहाँ से आएगा? तो इसीलिए हमें पहले खुद को प्रैक्टिस करके आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा कि आत्मविश्वास ही सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी असफलता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता को अंत नहीं बल्कि जीवन सीखने का अवसर मानता है। वह गिर कर भी उठता है, फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है, दुनिया में अधिकांश लोग असफल हुए हैं। पहले कठिनाइयों का सामना किया, फिर उनका आत्मविश्वास बढ़ते बढ़ते वो सफलता तक पहुँचे हैं। आत्मविश्वास हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, तब हमारी सोच सकारात्मक होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है और हम समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। आत्मविश्वास हमें दूसरों पर निर्भर करने के बजाय स्वयं अपनी राह बनाने के लिए प्रेरणा देता है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसने पूरा करें। प्रत्येक छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। दूसरा, सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने मन में ये विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मेरे लिए ये सहज है। तीसरा, अपनी गलतियों से सीखें कि उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सुधार का अवसर समझें। और चौथा, अपनी तुलना दूसरों से न करें और स्वयं को बेहतर बनाने में ध्यान दें। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का भी एक प्रेरणादायक विचार है, वो लक्ष्य असंभव उन्हें लगता है जो कोशिश ही नहीं करते। तो इसलिए कोशिश जारी रखें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। आत्मविश्वास को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आप मंजिल को जरूर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज जन्मदिन है माननीय अन्ना हजारे जी का। अन्ना हजारे जी को कौन नहीं जानता, पूरा भारत जानता है। उनका जीवन परिचय अगर देखेंगे तो 15 जून 1938 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के भी नगरी कस्बे में अन्ना हजारे का एक गरीब परिवार में जन्म हो गया था। और वो सेना में भी भर्ती हो गए थे, और सेना में भर्ती होने के बाद मुंबई पोस्टिंग के दौरान वो अपने गांव रालेगन आते जाते थे। जम्मू में पोस्टिंग के दौरान 15 साल फौज में पूरे होने के बाद 75 में उन्होंने फौज की नौकरी स्वैच्छिक अवकाश लेकर रालेगन सिद्धी वो लौट गए। उनको यही लगता था कि भारत की असली ताकत गाँव में है, इसलिए उन्होंने गाँव का विकास की लहर का मोर्चा खोला। अन्ना हजारे ने सेना से रिटायरमेंट के तुरंत बाद 75 से सूखा प्रभावित रालेगांव सिद्धी से काम शुरू किया। इस गांव में बिजली और पानी की जबरदस्त कमी थी। इस गांव में गरीबी अपने चरम सीमा पर थी। गांव में शराब आदि का अवैध व्यापार भी था। इस गांव में मौजूद एकलौता डैम भी टूट चुका था। लोगों के जीवन कठिन था, जहां औसतन सालाना 400-500 मिमी होता था। तो गांव में जल संचय के कोई तालाब नहीं थे। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, नमस्कार।
0: जी जी जी,
1: मैं मानपुर से बुरीलाल बोल रहा हूँ।
0: जी जी, बोलिए बोलिए।
1: आज सोमवार है, सोमवार का भजन भी हो जाना चाहिए। आपके भजन तो हमने सुन लिए हैं।
0: जी जी जी जी जी,
1: हमारा भी भजन सुना दोगे तो हमारी भी खुशियाँ बढ़ जाएगी। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है।
0: जी जी,
1: भजन के बोल है, ओ शंकर भोले कब होंगे दर्शन तेरे।
0: ओ शंकर भोले,
1: ये भजन होगा तो मेरा दिल भी खुश हो जाएगा और सुनने वालों का दिल खुश हो जाएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: ओ शंकर भोले,
1: हाँ ओ शंकर भोले कब होंगे दर्शन तेरे।
0: जी जी जी जी, जरूर हम कोशिश करेंगे ये भी शंकर भोले का कि कब होंगे दर्शन तेरे, तो जरूर हम। जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से अन्ना हजारे सामाजिक कार्य में अग्रसर रहे और उन्होंने गांव के लिए क्या क्या काम किया हम बता रहे थे। और उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बच्चों के देखते कि अभी उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बच्चों के हॉस्टल के लिए दान कर दी थी। और आज उनकी पेंशन का सारा पैसा गांव के विकास में ही खर्च होता है। संपत्ति के नाम पर उन्होंने अपने पास कपड़ों की जोड़ियां रखी, बस दो जोड़ियां, कोई बैंक बैलेंस नहीं। वह गांव के मंदिर में रहते और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए बनने वाला खाना ही खाता है। आज गांव का हर शख्स आत्मनिर्भर है। आस पड़ोस के गाँव को ले भी यहाँ से चारा दूध आदि जाता है। गांव में एक तरह का राम राज्य है, तो उन्होंने गांव में राम राज्य स्थापित किया। जो गांव में बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, तो ऐसे गांव को उन्होंने हरा भरा कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज पंजाब जलंधर से कमलेश जी। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भाई जी,
0: जी
2: और बहुत बहुत शुक्रिया मधुबन रेडियो का जो हमें हमेशा मौका देता है आप सबके साथ जुड़ने का।
0: जी जी,
2: हमारे
0: जी
2: सुनने वालों को भी बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। और नया दिन शुरू हुआ है, नया हफ्ता शुरू हुआ है। इतवार का दिन जो होता है थोड़ा रेस्ट का दिन माना जाता है, लेकिन जिन्होंने काम करना है उनके लिए क्या सोमवार क्या इतवार।
0: जी
2: तो
0: जी,
2: जैसे आप अन्ना हजारे जी की बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि कितना उनका सादा जीवन, सरल जीवन
0: जी
2: रहा।
0: जी जी जी,
2: और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश को समर्पित कर दिया, अपने गांव को समर्पित कर दिया। सेना में भर्ती होने के बाद, वहां सेवा देने के बाद जब वो वापस आए, तो उन्होंने अपने गांव को ही स्वर्ग बनाने का जो है बीड़ा
0: जी
2: उठाया।
0: जी जी जी जी।
2: और देखिए कि आने वाला समय, जो हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य है हमारे देश का, उनके लिए उन्होंने अपनी पेंशन सारी दान कर दी और उनको अच्छा खाना मिलता है, उनके लिए अच्छा माहौल बनाया होगा उन्होंने वहां पे। तो हमारी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं हमारे सुनने वालों की भी और हमारी मधुबन रेडियो की, कि वो एक ऐसे ही लंबी और अच्छी सेहत के साथ अपना जीवन यापन करें। और जैसा कि उन्होंने समाज को अच्छा और सुंदर और खूबसूरत बनाने का सोचा है, तो ये सोच जो है बहुत से लोग उनके साथ जुड़े होंगे, तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और सोमनाथ जी, जैसा मैं सोचती हूँ कि जैसे समय बहुत बदला है, जो अन्ना हजारे जी, जिनको प्यार से लोग अन्ना कहते हैं,
0: जी, जी, जी, जी.
2: उनके जीवन को देखकर या उस पीढ़ी के लोगों को देखकर या सुनकर उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि वो इंसानियत के जो पैमाने थे उन पर पूरे उतरे जीवन में.
0: जी, जी, जी, जी.
2: उनको हम फकीर कह सकते हैं, उनको हम भगवान के रूप में पूज सकते हैं जो दुनिया को, इंसानियत को जिंदा रखते हैं. तो जैसा आज का समय हम देखते हैं बहुत बदल गया है, हमारे तौर तरीके बदल गए हैं, हमारे खान पान का ढंग बदल गया है, हमारे रहने सहने का ढंग बदल गया है. हालांकि गरीब तबका भी बहुत है, लेकिन जो पैसा कमाते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तंदुरुस्ती नहीं है.
0: जी,
2: आप
0: जी,
2: देख
0: जी.
2: रहे होंगे ना, समय ऐसा चल रहा है. तो इस समय में एक और बात मेरे बहुत ही ध्यान में आती है, बहुत ही जहन में घूमती है कि हमारे देश में जहां बुजुर्गों को भगवान के रूप में पूजा जाता है.
0: जी, जी, जी, जी.
2: और देखिए, श्री राम भगवान जो अपने पिता के कहने पर 14 साल का वनवास काटने जंगलों में चले गए, उनकी बहू रानी सीता माता वो भी उनके साथ चली गई, बगैर कोई मतलब है क्वेश्चन किए, बगैर कोई प्रश्न किए वो चले गए. तो वो समय और आज का समय, आज समय ये है कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने पूरा जीवन अपना, अपने घर बार को, अपने परिवार को, अपने समाज को दिया है, उनके लिए घर में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, या उनमें भावना नहीं है, या उनके पास समय नहीं है. सभी चीज़ें ये हो सकती हैं, सभी पांच उंगलियां बराबर भी नहीं होती. हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन होम खुल रहे हैं हमारे देश में. तो आप देखिए कि जिस परिवार को साथ ममता के साथ उन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया कि हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, आज वही बुजुर्ग हमारे वहाँ रहने के लिए, सीनियर सिटीजन होम में रहने के लिए मजबूर हो गए.
0: जी, जी, जी.
2: हालांकि पैसे के मुताबिक या फाइनेंस के मुताबिक बहुत अच्छे इंतजाम अब सरकार भी कर रही है, और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसके लिए आगे आई हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं कि इन होम्स को भी बहुत अच्छा बनाया जाए, उनको अच्छा माहौल दिया जाए, उनको अपने ढंग से जीने का मौका दिया जाए, जिन्होंने पूरा जीवन अपना हमारे लिए लगा दिया. लेकिन दुख की बात सोमनाथ भाई जी ये है कि जो प्यार, जो सत्कार आपको अपने परिवार से मिलना चाहिए था,
0: जी, जी,
2: जिसके
0: जी.
2: लिए आपने इतना कुछ किया, तो वो प्यार और सत्कार शायद सीनियर सिटीजन होम में मिलता होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी, है ना.
0: जी, जी,
2: क्योंकि
0: जी,
2: एक ब्लड रिलेशन
0: जी,
2: या
0: जी.
2: कह लीजिए कि आपकी एक आपस में जो जो होता है प्यार होता है परिवार का, वो वहाँ नहीं मिल पाता.
0: जी जी. एक तरफ हम देखते हैं कि अन्ना हजारे जैसे उसने देश सेवा करने के लिए अपना घरदार छोड़ा, अपने गांव के विकास लिए अपना पैसा सब कुछ लगाया, और दूसरी तरफ देखते हैं कि अपने ही बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालते और वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे. तो ऐसा क्यों होता जा रहा है, आपकी क्या राय है?
2: सोमनाथ भाई जी, मुझे लगता है ये वजह ये है कि हमारी सोच में बदलाव आ गया.
0: जी जी.
2: हम
0: जी,
2: सेल्फिश
0: जी.
2: हो गए
0: जी.
2: अब आगे देखिए कि जब एक बुजुर्ग थोड़ी उसकी उम्र होना शुरू होती थी ना, तो जो उसके बच्चे अपने हैं वो तो उसको देख ही रहे थे कि वो बूढ़े हो रहे हैं, और आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन भी देख रहे होते थे कि हमारे घर में एक बुजुर्ग है, वो अगर आवाज मारता है तो हमने उसको पानी पिलाना है, वो अगर खाने के लिए मांगता है हमने उसको देना है.
0: लेकिन
2: बॉन्डिंग थी दोनों पीढ़ियों की ना, बॉन्डिंग थी. अब एकाकी परिवार हो गए, हस्बैंड वाइफ ही होते हैं और बच्चे होते हैं, और बच्चों का और हस्बैंड वाइफ का आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है, तो बुजुर्गों को कौन संभालेगा. मेन कारण तो ये है, और लोग मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए. अब एक समय था सोमनाथ जी, हमने भी उस समय को देखा और उसमें जीवन अपना जिया, कि हमारे पास घर छोटे होते थे.
0: जी जी.
2: घर छोटे थे, परिवार ज्यादा,
0: घर छोटे थे, और एक ही परिवार में चाचा भाई, दो दो चार चार चार भाई बहन, सब पूरा इकट्ठा परिवार रहता था, आंगन बड़ा रहता था, लेकिन बड़ा प्यार रहता था.
2: दिल बड़े हो गए,
0: जी,
2: दिल
0: जी.
2: बड़े थे और घर छोटे थे. लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो हाई हुआ, या उनका उसमें मतलब है अच्छा उनका एक तालमेल हुआ अपनी जॉब के साथ, पैसा कमाना शुरू किए, लेकिन उनके दिल छोटे हो गए और घर बड़े हो गए. अब हर आदमी अपने लिए एक रूम चाहता है, एक कमरा चाहता है. जिसको कमरा मिल गया वो उस कमरे में ही मस्त है। और एक टेक्निकली एक बात बताएं कि इस आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जैसे ये मोबाइल का समय आ गया, मीडिया है ना, सोशल मीडिया हो गया, तो हर इंसान अपने आप में मोबाइल में इतना घुस गया कि उसको अपने आसपास अपना ही नहीं पता होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। तो साथ वाले कमरे का बुजुर्ग बीमार है, वो आवाज लगा रहा है, आपको सुन ही नहीं रहा, आप सुनते ही नहीं हो, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना कुछ आ गया कि आप सुबह उठ के उसको शुरू करो और मुझे लगता है 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं वीडियोस देखते हुए, है ना, और बेमतलब की चीजें जो हमें बहुत से बुरे संकल्प में ले जाती हैं। हम क्या तरक्की करेंगे, अपने बुजुर्गों को कहाँ संभालेंगे, क्योंकि हम अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे ना?
0: जी जी।
2: और
0: जी,
2: बच्चों
0: जी।
2: के लिए माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है और अपने पेरेंट्स के लिए कहाँ होगा।
0: एक एक समय ऐसा भी था, मेरे को लगता है 40-50 साल पहले की बात है, घर में जो बुजुर्ग थे उनको सब राय, उनका सब राय मानते थे।
2: बिल्कुल।
0: जो बड़े हमारे घर में बड़ा भाई हो, घर सबसे बड़ा बेटा हो,
2: जी,
0: वो
2: जी,
0: भी उनके पाँव छूता था, चरण छूता था, और जो पिताजी बोलते थे वो राय फाइनल मानी जाती
2: जी,
0: थी।
2: जी, जी, जी,
0: तो एक जमाना था, वो भी सभी ने देखा है, आपने देखा है, हमने देखा है,
2: जी,
0: लेकिन
2: जी,
0: आज का जमाना है, चरण छूना तो दूर, लेकिन किसी की राय मानते भी नहीं है। सब अभी इतने टेक्नोलॉजी के कारण या नए दौर के कारण इतने अपने को होशियार समझते जो बुजुर्गों की राय मानते ही नहीं है।
2: रिश्तों की पहचान नहीं रही।
0: जी जी जी जी।
2: तो रिश्तों का पता ही नहीं है और दादा दादी का नहीं पता, क्योंकि दादा दादी कभी कभी साल में एक दो बार आते हैं, उन्हें लगता है ये तो मेहमान ही है, है ना, जबकि उनको तो उन पे ही निर्भर करना है, जब वो ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा। लेकिन एक अच्छी बात जो डेवलप हुई है सोमनाथ भाई जी, वो
0: जी।
2: ये है कि हर इंसान जो है जैसे जैसे उसकी एज होती है, उसको हमारे जैसी एज के लोगों की बात करें, उनको ये पता चल गया कि हमें संभालने वाला कोई नहीं है।
0: जी,
2: हमारी जो पीढ़ी है ना, उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि वो फॉरेन कंट्रीज में जाना शुरू हो गई, तो बुजुर्ग बेचारे अकेले रह गए पीछे, वो सीनियर सिटीजन होम में जाएंगे क्योंकि उनको संभालने वाला नहीं है। एक बात और जो उभर के ये आती है कि आज एक बुजुर्ग भी है ना, 60+ है, 70+ है, इवन 80+ लोग भी अपने आप का खुद ध्यान रखना शुरू हो गए, उनको तंदुरुस्त रहने का पता चल गया, लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज किया अपना, अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन एट लास्ट तो उन्हें किसी पर निर्भर होना ही है ना।
0: जी जी।
2: तो
0: जी।
2: एक बहुत बड़ा एक जो ऐसी चीज समाज में डेवलप हो गई है जिसका आने वाले समय में हमें बहुत नुकसान होने वाला है ना?
0: जी जी जी जी।
2: क्योंकि बूढ़े तो सब नहीं होने, हम ये समझते हैं जब हम जवान होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम बूढ़े नहीं होंगे। अब हम जब बूढ़े हो गए तो अगली पीढ़ी जब ऐसा सोचती है तो बुरा लगता है, है ना। और कुछ बुजुर्गों को भी अपने आप में बदलाव करने की जरूरत होगी, मुझे लगता है कि उनको भी आज की पीढ़ी, अगर हमने मेहनत की है, हम उन पर रौब डालते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए किया, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, वो नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है टेक्निकली इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, इतना कंपटीशन बढ़ गया हर फील्ड में, जॉब फील्ड्स में, उन बच्चों को हमारे ज्यादा जो प्रेशर थे ना हमारे समय में, उनसे डबल प्रेशर उनके दिमाग पर है इस समय, तो उनको कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी जी जी। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हमें कमलेश जी बता रहे हैं, तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो जो फरमाइश थी गाना ओ शंकर मेरे, तो ओ शिव जी का गाना हम जरूर, जी जी जी जी जी जी जी।

0: बहुत ही प्यारा भजन सोमनाथ भाई जी, हमारे सुनने वालों की फरमाइश पर हमने सुना। और अगर कहते हैं कि सचमुच में
1: जी जी जी जी जी
0: सचमुच जो आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने खान पान पर पहले ध्यान देना होगा।
1: जी जी जरूर। तो खाने पीने के बारे में हमारे श्रोताओं को भी बताइए,
0: बिल्कुल
1: क्या हम परहेज करें, क्या खाए और क्या नहीं खाए।
0: सोमनाथ भाई जी, जैसा कि आज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारा खान पान बिगड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया, हर चीज़ पोल्यूशन पोल्यूटेड है। हमारी सोच, हमारा आसपास, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये सब पोल्यूटेड है। लेकिन क्योंकि खाने पीने का संबंध हमारी सीधा सेहत से है, और अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, उसको याद करेंगे, हम लंबा और सेहतमंद जीवन जी सकेंगे। जैसा कि हम पुराने समय में देखते हैं कि बहुत ही सिंपल सरल भोजन होता था और किसी चीज़ में मिलावट नहीं थी, तो वो लोग 104 साल 105 साल हमारे नाना नानी दादा दादी ऐसे बड़ा लंबा से जो उन्होंने जीवन जिया और बड़ा तंदुरुस्ती वाला जिया है ना। लेकिन जो है आज के समय की बात करें तो इतना ज़्यादा फास्ट फूड का दौर हो गया है, जिसमें नूडल्स हैं, बर्गर हैं, और बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है। लोग घर में खाना बनाना पसंद नहीं करते, लोग जॉब में 14-14 घंटे करने के बाद खाना बनाना लड़कियों के लिए मुश्किल भी हो गया। अगर खाना बनाने की बात करें तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि जो आप खाना चाहते, थोड़ा सा अपने खाना होता है, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिए, तो आपका मन भी लगा रहेगा, आपको अपने हाथ से बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट भी लगेगा, और अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक आप बनाकर खाएंगे।
1: और एक बात है, अभी अखबार में हम पढ़ते हैं जो बाहर का खाना होता है, बहुत सारे मिलावटी है, तेल में मिलावटी है, खाने में मिलावटी, मैदा जो भी आटा है, अनाज है, सब में मिलावटी है। और आप जो राय दे रहे बिल्कुल सही लग रहा है।
0: जी जी जी। और देखिए, तेल की बात आपने करी है कि इतने तरह के तेल आ गए हैं जो सीधा हमारे हार्ट पर, हमारे किडनी पर, लिवर पर जो है असर डाल रहे हैं, और बच्चों में जन्म से मोटापा, जॉन्डिस की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम। अभी पीछे एक केस था कि जो बच्चे ने जन्म ही लिया तो पता चला कि उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वजह क्या थी कि माँ ने अपने खान पान में कुछ ऐसा खाया जिस उस बच्चे की जन्म से ही जो है नज़र जो उसको नहीं मिली, उसको देखने का जो ताकत होती है वो नहीं थी उसकी आंखों में, तो ऑपरेट करना पड़ा। समय से ऑपरेट हो गया, बच्चे की वो चीज़ ठीक रही, ताकि लेकिन उसको उसमें अभी दवाइयों पर चलना पड़ेगा, है ना। तो कितनी हैरानगी की बात है कि लोग 100-100 साल की उम्र तक चश्मा नहीं लगाते थे, उनके बाल काले रहते थे और उनपे मोटापे की शिकायत। आप देखिए कि बच्चों को इतना मोटापे की शिकायत है, मोटापा मीन्स बीमारियों का घर हो आप, एक अब बीमारियों का झुंड लेके घूम रहे हो जिनको मोटापे की शिकायत है ना। तो ये सब हमारे खान पान की वजह से हुआ है, जिसमें हम तेल ऐसे बाहर के खाने में खाते हैं, या उसमें स्वच्छता नहीं होती, उसको बनाने वाले की भावना नहीं होती। जैसे हमें बाबा ने सिखाया कि जब आप खाना बनाते हो ना, तो परमात्मा की तरफ ध्यान करके खाना बनाओगे तो पूरे परिवार ने खाना, तो उनकी भावना अच्छी रहेगी। और अगर आप खाना बनाते समय को अच्छा भजन लगा लेते हो, मुरली लगा लेते हो, जिस गुरु को भी आप मानते हो, उसकी जो जो वो आपको बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, तो आप उनको सुनते सुनते खाना बनाते हो तो खाना इतना स्वादिष्ट होगा, वो प्रसाद बन जाता है।
1: जी जी जी
0: ना। तो हम सब के खाने के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो
1: जी,
0: क्या
1: जी,
0: बोलें अब इस पीढ़ी को कि उनको तो हाँ, नेचुरोपैथी में अभी हम पीछे बहुत दिन पहले हम नेचुरोपैथी के गुरु जी से मिले, उन्होंने हमें बताया कि हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत है, अगर आज की डेट में भी हम अपने आप को चेंज कर लें, हम अपने खाने पीने का ध्यान रखना शुरू कर दें, हम बाहर से खाना खाना बंद कर दें, तो आज की डेट से, अभी से, जब से आपने डिसाइड किया कि आज मैंने बाहर का खाना नहीं खाना, घर में खुद बना के खाना है, या तेल ही यूज करना है, या शुद्ध घी यूज करना है, तो इसी मोमेंट से आपका जो हेल्थ वो ठीक होना शुरू होता है। क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी जो इम्यून सिस्टम हमारा लगा के भेजा हमारे अंदर, कि वो इस ताकत को अगर पहचान लेंगे आप, तो आपकी बहुत सी बीमारियां जो ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और जब ठीक होना शुरू होंगे तो आप देखिए कि जीवन का आनंद बढ़ता जाएगा। और इस आनंद को लेने के लिए हमें पहले सबसे भोजन पर ध्यान देना
1: होगा। अभी बहुत सारे महाराष्ट्र की खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में या भारत में कई जगह भी होता है कि दूध में बहुत सारी मिलावट होती है, दूध में यूरिया हो रहा, यूरिया मिक्स हो रहा है, कुछ कुछ दूध इतना है नहीं लेकिन ज्यादा सेल होने के लिए लोग उसमें क्या क्या मिला रहे, बिना दूध का भी इसका भी वो अलग अलग यूरिया से अलग अलग केमिकल से भी दूध बनाया जा रहा है, तो वो सारा मनुष्य के पेट में जा रहा है, तो कितनी एक गंभीर बात है। तो अलग अलग जगह अगर हम मिठाइयाँ खाती है वो बोलते हैं दूध से मिठाइयाँ बनती, दूध से पनीर, दूध से खवा, तो दूध का वो दही, तो सब केमिकल का बन रहा है।
0: ओवर ईटिंग बहुत हो रही है सोमनाथ जी, बच्चों के कंट्रोल जो एक अंदर हमारे पुर्जा है ना जो खाने को कंट्रोल करने का वो ही खत्म हो गया है, पर ओवर ईटिंग मिल रहा है तो खा लो बर्गर जितने मर्जी खिला दो बच्चों को, घर का खाना खाने के लिए वो तैयार नहीं है, है ना, तो इसका मतलब उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि हमें क्या हमें चाहिए और कितना चाहिए और किस समय चाहिए, है ना, उसके साथ पानी का जो इंटेक कम हो रहा है इसीलिए ब्लड प्रेशर हो रहे हैं और किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, तो कृपया।
1: और ऐसे भी कुछ छोटे छोटे पैकेट्स आ गए बाजार में जैसे बच्चों को आकर्षित करते, कुरकुरे है, बॉबी है, पॉपकॉर्न्स है, ये अलग अलग तेल में या अलग अलग हल्की क्वालिटी के बनते हैं और उनका ज्यादा सेल होने के लिए प्रॉफिट मिलाने के लिए वो तो
0: इसमें सरकार ने ना वो बताया उसमें बताते हैं कि आपको ये इसमें चीजें हैं इससे नुकसान होने वाला है
1: जी।
0: वो आप बिल्कुल बारीक लिखेंगे वो हम पढ़ते ही नहीं है, हम उसमें मोटा मोटा कुरकुरे लिखा हुआ है, तो कुरकुरे मीन्स चटपटी चीज है, हाँ। बस खा लो, है ना, मतलब ये चीजें है इनको ध्यान में रखने की जरूरत है, और कहने और करने में बहुत अंतर है सोमनाथ भाई, अगर हमारी ये बात सुन के कोई अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने खान पान में बदलाव कर लेता है, तो मधुबन रेडियो की कामयाबी होगी इसमें।
1: जी जी जी जरूर जरूर, क्योंकि क्या है सादा भोजन शुद्ध भोजन हमारे हमको हेल्थ अच्छी देता है। आज भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे की हेल्थ बिगड़ती, बहुत सारे लोगों की हेल्थ बिगड़ने लगी है, तो हेल्थ बिगड़ने का कारण है हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है, केमिकल जा रहा है, बहुत सारे पदार्थों से केमिकल जा रहा है, तो अगर केमिकल को हम बचाएंगे, शुद्ध और सात्विक भोजन खाएंगे तो जरूर हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी।
0: बिल्कुल, और देखिए कुदरत ने हमें इतने ज्यादा पेड़ पौधे दिए हैं, तुलसी का पौधा है, जामुन का पौधा है और शीशम का पौधा है, इसके अलावा जो धनिया है, हमारी किचन में बहुत सारे मसाले हैं जो बहुत सारे हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले हैं
1: जी, जी,
0: हमारा
1: जी,
0: उन पर ध्यान अगर जाए तो हर चीज को आप क्वालिटी को पढ़िए क्या है तो उसको अपने जीवन में शामिल कीजिए, कुछ कुछ चीजें किसी को सूट नहीं करती हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये सब चीजें अपने भोजन में शामिल कीजिए, अपने हाथों से खुद भोजन बनाइए। मेरी माताओं को स्पेशल जो है एक विनती है और उनके युगल को भी ये विनती है कि अगर आप माँ बाप बने हैं तो दोनों मिलके अपने बच्चों के खान पान का ध्यान रखिए, और खाना थोड़ा ही खाना जीवन के लिए बहुत होता है, ज्यादा खाने से कोई ज्यादा सेहतमंद नहीं होते हम, बल्कि वो हमारे अंदर जो मशीन लगी हुई ना खाना हजम करने की उस पे वो उसमें रुकावट डालता है धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज होती है, और प्रेशर में खाना, जब आप खाना खाने बैठते हैं पहले भगवान का नाम लीजिए कि ये थाली हमारे सामने जो परोसी गई है इसमें

0: भोजन हम छोड़ेंगे और डस्टबिन में जाएगा तो बहुत सारा नुकसान होता है।
1: बहुत से लोगों को खाना मिलता ही नहीं है सबुना
0: जी
1: जी,
0: जी जी
1: अगर
0: जी
1: हम ये भावना रखेंगे तो बहुत सा भोजन हम टनों के हिसाब से हम भोजन जो है वेस्ट करते हैं वो बच जाएगा और उन लोगों को मिलेगा जिनको उसकी जरूरत है।
0: जी
1: और
0: जी
1: आप ये
0: जी
1: मत सोचिए कि आप बहुत अच्छा आपको माहौल मिला, आप अमीर हैं, आप अमीर माँ बाप के बच्चे हैं तो आप ही कुछ बनेंगे। उन गरीब लोगों को जिनको खाना मिलेगा शायद उनमें से कोई अच्छा इंसान मिले जो राजनीति में आगे आए, देश को संभाल
0: जी
1: सके,
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: एजुकेशन के उसमें आ जाए, उसको अगर अच्छा माहौल मिले तो ये दूसरों को भी जो सेवा की भावना भी बच्चों में डालना बहुत जरूरी है।
0: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने हमारे श्रोताओं को क्या खाए क्या नहीं खाए और कैसे खान पान के ऊपर हमें लक्ष्य रखना है उसकी बहुत सारी जानकारी दी। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया अभी समाचार सुनने का, तो हम आपको समाचार सुना रहे हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
3: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
4: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य

0: से देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
2: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
4: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
3: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
5: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
3: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: तो चलिए दोस्तों, समाचार समाप्ति के बाद फिर से एक बार आपको लेके जा रहे हैं हमारे जो आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, कमलेश जी। कमलेश जी आकाशवाणी भारत सरकार के आकाशवाणी केंद्र में सेवाएं दे रहे थे और रिटायरमेंट के बाद वो अभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमें हमारे सभी श्रोताओं को लाभान्वित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको और कुछ विशेष खास टिप्स दें। तो कमलेश जी आप क्या सुनाना चाहेंगे?
8: जी रमेश, सॉरी सोमनाथ भाई जी, क्योंकि रमेश भाई जी भी यहाँ पे है तो उनका नाम भी अक्सर मेरे आ जाता है। तो ऐसा है सोमनाथ भाई जी के, जैसा मैं कई बार देखती हूँ, हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स भी बन गए हैं, तो बच्चों को, आज की पीढ़ी को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करें, मल्टी नेशनल जो कंपनियां उसमें अच्छा पैसा भी कमाएं, उनकी शख्सियत जो आने वाले समय बहुत निखर जाए, है ना। लेकिन सोमनाथ भाई जी, आपने देखा होगा कि हमारे समय में भी ना हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर एक प्रेशर बना के रखते थे कि आपने यही सब्जेक्ट लेने हैं, है ना। हमें सोचने समझें कि वो उन्होंने मौका ही नहीं दिया तो जो हमें अंदर से अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं कि आगे जाके कैरियर में कैसे वो चलेगा। लेकिन उनको शायद ज़्यादा पता था कि तब लोग टीचिंग लाइन में बहुत जाते थे, है ना, और दूसरा आर्मी में बहुत जाते थे, लड़कियां भी जाने लगी थी हमारे समय में तो, है ना, पुलिस में जाते। एक मोटा मोटा उनको ये पता था कि इस डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे अगर जाएंगे तो वो अच्छी शख्सियत बन पाएंगे।
7: जी जी।
8: लेकिन
7: जी।
8: आज समय बहुत बदल गया है और पेरेंट्स को ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों के टैलेंट को पहचाने कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई बच्चा बैठा बैठा कुछ ऐसी पेन पे कुछ पेज पे कुछ बना रहा है, पेन से कुछ कर रहा है, तो उसको आपको उसको देखना चाहिए कि शायद उसको ड्राइंग का शौक है, वो कुछ बनाना चाहता है।
7: जी, जी,
8: बैठे
7: जी।
8: बैठे कोई आकृति बना देता है तो हम उसको पकड़ते हैं और एक थप्पड़ लगाते हैं कि क्या कर रहा है बैठा, है ना।
7: जी,
8: तो
7: जी।
8: वो मतलब है वो बच्चा बेचारा दब जाता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे को थोड़ा शौक है कुछ बनाने का, कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का, या कईयों को म्यूजिक का शौक होता है, गाने का शौक होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल बजाने का शौक होता है, ये चीजें बच्चों को बच्चों में आपने देखनी होती है। आपने देखा, मैं अभी हमने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही बड़े ऑफिसर को इंटरव्यू किया था,
7: जी,
8: वो कह रहे हैं कि वो उनको संगीत का शौक था लेकिन वो एक अच्छे डिपार्टमेंट बड़े ऑफिसर रिटायर हुए हैं, कहते संगीत का शौक उनका दब ही गया क्योंकि 6 साल की उम्र में वो एक फंक्शन में गए थे और वहाँ इंस्ट्रूमेंटल जो उन्होंने म्यूजिक का वो देखा सेक्शन, तो वहीं 6 साल के थे, वहीं रुक गए और वे इस डर से रुके हुए थे कि जब मैं घर लेट जाऊंगा तो बच्चे पेरेंट्स कहेंगे कि इतनी देर तूने कहाँ लगा दी, पिटाई होगी। तो वही बात हुई जब को पता, जब उनके घर वालों को पता चला तो उनकी पिटाई हुई कि म्यूजिक में क्यों, मतलब है आप वहाँ क्यों ड्रम बजाने चले गए या इंस्ट्रूमेंटल आपने क्यों म्यूजिक सेक्शन में क्यों चले गए, है ना। तो अब उनका वो टैलेंट, अभी वो उसको शौक को पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों के शौक को आपको पहचानना है मेन, है ना। एक चीज से काम नहीं चलेगा कि वो बस जॉब करो और अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा जीवन होना चाहिए। लेकिन एक समय धीरे धीरे आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी जरूरतें बदलती हैं। जैसे अभी सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो कैरोके जो एक म्यूजिक सिस्टम चला है,
7: जी, जी, जी,
8: उसमें हजारों जो सीनियर सिटीजन है वो अच्छे से गा रहे हैं, उनको गाने का मौका ही नहीं मिला था है ना, तो वो खुश है, वो बिजी जी, भी जी। है और घर वालों को तंग भी नहीं करते और पूरा दिन बिजी रहते हैं। मतलब कहने का कि हर एज के मुताबिक जो चेंजेस आती हैं वो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि बच्चे को क्या शौक है, उसको डांटिए मत, उसको पूछिए, उसको फुसलाइए, उसको पहचानिए, उसको मेंटली और फिजिकली बिजी रखिए, ताकि जो आपको शिकायत रहती है कि जब भी आपका मोबाइल आप फ्री करते हो थोड़ी देर के लिए तो बच्चा उसमें बिजी हो जाता है, या माएँ खुद काम करने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है तो उसमें वो क्या सीखता है, उसकी आई आई साइट पे उसका असर पड़ता है, उसकी सोच पे, उसकी वो चीज़ें वो मोबाइल में देख लेता है जो उसकी उम्र के मुताबिक उसके लिए ठीक नहीं है। तो जो हमें सोशल मीडिया पे हमने तरक्की की है उसके बहुत से नुकसान भी हैं और बहुत से फ़ायदे भी हैं। समझदार माएँ इस बात को समझने लगी हैं और वो एक तो हमारे सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो कपल्स जिनकी नई शादियां होती हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं रखते। सोमनाथ भाई जी वो एक ही बच्चा जो है उसको अच्छे से पालन पोषण करने का उनका एक रुझान पैदा हो गया है ना, ये खुशी की बात है। तो चलिए एक बच्चा है उसकी शख्सियत को संवारिए, सजाइए, उसको पहचानिए, उसको मौके दीजिए, उसको सहयोग दीजिए, उसको प्यार दीजिए, ये सब चीज़ें पेरेंट्स की ड्यूटी है।
7: जी जी जी, तो आपको हमने कई बार गीत सुनाते हुए सुना है, देखा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत भी सुनाएं।
8: बिल्कुल, मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी मतलब मैं तो ऑल इंडिया रेडियो में जॉब किया, हमेशा हम म्यूज़िक में रहते थे, लेकिन अंदर एक शौक था जिसको बहुत सालों बाद जब मुझे मौका मिला, थोड़ी फैमिली से फ्री हुई तो मैंने इसको सीखना शुरू किया और घर में बुला के जो म्यूज़िक के हमारे टीचर थे वो हफ्ते में एक बार आके मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाते थे। हारमोनियम बजा लेती हूँ मैं, है ना, अभी आजकल मैं थोड़ा सा समय देती हूँ म्यूज़िक को ताकि मैं आने वाले समय में और ज़्यादा अपने आप को पॉलिश कर सकूँ, है ना। इससे क्या होता है अपना सोमनाथ भाई जी कि मैं अच्छे काम में बिजी रहती हूँ और कभी डिप्रेशन कभी सोच हमारे ऊपर हावी नहीं होती क्योंकि हम अच्छे काम में बिजी हैं, है ना।
7: जी जी जी,
8: तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।
7: बराबर।
8: और एक गीत जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, वो गीत है, आप सबकी नजर करना चाहूंगी।
7: जी जी जी जी,
8: गीत है जी,

0: बहुत सुंदर गीत, आपकी कितनी मधुर आवाज भी है कमले जी। लगता है कि हमारे श्रोता हाँ सिर्फ आपका सुनना पसंद कर रहे हैं कि, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर सुनने के साथ साथ अगर आपके मन में कोई प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मेहमान बहुत चंद दिनों के लिए हमारे यहाँ रेडियो में आते हैं और वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है उनका, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उनसे पूछ सकते हैं, राय ले भी सकते हैं। तो ऐसे
1: कॉलर की वेट में है हम लोग।
0: जी जी जी जी
1: जी जी सुनने के लिए जी जी जी जी जी कॉलर आ चुके हैं इसमें सोमनाथ भाई।
0: जी जी जी जी जी जी हेलो जी नमस्कार।
2: अजी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांतिना से और आपको और हमारे कमदत बहन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते।
1: शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया
2: जी। जी सर, बहन जी कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया, आपसे बात करके देखिए और अच्छा हो गया हमारा हाल।
2: जी जी बहुत अच्छे है, आपके गाने सुनकर तो और अच्छे हो गए, आपकी आवाज बहुत मधुर मिठी है दीदी की, आप बस हम सुनते ही जाए सुनते ही जाए, लेकिन हम बताए तो हमको, हम भागशाली है, हम आपसे ही बात कर रहे हैं।
1: जी जी,
2: हम देखो आज कोई कोई से बात नहीं हो पाती है और आप इतने दूर से आए हैं, अच्छी एक जगह पे आए हैं, बाबा के घर पे आए हैं, तो कितना भागशाली हम भी और आप।
1: बिल्कुल, देखिए भाग्यशाली हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही भाग्यशाली हैं, हमारे सुनने वाले हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही मधुबन रेडियो जो है इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है।
2: बिल्कुल, हम तो बताइए तो हम तो शुरू से सुने हैं, जब से रेडियो मधुबन का शुरुआत हुई
1: जी जी
2: 2011 से तब से हम जुड़े हैं।
1: क्या बात,
2: और आजकल जुड़ते ही रहे हैं,
1: बहुत अच्छे।
2: क्योंकि हमारा ये रेडियो मधुबन हमारा एक रेडियो नहीं है, एक कहते हैं कि हमारे जीवन का परिवर्तन
0: परिवार है, परिवार
2: सभी बातें आप सुनते हो और हम भी आपकी बातें सुनते हैं, वरना देखो कई सारी चैनल है रेडियो के, लेकिन ऐसा रेडियो हमने पहली बार ही हमारे हमको मिला है, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है।
1: बिल्कुल, देखिए इसमें मधुबन रेडियो की अगर बात करें, आपने अपना नाम क्या बताया?
2: सुरेश जी
1: ऐसा है कि मधुबन रेडियो जो है ना, इसकी खासियत ये है कि हमें ये अपने आप से जोड़ देता है, अपनी हमारी अंतरात्मा से जोड़ता है ना, और आत्मिक तौर पर हमें आगे बढ़ने का तरीका सिखाता है। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एंकर जैसे आप भी इनको जानते हैं, रमेश भाई हैं और सोमनाथ भाई हैं, बहने भी हैं,
2: हमारे खास और हमारे परिवार हैं, जैसे हम परिवार में हमारे जो सदस्य ऐसे हमारे परिवार है सभी।
1: बिल्कुल, हमारे जी जी जी जी जी हमारे भी ये खास हैं।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे भी आप खास हैं, क्योंकि आप आए तो हमको खुशी रही थी, आप पिछले दो तरह से आए और आप आरजे हैं, आरजे होना मतलब ये नहीं, लेकिन आरजे का जो परिवार होता है ये बहुत एक बिल्कुल नजदीक का होता है।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे घर वाले कई बार इस बात से जेलस हो जाते हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं अपने लिसनर्स की बात करती हूँ, क्योंकि हम तो 30-32 साल से जुड़े रहे हैं ना, उनके फोन आते थे, बात करते थे, हमारा जो अभी कभी बीमार हो गए तो हम गए नहीं, तो हमें पूछते थे इतने दिन क्यों नहीं आए, अगर गला खराब है तो हमें दवाइयां बताते थे कि आप ये दवाई खाओ आपका गला ठीक हो जाएगा, है ना। तो जो घर वाले कभी कई बार ये चीजें नहीं पूछते हैं, घर वाले ये चीजें नहीं पूछते कि आप बीमार हो क्या, आज खाना मत बनाओ, है ना। तो आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हमारा ज्यादा जुड़ाव हो जाता है। तो हम कभी बात, अभी रिटायरमेंट के बाद मैं बोलती हूँ, फला लिस्टनर थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बुजुर्गों के फोन आते थे, बेटा हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो इन लोगों को बुरा लगता है, वो कहते हैं कि हाँ अच्छा लिस्टनर भी कोई चीज होता है, ये तो हमें पता है ना।
2: हमारे रमेश भाई है, हमारे सभी आरजे बहन भाई है, तो हम पूछ ही लेते हैं की क्यों नहीं आया आज की बात है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। तो ये परिवार एक परिवार है, क्योंकि एक परिवार हम कभी खोना नहीं चाहते और खोएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा जो नाता जुड़ा है एक दूसरे की कनेक्शन है परमात्मा के साथ हमारा।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हम सब साथ साथ हैं, बिल्कुल हम सब साथ हैं।
2: बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। और मेरा एक गाना है, लेकिन आपके गाना है, आपको गाना है।
1: अच्छा
2: गाना। एक गीत हमारे दादी जी था, जानकी दादी का फेवरेट गीत था।
1: कौन सा?
2: तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है कि आए लो ते आजा मेरे
1: क्या बात
2: मुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
1: अच्छा आप ही सुना दीजिए।
2: मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
1: जी जी
2: कोई जाना है दीदी?
1: ऐसा है सुरेश भाई जी के दादी जी जो हैं वो उनका बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके मुताबिक उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग अपने जीवन को संवार सकते हैं, है ना। तो ये गीत आपको जरूर मैं दो लाइनें सुना दूं। सोमनाथ भाई जी, मुझे सोमनाथ भाई से पूछना पड़ेगा।
0: जी जी जरूर जरूर।
2: कभी मना नहीं करते हमारे खास जो बहने हैं वो हम बोलते हैं तो सही कर देते हैं। बिल्कुल सही है।
1: चलिए आपको दो लाइनें सुनाती हूँ, ये मेरा भी फेवरेट है गीत। अगले कॉलर शायद आ रहे हैं, तो सुनाऊं क्या गीत?
0: जी एक

0: हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो
3: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए
3: बोलिए।
1: शायद
0: शायद आवाज कट गया है।

0: हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो, ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: ओम शांति जी।
1: आ रहा है अभी?
0: हाँ, आ रहा है। आपका आवाज आ रहा है।
1: तो दीदी, क्या बात है, क्या सुंदर गीत आपने गाए और जानकारी भी अच्छी मिल रही है। बहुत खुशी हो रहा है और सभी अपना रेडियो मधुबन परिवार तो सुंदर गुलदस्ता है, खुशबूदार फूलों का। तो सभी की विशेषताएं और बातचीत बहुत ही अच्छी लगती है। और सोमनाथ भाई की बात तो क्या कहना है। तो सभी को नमस्कार और ओम शांति भाई।
2: ओम भी नमस्कार।
0: नमस्कार, ओम शांति।
2: नाम नहीं बताया ना इन्होंने, आप अपना नाम बताइए।
1: सुभाष भाई।
0: सुभाष भाई,
1: महाराष्ट्र जलगांव।
2: अच्छा, तो आप रेडियो लगातार सुनते हैं?
1: महाराष्ट्र जलगांव का दीदी।
2: अच्छा।
1: महाराष्ट्र जलगांव से हम सुनते हैं। रेडियो मधुबन ऐप डाउन कर लिया हमने।
2: अच्छा।
1: और इंटरनेट से डेली सभी प्रोग्राम हम सुनते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया
0: जी। जी, थैंक यू सुभाष भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप रोज रेडियो सुनते हैं, महाराष्ट्र से सुनते हैं। और हमारे मेहमान जो है आज सभी को लाभान्वित कर रहे, तो हम चाहते हैं कि पूरा पूरा लाभ ले कमलेश जी।
2: और हमारे अगले कॉलर शायद आ चुके हैं लाइन पर। देखिए, कॉलर जो है उनका ऐप डाउनलोड करके कहते मैं लगातार सुनता हूँ। बहुत बड़ा सहारा है सोमनाथ भाई जी।
0: जी,
2: बहुत
0: जी,
2: से
0: जी।
2: जो जब एक एज के बाद आप फ्री हो जाते हैं, इवन अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है काम की, जब आप रेडियो साथ में म्यूजिक लगा के रखते हो, है ना। और मधुबन रेडियो की बात ही क्या है, इसमें आपको आत्मिक तौर पर भी बहुत सा ज्ञान मिलता है, बाबा के आशीर्वाद मिलता है, दादियों का प्यार मिलता है।
0: जी जी जी जी, बहुत। और श्रोताओं का भी प्यार मिलता है। हेलो जी, नमस्कार।
3: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार भाई। हाँ जी, बहुत अच्छे।
0: बोलिए बोलिए।
3: मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए मदन भाई, हमारे अच्छा, स्टूडियो में आज कमलेश दीदी जी आ गए हैं।
2: मदन मामा।
3: क्या बात है।
2: वही है ना।
3: जी जी जी।
2: आप ही रेगुलर कॉलर
3: हैं। मैंने पिक्चर देखी थी।
2: हाँ जी।
3: धर्मवीर, उसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र साहब होते हैं।
2: जी जी।
3: और वो बचपन में जीवन साहब जो होते हैं उनके मामा होता है।
2: अच्छा।
3: तो जीवन साहब कहता है कि ये मेरा भांजा बड़ा होके मेरी मौत का मेरा बदला लेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और आपको नमस्कार है, आपकी आवाज अच्छी लगी। वेरी वेरी नमस्कार रेडियो मधुबन को, और हमारे सभी शो सुने हैं हम।
2: अच्छा, मतलब एक बात बोलूं आपसे। जैसे मैंने रेडियो में काम किया ना, तो आप जैसे बहुत प्यारे श्रोता हमारे रेडियो के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे श्रोता थे जो लगातार हर रोज फोन करते थे। हमें अच्छा भी लगता था, लेकिन हम उनको रोज बोलते थे कि भैया कल आप फोन नहीं करना, किसी और की बारी आने दीजिएगा। तो आप, मुझे लगता है ऐसे श्रोता है जो रोज फोन करते होंगे इस प्रोग्राम में, है ना।
3: जी जी जी।
2: तो
0: लेकिन लेकिन आप फोन करते रहना।
2: आप फोन करते रहना।
3: जी जी।
2: हाँ, तो ये, हाँ जी जी बोलिए।
3: मुझे दोस्तों के बगैर अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग है, नानी है,
2: इसके लिए भी समय चाहिए। आप कितना समय लगाते होंगे एंटर होने के लिए, है ना, लगातार, क्योंकि बड़ी लाइन बिजी चल रही होती है ना फोन की। तो जिसका फोन मिल जाता है तो दूसरे नाराज हो जाते हैं कि इनका फोन रोज ही मिल जाता है। तो हम उनसे उन्हीं पे उनसे पूछते थे सवाल कि आपका क्या, आपके पास क्या ऐसी चाबी है जो आपका फोन रोज मिल जाता है और बाकियों का नहीं मिलता, है ना। तो वो कहते जी हम तो प्यार से फोन करते हैं, उसको टच करते हैं, वो मिल जाता है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है।
3: हाँ, हमें जो प्यार का सागर मिला है ना अभी, तो हम उनको याद करते हैं। तो बाबा बोलता मुझे याद करते हैं, इसी तरह अपने जो आत्मा भाई है दूसरे, उनको भी याद करो, तो मैं सबके पास आके खुशियों का खजाना डाल दूंगा।
2: बिल्कुल,
3: तो वो खुशी हम बांटते रहते हैं।
2: जी जी, आज मुरली सुनते हैं आप? रोज मुरली सुनते हैं?
3: जी जी,
2: आज मुरली में था कि बाबा प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर जो है तो हमें भी उसको प्यार करना चाहिए ना, दिल से
3: करना चाहिए, है ना? करने कहीं कहीं देखता हूँ ना, कोई लड़ते हैं झगड़ते हैं, उसमें भी कल्याणकारी है, मगर फिर भी सोचता हूँ कि भगवान थोड़ा बहुत समझना चाहिए, लड़ना झगड़ना चाहिए, मगर थोड़ा विचार करना चाहिए, एकदम गुस्से में नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे गर्मी जितनी बढ़ रही है ना, ये जैसे कहता है कि लोहा लोहा को काटता है, मगर ये मालूम नहीं कि कौन सा लोहा किसको काटता है, जो गर्म लोहा होता है उसको ठंडा काटता है।
2: जी जी जी जी जी
3: जी। और नमस्कार सर, आज सुबह से सुनते हैं सुप्रभात और ओम शांति, और अभी सुन रहे हैं, बस अच्छा लगा है। और हमारे कमलेश भाई आए हैं, उनका दिन बहुत अच्छा जाए और हमारा भी सबका अच्छा जाए।
2: जी जी जी।
3: तो अब बात कर ली है हमने धर्मवीर की, तो गाना गा ही लेते हैं।
0: जी जी, जरूर जरूर जरूर जरूर,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, ये गीत आपके पास आ रहा है जो
0: नहीं वो गाना चाहते हैं।
3: तो
2: अच्छा, आप गाना चाहते हैं?
0: जी जी जी,
2: सुनाइए सुनाइए।
3: सुना लेता हूँ। तजुर्बे इस दुनिया में आदमी अपनी जोड़ी, और तोड़े से बैठू से ना ये धर्मवीर की जोड़ी, ओ हो कोई तुझ पूछे आवो तुम्हें बोलू, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलू, क्या जीना क्या मरना है ऐसा अपना याराना है, रात मनाई यार जो यार न भाव न दूरी, हो कहाँ तजुबे इस दुनिया में याद अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से बैठू तेना ये धर्मवीर की जोड़ी, हो
2: जी बहुत बहुत।
3: ये लड़की है यार सम की दौर है, कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है, जोड़ी दी देखना जोड़ के मुश्किल में काबू में आए, लड़की है यारोरी ओ ओ।
0: वाह वाह वाह,
3: दुख के हम साथी है ये मजा है, अपना जो कुछ है सब आना है, ये जो सच्चा वादा है सब कुछ आदा है, तो हमको भी रानी मिल जाए मीठा चोरी, ओ ओ। ये गाना बड़ा अच्छा है,
0: बढ़िया बढ़िया, ये गाना भी एक लाइन सुना
2: देता हूं। शुक्रिया मदन भाई, खुश रहिए।
3: थैंक यू साहब,
2: खुश रहिए।
3: ओम शांति कमले भाई, वेरी वेरी ओम शांति, और आपके सभी दोस्तों को और हमारे रेडियो मधुबन को नमन करते हैं। ओम शांति, नमस्कार।

0: यारों ने दुनिया पर यार की बाहन छोड़ी। हो
1: तो चलिए दोस्तों, मदन जी का ये प्यारा सा गीत साथ अजूबे, कितना ये मतलब अजीब गीत था, कितना सुंदर गीत था। तो हम कमलेश जी के अभी वक्त हो रहा है कार्यक्रम को पूरा करने का, तो जाते जाते कमलेश जी से भी हम पूछना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे।
2: बिल्कुल, हमारे सुनने वालों को सोमनाथ भाई जी ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं, आपकी वजह से ये प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम बेहतर बनाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा आपकी जो भावनाओं की आपकी सोच की हमें ज़रूरत होती है, और आप हमें प्यार करते हैं, मधुबन रेडियो से जुड़े हैं आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। जैसे जैसे मौका मिलेगा, सोमनाथ भाई मुझे मौका देंगे, तो मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल होती रहूंगी, आपके साथ जुड़ी रहूंगी, क्योंकि रेडियो से बात करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है और मेरी जान है रेडियो, ये माइक भी, और मधुबन रेडियो तब मेरा जीवन बन गया है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब प्यार देते हैं, स्पेशली जो हमारे सुनने वाले बार बार फ़ोन करते हैं उनको हम इन्वाइट करते हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है इस मेहनत में लगे रहिए, प्यार दीजिए मधुबन रेडियो को, ताकि ये भी और आगे बढ़ता जाए। और जैसा सोमनाथ भाई, जाते जाते मैं बताना चाहूँगी, मेरे युगल भी मेरे साथ आए हुए, उनको भी गाने का शौक है, तो ये गीत वो भी आप सबकी नजर करना चाहेंगे। तो लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए और मुझे थोड़ा सा विराम चाहिए, और सोमनाथ भाई मेरे युगल आएंगे।
1: जी
2: और आपको
1: जी, जरूर जरूर जरूर, हम चाहते हैं कि उनसे भी लाभ ले ले, जरूर उनसे भी हम लाभ ले लेंगे।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: तो चलिए दोस्तों, हम सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा गीत, हम सभी इंतजार कर रहे हैं आपका।
5: सुनने वालों को ओम शांति।
1: जी जी,
5: नेचर के ऊपर ये गीत है, बहुत ही पुरानी फिल्म का,
1: जी
5: मधुमती फिल्म थी, मुकेश जी ने ये गीत गाया था।
1: हाँ हाँ,
5: गीत है सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
1: अरे वाह, ये तो सुहाना समय भी चल रहा है।
5: सुहाना सफर भी चल रहा है मधुमती।
1: जी जी जी जी,
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी,

मेरे अपने मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीं।

0: हसी हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। थैंक यू।
1: जी, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गीत प्यारा सा आपने गाया है। तो सुनते हैं उस गीत को, कैसे ये दिलीप कुमार ने और मुकेश की आवाज़ में गीत है, फिल्म में तो पर्दे पर दिलीप कुमार ने गाया हुआ है। सुनते हैं वो प्यारा सा गीत।

0: सुहाना सफर और ये मौसम हसी। तो चलिए दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है, उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि आज अन्ना हजारे का जन्मदिन है। और अन्ना हजारे को तो कौन नहीं जानता है। तो अन्ना हजारे, महात्मा गांधी के बाद जो अनशन पर बैठने वाले, वो अन्ना हजारे ही है। और अन्ना हजारे के बारे में बहुत सारी पहले भी बातें बताए हैं। तो अन्ना हजारे, महात्मा गांधी के बाद भूख हड़ताल अन्ना हजारे ने ज़्यादा किया। और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ वर्जी सूचना अधिकार का इस्तेमाल अन्ना ने ही किया। अन्ना हजारे ने ठीक ही सोचा था कि भ्रष्टाचार देश के विकास को बाधित कर रहा है। इसके लिए उन्होंने 1991 में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन शुरू किया। उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र में 42 वन अधिकारी सरकार को धोखा देकर करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं। उन्होंने इसके सबूत सरकार को सौंपे, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सत्ताधारी दल का एक मंत्री भी उनके साथ मिला था। इससे व्यतीत हजारे ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया पद्मश्री पुरस्कार और प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा दिया गया वृक्ष मित्र पुरस्कार भी लौटा दिया। उन्होंने पुणे के आलंदी गांव में इसी मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल की। आखिर में सरकार कुंभकर्णी की नींद से जागी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। हजारे का यह आंदोलन काफी काम आया और 6 मंत्रियों को त्याग देना पड़ा, जबकि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तैनात 400 अधिकारियों को वापस उनके घर भेजा गया। तो अनशन में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि एक अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता है। एक अकेला आदमी देश की जो भ्रष्टाचार भ्रष्ट रचना है उसको बचाने के लिए आवाज़ उठा सकता है। तो अन्ना को ऐसे काम करते हुए भी इनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार से उनको पद्मश्री का भी पुरस्कार मिला है। तो अन्ना हजारे को कई पुरस्कार मिले, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। 6 अप्रैल 1992 को पद्म भूषण जो भारत सरकार से राष्ट्रपति वेंकट रमन द्वारा मिला। फिर पद्मश्री 1990 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन से मिला था। फिर 86 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार पंत प्रधान राजीव गांधी द्वारा मिला था। और 89 में महाराष्ट्र सरकार का कृषि भूषण पुरस्कार। तो ऐसे मैन ऑफ द अवार्ड, पॉल मित्तल नेशनल अवार्ड, विवेकानंद पुरस्कार, शिवनमर अवार्ड, महावीर पुरस्कार, तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड अन्ना को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया यही नई करण कार्यक्रम को पूरा करने का। कल फिर मिलेंगे नई करण कार्यक्रम में। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।
1: धन्यवाद। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
2: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें। धन्यवाद।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जमाने कैसे तारोगे, नई की दी एकादशी नरियाली सांवरिया, माने कैसे तारोगे कैसे तारोगे ओ सांवरिया, माने कैसे तारोगे। तो सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा, कर भला तो हो भला, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। अगर हम हाइट पर चढ़ते हैं या उतरते हैं उस समय चक्कर क्यों आते हैं, तो बहुत ही आपको अच्छे उपाय देने वाली हूँ। जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, आज तो सोमवती अमावस्या है तो कुछ स्पेशल आपको सिखाएंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग आशिया नामे पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला कैसे। तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सारे गुणों का विकास भी हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताए कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसके विवाह में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन से ही कन्या सुबह सुबह उठ करके सोना धोबिन के घर जा करके साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापिस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ करके सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सुबह घर का सारा काम करके पलायन हो जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या थी उस दिन। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर के 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, ऐसे किवंदित्या है कि उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह वो ब्राह्मण की बेटी को भी सुहाग मिल गया और सोना धोबिन का भी वापस जो आते समय सोमवती अमावस्या की उसका पुण्य मिल गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कर भला तो हो भला। हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला तो उसमें समाया हुआ ही है, जरूर होगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुनते हैं एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्ते जी, मैं अजय कंसुरिया बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सब हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोग ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आज बात करते हैं पहाड़ों या ऊंचाई वाली जगहों पर चढ़ते उतरते समय आने वाले चक्कर की। बहुतों का ऊपर हाइट पर चढ़ते हैं तब जी घबराता है, चक्कर आता है, वॉमिटिंग होती है उतरते समय भी और चढ़ते समय ये समस्या हो जाती है। तो आइए बहुत ही सुंदर आपको उपाय देंगे कि देखिए ऊंचाई पर जाने पर एक तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए कुछ लोगों को चक्कर आना, सिर दर्द, थकान, सांस फूलना या मतली जैसी परेशानी हो सकती है। उतरते समय भी शरीर के संतुलन में अचानक बदलाव के कारण चक्कर महसूस हो सकते हैं। तो घरेलू उपाय आप जानेंगे। पहले तो ये बात कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे चढ़िए, एकदम तेजी से ऊंचाई पर नहीं जाना है। फिर दूसरी बात है कि पर्याप्त पानी पीजिए। शरीर में पानी की कमी से भी चक्कर आ जाते हैं, तो पर्याप्त पानी पीजिएगा। फिर अगली बात है नींबू पानी या शिकंजी पीजिएगा। शरीर को तरोताजा रखने के लिए नींबू पानी या शिकंजी पिएंगे तो कमजोरी दूर होगी और शरीर तरोताजा रहेगा। तो क्या करेंगे, नींबू पानी या फिर शिकंजी जरूर पीजिएगा। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है, मिश्री किशमिश या गुड़, ठीक है, ये लीजिएगा। ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए आप या तो मिश्री लीजिए या किशमिश लीजिए या फिर गुड़ लीजिए, तो इससे ऊर्जा बनी रहेगी और ये चक्कर की समस्या नहीं होगी। फिर देखिए बहुत ही सुंदर उपाय, अदरक का छोटा टुकड़ा चबाइएगा। अदरक की चाय भी पी सकते हैं आप, इससे जी मिचलाना और चक्कर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अदरक का छोटा टुकड़ा चबाइएगा या फिर इसकी चाय भी ले सकते हैं आप, इसे जी मिचलाना और चक्कर आना कम हो जाएगा। एक और सुंदर बात आपको उपाय दे रही हूँ, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे लंबी सांस लेकर छोड़िए, इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। तो धीरे धीरे लंबी सांस लेकर के छोड़ना है, इससे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, नाश्ता थोड़ा हल्का करें, खाली पेट यात्रा नहीं करें लेकिन हल्का सा नाश्ता करके निकले, ठीक है। यदि चक्कर के साथ बहुत ज़्यादा सांस फूलती हो, तेज सिर दर्द, उल्टी, भ्रम या बेहोशी जैसी स्थिति हो तो तुरंत नीचे आइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो कहा जाता है मंजिल की ऊंचाइयों का आनंद वही पाता है जो धैर्य के साथ कदम कदम बढ़ाता है। तो इसी प्रेरणा के साथ मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, घरेलू उपाय पर ध्यान दीजिएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, आज का प्रश्न है सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं। ये प्रश्न है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। हमारी प्यारी बहन उषा जी और रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र भाई बहन, सभी हमारे रेडियो परिवार, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति
0: जी। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, अभी घर पे हूँ, थोड़ा घर का काम निर्माण चल रहा है
0: जी,
1: तो वो भी काम कर रहा हूँ। और रेडियो मधुबन जैसे अभी अभी ऑन किया तो कार्यक्रम लाइव सुना तो मुझे भी लगा मैं भी अपनी उपस्थिति दरवाजे करवा लूँ और बहन अच्छा। से भी बात कर लूँ और श्रोताओं को भी हमारी आवाज सुनने को मिले
0: जी। तो आज के प्रश्न का जवाब देंगे
1: जी, बिल्कुल,
0: सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं, भले आप ऑफ एयर देंगे या मैसेज के द्वारा देंगे तो भी चलेगा
1: जी। जी आप जैसे चाहोगे मैं वैसे ही दूंगा,
0: ठीक है। तो अभी क्या है कि जो भी हमारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सोचने दीजिए
1: जी जी जी, उनको मैं उसको मौका देता हूँ, चाहे भी वो अपनी कोशिश कर ले, बाकी फिर बाद में जवाब देने के लिए मैं बैठा ही हूँ
0: जी।
1: और हमारे तो रेडियो परिवार के सभी जो सुनते हैं वो तो श्रोता एकदम जागरूक है और उनको तो वो तो कैसे भी करके उनको जवाब याद आएगा, वो दे जाएंगे
0: जी।
1: और सुनने वाले सभी मित्रों को और सभी हमारे रेडियो परिवार को, सभी हमारी आरजे बहने है, आरजे भाई है, हमारी दादियों है, हमारे जो कुमार भाई है, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, ओम शांति
0: जी। बहुत बहुत आभार, ओम शांति। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से और आइए अब अभी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज का विषय है, पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, अमावस्या की रात भले अंधियारी हो जाए, अमावस्या की रात भले अंधियारी हो जाए, पर मन का दीपक कभी न बुझने पाए। संकल्पों की ज्योति जब भीतर जलती है, हर काली रात भी उजियारी बन जाती है। तो फिर से सोमवती अमावस्या की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज विषय भी यही है कि कैसे अमावस्या आए चाहे पूनम आए, हमारे जीवन में उजियारा कैसे होगा, अमावस्या का क्या महात्म है, ये सभी बातें।
1: जी जी जी जी, पहले तो मैं बताऊं तो आज अच्छा दिन है, दान पुण्य का दिन है। अच्छा, हमारी कहते हैं कि हमारी बॉडी को तो हम नहा लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं जल से, लेकिन जो हमारे मन को शुद्ध करना है। लेकिन मन तो कोई, हमारा आत्मा तो शुद्ध ऐसे तो होता नहीं है पानी से। इसके लिए तो अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कार्य करना पड़ता है, अच्छा पुण्यदान करना पड़ता है। वही तो, इसीलिए तो कहते हैं कि हम नहाते तो गाय नहा लिया, चलो भाई नहा लिया धो लिया, लेकिन नहाने से कोई ऐसे हो नहीं जाते। हमारे मन को जगाना है, मन को नहाना है, हमारा जो मैल है अंदर का जो मन का, उसको शुद्ध करना है, तो ही तो हम सब कुछ कर पाएंगे। और बहुत अच्छा दिन है, पुण्य का दिन है दीदी। आप देखो सुबह से कई लोग मंदिरों में इतनी भीड़ है
0: जी।
1: और कहीं नदियों में इतनी भीड़ है, लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं स्नान करने के लिए
0: जी।
1: तो
0: और आज पुरुषोत्तम मास, जिसका अधक मास भी कहते हैं, इसका लास्ट दिन है।
1: लास्ट दिन है, बस लास्ट दिन है, आज एक महीना पूरा हो गया
0: जी।
1: तो बस इसी हम तो ऐसे कहेंगे कि दान पुण्य करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे करियर कर्म करता रहो तो आपका जो तो कोई भी उजाला ही होगा, अंधेरा कभी होगा ही नहीं। अंधेरा कैसे होता है कि अंधेरा तो हम खुद करते हैं, लेकिन अंधेरे में रहना नहीं है, हमको उजाले में ही रहना है। अच्छे कार्य करेंगे तो हम उजाला ही समझ लो
0: जी।
1: देखो मेरा, मैं बताऊँ, मैं कहीं जाना, मैं कहीं भी ना जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी। मैं हर रोज सुबह, मेरा कार्य जो होता है सुबह में
0: जी।
1: मेरा कार्य 5 बजे, 4-5 बजे से पुण्य का कार्य मेरा शुरू हो जाता है
0: जी।
1: और 2 घंटे मेरा एक कार्य चलता है, हर रोज की बात कर रहा हूँ, मेरा एक दिन की बात नहीं है मेरे
0: जी।
1: क्योंकि मैं तो हर रोज मेरा कार्य, पुण्य का कार्य करता हूँ और करता ही रहूंगा जब तक मैं, मेरा फिर सांस से तब तक
0: जी।
1: तो बस मुझे बहुत शुक्र मिलता है दीदी। अच्छा विषय अभी ऐसा ही है कि बस दान पुण्य करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, तो ही तो आपके जीवन में, सबके जीवन में उजाला रहेगा
0: जी।
1: वरना तो देखो आज कई लोग ऐसे दीदी कि कोई ऐसा कोई कार्य करते ही नहीं, और जिसको करते हैं उसका भी बोलते हैं अरे करने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप सब भगवान सबको दे देता है। दे देता है सही है, भगवान सबको देता है, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो ही तो देंगे ना
0: जी।
1: आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कैसे आप ये उजाले में निकल लो, और अच्छे कर्म करो नहीं करो तो आप कैसे अच्छी, हमारी जो कहते हैं ना, कर्म अच्छे करेंगे तो ही तो हम अच्छे जगह पे, हम हमारा परमात्मा हमारा जन्म देता है
0: जी।
1: तो बस मैं तो दीदी यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहेंगे, अपने आप बस उजाला हो जाए, चाहे पूनम हो चाहे अमावस्या
0: जी।
1: ठीक है दीदी।
0: हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आप देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात रखते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे, अधिक मास का पावन अवसर आया है, भक्ति और सेवा का संदेश लाया है, मन को प्रभु स्मृति में लगाकर देखिए, जीवन में सुख शांति का दीप जगमगाया है। तो आप सभी को अधिक मास, अभी जो लास्ट दिन है आज, इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ही कम संजोग मिलते हैं जब अधिक मास होता है। तो आज हम बातचीत इसी पर करेंगे कि भाई आप इस अधिक मास को कैसे, चलिए पूरा महीना तो हो गया, आज के दिन को खास कैसे बना रहे हैं आप। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं। तो आप प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, विषय में आप अपनी बात भी रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो फिर दीजिएगा, आप चाहे तो मैसेज के द्वारा दीजिएगा, आप चाहे तो जुड़कर दीजिएगा, जैसे चाहे वैसे आप आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने पुरुषोत्तम महीने का व्रत रखा है। बहुत सारे भाई बहन मिले बता रहे थे कि हमारे व्रत चल रहे हैं दीदी और यह आज का दिन लास्ट है। बहुत अच्छी बात है। चलिए व्रत भी देखिए, एक तो हमारे आस्था को बढ़ाता है, भावनाएं श्रेष्ठ रखता है, स्वास्थ्य भी अच्छा करता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा भूखे भी रहना चाहिए। और बाकी तपस्या भी हो जाती है, साधना होती है, तो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है और विचार हमारे श्रेष्ठ बनते जाते हैं। क्योंकि व्रत उपवास हम करते हैं तो एक शुद्ध भाव के साथ करते हैं, ऐसे तो नहीं कि किसी के प्रति नेगेटिव भाव हो और हम व्रत उपवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, है ना। कुछ कहा सुना होता है तो भी व्रत उपवास करते तब ऐसा लगता है कि जाने दो ना, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, बात ही ख़त्म कर दो, वहीं पर बात ख़त्म कर देते, उसको खींचते नहीं है, इसलिए भावनाएं भी शुद्ध होती है। और वो कहते ना कहावत, जग जाहिर है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल से, निर्मल मन से, सरल भाव से अगर हम व्रत उपवास करते हैं, सभी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो मन बड़ा अच्छा रहता है, खुशी बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है और सभी के प्रति अच्छे भाव होते हैं। तो कहते हैं ना ऐसे मन पर ही भगवान भी खुश रहते हैं कि भाई हाँ, और हमें खुद अच्छा लगता है, हमारे संपर्क में जो आते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि देखो ये कितने मतलब सरल हृदय के साथ बात करते हैं, कितने खुशनुमा चेहरे से जब भी मिलते हैं बात करते हैं। और बाकी तो आप सभी जानते हैं कि अदक मास का तो पूछे मत, अभी तो मंदिरों में इतनी भीड़ लगी है कि क्या कहे आपको। आज लास्ट दिन है, आज तो फिर अभी तक मंदिरों में चल ही रहा है। हमारे श्रोता बंधु भी शायद मंदिरों में ही है इसलिए जुड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। आप देखिए भक्ति करना भी ज़रूरी है ना। रेडियो का तो आपका अपना है रेडियो, आप जुड़ सकते हैं और भी समय मिल जाएगा, लेकिन ये आज लास्ट दिन है अमावस्या और पुरुषोत्तम महीना का लास्ट दिन, ये थोड़े ना आपको मिलने वाला है, इसलिए आप जितनी भक्ति चाहे करिए। हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप सुरेश भाई?
1: हम अच्छे हैं, रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों को और भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की देवे शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सोमती अमावस्या की देवे शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज तो मंदिर अमावस्या है ना
0: जी, आप रेडियो नहीं सुन रहे तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कभी के कि भाई सभी को
1: हम तो पहुंच जा रही है
0: जी। और
1: आज का कैसे भी करके हम तक पहुंच रही है
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और
1: नहीं सुन रहे हैं ना, जब टाइम मिलता है तब सुनता हूँ दोस्त के आवाज आके।
0: अच्छा अच्छा,
1: ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुनता हूँ।
0: जी जी जी,
1: जब भी टाइम मिलता है तब सुनता हूँ।
0: जी जी,
1: पास में हो तो वो फर्क पड़ता है, मगर फिर नहीं है तो फिर दोस्त के आवाज आके सुनते हैं
0: जी।
1: हाँ,
0: आज का प्रश्न है सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं? और
1: वैसे तो ये इस प्रश्न का सीधा उत्तर है,
0: आप घुमा के दीजिएगा, आप घा करके दीजिएगा, घुमा के दीजिएगा सीधे सीधे मत दीजिएगा
1: ठीक है। जो अमावस्या आज के दिन वैसे आती है ना,
0: बस ठीक है
1: और
0: जी
1: ज्यादा नहीं बताता
0: जी। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे, कैसे पुरुषोत्तम महीना, आपने भी व्रत रखे क्या?
1: नहीं, एक्चुअल में दीदी उपवास तो नहीं रखा
0: जी। कोई बात नहीं, देखिए मन स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन वो कहते ना कि आसपास का वातावरण बदल जाता है, मंदिरों में भक्तों की भीड़।
1: मैंने उपवास तो नहीं किया, बाकी वो रूटीन मेरा चालू ही है, सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद राजयोग करना, फिर योग भी करते हैं, फिर उसके बाद पूजा ध्यान स्नान करके, पूजा ध्यान करके फिर अपने रोज के रूटीन पे चलते।
0: जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
1: ये तो मेरे काम मतलब पहले से चालू है और अभी भी चालू है
0: जी, बहुत बढ़िया। तो सुरेश भाई, जैसे ये अदक मास करते हैं, मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, कैसे क्या दान पुण्य किया जाता है, कुछ बताएंगे?
1: देखिए मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि देखिए आप परसोत्तम मास की राह क्यों देखते हो, जब आप सदाई दूसरों के हित के बारे में अच्छा सोच सकते हो। आप पहली बात तो यही कीजिए ना कि किसी को दान देने से पहले किसी को दुख मत दीजिए। और देखिए परसोत्तम मास की बात हो रही है तो देखिए लोग मतलब पूरे महीने उपवास करते हैं, अपने ये जो जेठ महीने ज्येष्ठ महीने में जो ये परसोत्तम मास लगता है ना, इसमें बरगद की पूजा होती है वट वृक्ष की
0: जी।
1: और सभी वहाँ मतलब पूरे महीने ये पूजा करती है, फिर कथा सुनती है, वट वृक्ष को पानी भी पिलाती है और अंत में क्या करते हैं वहाँ सोने का वट वृक्ष बनवाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, पुजारी को वस्त्र दान करते हैं और वो मिठाई भी बनती है मालपुए की, वो भी दान दी जाती है, पुजारी को भी देते हो और पांजे को भी दी जाती है, पांजी हो या पांजा हो
0: जी,
1: और उसको वस्त्र वगैरह ये सब कुछ दिया जाता है
0: जी।
1: तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्येष्ठ महीने की राह मत देखिए और आज सोमवती मासिया तो आज का दिन भी दान के लिए महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: लोग आज तो हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे से मौन स्नान कर रहे हैं, कई हेडपंप पे जाके, कई बोरिंग होता है वहां पे जाके या कुएं पे जाके, मतलब नदियों में वगैरह कई मौन स्नान कर रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: हाँ तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर मतलब तकलीफ होती है तब भगवान को क्यों याद करें, सदाई कीजिए ना
0: जी।
1: 12 मास भगवान के लिए द्वार खुले हैं, आप उनके तो बच्चे सभी समान है ना
0: जी,
1: तो आप सदाई अपने पिता को नहीं भूल सकते हो ना। हाँ अगर आप भूलोगे तो भी पिता बच्चों को नहीं भूलेगा
0: जी।
1: बस तो परसोत्तम मास भी खत्म हो गया, अब ज्येष्ठ दूसरा चल रहा है, असाढ़ आएगा फिर शिव भगवान आएंगे, सब कुछ आएगा
0: जी।
1: तो सबको शुभकामनाएं पुनः, बस आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसी हम दुआएं करते हैं।
0: बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई।
1: मैं भी अभी गया था और गौ माता को सारा डाल के आया हूँ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया,
1: अच्छी बात है। आया था तो दीदी को कॉल बैक कर देता हूँ, सुना कुछ नहीं
0: जी जी,
1: फिर भी कॉल किया मैंने कहा आगे
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छा,
1: प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऑफलाइन
0: करना पड़ेगा, नहीं मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आइए यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। बहुत ही सुंदर आज का विषय है, अमावस्या सिखाती है जीवन का ये सार, अंधकार के बाद ही आता है उजियार। आशा का दीप जलाकर आगे बढ़ते जाइए, आशा का दीप जलाकर आगे बढ़ते जाइए, हर कठिनाई को मुस्कुराकर अपनाइए, हर कठिनाई को मुस्कुराकर अपनाइए। तो बहुत ही सुंदर विषय है। पुनः आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, सोमवती अमावस्या किसे कहा जाता है, बहुत सरल प्रश्न है। तो इस सरल प्रश्न के लिए भी अगर आपको सोचना पड़ेगा तो कल तो मैं आपको बहुत मुश्किल वाला देने वाली हूँ। थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आप घबराइए नहीं, सरल ही है वो भी, ठीक है, लेकिन आज तो बहुत सरल है। तो आप जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज भेज सकते हैं। और आज का विषय भी बहुत सुंदर है। देखिए, आज हम सोमवती अमावस्या मना रहे हैं और पुरुषोत्तम महीने का अधिक मास का आज लास्ट दिन भी है। और अमावस्या कहते हैं ना कि अमावस्या के दिन अंधकार होता है, चंद्रमा नहीं आते हैं, पूर्णिमा को रोशनी रोशनी हो जाती है, अमावस्या को अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो ये भी हमें काफ़ी कुछ सिखाता है ना। हर त्यौहार, हर तिथि हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाती है कि अंधकार आया है तो अंधकार भी हटेगा और फिर से प्रकाश फैलेगा हमारे जीवन में। तो कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, तो उससे घबराना नहीं है। थोड़े समय के लिए तो समस्या आती तो ऐसे लगते हैं चारों खाने चित्त हो जाते हैं, कहीं इससे रास्ता नहीं दिखाई देता है और ऐसे घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे इन परिस्थितियों से हम बाहर निकलेंगे। उस समय दिमाग काम करना बंद हो कर देता है और घबराहट सी होती है, भय रहता है,

समस्या आनी ही है ना। कहते हैं ना, यही जीवन है, समस्या आएगी तो समाधान भी मिलेगा और समस्याओं से पार भी हम हो जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ को ज़्यादा लेना नहीं है दिमाग में, भारी नहीं होना है और जीवन से उदास नहीं होना है, ठीक है। बाकी देखिए, आज के दिन भले पूरे महीने दान तप जप तप किया नहीं किया, लेकिन आज के दिन बहुत करेंगे। जिन्होंने पूरा महीना नहीं किया, वो आज के दिन पूरे दिन इसी में जाएगा उनका। पूरे दिन सुबह से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, हवन करवाना, दान पुण्य करना, गाय को घास खिलाना, गरीबों को भोजन खिलाना, वस्त्र दान करना, अनेक प्रकार के दान होते हैं आज के दिन। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ही दान, नहीं, जिसको जो चाहे करते हैं। कोई जैसे सुरेश भाई बता रहे थे कि भांजे को ब्राह्मण को भी खिलाते हैं, बिल्कुल हमारे भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है कि बहन बेटी और भाणेज और भांजियों को बहुत महत्व दिया जाता है। कुछ दान पुण्य की बात आती है या कुछ श्रेष्ठ कुछ अच्छा करने का संकल्प आता है, तो सबसे पहले हम अपनी बहन बेटियों को याद करेंगे या भांजी भांजियों को याद करेंगे कि भाई उनको बुला लो, उनको दे दो, उनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो। ननंद है, जेठ के बच्चे हैं, ननंद के बच्चे हैं, ऐसे इस तरह के रिश्ते याद आते हैं और अच्छी बात है। इनको देना भी बहुत पुण्य है। ब्राह्मणों का भी याद आता है, मंदिरों में भी बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पर तो इतना अच्छा होता है कि सोमवती अमावस्या के दिन मंदिरों में केसरिया भात बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। जैसे सुबह का तो सब हो जाता है, सेवा पूजा पाठ आरती सब हो जाती है मंदिर के नत नियम, ठीक है। फिर 12 बजे वापिस हवन होगा मंदिर में, ध्वजा चढ़ाई जाएगी और आरती होगी और केसरिया भात का भोग लगेगा और फिर वो केसरिया चावल भक्तों को बांटा जाएगा और भरपेट जिसको जितना चाहिए ले जाए। और साथ ही साथ मिक्स सब्जी, जैसे हम अन्नकूट में 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह अन्नकूट आता है तब आप देखते होंगे कि अन्नकूट की सब्जी बनाते हैं उसमें कितनी सब्जियां मिक्स होती है। वही सब्जियां जो अभी गर्मी के मौसम में मिलती है वो सारी सब्जियां मिक्स बनाई जाती है और ठाकुर जी के केसरिया चावल के साथ मिक्स सब्जी का भोग लगाया जाता है और ये भक्तों में वितरित किया जाता है। इसमें लोग चंदा भी देते हैं, भाई मंदिर के लिए पुजारी कहाँ से लाएंगे, पुजारी का कोई खर्चा नहीं होने देते मंदिरों में। अक्सर मंदिरों में हमने देखा है पुजारी का कोई खर्चा नहीं होगा, पुजारी का तो उल्टा जो चढ़ावा आता है वो सब अपने घर पे लेके जाते हैं क्योंकि अमावस्या है, पूर्णिमा है, मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता है। तो इस तरह सभी कोई 300-300 कोई 500-500 रुपये इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके इस तरह ठाकुर जी के लिए ध्वजा भी चढ़ाते हैं और आरती भी करते हैं। केसरिया चावल बनाया जाता है भोग में, मिक्स सब्जी बनाई जाती है, इसका भोग भी लगाया जाता है, पूरियाँ 7 ब्राह्मणों के लिए तो पूरियाँ भी बनाएंगे, उनको खिलाएंगे और ये केसरिया चावल सब्जी पूरी। और बाकी भक्तों में केसरिया चावल का प्रसाद बांटा जाता है और जिसको सब्जी ले जानी हो या मिक्स सब्जी, तो वो अपना अपने बर्तन, उनको पता है कि इस मंदिर में सब्जी मिलने वाली है तो वो अपना बर्तन लेके आते हैं, वो भर भर के लेके जाते हैं। तो इस तरह का भी माहौल होता है, इस तरह का भी होता है मंदिरों में। और देखिए आप सांवलिया धाम चले जाइए, आज के दिन कल भंडारा खुल गया, गिनती होती आज के दिन डिक्लेयर होता है कि कितना भंडारा खुला। सांवलिया धाम जो चित्तौड़ जिले में आया है भातसोड़ा के पास, और वहाँ पर करोड़ों रुपए का भंडारा खुलता है, उसको डिक्लेयर आज के दिन किया जाता है अमावस्या के दिन। अरे भक्त लोग सांवरिया जी के भंडारी में फोर व्हीलर की चाबियां भी रख के जाते हैं कि ये गाड़ी हमारी सांवलिया सेठ के नाम। फिर वो भंडारा खुलता है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा वो नई गाड़ी इतने दिन से खड़ी थी, इसकी चाबी ये रही, तो ये सांवरिया जी का। और ये मंदिर गवर्नमेंट के अंडर में है, पहले पुजारी लोग ही चला रहे थे, अब ये गवर्नमेंट के अंडर में है। तो भक्त लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसी की मन्नतें होती है, कोई बाधा आकड़ी रखते हैं वो भी आकर के उतारते हैं। तो आज के दिन काफ़ी कुछ मतलब होता है, लोग दर्शन को जाते हैं, स्नान करने के लिए नदियां नालों में जाते हैं, मतलब नदियां है जैसे पुष्कर का स्नान करते हैं, आप द्वारका चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए,
ऐसे स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर लोग जाकर के स्नान भी करते हैं,

0: और वहाँ पर भी दान पुण्य करते हैं। तो इस तरह का महात्म है आज के दिन, और विशेष आज पुरुषोत्तम महीना भी है तो खास दिन। बाकी तो हर अमावस्या हर पूर्णिमा को जैसे बहुत सारे भक्तों ने नियम बना रखा है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो राजस्थान के लोग अपने अपने पास के एरिया में जाएंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे तीर्थ स्थान है यहाँ आबू में भी, जैसे ऋषिकेश है यहाँ पर भी नदी बहती है, तो उस नदी में अभी तो पानी कम है इसलिए भक्त लोग कम आते हैं, बाकी यहाँ भी स्नान करते हैं। फिर वहाँ मातृकुंडिया है, बहुत सारे ऐसे स्थान है, और दूर जाना चाहते तो फिर पुष्कर स्नान करेंगे, उससे भी दूर जाना चाहते तो हरिद्वार जाएंगे। गुजरात वाले इधर ज़्यादातर द्वारका में जाते हैं स्नान करने, लेकिन सब अपने अपने अनुसार सभी भक्ति करते हैं, और भक्ति करके मतलब अपने मन को शुद्ध रखते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। तो देखिए ये तो ठीक है, हम एक दो दिन करके शांत बैठ जाते हैं, लेकिन हमेशा भी पुण्य नहीं होता, ये भी सही बात है। लेकिन बहुत लोगों ने नियम बना रखा है कि पहली रोटी जब हम भोजन बनाएंगे, पहली रोटी गाय को देंगे, लास्ट की रोटी कुत्ते को देंगे। बहुत जने पहली रोटी कुत्ते को देते हैं, लास्ट की रोटी गाय को देते हैं, ये नियम उनका पक्का होता है, और गाय को घास खिलाना तो अच्छी बात है, जो भी नियम पकड़ो अच्छी बात है, इससे भी दान पुण्य हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दान पुण्य के साथ साथ अपने मन को भी अच्छा बनाए रखना है और कर्म भी श्रेष्ठ करना है, तो जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसमें डबल फायदा हो जाता है। एक तो दान पुण्य किया, दूसरी तरफ हम लोगों को कोस रहे, वो हमारा दान पुण्य फिर धुल जाता है, और दान पुण्य भी एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा मन अच्छा है, सभी के प्रति शुभ भावनाएं हैं, तो वो दान पुण्य और भी फलीभूत हो जाता है। ठीक है, और आइए अब इस विषय को यही समाप्त करेंगे, आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का प्रश्न है, सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि भाई आज अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या, विशेष करके पुरुषोत्तम महीने का लास्ट दिन भी है। तो ठाकुर जी के भोग के लिए बनाया जाने वाला केसरिया भात मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है, जो बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। इसे कई जगह मीठे चावल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। आशियाना के किचन में पधारिए, पेन और डायरी लेकर के, और लिखिएगा आप, लिखे बासमती चावल, ठीक है, क्योंकि केसरिया भात बना रहे हैं इसलिए आप बासमती लीजिए। बाकी सादे चावल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चीनी ले लीजिए, फिर आप घी लीजिएगा, केसर लेना है आपको, दूध लेना है, इलायची पाउडर लेना है, बादाम ले लीजिए, काजू लीजिए, किशमिश लीजिए, लौंग लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई सामग्री। देखिए मैं मात्रा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मात्रा आपके परिवार के सदस्यों के अनुसार आप खुद ही निश्चित करिए। तो बासमती चावल, चीनी, घी, केसर, दूध, इलायची पाउडर, बादाम, काजू, किशमिश और लौंग, ये तो हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, चावल की धुलाई करिए। धोने के बाद 20 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो के रख दीजिए, 20-25 मिनट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अगर बासमती है तो। अगर सादे चावल है तो उसको भिगोइएगा मत, क्योंकि उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो 20-25 मिनट भिगोइए इस तरह। केसर को आप हल्के से गर्म दूध में भिगो करके रख दीजिए। चावल को लगभग 90% तक आप उबाल लीजिए, ठीक है, और अतिरिक्त जो पानी है उसको निकाल दीजिए, जो मांड होता है ना उसको निकाल दीजिए। अब आप कढ़ाई में घी गरम करिए, फिर काजू, बादाम और किशमिश इनको काट करके हल्के हल्के सुनहरी सुनहरी आप भून लीजिए। अब उबले हुए चावल डालिए और धीरे धीरे इनको हिलाइए। ऊपर से चीनी, केसर वाला दूध और इलायची पाउडर बुरका दीजिए। बहुत हल्के हाथ से मिला करके 5-7 मिनट धीमी आंच पर इसको ढक करके पकाइएगा। जब चीनी अच्छी तरह घुल जाए और चावल चमकदार हो जाए तब गैस बंद कर दीजिए। तो ये बन गया केसरिया भात, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, ठाकुर जी के भोग के लिए। फिर से विधि दोहरा रही हूँ। चावल धोकर लगभग 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद आप चावल उबाल लीजिए, ठीक है। 90% तक आपको उबालना है, मतलब एकदम हाथ में लेते ही दाना फट से दब जाए ऐसा नहीं, हल्का सा कन्ना रखिए उसका, ठीक है, एक कन्ना बाकी रखिए। अब आप केसर को हल्के गर्म दूध में भिगो कर रखिए और कढ़ाई रखिए। अब गैस पर घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो उसमें काजू, बादाम, किशमिश ये सब हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब जो चावल हमने बना के रखा है, अगर उसमें आपने छुट्टे चावल बनाए, छुट्टे ही बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, अतिरिक्त जो मांड होगा वो निकल जाएगा। पानी निकाल करके अब यह चावल को आप डाल दीजिए कढ़ाई में, ऊपर से आप चीनी डाल दीजिए, केसर वाला दूध डाल दीजिए और अच्छी तरह हल्के हाथों से हिला दीजिए और 5-7 मिनट तक ढक के रखिए। इलायची पाउडर भी बुरका करके हिला देना है, और जब चीनी घुल जाए, चावल चमकदार हो जाए तो बस गैस बंद कर दीजिए। तो ये बन गए केसरिया भात। भोग के लिए बनाते समय मन में शुभ संकल्प होने चाहिए और प्रभु स्मृति में बनाइएगा, इससे भोजन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। और इस तरह बन जाए बस, फिर आप अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हैं, उसके बाद आप स्वीकार कर सकते हैं। तो कहते हैं केसर की महक, घी की मिठास, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम का विश्वास, भोग में भाव हो सच्चा और निर्मल, तो साधारण भोजन भी बन जाए दिव्य और मंगल। तो इस तरह के सरिया भात का महत्व है। आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
2: माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ अब तो बस करो।
1: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
4: पोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम था, आपने सुनाई है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर आपने गौर किया होगा। आज का उपाय भी बहुत ही सुंदर बताए, अगर पहाड़ पर चढ़ते हैं उतरते हैं उस समय जी मिचलाता है, वोमिटिंग की तकलीफ हो जाती है, चक्कर आते हैं, तो ये सारे जो उपाय बताए हैं उन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, कैसे हम पुरुषोत्तम महीना मनाएंगे वो आपने जाना है। पूरा महीना पूरा हो गया है, आज सोमवती अमावस्या है। पुनः आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा महीना बहुत ही अच्छी तरह मनाया होगा। और जो रेसिपी में केसरिया भात आपको बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, भाई सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न था, अगर इसका भी आप जवाब नहीं देने के लिए जुड़े हैं तो बहुत ही, मतलब क्या कहेंगे आपको। तो सही जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, दयाराम जी का भी सही जवाब ही है, संगीता जी कपासन से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, अलका जी कपासन से, आप सभी का सही जवाब है। मदन भाई जुड़े हैं लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो पहले तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से और दयाराम जी, बस विषय को स्पष्ट करने के लिए आप दोनों जने जुड़े हैं, और सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, तो आप तीनों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, ये सत्य है मनुष्य दूसरों में वही गुण और अवगुण देखता है जो स्वयं उसमें विद्यमान होता है। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

चमेली की कलियां हैं प्यारी, गेंदा ने केसरिया रंगत सवारी। सजा इसमें है, सजा इसमें है भक्तों का प्यार, श्रृंगार तेरा प्यारा लगे, कर लो कर लो।

गाया, चुन चुन भक्तों ने इसको सजाया। छाई मोतियों की प्यारी बहार, श्रृंगार तेरा प्यारा लगे, कर लो प्रभु जी स्वीकार, श्रृंगार तेरा प्यारा लगे, कर लो स्वीकार बाबा गज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नो, आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, हम हिंसा को नो कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार। दोस्तों, घरेलू हिंसा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार वालों से, चाहे वो घर पर या अन्य किसी स्थान पर किए जाने वाले अत्याचार। घरेलू हिंसा चार प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा। ये चार प्रकार की हिंसा अक्सर हम घर परिवार में और समाज में देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसे परिवार में लेकर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ बदलाव है, परिवार में आपसी प्यार है, विश्वास है, महिलाओं में हिम्मत है। तो चलिए चलते हैं आज के नाटक की ओर।
1: लंबी सफर है, ऊंची उड़ान, पढ़ लिख कर बनूंगी सबसे महान।

0: सीमा, या घड़ी घड़ी डोरबेल क्यों बाज रही है? कौन है? अंजू की गांव बात कर रही है?
1: खुद ही पूछ लो।
2: पापा, यो पीयूष है। कदी समय पे नोट्स लिखे कोनी और पछे आ जावे नोट्स लेबा का वास्ते।
0: यो पीयूष कौन है बेटा?
2: मारो क्लास फेलो है पापा।
1: आपने अंजू समय पे काम करे तो चालो की केक तो काम आवे।
2: माँ, आप और पापा कतरा बढ़िया हो जो मारा पे कदी शक को नहीं करियो और हर प्रकार की छूट भी दे रखी। बाकी मारी सहेली सीता विको फ्रेंड रोहन का साथ में कोई बात कर ली थी परसों, विने खूब मारी विका मम्मी पापा खूब।
1: बेटा तू हर काम सोच समझ करे अनी वास्ते थारा पे विश्वास है और थारा करता भी मारी परवरिश पे मैंने पूरा विश्वास है।
3: साथी डारे छोरा छोरी जद देखू जद घर भरियो घुमड़ियो घुमड़ियो रे ऊ मैं तो जद देखू जद घर सुनो अबे तो मैं भी गणो खुश हूँ मैं हुल राव हाल रियो।
4: कई बात है बेटा, आज तो थारा पग धरती पे कोनी टिक रिया।
5: हाँ माँ, बात ही एड़ी है तो दादी बनवा वाली है।
4: अरे वाह वाह बीनणी, ले बेटा यो मुख मीठो कर गुड़ खा, मने तो थे दो ही जना खुश कर दीदा। पर यो कही राजू, तू बीनणी ने कही क्यों जो बीनणी उदास लाग रही?
5: माँ, थारी बीनणी ने डिलीवरी री चिंता लाग रही है।
4: देख बीनणी, एड़ा टाइम पे थारे कई भी मानसिक चिंता कोनी करनी, तू खुश रह ताकि बालक पे भी आछो प्रभाव पड़े।
6: जी माँ जी, आप तो मने घना अच्छा राखो, पर
4: तू कई समझे मने थारा पियर की आर्थिक परिस्थिति को ठा कोनी? मैं सब समझू, डिलीवरी अपना घर में ही वे और थारी माँ ने भी बुला लेवा ताकि तू खुश रह सके। थारे कट्टे ही कोनी जानो समझी, और थारे जो भी इच्छा होवे बेधड़क माने केजे।
6: मैं कतरी भाग्यशाली हूँ कि मने माता पिता जेड़ा सास ससुर मिलिया और एक अच्छा दोस्त जेड़ा पति। अगर हर लड़की ने एड़ो ससुराल मिले तो किने पियर की याद कोनी आवे और हर बहू खुश रह सके।
4: कई सोच में पड़ गई बीनणी।
6: काई नहीं मम्मी जी, मैं घणी खुश हूँ, आप मारी सास कोनी माँ हो।
7: दिवाली में तो खूब मनावा सब मिलकर नाचागा, आयो त्योहार आचो आनंद हिरदाम समाओ।
6: पापा जी मम्मी जी, आप इतना जल्दी क्यों उठिया? और साफ सफाई आप रेवा दो, मैं हूं ना सब सफाई कर ले, आप आराम करो।
0: यो बता बेटा कि दीपावली तो अकेले मनाई?
6: नहीं नहीं पापा जी, आपा सब साथ में मनावा।
8: तो साफ सफाई भी सब मिलन करा ताकि दिवाली रो आनंद सब मिलन ले सका, क्यों श्याम?
9: हाँ माँ, मैं तो सोच ली तो मैं दीपावली पे गुलाब जामुन बनाऊ।
1: हाँ भैया, आपने गुलाब जामुन बहुत बढ़िया आवे बनाता, और मैं बनाऊ मठड़ी।
0: मैं बनाऊ मोहन थाल।
6: जय श्री कृष्णा। हेलो माँ, बोलो।
10: बेटा थारे बड़ो परिवार है, दीपावली री साफ सफाई तो ध्यान सु करजे। सुन, मिठाई तो अतरी बना कोनी सके तो मैं भेजू?
6: माँ, मैं थारे वीडियो कॉल करू।
10: यो कई बेटा, ब्यान जी सा, ब्याई जी सा, जमाई सा, सब मालन साफ सफाई कर रहा घर की, मारा तो भाग्य खुल गया।
9: हाँ माँ, आप काई चिंता मत करो, मिठाई भी सब मिलन ही बनावा।
10: वाह, हावरो वेटो एड़ो। रखू बेटा फोन, मारा तो खुशी का आंसू आ गया।
8: बिन्नी, ले बेटा यो गले को हार, मारी शादी के बाद पहली दिवाली ही जद मारी सास मने दी दो और मैं थने देऊ, थारी भी पहली दिवाली है, आंसू यो थारो है।
0: बिन्नीया टू व्हीलर की चाबी, पहली दिवाली पे मारा तरफ किया छोटी सी भेंट, आज सो छोटो मोटो काम तो खुद ही कर सके कि पे डिपेंड नहीं रहे इन्ने वास्ते।
6: थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी।

0: सा मुक्सु कयो नहीं जायो सैको नी हो वेसा।
1: हेलो प्रिया, काई बात है? आज तू घणे खुश लाग रही है।
2: हाँ पूजा, आज मैं घणे खुश हूँ। आज मैं हमेशा के लिए छुटकारो मिल गयो, मैं टेंशन फ्री वही गई।
1: अरे काई बात हुई प्रिया, कि कौन थोने छुटकारो मिलियो, कसान टेंशन फ्री हुई? भाई पूरी बात बताओ तो ठा पड़े।
2: काई बताऊं पूजा, मारा ननदोई जी है जो मने घणो परेशान करता, अश्लील फोटो भेजता, खराब मैसेज करता, गलत इशारा करता। मैं तो तंग आके वाऊ आखिरकार हिम्मत जुटान घर में सास ससुर को बात करी, सगड़ा सबूत भी बताया, तो वे सब मिली मारा ननदोई जी ने खूब समझायो। अच्छे वे सगला रे सामने माफी मांगी। हाज आज हूँ अबे हल्की होगी, मारा सास ससुर मारो खूब मनोबल बढ़ायो और मारो खूब साथ दियो।
1: काई बात कर रही प्रिया, थारा में यह हिम्मत कया ना आई?
2: हिम्मत तो खुद ने ही जुटानी पड़े, ढीला पोचारा तो दुनिया बेच खावे।
1: थैंक यू प्रिया, थारा अनी डिसीजन से तो मारा में भी ताकत आ गई। मैं भी थाने मारी यही बात करवा जा रही है कि मने भी एक छोरो घणो तंग करे, पर वीको काय करनो, वो थारा सो सीखवा मल्यो। अगेन थैंक्स, चल आओ जी।
2: बेस्ट ऑफ लक पूजा।
1: थैंक यू प्रिया, बाय।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हिंसा को नो कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम हिंसा को नो कहते हैं तो वो परिवार और समाज कैसा होता है, आज हमने नाटक के द्वारा देखा है। अभी हम सुनेंगे आबू के अंचल में रहने वाली उन आवाजों को, उनका क्या अनुभव है घरेलू हिंसा को लेकर।
4: नमस्कार, मेरा नाम ललिता है और मैं आपको शारीरिक हिंसा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारे जीजा जी थे, वो ट्रक चलाते थे, तो वो बहुत नशा करते थे और आते थे ना तो मारते थे। और ऐसा नहीं अकेले में मारते हो, जैसे कि हमारी दीदी बड़ी मम्मी के सामने मारते, बड़े पापा के सामने मारते, रिश्तेदारों के सामने मारते, सबके सामने मारते। मेरी दीदी है ना चुपचाप मार खा लेती थी। क्यों? कि भाई मायके भी नहीं जा सकते हैं और ससुराल में भी सास ससुर नहीं है, तो हम कहेंगे भी किससे और जाएंगे भी कहाँ, पति का भरोसा है भाई, मार खाते रहो चुपचाप। तो ऐसे कई साल तक चला। हमारी बहन, छोटी बहन की शादी थी तो वहाँ पे गए थे, तो बैठ के बातें करने लगे, फिर डांस होने लगा औरतों का, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो जाते थे शराब पी के आते थे और उसको बहुत मारते थे दीदी को। तो फिर वहाँ पे दीदी ने ना खुद भी मारा और औरों से भी मारवाया उनको, बोला आप तुम्हें मतलब पता चलेगा कि औरत जितना सहती है ना वो सहती है, जब वो नहीं सहती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती है भाई। उसको भी जैसे तुम्हें अपनी इज्जत का वो होता है, भाई चार जनों के लोगों बीच में मार रही है तो मेरा कोई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो मर्द हूँ, वो भी तो औरत है ना, आप मर्द को जन्म देने वाली औरत ही तो होती है ना, आप उस औरत पे अत्याचार करते हो। हमारी दीदी ने सबको यही बताया भाई, कितना हो जाए मतलब सहो नहीं। और यही सा हमारी बुआ के साथ भी हुआ, तो मेरी बुआ ने तो खैर उनको जेल में डलवा दिया, तो अब वो नहीं मारते हैं, और मेरी दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, तो अब जीजा जी नहीं मारते हैं और दोनों आराम से रहते हैं। और अभी काफ़ी उन्होंने तरक्की भी कर लिया, क्योंकि नशा छोड़ दिया और नशे में आके वो मारते थे वो, तो उनको भी जब 3-4 बार पड़ा तो वो सुधर गए। यौन हिंसा कई बार सोचते हैं यार बात करना कईयों को अच्छा नहीं लगता है यौन हिंसा के बारे में, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हो जाती है। मैं फील्ड में एक औरत से मिली हूँ जो यौन हिंसा की शिकार है, उनके 10-12 बच्चे हैं ऐसे, उनके पति गुजर गए हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उनके बच्चे में से जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था वो अपनी माँ के साथ ही रेप करता था। जब वो मना करती थी तो वो सबके सामने शराब पी के सबके सामने मारता था, गांव वालों के सामने मारता था, रोड पे ऐसे मारता था जब वो नहीं मानती थी। और बहुत बार जबरदस्ती किया उसने, मारा भी बहुत, मतलब कपड़े निकाल के भी वो मारता था। उसके खिलाफ किसी ने केस भी नहीं किया, क्योंकि जो उस औरत की हेल्प करना चाहता था, मतलब उनको बचाना चाहते थे उस चीज़ से, चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो, जो बेटा था ना वो उनके साथ भी मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना ये सब करता था शराब पी के। और कई बार उसने दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे किया, उसने मारपीट किया है। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ली।
5: नमस्ते जी, मैं नंदू कंवर बोल रही हूँ। मारी शादी ने 35 हो गई, यानी कि 35 साल हो गई। जब से मैं शादी कर मेरे ससुराल गई, के बाद में मैंने कोई परेशानी नहीं है, कि जो मैं घर में काम करती हूँ या मेरे को पैसे है, मेरा पीर का दियड़ो दहेज है, मार पीर की दियड़ी कोई भी चीज़ है, मैं कोई अधिकार नहीं जमाई और सब जो भी मारो मान रखियो, मतलब ससुराल में कि भाई थे या करो था को जो चीज़ बाप दादा को लिया वह आपको ही अधिकार है, तुम्हारे सासू चू लगा ननद देवरणी जिठानी कोई मारा हक नहीं जमाओ, जो मारे मन चाहिए तो मैं यूज करियो और जो मारे चाहिए भाई कोई ने भी देनो लेनो कहीं भी करियो तो मैं मारा हिसाब ही दियो लियो, ठीक है। फिर बाद में जब मारे खुद की भी मैं काम सिलाई पकड़ी जैसे भी चाहे भले वो 100 रुपये की सिलाई करी 50 की करी, जो मारे मन में हुई कि वह चीज़ खरीदनी है वो कोई ने देनो लेनो है तो वो ही दियो लियो और वही पैसा मारे कन जमा है, पर मारो परिवार कोई मैंने यूँ परेशान नहीं करियो कि आज आपका पैसा मान दो मैं कोई सामान लेवा करा, कोई परेशानी नहीं है। और आज भी मारे घर में मैं करूँ तो मारे ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे और सब अच्छे से अच्छे काम करूँ मैं मारे, और जो भी सिलाई करो भले ही अपन 2 रुपये की कि भाई कोई बुनाई करो रहे कोई काज बटन करो रहे कोई भी काम करा पा तो मारे घर में मैं ही बाप रहूँ, और जो भी कोई पैसा आवे तो भाई देवरानी जिठानी लेनो देनो हो चाहे आगे सास ससुराल को देनो लेनो हो तो बेटा आप बोलो और आपने मन चाहे वो काम करो, तो ऐसो मारे तो घर में कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो को भी कोई मैंने पूछे कहते अतरा मजबूत किया हुआ कि आपा काम करा और आपा ही नाम नहीं करा तो दूसरों कौन करी, तो सब समझदारियों काम ले और चालर जकी भी आवे तो मैं तो आई कोशिश कर भी खेऊँ और कहते डरो मत कोई भी मत डरो अपने बढ़िया बढ़िया काम करनो और सारी होशियारी के साथ में चालनो सबने साथ में लेट चालनो है। और जो आपा काम करा और बीमे भी कोई हुआ तो भी ज्ञान बतावा कि बेटा यूँ नहीं करनो और यूँ करवाऊँ आगे आपने अच्छो काम हुई आगे पीसा टक्का घर बार परिवार सब आपा ने चलानो है तो सब भी हिसाब चलो। तो जो भी मार्केट कोई सिलाई वाली भी आवे ना वो भी बात पूछे कि भाभी साहब मैं तो यूँ परेशान आ घर हूँ दहेज की खातरी मन लड़े मगर आदमी भी कोई यूँ मान लड़े टाबर भी है कोई पड़ोसन भी माने यूँ के देवे कि भाई थे थाना यूँ लड़े करे तो आप घरे चले जाओ आंसू अलग हो जाओ, मैं एक ही बात हूँ कोई अलग नहीं होना कोई इशू भी जो भी कहे आपने काम करना मजबूती के साथ करो मजबूती के साथ रहो और बढ़िया काम करो और सबने ज्ञान करो।
6: नमस्कार मेरा नाम तमन्ना है, हमारे पास में एक आंटी जी रहती है तो वो मतलब मानसिक हिंसा की शिकार हैं, उनके सास ससुर मतलब थोड़े पुराने ज़माने के उनकी सोच मतलब नए ज़माने के साथ में बदली नहीं, उनके साथ में एक बेटी है और वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उनके सास ससुर बोले कि हमको अब इस बार पोता ही चाहिए पोती नहीं चाहिए, पोतिया मतलब बड़ी होगी इतना खर्चा पैसा लगाएंगे शादी करके तो इनको दूसरे घर जाना है इसलिए हमें एक और पोती नहीं चाहिए हमें पोता चाहिए, पोता होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा हमारा नाम रोशन करेगा, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत ताने मारते थे और पूरा घर का काम उनसे ही करवाते थे, ना उनको टाइम पे भोजन देना ना उनका मतलब हॉस्पिटल वगैरह लेके मतलब ढंग से ध्यान ही नहीं रखना, बस जरा सी गलती हो जाए तो बस उनको सुनाना सुनाना, वो इतनी सास ससुर से परेशान हो जाए वो सोचते थे कि अब मेरे भी दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, अब वो मतलब उनके ऑपरेशन से लड़की हुई वो हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई तब भाई ताने शुरू, बेटी हुई है एक बेटी हमसे पालनी जा रही है या दूसरी पर ऐसे ताने दे कर करके उनको मतलब सुना सुना के 5 दिन की वो बच्ची हुई और वो भी ऑफ हो गई, फिर वैसे ही वो बीमार थी और वो मतलब डिप्रेशन में चली गई, फिर उन्होंने अपने पति को बोला तो पति बोले कि मैं सेटल होता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, अब वो क्या करे वो हिंसा को सहन कर रही है और अपनी चुप भी लगाए बैठी है।
3: तो सुना दोस्तों हमारे आबू की महिलाएं और लड़कियां किन हालातों से गुजर रही हैं, हम हमारे घर परिवार की महिला और लड़कियों को किस प्रकार की सुरक्षा या न्याय दे पा रहे हैं। हमारी इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम अपनों के लिए खड़े रहे और उनको साथ दें। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का विषय घरेलू हिंसा के प्रकार बेहतर समझ में आया होगा, और आपके कोई अगर सुझाव है या अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। अभी हम लेते हैं आपसे विदाई और कहते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अभी आप सुनिए ये गीत आरजे उषा की जुबानी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। जी हाँ दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जहाँ दिलचस्प बातें तो होती हैं, लेकिन साथ साथ हमारा गीत संगीत का सफर कुछ इस प्रकार चलता है कि ऐसा लगता है हम लोग कहीं भी हों लेकिन साथ साथ चल रहे हैं। अब संगीत का असर कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, और आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि हमारे साथ गेस्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं। वो एक एनजीओ से आए हैं और वो एनजीओ जो चलाते हैं, जो इस नेक काम को कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यश अग्रवाल जी और हर्ष अग्रवाल जी, जो कि एक एनजीओ रन करते हैं बनारस में जिसका नाम है डिवाइन संस्कार शाला। उसके बारे में जानेंगे, बच्चों से भी बातें करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी सुनेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को एक बार आप अपने बारे में साथ साथ एनजीओ के बारे में भी कुछ बनना है।
1: हेलो, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है और मैं इस एनजीओ का ट्रेजरर प्लस को फाउंडर हूँ। और ये एनजीओ 2017 से चल रही है बनारस में, और स्टार्टिंग जैसे हमने घर से किया था, अब और थोड़े बच्चे हमारे यहाँ आते थे उनको पढ़ाना लिखाना। और जैसे कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी से 12 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ 11 साल से गीता पाठशाला भी चलती है, और ये उसके बाद से हम लोग ने एनजीओ स्टार्ट किया। तो बच्चों का हम लोग का मेन मोटिव था उनको संस्कार देना, स्किल डेवलपमेंट और एथिकेट्स और ये सब उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि बड़े लोगों के बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ऐसे ही करते करते आज 6 साल हो गए, हम लोग ने 6 बस्तियाँ भी अडॉप्ट की हुई हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रोग्राम किए हुए हैं, और हमारे यहाँ डेली 40-50 से लमसम बच्चे आते हैं बस्तियों के, उनको पढ़ाना लिखाना और मेडिटेशन और अच्छी बातें और खाना पीना, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसे चलती हैं। और हमारे यहाँ जैसे क्लब्स आते हैं उनको कुछ बांटना होता है, और जगह जगह हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं तो उसका भी हम लोग एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं,
0: काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जी यश जी, आप कुछ बताइए।
2: हेलो, मेरा नाम यश अग्रवाल है और मैं डिवाइन संस्कार शाला का सेक्रेटरी हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के समय में संस्कार की ज़रूरत बचपन से ही होती है, बड़े होने के बाद तो हम बन जाते हैं जैसा हमें बनाया जाता है। मगर जैसे कुम्हार होता है, वो कच्ची मिट्टी से तो घड़ा बना सकता है, मगर जब वो मिट्टी पक जाती है, वो घड़े का शेप ले लेती है, तो उसको किसी दूसरे फॉर्म में डालना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसी सोच के साथ ये एनजीओ की शुरुआत की, जो कि अभी एजुकेशन विंग से कनेक्ट

0: रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को बुला के उनका संस्कार बदलते हैं, उनके परिवार वालों का भी प्रोग्राम रखते हैं, और बच्चों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी कलाएं हैं जो सिर्फ पढ़ते रहने से वो कलाएं निखर नहीं पाती हैं। तो सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और इन सब के माध्यम से, ताकि बच्चे आगे चलकर उन चीज़ों के द्वारा अपना रोजगार भी बना सकते हैं और प्लस वो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जितना ही ज़रूरी हमारा स्तर जो है वो फिजिकली हम जितना अच्छा बनते हैं, साथ ही साथ हमारा मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हर क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़े, ये सारा हमारा एनजीओ देखता है। और हम विभिन्न स्कूलों में जाके भी वहाँ पे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग का कैसे बच्चों को कोर्स भी कराते हैं
1: जी।
0: और ये सारी चीजें हम लोग सब निःशुल्क करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही एक नेक पहल है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भविष्य की बात होती है तो बच्चों की बात होती है, क्योंकि वो ही है हमारे देश का, दुनिया का भविष्य। क्या आपको कोई चेंज नजर आया जो आपको लगता है कि हाँ ये इस तरीके से हुआ, एक प्रैक्टिकल कुछ अंतर आपको दिखा?
0: सबसे बड़ा अंतर तो ये दिखा कि जब बच्चे यहाँ आते हैं उसके बाद से उनका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, हर चीज बहुत बदलता है। यहाँ पे हम लोग इस बात पे फोकस्ड होते हैं कि बच्चे हमारे शुद्ध भोजन खाएं ना, जो कि उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नहीं तो ये बच्चे बाहर का खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो उससे उनकी हेल्थ भी खराब होती है। प्लस ये रोज राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं जिससे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इनको पढ़ाई में मदद मिलती है, और इनकी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है जो यहाँ आने से धीरे धीरे चेंज होने से समाज के दूसरे बच्चों पे और उनके परिवार वालों पे भी असर पड़ता है, और फिर वो भी अपने बच्चों को यहाँ पे एंट्री कराते।
1: क्या बात है, तो बहुत सुंदर आपने बात कही। बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ आप लोगों से भी जानेंगे, लेकिन क्योंकि ये संगीत का कार्यक्रम है तो दोस्तों और बच्चों की बात हो रही है, तो चलिए आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना।

लौट कर आ गए हम कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और दोस्तों, जिन नन्हे नन्हे बच्चों की बात हो रही थी वो स्टूडियो में मौजूद हैं और उनकी आवाज आप सुन पाएंगे, उनसे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वो अपनी प्रस्तुति लेकर तैयार हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में। एक गाना गाने वाले हैं मिलके, तो आइए इन बच्चों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: शांति।
1: बहुत ही सुंदर गाया बच्चों ने और प्यारे प्यारे बच्चों की आवाज आपने सुनी, कितने प्यार से, कितने श्रद्धा से ईश्वर को याद कर रहे थे, शिव परमात्मा पिता को याद कर रहे थे और सब साथ में गा रहे थे, तो बहुत ही सुंदर एक माहौल भी बन गया था। तो आइए इन बच्चों से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है?
2: ओम शांति, मेरा नाम गुड़िया है।
1: आपका नाम क्या है?
3: ओम शांति, मेरा नाम है काजल।
1: गुड़िया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: मैं सिक्स क्लास में पढ़ती हूँ।
1: और आप?
5: फोर्थ में।
1: अच्छा, आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है? गाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है कि पढ़ाई अच्छी लगती है? पहले आप बता दो गुड़िया।
4: हमको डांस अच्छा लगता है।
1: अच्छा, और आप?
5: हमें भी डांस अच्छा लगता है।
1: आपको भी डांस अच्छा लगता है? ओके, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
4: मैथ।
1: आपको?
4: मैथ।
1: अच्छा, दोनों को सेम सब्जेक्ट भी पसंद है। अच्छा, आप लोगों को कोई पोयम याद है जो स्कूल में आपको सिखाई जाती है या फिर आप लोग यहाँ आते हो तो सीखते हो?
4: हाँ।
1: किसको याद है आप दोनों में से?
4: हमें।
1: आपको याद है? ठीक है, चलो आप सुना दो।
3: रोज सवेरा सूरज लाता, पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार को दूर भगाता, उसके स्वागत में ही देखो कमल तार खिल जाता। ओम शांति।
1: ओके, आपको याद है? सोचना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप सोचो सोचो। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग, अभी यहाँ पे समर कैंप चल रहा था ना, दोस्तों आपको भी बता दी कि ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर में बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें सब बच्चे आए थे। तो क्या क्या किया आप लोगों ने? मजा आया?
4: बहुत मजा आया।
1: क्या क्या किया आप लोगों ने?
4: हम लोगों ने डांस किया और खेला भी, खूब
1: खूब खेला,
4: ड्राइंग भी किए।
1: क्या बात है, और आपने क्या क्या किया?
5: हम भी बहुत खेले और ड्राइंग भी किए और डांस भी
1: किए। अच्छा, आप लोग आते हो यहाँ पे बनारस में, है ना, भैया लोग के पास आते हो, सबके पास आते हो, क्या सीखते हो, क्या सीखा आपने?
4: हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो पहले तो अच्छे से रहना सीखे हैं, खान पान का बहुत ध्यान रखे हैं, बाहर का भी नहीं खाते ज्यादा, लहसुन प्याज और नॉनवेज छोड़ चुके हैं हम लोग मधु बनाने के लिए।
1: आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा आपको?
5: हम भी यही सीखे।
1: यही सीखे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से आगे बढ़ना आप लोग, ठीक है?
5: थैंक यू।
1: थैंक यू।
5: ओम शांति।
1: ओम शांति। और भी प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आ जाइए आगे। अच्छा, आपका नाम क्या है?
6: हेलो, ओम शांति, मेरा नाम लकी है।
1: लकी, और दूसरे माइक पे कौन है हमारे साथ?
7: माय नेम इज मंजीत केसरी।
1: मंजीत, ओके। लकी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
6: क्लास 8।
1: और मंजीत?
7: मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है करना?
6: सबसे अच्छा शांति, मेडिटेशन।
1: मेडिटेशन सबसे अच्छा लगता है? ओके, वेरी गुड।
6: और गेम भी है।
1: कौन सा गेम अच्छा लगता है?
6: गेम में हमको कबड्डी।
1: अच्छा, क्या बात है, कबड्डी में तो इंडियन टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। आप बताओ मंजीत।
7: और हमको योग करना पसंद है।
1: अच्छा, और क्या पसंद है? गाना गाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना,
7: खेलने में पकड़म पकड़ाई।
1: अच्छा, और पढ़ाई नहीं अच्छी लगती?
7: हाँ, लगती है।
1: लगती है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है?
7: सब्जेक्ट हिंदी।
1: हिंदी अच्छा लगता है, अरे वाह। तो आपको कोई कविता या कोई याद है?
7: हाँ, याद है, इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल।
1: ठीक है, सुना दो।
7: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर हाउ यू आर, अप वाज़ सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई।
1: लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना? ओके, अच्छा आपको क्या अच्छा लगता है?
6: हमको यस,
1: इतिहास अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, डिवाइन संस्कार शाला में आप लोग जाते हैं, है ना, तो क्या सीखते हैं, क्या सीखा आपने?
6: हम डिवाइन संस्कार शाला में 6 साल से जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को अलौकिक पढ़ाई, जैसे कि स्कूल का पढ़ाई भी अलौकिक पढ़ाई भी होता है। हमको आध्यात्मिक पढ़ाई में सबसे अच्छा मेडिटेशन लगता है, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, पढ़ाई नहीं कर पाते तो मेडिटेशन करते तो इतने अच्छे से याद हो जाता है। और मेडिटेशन करने के लिए हमको अपने ब्रिगुटी के बीच में स्टार चमकता हुआ देखते हैं, और फिर अपना स्टार जो है ना, एक रेड आकाश में परम धाम में होते हुए जाता है, और फिर वहाँ पे मेरे मतलब पिता शिव परमात्मा है ना, उनसे शक्तियाँ लेके फिर अपने वापस आते, तो हमको सब कुछ अच्छे से
1: तो याद हो जाता है आपको। तो क्या आप करते हो, आप रोज करते हो मेडिटेशन?
6: इससे में उठ नहीं पाते मगर ऐसे करते हैं,
1: जब उठते हो तो करते हो। बहुत अच्छी बात है, तो यानी उससे आपकी पढ़ाई बेहतर होती है। वेरी गुड, चलिए आप लोग इतने यंग एज में मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे आपको सुनेंगे, है ना, वो भी फिर करने लगेंगे सीख के, है ना? ठीक है, वेरी गुड। आप कोई गाना गाना चाहते हो या कोई पोयम सुनाना चाहते हो? ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।
5: शांति।
1: ओम शांति। तो आप दोनों के नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप लोग बताओ।
0: ओम शांति, आई एम नेहा सोनकर, आई रीड इन क्लास 10th।
1: ओके, आप 10th में पढ़ते हैं नेहा, और आप?
8: माय नेम इज सानिया, आई एम क्लास 8।
1: क्लास 8। तो आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है करना, बहुत पसंद क्या है करना?
8: डांस।
1: डांस अच्छा लगता है?
8: Yeah.
1: आप दोनों को डांस अच्छा लगता है? ओके। और कंप्यूटर यूज करना या फिर आता है?
8: नहीं।
1: आपको नहीं आता? स्कूल में नहीं पढ़ाते?
8: पढ़ाते हैं।
1: पर इतना अच्छा नहीं लगता?
8: नहीं।
1: बोरिंग लगता है?
8: लगता थोड़ा
1: थोड़ा, थोड़ा। अच्छा, आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
8: टीचर।
1: और आप क्या बनना चाहते हो?
0: एयरफोर्स।
1: एयरफोर्स में जाना चाहते हो? क्या बात है, तो बहुत अच्छे एम है आप दोनों के। टीचर भी अच्छा चाहिए हमें। तो आप लोग को डांस अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है किसी को?
8: सुनना
1: पसंद है। अच्छा ठीक है, तो कोई गाना सुनाना चाहोगे आप लोग, जो आपको सुनना अच्छा लगता है? थोड़ा सा सुना दीजिए।
8: ओम शांति।

0: थैंक यू, वेरी नाइस। आपको अच्छा लगता है ये गाना? सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग यहाँ पे आके क्या क्या किया, क्या अच्छा लगा?
1: यहाँ पे आने में तो बहुत खुशी है, और मतलब बहुत ही अच्छा जगह है। अब जितना भी दिल्ली बम्बई घूम लेंगे, ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा, इतना तो पता चल ही गया है।
0: अरे वाह, तो यहाँ पे पहाड़ देखे? पहाड़ बहुत बड़े,
1: बहुत कुछ जो आज तक लाइफ में कभी नहीं देखे।
0: ऐसा क्या देखा, सबसे अच्छा क्या देखा?
1: सबसे अच्छा तो यहाँ का मतलब जो फीलिंग होता है वो आज तक कभी हम नहीं किए।
0: यहाँ कुछ डिफरेंट फील होता है
1: बहुत।
0: चांदनी को कैसा लगता है?
2: तो एक ड्रेस में, वाइट ड्रेस में कितना अच्छा लगता है, मतलब इससे लगता है कि
1: बाई चांस कहीं अगर ढूंढेंगे ऐसा सुकून तो कहीं मिलने वाला नहीं,
0: कहीं और नहीं मिलेगा
1: कहीं।
0: तो आप लोग फिर आओगे फिर दोबारा से? बहुत बार आएंगे, ठीक है, वेरी गुड। और फिर आप लोग मेडिटेशन करते हो?
1: हाँ करते
0: हैं। करते हैं? मेडिटेशन से कोई बेनिफिट लगता है आपको, ऐसा लगता है फायदा होता है कुछ लाइफ?
1: हाँ, टेंशन दूर होता है सबसे पहली बात, और मन तो हल्का ही हो जाता है।
0: आप लोग को टेंशन होता है?
1: होता नहीं, बट फैमिली वाले एकदम थोड़ा हो जाता है,
0: और भी थोड़ा सा हो जाते हैं ना। स्कूल का भी होता है?
1: हाँ स्कूल का भी होता है,
0: थोड़ा थोड़ा नहीं होता, ठीक है। चलो मेडिटेशन हम जल्दी अर्ली लाइफ से सीखते हैं तो फिर आगे फायदा करते हैं ना, ठीक है। थैंक यू सो मच आप दोनों का यहाँ आने के लिए। ओम शांति। आपका नाम क्या है?
3: ओम शांति। मेरा नाम पीयूष है, हम क्लास 10 पढ़ते हैं, और मेरे को खेलने में फुटबॉल बहुत ही पसंद है, और हम घर में पियानो बजाते हैं। और
0: अरे वाह, कब सीखा आपने पियानो?
3: ये मेरे को भैया सिखाए हैं, हम एक डिवाइन संस्कार शाला में पहले जाते हैं, उसमें अच्छा अच्छा सीखते हैं।
0: पियानो भी वहीं पे सीखा आपने?
3: हाँ, पियानो में भैया सिखाए मेरे।
0: क्या बात। आपका नाम क्या है बेटा?
4: मेरा नाम मेरा नाम प्रथम है, और हम क्लास 9th में पढ़ते हैं। हमको खेलना फुटबॉल बहुत पसंद है, और हमको एनजीओ डिवाइन संस्कार शाला में जाना भी बहुत पसंद है, मेरे बाबा
0: बहुत पसंद है। तो कभी होता है ऐसा नहीं जा पाते हो कि जाते हो हमेशा?
3: नहीं, हम हमेशा जाते हैं,
0: हमेशा जाते हैं,
3: रुकता है लेकिन नहीं जाते, तब भी जाते हैं जो अपने बहुत मिलता है।
0: हाँ, अभी तो सबसे फ्रेंडशिप भी हो गई होगी आपकी, है ना? अच्छा, तो आप लोग क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
4: फुटबॉलर
0: बनना है।
3: मेरे को भी वही बनना है, फुटबॉलर।
0: दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि भाई इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो इस वक्त, पहले जैसे लोग नहीं भी जानते थे, अब सुनील छेत्री जी को जानते हैं, कई फुटबॉल प्लेयर्स को जानते हैं। आप किसकी तरह बनना चाहते हो? कोई प्लेयर है ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता है? रोनाल्डो सबको अच्छे लगते हैं भाई, वो इतने ग्रेट प्लेयर है, नो डाउट। कौन से?
4: मेसी।
0: और इंडियन प्लेयर कोई?
4: सुनील छेत्री।
0: अच्छा, आप लोग को कौन सा गाना अच्छा लगता है? कोई गाना गा के सुनाओगे हमें, या कोई पोएम अगर आती हो आप लोग को स्कूल? गाना प्रथम सुनाएंगे? ठीक है, सुना दीजिए।

0: खुश हो गए तुम गाना गाते तो सब खुश हो जाते हैं।
1: पहली बार गाना गाया? प्रथम कभी गाना नहीं गाते?
0: क्यों नहीं गाते आप कभी गाना? हुआ
1: नहीं, गाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा लगता है तो गाना चाहिए। अच्छा लगता है गाना?
0: हाँ तो कुछ
1: गाना चाहिए पर नहीं
2: गाना
1: है ना। आप नहीं गाते हो? बिल्कुल नहीं गाते हो। डांस करते हो?
2: डांस भी नहीं करते।
1: डांस भी नहीं करते? हाँ वो डांस तो सब कर सकते हैं ना।
2: हाँ, वो कर सकते हैं।
1: अच्छा ठीक है, तो दोनों फुटबॉलर बनने वाले हो अभी, है ना, बड़े होके। और पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? अच्छा ये बताओ आपको?
2: मेरे को इंग्लिश।
1: इंग्लिश अच्छी लगती है? ओके, आपके तो बोर्ड्स होंगे ना इस बार?
2: इस बार बोर्ड है।
1: पढ़ाई अच्छे से करते हो दोनों लोग की कभी कभी मस्ती करते हो फिर मिस कर देते हो पढ़ाई?
3: पढ़ाई तो करते हैं क्योंकि पढ़ाई के समय हम लोग को आगे चल के फ्यूचर अपना
1: बनाना है। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है?
2: पढ़ाई करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं हम।
1: कम क्यों करते हैं? मस्ती करते हैं?
2: मस्ती ज्यादा, पढ़ाई कम करते हैं। अब इस बार करेंगे, 10 आ गया।
1: इस बार करना है ना? फिर आपके बाकी सारे जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको फॉलो करने वाले हैं फिर वो तो देखेंगे, है ना, भैया पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम्स के लिए। अच्छे से पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। ओके, थैंक यू। आप दोनों के नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
4: मेरा नाम सपना है और मैं क्लास 7 से पढ़ती हूँ।
1: आपका नाम क्या है बेटा?
5: मेरा नाम प्रीति है और इस टाइम मैं BFA की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
1: ओके, क्या बात है। अच्छा BFA क्या होता है आप थोड़ा सा बताएंगे?
5: हाँ, ये एक तरह की डिग्री होती है, जैसे किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट हो और कुछ बेहतर स्तर पे वो करना चाहते हो तो उसे ये जरूर करना चाहिए। इससे तो एक तो अगर वो करता है तो उसके आर्ट में और भी डेवलपमेंट होती है और ऊपर से कुछ डिग्री मिलती है।
1: तो आपको ड्राइंग या पेंटिंग क्या पसंद है आपको? आपको
5: स्केचिंग
1: पसंद है? हमेशा से, बचपन से?
5: देखा जाए तो हाँ, ये तो है कि मुझे बहुत पसंद रहा है, लेकिन ये कि कभी ध्यान नहीं दिया था। स्टार्टिंग में तो बहुत पसंद था लेकिन पढ़ाई की वजह से उतना लगता था कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब 10th किया तो फिर ये हुआ लॉकडाउन के बाद से ड्राइंग में इंटरेस्ट पड़ा।
1: अच्छा, तो आपको किसने बताया कि कोर्स करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किसने गाइड किया आपको?
5: भैया लोगों ने डिवाइसेस पढ़ा रखे जहाँ पर अभी हम लोग जाते हैं, और भैया लोग
1: उन्होंने आपको गाइड किया। वेरी गुड, चलिए प्रिपरेशन करिए अच्छे से। और आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी मतलब कौन सी हॉबी है आपकी?
4: ड्राइंग बनाना।
1: आपको भी ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? हाँ। क्या बनाते हो?
4: ऐसे कुछ भी लिख के।
1: कार्टून बनाते हो, सीनरी बनाते हो, क्या बनाते हो?
4: कार्टून, सीनरी, सब
1: सब कुछ बनाते हो, ठीक है। और पढ़ाई में सबसे अच्छा क्या लगता है?
4: हिंदी।
1: हिंदी, ओके। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके?
4: आर्टिस्ट।
1: आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मतलब आप पेंटिंग करना चाहते हो, ड्राइंग करना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों की जरूरत है हर फील्ड में। अच्छा, आप लोग कोई गाना गाते हो या कोई पोएट्री आपको या कोई कविता अच्छी लगती है आपको? कोई ऐसी पढ़ी हो आपने कभी क्लास में या कोई गाना अच्छा लगता है जो गुनगुनाते हो, है कोई ऐसा जो आपको याद आ रहा हो?
5: एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है,

आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है ना, सबको अच्छा लगा? लगा लगा सबको अच्छा लगा, सब लोग अपना सर हिला रहे हैं धीरे धीरे ताकि माइक में डिस्टर्बेंस नहीं हो, है ना? अच्छा ठीक है, आपको कोई पोएट्री याद है, कुछ सुनाना चाहते हो आप? सुना दीजिए।

0: और सर्दी।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत प्यारा और बहुत भावना से गाया तुमने। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: का नाम क्या है?
0: मेरा नाम विजया है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ।
1: विजया, ओके। आप?
2: मेरा नाम मनुषी कैसे है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ।
1: मनुषी, ओके, 2 में पढ़ते हैं। तो मनुषी, आपको क्या अच्छा लगता है करना? सबसे ज्यादा मजा क्या आता है करने में? खेलने में मजा आता है कि पढ़ने में मजा आता है?
2: पढ़ने।
1: पढ़ने में मजा आता है आपको? सच्ची में क्या पढ़ना अच्छा लगता है?
2: मैथ
1: अच्छा लगता है। मैथ टफ नहीं लगता है, सब प्लस माइनस करना पड़ता है। अच्छा लगता है, मजा आता है। ओके, और आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
0: सब्जेक्ट।
1: हाँ, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है?
0: इकोनॉमिक्स।
1: इकोनॉमिक्स, वंडरफुल। और क्या करना चाहते हैं आप? हॉबीज क्या हैं आपकी?
0: स्पोर्ट्स।
1: स्पोर्ट्स, क्या खेलते हो आप?
0: कबड्डी।
1: क्या बात है, वेरी गुड। और क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके?
0: इंडियन आर्मी।
1: इंडियन आर्मी में जाना है? वेरी गुड, आप लोग के एम तो बहुत अच्छे हैं। आप क्या करना चाहते हो निशी, बड़े होके क्या बनोगे?
2: इंडियन आर्मी।
1: इंडियन आर्मी में जाओगे? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। देश के लिए सेवा करना चाहते हो आप, देश के लिए कुछ करना चाहते हो। अच्छा, आपको कोई पोयम याद है मनुष्य? कुछ याद है आपको स्कूल में? कौन सी वाली?
2: लाला जी ने जी
1: सुना जी।
2: लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया।
1: मुंह पिचका के क्या किया?
2: कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी के पड़े धरा, मुंह से निकला आयरन।
1: ओके, आपको गाना अच्छा लगता है? नहीं सर, बस पोयम अच्छी लगती है। ओके, और मैंने आपको?
0: हमको पोयम।
1: पोयम अच्छी लगती है? तो कोई याद है आपको कोई कविता आपने पढ़ी हो स्कूल में? कौन सी?
0: क्लास 8 में पढ़े थे, पेड़ों पे।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, सुना दीजिए।
0: पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग जाना, पेड़ों के संग हिलना। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोली, ताजी हवा जलाशय में अपना हरन भिमोली। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही। तो विनती है यही हमारी, तुम न इस दुनिया को खोना, पेड़ों को ना कटने देना, ना पंछियों को रोना। ओम शांति।
1: बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने, क्योंकि हम आज बहुत सारे डेज मनाते हैं ना, एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे। तो अगर हम सच में पेड़ नहीं लगाते तो फिर, या सच में हम पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी हम सोशल मीडिया पे ऐसे फोटो डाल देते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं होता, है ना? अच्छा मानुषी, आप भी बताओ, आप क्या करते हो जब आप डिवाइन संस्कार शाला में जाते हो? क्या करते हो वहाँ पे? पढ़ते हो कि बैठते हो, सबकी बातें सुनते हो? क्या करते हो?
2: पढ़ते।
1: पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? मैथ्स। और यहाँ क्या किया आगे? कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया आपने? कौन से? डांस किया। अरे वाह, किसने सिखाया डांस आपको? आपने खुद सीखा कि किसने सिखाया था?
2: प्रीति दीदी ने।
1: प्रीति दीदी ने, ओके, चलो ठीक है, प्रीति दीदी को थैंक यू बोल देते हैं फिर हम। मजा आया आपको यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से मैथ्स पढ़ना, अच्छे से इकोनॉमिक्स।
0: थैंक यू।
1: और अब दोस्तों, बच्चों से तो आपने बात की ही, लेकिन एक और प्यारा सा गाना तो बनता है जो इन बच्चों ने मिल के तैयार किया है। सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ बने रहिएगा।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। तो आइए इन बच्चों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना।

0: तो दोस्तों, आपने बच्चों से बात की। डिवाइन संस्कार शाला में ये सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ संस्कारों का जो फाउंडेशन है वो भी उनके जीवन में पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, हमारे साथ यश जी और हर्ष भी जुड़े हुए हैं और आइए उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से एनजीओ चला रहे हैं। जो माता पिता हैं, जो स्कूल में टीचर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस कई चैलेंजेस वो लोग भी फेस करते हैं। कई लोग बच्चों के साथ कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं बट नहीं भी कर पाते हैं, तो अपने अनुभव से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
1: हमको तो ये लगता है कि भले ही छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ हो तब हम कुछ करें, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो जाए या फिर और भी कई सारे संसाधन होते हैं। आदमी को लगता है कि हमें ये चीज मिल जाए फिर हम उस लेवल पे करें, और अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो उसमें भी आप उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई लोगों का ये भी थोड़ा मानसिकता रहती है कि उनको रहता है कि हम अपना जब स्टार्ट करें तो उसमें करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें चल रही है तो आपको वहाँ पे भी सपोर्ट करना चाहिए, कि अंदर से होना चाहिए। और स्टार्टअप हर जगह, ये ऐसी चीज तो हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हर जगह हैं, बस के बच्चे हर जगह होते हैं, तो ये इनिशिएटिव सबको लेके चलना चाहिए।
0: मतलब ऐसा नहीं कि हम वेट करें कि इतना अमाउंट हम कमा लेंगे या इतना कुछ आ जाएगा या कोई हमें सपोर्ट करेगा तब हम कुछ करेंगे।
1: एज वाइज भी, जैसे कि लोग सोचते हैं कि अभी हम अपने ही घर का देख लें, जैसे लोगों को रहता है कि हमारे दो बच्चे हैं, उनको अब इनको भी अपना बच्चा समझ के उनके लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज उन अपने दो बच्चों के लिए लोग पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरे पैसे लगा देते हैं, और उसकी भी गारंटी नहीं कि आगे चल के वो आपका मतलब सहारा बनेंगे कि नहीं, और आगे चल के वो उतना आपके मतलब कि माइंडसेट से चलेंगे कि नहीं, क्योंकि आज के समय में तो बहुत कम ही देखा जाता है। पर आप इनके करेंगे तो ये तो आपके मतलब जैसे होता है ना कर्जदार हो जाते हैं कि आप जिंदगी भर आप कराएंगे कि नहीं कुछ करेंगे।
0: बिल्कुल, और आपको बहुत प्यार भी मिलता है उनसे।
1: और यही लोग आगे चल के क्या कहते हैं कि बड़े बड़े फील्ड्स में हम देखते हैं, हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, हम और भी जैसे म्यूजिशियंस होते हैं या फिर स्टार्स होते हैं, वो कोई कोई बड़े घर से नहीं आते, ऐसी जगह से लोग आते हैं उठके निकल के, तो उनको भी कभी ना कभी किसी ने सपोर्ट किया है। तो अगर आगे भी अगर वैसे लोग चाहते हैं तो किसी न किसी के सपोर्ट करने से ही कोई आगे बढ़।
0: बिल्कुल,
1: और हमारे पास अगर भगवान ने दिया है तो ये सोच के दिया होगा कि आगे चल के हमको किसी को करें सब।
0: बिल्कुल, अगर हमें मिला है तो हम दूसरों को बांटे और वो ब्रिज शायद हम में से कोई भी बन सकता है जो बच्चों को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत सुंदर बात है आपने कही। आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: हम लोग जैसे 6 साल से सेवा कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, तुम्हें ये बनना है, तुम हम नहीं बन पाए तो तुम्हें हमारी ड्रीम्स को पूरा करना है। जबकि जो बच्चों को बेसिक चाहिए, उनको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, उनको खुशी चाहिए, वो चीजें न देके हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए वर्क करें क्योंकि हमने इनको जन्म दिया है। मगर अगर हम उनको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो हमारी सोच से भी ज्यादा करेंगे और हमारा नाम भी रोशन करेंगे, देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसलिए हमें बच्चों को किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट तो एक समय के बाद कोई पूछता भी नहीं कि आपने कितने नंबर पाए। आपका व्यवहार देखा जाता है, आपकी सोच देखी जाती है, और देखा गया कि बहुत सारे लोग बहुत गरीबी से निकल निकल के और बहुत ऊंचे ऊंचे पायदान तक, जैसे अब्राहम लिंकन है या बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसमें कोई मैटर नहीं होता कि कोई बड़े घर के लोग ही ये कर सकते हैं, कोई किसी भी एज में और किसी भी अवस्था में ये कार्य कर सकता है, और इस कार्य में भगवान की बहुत मदद मिलती है।
0: ये आपने फील किया?
2: हाँ, क्योंकि अगर आप ये काम उसका है या आपका काम नहीं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपका पर्सनल काम है, तो उसमें सारी मेहनत आपकी है, और जब आप समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं और बच्चों के लिए करते, जो कहते हैं कि भगवान का रूप है, तो भगवान अपने बच्चों के लिए कराने के लिए आपको मदद भी करते हैं, तो आपको किसी भी चीज की कहीं भी कोई हर्डल्स नहीं आते, कोई कमी भी नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल, और हम देखते हैं मतलब जब हम किसी सोशल वर्कर से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर या उनकी भावनाओं में बहुत स्ट्रांग होते हैं, या कई बार हम उनको देखते हैं कि वो इतनी आसानी से विचलित हैं। आज हम देख रहे हैं कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, कितनी बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, और जब हम देते हैं तो शायद वो हमें पहले मिलता है, तो उसकी खुशी अलग है। बहुत सुंदर बात आप दोनों ने कही, और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी प्रेरणा मिली होगी। कहीं से वो लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, एक और कदम और आगे बढ़ाएं, कुछ और किसी के लिए करें, और मिलकर इस सफर को पढ़ाते रहें, यूं ही चलाते रहें। तो दोस्तों फिलहाल इस कार्यक्रम का सफर तो यहीं तक था, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते भी इसी समय रविवार को यानी रात 8 बजे। और अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए रेडियो मधुबन के नंबर जो कि है 9414151415। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा।

0: निशा,
1: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: आवाज री दुनिया हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगरा घना घना राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहा हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओं अन कार्यक्रम रे मायने आपो समाज रे मैं फैली कुरीतियों वे है बारा में समाज रे बंधु ती बात करो हो और एक कुरीतियों ने कम करवा वास्ते समाज रा लोगों रा अनुभव लो हो के अपने समाज में कतरो बदलाव लावे को समाज में जागृति लावा वास्ते समाज रा बंधु ती बात करो हो। अन्य अलावा अपने भारत देश में कई जातियों वे है उनका रीति रिवाज वे तो वन्य बारा में भी हर समाज रा बंधु ती आपो संपर्क करें वन समाज रा रीति रिवाज रेडियो मधुबन मार्फत ट्रांसमिट करवा की कोशिश करो हो। तो हर बार अलग अलग जाति रा रीति रिवाज वे भी रेडियो मधुबन मार्फत ट्रांसमिट करवा की कोशिश करो हो। अने अलावा अपने जो समाज में कई समाज सेवी वे है तो उनारा समाज सेवा में कई योगदान वे है तो उनारा का योगदान वे उनारा जो जीवन रो सफर वे उनने बारे में पूछे हो कि वे उनारा जो जीवन रो सफर जरा ती स्टार्ट हुआ जन्म ती लेन समाज सेवा तक रो पड़ाव उनने बारे में जानकारी ली हो। तो आज अपो एक फूल माली समाज रा बंधु है मोतीलाल जी माली। तो मोतीलाल जी माली ती आज अपो अनोरा अनुभव लियो जो टॉपिक है तजुर्बा डोकरो रा। तो आज अपने बुजुर्ग मानस है मोतीलाल जी माली तो अनोती अपो अनोरो जीवन यात्रा रा बारा में समाज सेवा जो पड़ाव मत आया है तो उन्हें बारा में अनोन पूछो हो। सबसे पहले अनोरो परिचय लो हो तो परिचय लेवा ती पहला रेडियो मधुबन में अनोरो स्वागत करो हो। तो मोतीलाल जी आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: धन्यवाद साहब आपको खूब खूब स्वागत है। मारो नाम मोतीलाल माली गोत्र मारो राठौड़ है निवासी लुणियापुरा आबरोड जिला सिरोही रो मोर रहवासी हूँ।
0: मोतीलाल जी क्यों के लुणियापुरा में रहे है और पूछो हो कि मोतीलाल जी आप लुणियापुरा में कतरा साल ती रहो रहे।
1: लुणियापुरा में मारा तो जन्म भूमि है लुणियापुरा से।
0: मोतीलाल जी क्यों है कि अनोर जो जन्म है लुणियापुरा में हुआ है पर ठीक है मैं और अनोर बारे में आपको बात करी हूँ पर अपने जो रेडियो मधुबन में सुनवा वाला श्रोता बंधु है वनोरो भी रेडियो मधुबन में स्वागत है। हमें मोतीलाल जी ने पूछो कि भाई के आप जन्म तो लुणियापुरा में हुआ पर आप बताओ कि आप पिताजी अट क्या करता और वनोरों का नाम। तो
1: मारे पिताजी रो नाम स्वर्गीय श्री बालाजी राठौड़ था ने मैं रेलवे में कैरी डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी देता था पर जब भी मारो जन्म हुआ वन्ने पहले से मैं रिटायर पा हुआ था पर अतरो जानकारी मिलती थी मारे पिताजी थी के वनोरे जब रिटायरमेंट हुआ तब वनो तनख्वाह 28 रुपया मिलती थी और 28 रुपया की तनख्वाह रे मैं रिटायरमेंट घरे पधारिया था। कुल वनोरे जो रेलवे रो हक मड़े है वे टोटल वनो 4000 रुपया रो हक मिलियो तो वन जमाना रे मैं एरा मारे पिताजी मने जानकारी देता रहता था।
0: पर आपको जन्म रे पहला रिटायरमेंट हुआ ठीक है तो मैं आपने पूछूं कि आपरा पिताजी रिटायरमेंट हुआ था तो वन्ने बाद में पचे घर में का धंधो वे करता पचे किकन परिवार ने हलावता वो किकन।
1: मोरे पिताजी रिटायर हुआ पुटी मोरे कम से कम 7-8 तो डोबा था गाया थी जी। तो दूध बेचता दूध रे माते घोर हलाता फिर धीरे धीरे मोरे पिताजी एक नैन किसी दुकान लेन बेटा घरे से वह दुकान खोली वह धीरे धीरे दुकान रो सारो लागना ने दूध रो सारो लागतो रियो ने वोटे पुटी मोरे परिवार री परवरिश करता रिया ने धीरे धीरे मोरे घोर बनना और माते हालतू रहते। तो
0: मतलब आप कहना है कि रिटायरमेंट बाद में भी आप पिताजी ज्यादातर खेती बाड़ी रो कॉम तो अन टाइप रो पशुपालन और अन टाइप रो तो वे लुणियापुरा में आप घर अटे बाड़ो बना धंधो करता दूध रो भी मतलब ठीक है। हमें मोतीलाल जी थी और अनोर जीवन रे बारे में पूछे आप एक छोटो सो ब्रेक लो हो पर ब्रेक थी पहला आप सब लोग थी का अपील है कि आप माती भी कोई अपना अनुभव अपने समाज रीति रिवाज अपना तजुर्बा जो भी रेडियो पर प्रसारित करवारी मनसा राख है तो रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज कर जो। रेडियो रे नंबर है 94-14-15-14-15। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन हम सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: बाद में अपना समाज कार्यक्रम मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है। बहुत अच्छी बात बताई, मतलब आप समाज सेवा और जिसको आपने शुरू की तो मतलब मानव सेवा, जो भी स्कूल में फंक्शन वेता कटे वेता आप आगे रहता, ठीक है, पढ़ाई नहीं की थी पर कुछ बीजो काम तो आप झेलियो, ठीक है, अच्छी बात है। पर मैं आपने पूछूं कि आपने जीवन रमा है कोई एरो पल बताओ जो आपने याद वे
5: पल। तो एरी बात है, मारे जीवन में तो तकलीफ और तो कोई कमी रही नहीं है। तो दुख ने अथरो मारे मानसिक तनाव में खूब लीधो है। मैं मारा जितना घरेलू मानसिक नहीं रिया, जितना बालना मानसिक तनाव में खूब लीधा।
4: केरा मानसिक बार
5: मानसिक तनाव कोई भी सामाजिक कारण में एरो कोई भी लेता तो वर्णो विरोध मैंने झेलवो पड़ता तो। पण में लोग एरी गलत अफवाह पर फैलाता कि अपने स्वार्थ ही तो मंदिर को काम लेता था कि स्वार्थ आरोप कर रिया है, स्कूल को काम लेता था कि स्वार्थ आरोप कर रिया। पर हमें लोगों ने देखा कि ना निस्वार्थ भावना थी अकवा में कीधा। तो एरी कोई भी बात वेती थी तो मैंने कहा थोड़ो कोई भी मानसिक तनाव जरूर पवेतो तो। बाकी तो मारे घरेलू परिस्थिति में मारे 73 ही बाढ़ आई थी, जब मैंने भारी नुकसान हुआ था, जब मैंने एक सदमा खूब लागो तो न एक जदि भी मेरे भाई रो थोड़ा मन मोटा विवाह थी मुझे घर थी अलगो हुआ तो मारे एक मानसिक तनाव मैंने खूब लागो तो एक आघात लागो तो कि मैं भाई अलगा अलगा हुआ तो मैंने थोड़ा खूब तकलीफ में रियो। वह घड़ी मैंने आज याद आवे तो मैंने बड़ो दुख लागे कि भाई मारे एक दीकरा रे जी मारो भरण पोषण करें मैंने वटो कीधो आज मैं अलगा वे रिया तो मैंने थोड़ो वो आघात लागो तो। मारे मारे भाई ने भाभी एक माता तुल्य मात पिता तुल्य था बनोरी आज भी मुतो के जीवन में भगवान बनोरा मेरा एरा भाई भुजाई नहीं मले मैंने एरा तो काफी थोड़ो दुख ही लागो तनावे रियो। कृष्टी जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो पंडियो तो गोम नीतोड़ा में बटो थोड़ो तलाक हुआ बन्ने फूटी बीजी थोड़ी बेहो लई भाई खाकर वाला गोम ती लई मारे पत्नी रो मने अने थी खूब मारो सारो मिलियो अन थी मारो जीवन मारो खूब आगे बढ़ियो उन्होंने सुख दुख में मारो खूब हाथ दीधो। तो ही मारे तो थोड़ो ए उत्तेजित मारो स्वभाव थोड़ा कड़क रहता तो गुस्सा वालो तो ने थोड़ो खेलकूद में ज्यादा ध्यान देतो तो खेलकूदरी प्रतियोगिता करावना बीजा करावना कोई राष्ट्रीय पर्व में कोई भी कार्यक्रम कोई हाथे में लेना न बटे अच्छो स्कूल में कार्यक्रम करावा की कोशिश करता तो ज्यादा कर समय वन में लेतो न धंधो दुकान बीजी है तो मारी ब्योरे सलारती अन्य भरोसे सोड़े ने मुँह तो खेलवा पर जाता ना आखा आखा दारा केट के रमा जाओ कबड्डी रमा जाओ न कोई खेल रहा आई दिन रहे माते पर ध्यान देतो। पर मारे धर्म पत्नी रो खूब सहयोग रियो मारो जीवन सवारियो भगवान रे अन्नो अतरो सारो मिलियो के आज जीवन ने धन्य जितनी मारी धर्म पत्नी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। एक आ पत्नी ने एक देवी के रूप में मिली है तो जीवन मारो एक मु तो का मारी जीवनी थी वन जीवन ने माने एक एक एरो मनक जमारा जेरो तुल्य बनाई अन्न हारो मुई अन्न आभारियो के भगवान आते बरे जमारा मगर पो मले तो एरी बीवी पत्नी मले के जल्दी अपने जमारो पर सुधरे।
4: चलो अच्छा विचार है आपरा, आपने सबसे ज्यादा सहयोग आपरे धर्म पत्नी दीदो है। आज जो भी जन पड़ा माते हो घर परिवार ने संभालवा वास्ते ज्यादातर आप तो समाज सेवा में या खेल कूद जो भी जटे जानो बाहर रहता पर आप जो परिवार ने संभालवाला आप धर्म पत्नी था तो अच्छी बात है। मुझे कहूँ कि भाई के एरो सहयोग सब ने मतलब हर परिवार में सुख शांति रहे। तो आपने हमें पूछू कि आप कोई खुशी रो पल बताओ जो आपने जिंदगी में खूब खुशी हुई हुए।
5: खुशी रहा पल तो जीवन में खूब आया, बच्चों ने शादी की थी खूब उमंग थी शादी की थी खूब आनंद आयो भाई घड़ी ए रही थी के वास्तव में कितना भाई मैं सौभाग्यशाली एक बच्चों ने पढ़ना वे रिया पोसावे ने उन्होंने मोटा करे ने आज वगैरह यही पल आया जीवन में। मारी समाज रो मोरे एक इच्छा थी मारी भाव था कि मारी समाज में एक कोई कटे साटू पो मे के कटे एरी जगह भी मे तो जटे एक माली समाज रहे कोई मोटी बिल्डिंग उबी पी वे तो बटे तो मन में एक जिज्ञासा थी कि भाई समाज थोड़ा आगे बढ़े न भगवान ने होबड़ी અને અશોકજીરા મને ખૂબ સહયોગ મળવાથી માળી સમાજને નામથી એક 5 વીઘા જમીન મારે આવટન હોય તો ભાઈ અત્રી અપાર ખુશી મળી, અપાર ખુશી મળી કે ધન્ય હુઆ કે ચલો એક સમાજ રહી એક આ મારે એક સપનો તો પૂરો કીધો મારે ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ઉમેદરામજી મારો હોય ખૂબ આ ધારણાથી કે મોતીભાઈ જમીન લઈએ તો મોટી જ લઈએ ને ભગવાને હોબળી સભી સમાજના ભાઈઓરા એક ભાવનારે અનુરૂપ મને આ જમીન મળી જો મોહનપુરમાં સ્થિત હૈ 22 કમરા હૈ 2 હોલ હૈ અને બંનેમાં બચ્ચા ભણાઈ કરી રહ્યા હૈ હું બધે મંત્રી રૂપમાં બધે સેવા દે રહ્યો તો ભગવાનને એનું કામ વેવાથી એક આત્માને સંતોષ મળે કોઈ બી અચ્છું કામ કરો તો બંનેમાં આત્માનો સંતોષ મળે દેખો સમાજને સરકાર કોઈ ધણી નહીં વેતા સમાજને સરકાર સબ ધણી કોઈ નહીં વેતા જો સેવા કરે વા સરકાર વે માલિકને જો સમાજમાં સેવા કરે વે વરના ધણી વહે
4: આપણો જો કહેણો હે કે ભાઈ કે આપણે સૌથી બડો ખુશીરો પલ હોઈશ તો આપણો કે એક સમાજમાં જો છાત્રાવાસ બનાવવાનો એક સપનો હતો આપણો પૂરો હુઓ ઓર જમીન બી મળી છાત્રાવાસ બી બનાવ્યો આજ આપ બધે મંત્રી પદમાં રહેન સમાજની સેવા કરો રહ્યા હો બહુ અચ્છી વાત હે હું તો કહું કે અણોથી હિ કેન બીજા સમાજવાળા બી કોઈ અચ્છા પ્રયાસ કરે ઓર અન ટાઈપરા સમાજ સેવા કાર્ય કરે તો હું આપને પૂછું અમે જો બાલ વિવાહ વેર્યો હે તો આપણે સમાજ રેમાં કોઈ બાલ વિવાહ વે એરા ઓર આપણા કા પ્રયાસ હે હર સમાજ મેં બી સંદેશ દો એરો કે ભાઈ કે બાલ વિવાહને રોકાવવાનું હે બાલ વિવાહ નહીં કરવાનો હે
5: બાલ વિવાહ બારે મેં તો હું અન્ન ખૂબ જ વિરોધ કરું હું બાલ વિવાહ એક અમારે લીએ મારે દેશને માય આ સમાજમાં મારે એક તરફ કલંક હે દાગ હે તો મારે સમાજ રેમાં હું ભીતરોડ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપેન્દ્ર એક વટે મારે સંસ્થા હે માલી સમાજ સેવા સંતાન ભીતરોડ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપગંજ બટાલો હું વટે ઉપાધ્યક્ષ હું તો જદી બી મારે વાર્ષિક મેળો વે 12 મહિનાનો એક મેળો વે સંત લક્ષ્મીદાસજી વટે એક મંદિર ભવ્ય બનાવ્યો એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે ને વટે એક વાર્ષિક મેળાનો હંમેશા આયોજન હોય તો વટે બી મારે જો સમાજ સુધારા અગર કોઈ બી મુદ્દા ઉપાડો તો બંને મેં બાલ વિવાહ હે મૃત્યુ ભોજ હે ભૂણ હત્યા હે ઓર બેટી પઢાઓ બેટી બચાવ કા મારે એક મુખ્ય અપના એક મારે વિચાર વિમિશ્રા બિંદુ વે હે
4: આપણા મતલબ કે આપણો કહેણો હે કે મતલબ જદી ભી સમાજ રાખો એરા ફંક્શન વે તો વણ મેં આપણા એ જો પ્રયાસ રહે કે જે સમાજ મેં જો કૃતિઓ હે ઉન્હોને કમ કરવા વાસ્તે આપણો પૂર્ણ પ્રયાસ
5: તો મેં વટે પંચોરે સમક્ષ એ ચર્ચા રાખો કે ભાઈ જટા ઉદી વે ઓટા ઉદી બાલ વિવાહ કોઈ બી નહીં કરે અણ બાદ મેં કટિબદ્ધ કરે ને વણો તે બંધ કરો ને કોઈ બી અગર કરે તો વણની શિકાયત મેં ખુદ કરાઈ અને બાલ વિવાહ રોકાવ્યો આ છોટી છોટી બચ્ચીઓને શાદી કરો વણો જીવન મેં વટે કા ભાળ્યો કે મારે કદી પંડ્યા હતા મેં કા પોચા મારે કા લાડ ગોડવા હતા અને બચ્ચીઓ એરો કા એરો કરમ કીધું જે વણો હાથી ઓપે હોય એરો વ્યવહાર કરી રહ્યો અણ વાતે મારે જટા ઉદી મારે માળી સમાજને મેં બાલ વિવાહ બિલકુલ બંધ કરી નાખ્યો હોય ઓ સમાજે કડક પગલો લીધો હે અને માય હર તરહ સમાજનો પૂરો સહયોગ મળે ને અને માતે પૂરો પ્રતિબંધ કીધો પોય
4: ચલો બહુ અચ્છા પ્રયાસ હે ઓર ઓર ભી હું તો કહું ને હંમેશા અને બાલ વિવાહને રોકવા વાસ્તે આપણો સમાજ તત્પર રહે ઓર આપણા ભી પ્રયાસ પૂર્ણ રહે કે ભાઈ બાલ વિવાહને કટે વેતો વેતો તુરંત રોકાઉં ઓર હું ઓછ આશા કરું હું કે ભાઈ આપ જરૂર અન કૃતિને કમ કરવા વાસ્તે કોશિશ જરૂર કરોલા ઠીક હે પર હમે આપને ઓર પૂછું કે કન્યા ભ્રૂણ હત્યા જો વેરી હે તો અને બારામાં આપણો કા કહેણો હે
5: કન્યા ભૂણ હત્યા આજ આઈ મોરે સમાજમાં તો કે મેં તો હર વર્ગમાં ભાળો કે આ વેરીએ તો એક આ બહુ ગલત વિચાર હે આજે કન્યા ભૂણ હત્યા જો ભી વેવાથી આજ મોરે સમાજમાં ભી બચ્ચીઓની કમી પડેગી હે
4: કમી પડી હે ને હું હોબલું કે ભાઈ હાટા પડતા હવે હાટા વગર બચ્ચીઓ મળતી નહીં હે રિશ્તા નહીં વેતા કઈ બચ્ચા એરા હે જો હાટો નહીં કરો તો રિશ્તા નહીં વે આનો મુખ્ય કારણ રહ્યો કન્યાઓની કમી તો કન્યા ભ્રૂણ હત્યાને કમ કરવા વાસ્તે આપણા કતરાક પ્રયાસ આપણા સમાજ જો સમાજ રેમાં આપ સેવા દેવો રહ્યા
5: આજે સમાજ રેમાં બચ્ચીઓની કમી વેવાનો કારણ તો ફેર મોરે તો સમાજમાં ભૂણ હત્યા તો સાહેબ કમી જ વે પર કોઈ બચ્ચીઓની કમી હે એર કોઈ હોવળવા માત્ર નહીં આવતો કે ભાઈ ભૂણ અત્યારે કોઈ મામલો બન્યો હે પર પેલા ટાઈમ એક એરો હતો કે વગર હાટે મારે હકમણ પા વેતા હતા હાટારો કદી કોઈ કહેતા નહીં હતા કે ભાઈ હાટું દિયો સોરા ચોરી વાત હોય ને મા બાપ ગાના સોરા ચોરી દેખીને ભાળીને વટે ફટાફટ હકાઈ હોય ને પન્ના આપતા પર આજ મારે સમાજમાં એની સમસ્યા પૂરી હોય જટે બી જાઓ વટે હાટારી પેલા મોંગણી વહે કે હાટું વહેતો સાહેબ મારે સોરો ઉભો હતા હાટારી એક મારે એની સમસ્યા પેદા પી હોય સમાજમાં કે હાલે બચ્ચો બચ્ચીઓ હગાઈ કરવી બહુ તકલીફ આવે ઓર ભૂણ હત્યા હાલ તો હું તો સભી ભાઈઓને ઓર મારો માતાઓને નિવેદન હે કે ભૂણ અત્યારે માટે પૂરો પ્રતિબંધ લાવો જો બી બચ્ચી આવે બચ્ચાના બચ્ચી રે માં કોઈ ભેદભાવ નહીં લો બચ્ચી બી આવે બે કુલરો વિકાસ કરે તો અણ વાતે બચ્ચીઓને બેટાથી જ્યાદા મહત્વ દેવો જોઈએ વણન ખૂબ પડાવવા જોઈએ મારે ઘરમાં આ 3 પોતિયા હે तो मारे एक पोतो है, मारे मोटा बच्चा रे, एक बच्चा ने एक बच्ची है, मारा नैन को बच्चो है, वनने बे बच्चिया है, पर मारी बच्ची वन बच्चो थी वधारे मो वन राखो हूं। मारी है बच्चिया नहीं है, मु तो जानो के मारे एक तरह बच्चा मारे एक पुत्र रूप में मारे घर में जन्म ले दे, मुने वही लाड रो प्यार ने वही स्नेह दो कि ना मेरे ये मारा बेटा ही से दो। तो अन ढंगती बच्चिया अपना अपना नसीब ने भाग लेने आवे है, अन वास्ते एरो कदी मन में फर्क नहीं लावना जो है कि भाई ये बच्चा है ने बच्ची है, एरो नहीं वनो रे मैं कई तरह रो अंतर नहीं रखना चाहिए, उन्होंने प्रेम प्यार स्नेह और उनका दुलार हमेशा समान रख के उनको पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़ाना चाहिए। यही मेरा सभी जाति धर्म से निवेदन है।
4: ठीक है, आप कहना है कि भाई के बच्चियों ने समान समझनी चाहिए और बच्चियों ने खुशी खुशी थी घर में लानी चाहिए। कोई मन खोचे छोरो वे छोरी वे, तो छोरो वे तो खुशी वे, छोरी वे तो वनोरे घर में कोई मातम छाया वे, कोई मरियो पर वे की हालत वे जाए वनोरे, तो एरो ओपन नहीं होजनो चाहिए। ने सही बात है, आपने भी तीन पोतियों है, आपको और या भाई के मारे तो तीन बेटो और बराबर है पोतियों, एंड खुशी थी उन्होंने पालन पोषण आप करो रिया हो। तो मुझको हर समाज वाला होबले तो बेटियों ने मान दिए और अनोजिकनी परिवार में बेटियों ने खूब मान दिए और कन्या भ्रूण हत्या कटे वेती वन आपने लागे कि कोई एरो कदम उठावे रही हो तो वनी ने रोकावारी कोशिश वन में भी अपन ने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेटियों नहीं वही तो अपने समाज में विकास नहीं। बेटियों है तो घर संसार है, दुनिया में वंश की कण हाले अपनों, बेटी वगैरह कुछ भी नहीं है दुनिया में, तो बेटियों ने बचावनी अपने जरूरी है। और मोतीलाल जी खूब अच्छा संदेश है, पर हमें मोतीलाल जी ने आपको पूछो हो कि आप जो समाज है, जो समाज सेवा है, छात्रावास बनाया है, तो वो छात्रावास हर समाज वास्ते है या आप समाज रस ठहरे में?
5: जो भी छात्रावास मोरे अटे आवरण में बनाइयो लो है, वन छात्रावास में 22 कमरों का निर्माण कीदो है। 22 कमरों में बच्चों ने पढ़ाई रहे, पूरी प्राथमिकता दियो पढ़ाई हारू।
4: आपरे समाज में कोई आवे है रो बच्चों आसपास रा गांव थी भणवा वास्ते, बच्चों वास्ते रीजनेबल रेट वे की करने, मतलब
5: छात्रावास रा बटे नियम बनावे राखिया है जी। समाज रा बच्चों आवे या बीजी जाति रो बच्चों आवे वणोती, जो भी मेंटेनेंस खर्चो वे वो इसमें वणोती लियो। अगर कन्नी आर्थिक स्थिति खराब वे बच्चारी के वनी माता विधवा है, नवा मजदूरी करे ने बच्चा ने परवरिश करी रहे, तो वनी निःशुल्क वनी में समाज की तरफ से पूरी सेवा उपलब्ध करावो।
4: वन्ने पढ़ाई वास्ते सहयोग करो आप?
5: पढ़ाई हारू तो अजय सहयोग री तो अजय समाज सक्षम नहीं है, वो तो नहीं वे तो के पर जो भी उन्हें रूम में रेवारी जो सुविधा है वह निःशुल्क में उन्हें सेवा प्रदान करो, पर अगर आर्थिक सहयोग रही कोई तकलीफ आवे तो समाज की वन्य कोई फंडरी व्यवस्था करने वन्नी भाई मदद करावे हकों में। तो गरीब तबका रहे बच्चा हारो या कोई भी अन्य जाति रहा बच्चा आवे के उन्होंने भी वन एक ही समान अंतर भाव से ही उनके हम सेवा उनको उपलब्ध करवाते हैं।
4: तो अच्छी बात है आप कह रही है भाई कि हर समाज वाला कोई भी समाज वाला बच्चा हो और कोई गरीब तबको हुए तो वन ने आप कमरों वन दो बनवा वास्ते ने वन एग्जाम पूरा कराओ, ठीक है। पर कोई परिवार एरो वे कि वन पाए बिल्कुल पिया नहीं है और आप कह रही है भाई कि वन ने दो, पर आपने कह भाई कि मारे के पाए पिया नहीं है, मारे गरीब स्थिति ने एग्जाम देना मारे अटेंड 15 दिन महीनों रहना है, तो वन प्रूफ क्या करी पैसे? आप तो आपने कही भाई के मारे के गरीब स्थिति है, तो आप की कहना प्रूफ करिए कि भाई के वन बच्चा ने वो गरीब है कि अमीर है का है?
5: कोई बच्चो अपनी स्थिति रो अपने बारे में जानकारी दिए तो मैं वन्नी जानकारी जांच करो। वटारा जन गांव में रो वे वटाती या तो सरपंच है और या समाज रा मोरे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वे, तो वणोती लकावन भैया लेन आवर आप न वणोती मोने के हाँ भैया जो भी है सबूत दे रही हो वह वास्तव में सही है, न वास्तव में अन्य परिवार गरीब अवस्था में नहीं माता रो स्थिति या अन्य कोई सहारो नहीं है, तो अन्य समाज द्वारा जो भी मदद कर सको वो कर जियो, तो वो वणती लकावन अन्नो बाय डोटो पर लियो लेन बनने पुटी बने ने समाज रे मोरे कारकांडी री बैठक में बनने में बैठक में वो प्रस्ताव रखो बनने में निर्णय लेन बड़े निःशुल्क सेवा दियो।
4: तो मैंने पहला तो अप्लाई करना पड़े आप आवेदन करना पड़े आप
5: मोरे अटे आवेदन करवो पड़े, पहला बायोडाटा लियो बनने आज की आर्थिक स्थिति की जानकारी लियो, बनने एजुकेशन का है की कण है कटालो है का है बनने हैंग पूरी जानकारी लियो, उनना परिचय पत्र है बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट वे लियो, आर्थिक स्थिति बारे में अगर वो मने निवेदन करे तो वो लकेन दिए मारी स्थिति तो बनती फिर कहो वन गाँव में महती कोई भी अपना समाज प्रतिस्थिति अपने दूरभाष माते मोने संबंध करो पा या लकावन बटाती लाओ पा बनने फूटी में निर्णय पर।
4: चलो आपने आज रेडियो पर खूब मन खोबले रिया है और आज तो आपने केरो लागे रिया और लिसनर है और जतरा भी समाज बंधु है, तो वनोर वास्ते आप रुका संदेश है?
5: समाज रे बंधु हारू तो मारो एक संदेश है के समाज सरकार देश कोई भी हो समाज शिक्षित और संगठन रहना बहुत जरूरी है। जो समाज शिक्षित है और संगठित है वो समाज जरूर आगे बढ़ता है। हाँ उसको हर तरह की मदद मिले सरकार की तरफ थी योजना की तरफ थी। अगर शिक्षित नहीं हो तो थोने कोई तरह की मदद नहीं मिलती कोई थोने पूछवा वालों ने कोई समाज ने पहुंच नहीं। समाज संगठित है समाज में एको है समाज ने माँ एक आवाज है तो थोने कई जाति समाज सरकार है थोने पूछवा वाला है। अन वास्ते सभी भाइयों ने मारा युवा साथियों ने मारा खूब खूब हाथ जोड़ने निवेदन है कि कुरुतियां है जैसे समाज में गुटखा बीड़ी आदि है अन्य अपने शराब है ऐसी चीजों थी खूब वसो न अवणती अलग रहे तो अपने घर रो अपने परिवार रो विकास भी अपने समाज रो विकास भी तो अपने देश रो विकास भी। और मारा हेंगवती निवेदन है आस पास में जटे भी रहो वटे सफाई रो पूरा पूरा ध्यान रखो। मोरे सरकार नी पूरी केंद्र सरकार नी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रही मोर वो कहू के स्वच्छ भारत का अभियान को पूरे देश रे मैं जरेज फैलीला के जटा दी अपने जटे रियो समाज हो अपनो मोहल्लो बटे पूरी पूरी सफाई रे मैं पूरा पूरा ध्यान देव है।
4: मोतीलाल जी बहुत अच्छी बात बताइए कि समाज रे में जो फैली रही कुरीतियों है उन्होंने कम करनी। नशा नशा एक ऐसी चीज है जो इंसान मन में डूब जाए है और बच्चा आजकल जो नवी जनरेशन है नशा रे पुटे खूब वाले गुटखा है तम्बाकू है तो उस कहना है कि नशो अपो ने नहीं करना है। और सबसे बड़ो काम है कि अपो जटे रहो वटे आसपास रा माहौल ने साफ सुथरो रखना है स्वच्छ भारत बनाना है तो अपो ने सहयोग जरूर देना है। अच्छी बात है पर हमें समय देखता खातर अपो अपने मेहमान मोतीलाल जी रो आभार प्रकट करो हूँ कि अपनो अमूल्य समय दीदो है और अपना अनुभव बताया है। और मुकेशी जिनगर अपनी वाणी ने विराम देव हूँ और क्यों हूँ कि अपने जो समाज में कुरुतियों है उन्होंने कम करनी है बाल विवाह जेरी कुरुति है अणी ने बिल्कुल नकारनी है और कटे वेतो वेतो वणी ने तरत जान रुकावनी है और प्रशासन ने समाचार देना है कि भाई के अटे बाल विवाह वेरियो है। और हम कैसी जिनकर अपनी वाणी ने विराम देव हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन हम सुनता रहो मुस्कराता रहो।
6: न जाओ छोड़ कर

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते दोस्तों, तैयार है ना अपनी प्यारी दोस्त मीना से मिलने के लिए? क्या कहा, बिल्कुल तैयार है? तो फिर देर किस बात की, चलो मिलते हैं मीना से। हाँ, वो रही रानो के साथ बाजार से लौट रही है।
1: मीना, वो देखो बस स्टैंड पर तारा दीदी खड़ी है।
2: अरे हाँ, उनके पास तो काफी सारा सामान भी है। लगता है कहीं बाहर जा रही है तारा दीदी।
1: लेकिन वो अकेली क्यों है?
2: आओ उन्हीं से पूछते हैं। तारा दीदी।
3: अरे मीना, रानो, तुम दोनों कहाँ से आ रही हो?
2: बाजार से। माँ ने नमक और साबुन मंगवाया था। तारा दीदी, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या?
3: हाँ मीना, कुछ दिनों के लिए शहर जा रही हूँ, अपनी मौसी के पास।
4: मौसी के पास? गांव की याद में होगी उदास।
1: दीदी, आपको अकेले सफर करने में डर नहीं लगेगा?
3: इसमें डरना कैसा रानो, मैं तो। मीना, रानो, लगता मेरी बस आ गई।
2: तारा दीदी, ये बस तो पूरी खाली हो गई।
3: मैं भी वही सोच रही हूँ मीना। एक मिनट रुको, मैं जरा ड्राइवर से पूछती हूँ। अब ड्राइवर साहब, ये बस शहर नहीं जा रही?
5: नहीं बेटी, शहर जाने वाली बस आज थोड़ी देरी से चल रही है, आधे घंटे बाद पहुँचेगी यहाँ।
3: ओह, धन्यवाद।
2: क्या हुआ दीदी?
3: मेरी बस आधे घंटे बाद आएगी।
2: तब तक हम आपके पास ही रुकेंगे।
3: नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, वरना मेरी वजह से तुम्हें घर पहुंचने में देर हो जाएगी।
2: ऐसी कोई बात नहीं दीदी, रानो और मैं यही रुकेंगे आपके साथ, जब तक आपकी बस नहीं आ जाती।
6: नजदीक में कोई दवा खाना नहीं है? ओहो, इसकी तबीयत तो और खराब हो रही है।
7: तबीयत तो बहुत बिगड़ रही है।
8: अरे लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कहाँ मिलेगा?
2: रानो, लगता है ये लोग गांव में नए हैं।
1: हाँ मीना, जब से बस से उतरे हैं यही खड़े हैं। लगता है किसी मुसीबत में हैं।
3: मीना, रानो, तुम यही रुको, मैं इनसे बात करके आती हूँ। माफ कीजिए, सब ठीक तो है ना? देख रही हूँ कुछ देर से आप काफी परेशान लग रहे हैं।
9: अब क्या बताएं बेटी, देखो ना, बस के सफर में मेरे 3 साल के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ड्राइवर साहब ने बताया कि यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है, बस हम यहीं उतर गए। लेकिन अब पता नहीं कहाँ है स्वास्थ्य केंद्र।
3: आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आप इस सड़क से सीधे जाइए, थोड़े आगे जाके आपको एक हैंडपंप दिखेगा, बस उससे बाएं मुड़ते ही सामने स्वास्थ्य केंद्र है।
9: झुक झुक जियो बेटी, काश हर इंसान तुम्हारी तरह हो, दूसरों की मदद करने वाला। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटी।
3: इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था।
1: वाह तारा दीदी, आप तो बहुत विश्वास से बात करती हैं। मैं तो किसी अजनबी के सामने जाने से भी घबराती हूँ। बल्कि सच तो ये है कि मैं माँ और बाबा के सामने भी अपने मन की बात नहीं कह सकती।
3: क्या मतलब?
2: मैं बताती हूँ दीदी, रानो के माँ और बाबा उसका स्कूल छोड़वा रहे हैं।
3: अरे लेकिन क्यों?
1: बाबा कहते हैं बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब घर के काम में माँ का हाथ बटाओ। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ दीदी, खूब पढ़ना चाहती हूँ।
3: रानो, तुम्हें चाचा जी और चाची जी को अपने मन की बात बतानी चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास के साथ की गई बात का असर कुछ और ही होता है।
1: वही तो मुश्किल है दीदी, काश मुझ में भी आप जैसा आत्मविश्वास होता।
3: रानो, एक बात बताऊं, कुछ साल पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह थी, किसी से भी बात करने में घबराती थी।
1: फिर आप में इतना आत्मविश्वास कैसे आया दीदी, बताइए ना।
2: हाँ तारा दीदी, बताइए ना।
3: अच्छा अच्छा, बताती हूँ। ये तब की बात है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। मेरी मौसी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई हुई थी, अपने 5 साल के बेटे चिंटू के साथ। एक शाम माँ और मौसी बाजार जाने के लिए तैयार हुई।
10: तारा, मैं और तुम्हारी मौसी बाजार जा रहे हैं, हमें वापस आने में थोड़ी देर हो सकती है, चिंटू का ख्याल रखना। हाँ
3: ठीक है माँ। माँ और मौसी मुझे और चिंटू को घर पे अकेला छोड़कर बाजार चली गई।
2: फिर क्या हुआ दीदी, क्या आप घबरा गई थी?
3: हाँ, क्योंकि चिंटू बहुत शरारती था,

0: दिन भर कोई ना कोई शरारत जो करता रहता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ चिंटू? आज बहुत चुपचाप बैठे हुए हो, आज कोई नई शरारत नहीं करनी क्या?
1: तारा दीदी, सर बहुत दुख रहा है।
0: अच्छा, ये कोई नया मजाक है तुम्हारा, है ना?
1: दीदी दीदी, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है।
0: अरे तुम्हारा माथा तो बहुत गर्म हो रहा है। मैं घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
1: फिर
0: मुझे बहन जी की बात याद आई। उन्होंने एक बार हमें बताया था कि अगर गर्मियों के मौसम में भी किसी को कपकपी छूटे तो इसका मतलब उसे बुखार हुआ है। चिंटू बुरी तरह कांप रहा था।
1: तारा दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
0: तुम फिक्र ना करो चिंटू, ये लो कंबल ओढ़ लो। ओहो, इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूं? चिंटू मैं एक मिनट में आई। मैं भाग के पोंगाराम चाचा के घर गई और उनसे कहा कि वो तुरंत नर्स बहन जी को बुला लाए।
2: क्या हुआ दीदी, क्या पोंगाराम चाचा नर्स बहन जी को बुला लाए?
0: फिर नर्स बहन जी ने चिंटू की जांच की और उसे दवा भी दी। और शाम को जब माँ और मौसी वापस लौटी और उन्हें सारी बात का पता चला तो माँ ने कहा,
3: शाबाश तारा, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी से मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी हो गई है मेरी बेटी, जीती रहे, शाबाश।
0: उस दिन मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अगर आत्मविश्वास हो तो अकेले होने के बावजूद बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।
2: तारा दीदी, आपकी बातें सुनने के बाद तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे माँ और बाबा से कह देना चाहिए कि माँ बाबा, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ।
4: पढ़ना चाहती हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ।
0: मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई रानो कि तुम में एक नया विश्वास जागा है, इसीलिए तुम अब। अच्छा मीना, रानो मेरी बस आ गई, अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों मेरे पास इतनी देर रुकी, उसके लिए तुम दोनों का बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए और आपकी देर से आई हुई बस को, वरना शायद मुझ में कभी भी किसी के सामने अपनी बात रखने का आत्मविश्वास ना आता।
4: आत्मविश्वास ना आता, अभी भी मन घबराता।
5: उस शाम रानो ने अपने माता पिता से बड़ी नम्रता और पूरे विश्वास के साथ बात की और उनसे ये निवेदन किया कि वो अभी और पढ़ना चाहती है। रानो के माता पिता को उसका आत्मविश्वास देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने रानो को स्कूल से निकलवाने का अपना फैसला बदल दिया। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता लिखी है।
6: हर लड़की को याद रहे ये बात बहुत है खास,
4: अपने आप में रखना तुम पूरा आत्मविश्वास।
5: भाई वाह, छोटी सी कविता में कितनी गहरी बात सिखा गए हैं हमारे प्यारे से कवि। चलो अब हो जाए एक मजेदार गाना।

0: गाना तो सचमुच बहुत मजेदार था, आपको भी सुन के मजा आया ना? फिर ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ
2: शब्द बनाओ।
1: हाँ, मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है
2: जी।
1: तो आज का शब्द है सितार। चलो अब सितार के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
3: बहन जी, सितार का पहला अक्षर है स और स से होता है सफेद।
1: शाबाश रोशनी। और सफेद शब्द से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
4: चेहरा सफेद पड़ना।
1: हाँ कृष्णा, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है?
5: बहन जी, इस मुहावरे का मतलब होता है रंग गोरा हो जाना।
1: नहीं दीपू, चेहरा सफेद पड़ने का मतलब रंग गोरा होना नहीं होता। कौन बताएगा इसका सही जवाब?
6: बहन जी, इस मुहावरे का मतलब होता है घबरा जाना।
1: बिल्कुल ठीक सोमा। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
7: स के बाद सितार में आता है त और त से होता है तमाशा।
1: सही जवाब गोलू। और मुहावरा?
7: तमाशा देखना, मतलब किसी को मुसीबत में देखकर भी उसकी मदद ना करना।
1: शाबाश।
7: बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ मीना बताओ।
7: स और त के बाद सितार में आता है र और र से होती है राख।
1: शाबाश मीना। और राख से जुड़ा मुहावरा?
7: जल के राख हो जाना। और इस मुहावरे का मतलब है किसी से बहुत ईर्ष्या करना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
8: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मना ले।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप त्रिवेदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक विच इज द बिट्रेयल ऑफ फेथ फ्रॉम द बुक गोल्डन रेस फॉर क्लास 10th ऑफ RBSE. That means Rajasthan Board of Secondary Education. And we have learned first part of this lesson and this is the second and last part. So, aaj hum jo book pad rahe hain, Golden Race, uska last lesson hai, The Betrayal of Faith, yani Vishwas ka tootna. Aur humne padha E.R. Braithwaite ko, जिन्होंने लिखा है. तो अब हम शुरू करें. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज पॉसिबल टू मेजर विद कंसिडरेबल एक्यूरेसी राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स और द बिहेवियर इन स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स Invisible to the naked eye. ये संभव है कि ज्वार भाटा के आने और जाने को एक बार को हम पहचान सके, उसको माप सके. ये भी संभव है कि हम अंतरिक्ष में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटी छोटी चीजों को जो कि इनविजिबल है, जिन्हें कि हम देख नहीं सकते अपनी खुली आंखों से, वो भी हम किसी तरीके से देख पाए. बट लेकिन हु कैन मेजर द डेप्थ्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट. लेकिन निराशा को कौन माप सकता है. विद इन द समवॉट रिस्ट्रिक्टेड स्फेयर ऑफ एन एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उनको देख करके कोई कैसे पता लगाए. द कॉलोनियल स्टूडेंट लर्न्स टू हील, डिबेट, टू पेंट एंड टू थिंक. वो पाबंदियां क्या होती हैं कि जो गुलाम देश के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो न तो वाद विवाद सीख सके, न वो रंगाई सीख सके और न ही वो सोच सके. आउटसाइड दैट स्फेयर ही हैज टू मीट द इनडिग्निटीज एंड रिबब्स ऑफ इंटॉलरेंस. बल्कि हर जगह उसको असहिष्णुता और असम्मान ही सहन करना पड़ता है. प्रेजुडाइस अपमान एंड हेट और नफरत. आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट इन प्रैक्टिस और पोजिशन, आफ्टर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद या अपने आप को स्थापित कर लेने के बाद, द ट्रेल्स एंड सक्सेसेस ऑफ एकेडेमिक लाइफ आर हाफ फॉरगॉटन इन द हर्ली बर्ली ऑफ लिविंग. जिंदगी की हाफादाफी में या जीवन जीने की जल्दबाजी में, जीवन की ऑलरेडी जो समस्याएं हैं उनकी वजह से जो कुछ शैक्षणिक जीवन में होता है उसको इंसान लगभग भूल जाता है. बट लेकिन The hurts are not so easily forgotten. लेकिन जो चोट लगती है, जो विश्वास टूटता है, दिल पर जो घाव लगता है, उसको कोई भी नहीं भूल सकता है. To many in Britain, a Negro is a darkie. England में बहुत सारे लोगों के लिए एक Negro एक काला व्यक्ति है, और a Niger या फिर वो कोई Niger है, और a Black या फिर वो काला ही है. He is identified, उसकी यही पहचान होती है, in their minds, उनके मन में, with in एग्जॉस्टिबल ब्रूट स्ट्रेंथ, वो उनकी जितनी भी निर्दयी ताकत है उस सब में, एंड ऑफन आई वुड हियर द रिमार्क, और अक्सर मैं ये टिप्पणी सुनता हूं कि वर्किंग लाइक ए नाइगर, अरे कि तुम तो नाइगर की तरह काम करते हो, यानी नाइगर लोगों को, काले लोगों को बस यही माना जाता है कि उनसे तो काम ले लो जितना लेना होता ना, ये इंग्लैंड की बात बता रहे हैं, और लेबरिंग लाइक अ ब्लैक, या फिर एक काले व्यक्ति की तरह मेहनती हो, यूज्ड टू एम्फेसाइज सम ओकेजन ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट। ये सब जो बातें हैं वो इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि जो प्रयास कोई व्यक्ति कर रहा है उस प्रयास में उसके अवसरों में और बढ़ोतरी हो जाए। दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम अ कर्टियस सबसर्विसेंस। तो ये सब इसलिए कहा जाता था ताकि अवसरों को बढ़ाया जाए। दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम, वो ये उम्मीद करते हैं किसी भी एक निग्रो व्यक्ति से अ कर्टियस सबसर्वियंस एंड कंटेंट विद लोली स्टेट ऑफ मैनुअल एम्प्लॉयमेंट एंड स्लम एकोमोडेशन, कि जितना ज्यादा हो सके उससे मेहनत करवाई जाए, काम करवाया जाए, और रहन सहन की सुविधाएं उसको भले ही कम मिले लेकिन काम लिया जाए बस। इट इज ट्रू दैट, ये सच है कि हियर एंड देयर वन सीज निग्रोज एज डॉक्टर्स, कि कोई भी यहां वहां निग्रो व्यक्तियों को डॉक्टर के रूप में देख सकता है, लॉयर्स वकील के रूप में देख सकता है, और टैलेंटेड एंटरटेनर्स या फिर किसी कलाकार के रूप में भी देख सकता है, बट दे आर समहाउ कंसिडर्ड डिफरेंट, लेकिन उनको फिर भी अलग ही माना जाता है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द मास, और उन्हें आम वासी की तरह या भीड़ की तरह नहीं देखा जाता। आई एम अ निग्रो, मैं एक निग्रो व्यक्ति हूं, एंड व्हाट हैड हैपेंड टू मी, और मेरे साथ क्या हुआ एट दैट इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूटेड, उस इंटरव्यू में जो हुआ था टू माई माइंड, मेरे मन में अ बिट्रेयल ऑफ फेथ, और वो ये कि एक विश्वास का टूटना। आई हैड बिलीव्ड इन फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता में विश्वास किया करता था, इन द फ्रीडम टू लिव इन द काइंड ऑफ dwelling I wanted, और उस प्रकार मैं जीना चाहता था जिस प्रकार मैं चाहता हूं, कोई मेरे पे दबाव ना हो किसी तरह, providing I was able and willing to pay the price, और मैं ये भी चाहता था कि जो पैसा मैं चाहूं वो मैं दूं, and in the freedom और स्वतंत्रता to work, काम करने की, at the kind of profession for which I was क्वालिफाइड, और मैं ऐसा काम चाहता था जिसके लिए मैं योग्य हूं, जिसकी मैंने शिक्षा हासिल की है, विदाउट रेफरेंस टू माय रेशियल और रिलीजियस ओरिजिन्स, और उसमें मेरी धार्मिक और मेरी जातीय बातों का कहीं कोई उल्लेख ना हो, जिक्र ना हो, उनसे कोई लेना देना ना हो, जो मेरी योग्यता है उसी के अनुसार मुझे काम मिले। ऑल द बिग टॉक of democracy, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातों में and human rights और मानवाधिकारों में seemed as spurious as the glib guarantees with which some manufacturers underwrite their products in the confident hope that they will never be challenged। कि कुछ लोग लोकतंत्र के बड़ी बड़ी बहसों में या मानवाधिकारों की बातों में वो ये कहते हैं बिना सोचे समझे कि जो अधिकार वो लिख रहे हैं, जो बातें वो लिख रहे हैं, उनको कभी भी चुनौती नहीं दी जाएगी। The Briton at home, लेकिन इंग्लैंड के वासी घर पर takes no responsibility for the protestations and promises made in his name by British officials overseas. विदेशों में इंग्लैंड के अधिकारियों द्वारा जो कुछ बातें कही जाती हैं उनके विरोध में इंग्लैंड वासी उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, यानी वहां पे तो अपमान होना ही होना है. I reflected on my life in the USA. मैंने अपने जीवन को अमेरिका की तरफ मोड़ने का प्रयास किया. There, वहां when prejudice is felt, जहां जब मुझे अपमान लगा, it is open, तो मेरे लिए खुला मामला था, obvious, और ये बड़ा स्वाभाविक था. Blatant, the white man makes his position very clear. किस गोरे व्यक्ति अपनी स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रखते हैं. And the black man fights those prejudices with equal openness and fervor. और लेकिन जो काले व्यक्ति होते हैं वो उसी अपमान को पूरी ताकत से लड़ते जाते हैं उसके आगे. Using every constitutional डिवाइस, और वो हर एक संवैधानिक तरीका अपनाते हैं अवेलेबल टू हिम, उसके लिए जो उपलब्ध है. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल एंड ब्रिटेन इन पर्टिकुलर, कि बाकी सब संसार एक तरफ और विशेष रूप से इंग्लैंड, आर प्रोन टू पॉइंट एन एंग्रीली क्रिटिकल फिंगर एट अमेरिकन इंटॉलरेंस, कि ये लोग अमेरिका की असहिष्णुता पर उंगली उठाते हैं. फॉरगेटिंग दैट, ये भूल जाते हैं कि इन इट्स शॉर्ट हिस्ट्री, अपने छोटे से इतिहास में एज अ नेशन, राष्ट्र के रूप में, इट हैज ग्रांटेड टू इट्स नीग्रो सिटीजन्स मोर अपॉर्चुनिटीज, कि अमेरिका ने तो अपने काले वासियों को अधिक अवसर प्रदान किए हैं फॉर एडवांसमेंट एंड बेटरमेंट पर कैपिटा, और उनके लिए आर्थिक सुविधाएं भी बड़ी हैं, उनके लिए पूंजी जुटाना भी आसान है देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड, संसार के किसी और देश से भी ज्यादा. विद एन इंडिजिनस निग्रो पॉपुलेशन, और वहां पर बहुत ही अच्छी संख्या में निग्रो लोगों की जनसंख्या भी है. ईच वायलेंट एपिसोड, हर एक हिंसा की घटना, दो ग्रेटली टू बी डिप्लोर्ड, हालांकि उसको हटा दिया जाता है, उसको दूर कर दिया जाता है, हैज इनवेरिएबली प्रेसीडेड सम चेंज, वो अलग अलग जगहों पर उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, सम इम्प्रूवमेंट इन द अमेरिकन निग्रोज पोजिशन, और अमेरिका की जो निग्रो की स्थिति है उसमें कुछ अब बदलाव हुआ है. द थिंग्स दे हैव वांटेड वर इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें वो चाहते हैं वो ज़रूरी थी. इनफ फॉर देम, उनके लिए पर्याप्त थी. टू फाइट एंड डाई फॉर, कि लड़ना और मरना. एंड दोज हु डाइड डिड नॉट गिव देयर Lives in vain, और जो लोग मर जाते थे उनकी मृत्यु बेकार नहीं गई. Furthermore, American Negroes have been generally established in communities in which their abilities as laborer, हालांकि इसके बाद भी अमेरिका में जो निग्रो जाति है उसको आम तौर पर जो मान्यता मिली है, उन्होंने जो अपने आप को स्थापित किया है समुदायों के रूप में, और उनकी योग्यताओं के अनुसार वो मजदूर हो सकते हैं, वो कारीगर हो सकते हैं, चिकित्सक, वकील, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, और शिक्षाविद एंड एंटरटेनर या फिर वो कलाकार, हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि सीधे या परोक्ष रूप से, हैव बेनिफिट टू दैट कम्युनिटी, उनके समुदायों को उसका लाभ मिलता है इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इंटरकोर्स, सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति के रूप में दे हैव बीन लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ वाइट पीपल। वो गोरे लोगों की तरह ही स्वतंत्र हैं इन सब मामलों में। इन ब्रिटेन, इंग्लैंड में आई फाउंड थिंग्स टू बी वेरी डिफरेंट, मैंने देखा कि चीजें बहुत अलग हैं। आई हैव येट टू मीट अ सिंगल इंग्लिश पर्सन, मुझे आज भी अभी भी अकेले एकमात्र ऐसे अंग्रेज व्यक्ति से मिलना बाकी है हु हैज एक्चुअली एडमिटेड टू एंटी निग्रो प्रेजुडाइज, जिसने निग्रों के अपमान के खिलाफ बात की हो या जो निग्रों का अपमान नहीं करता। इट इज इवन जनरली बिलीव्ड दैट, आमतौर पर यही माना जाता है कि दैट नो सच थिंग एग्जिस्ट हियर, कि ऐसी कोई वस्तु यहां पर नहीं है। अ निग्रो इज फ्री टू बोर्ड एनी बस, कि एक निग्रो व्यक्ति को किसी भी बस में आना जाने की सुविधा है और ट्रेन और या फिर रेल में, एंड सिट एनीवेयर, वो कहीं भी बैठ सकता है प्रोवाइडेड ही हैज पेड द एप्रोप्रिएट फेयर। जरूरी ये है कि उसने किराया दिया हो। द फैक्ट दैट, और तथ्य ये है कि मैनी पीपल माइट पॉइंटेडली अवॉइड सिटिंग नियर हिम इज कैजुअली ओवरलुक्ड, लेकिन वास्तविकता है कि वो बैठ तो सकता है कहीं भी, लेकिन इंग्लैंड के वासी उसके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। ही इज फ्री टू सीक अकोमोडेशन इन एनी लाइसेंस्ड होटल, वो किसी भी होटल में रुक तो सकता है, और बोर्डिंग हाउस। द कर्टियस रिफ्यूजल विच फ्रीक्वेंटली follows is never ascribed to prejudice, लेकिन जो अपमान है वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। The betrayal I know felt was greater, जो अपमान है जो मैं महसूस करता हूँ वो बहुत बड़ा है, because क्योंकि it had been perpetrated with the greatest of charm and courtesy। क्यों? क्योंकि मैं जिसको बहुत अच्छा मानता था वहां पर मुझे ये सब सहन करने को मिला है। आई रियलाइज एट दैट मोमेंट, उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि दैट आई वॉज ब्रिटिश, कि मैं इंग्लैंड का वासी हूँ, बट एविडेंटली, लेकिन वास्तव में नॉट अ ब्रिटन, लेकिन मैं इंग्लैंड का निवासी नहीं हूँ। एंड दैट फाइन डिफ्रेंशिएशन was now very important, लेकिन वो अंतर आज बहुत महत्वपूर्ण है। I would need to re-examine myself, मुझे अपने आप को दोबारा जांचने की आवश्यकता है, and my whole future और मेरे भविष्य को in terms of this new appraisal, और खासकर इस बदली हुई परिस्थिति में, इस नए वातावरण में। This is the end of the lesson number 11, The Betrayal of Faith. Okay, so कुछ अब हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं ग्लॉसरी में से। ओके, डिसइल्यूजनमेंट, ब्रेकिंग ऑफ अ बिलीफ, विश्वास का टूटना। हब, हब मीन्स सेंटर, केंद्र। वॉलेंटियर्ड, ऑफर्ड विलिंगली, यानी स्वइच्छा से कुछ करना। प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। कीपिंग सेफ, सुरक्षित रखना। लोडेस्टर, पोल स्टार, ध्रुव तारा। द गाइडिंग प्रिंसिपल, सिद्धांत। गॉल एंड वॉर्मवुड, गिविंग बैड टेस्ट, अनप्लीजेंट, एक तरह से अव्यवहारिक, खराब। ब्रिटन्स, नेटिव्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के मूल निवासी। इनटेंजिबल, जो कि छुआ नहीं जा सके, दैट कैन नॉट बी टच्ड। कॉलोनियल पीपल, द पीपल लिविंग इन द कंट्रीज वंस कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज, एक बार जिन
2: देशों पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया है वहां के निवासियों को कॉलोनियल पीपल कहते हैं. फिनोमिनन थिंग दैट अपीयर्स टू और एक्सपीरियंस्ड बाय द सेंसेस, ऐसी चीज जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं. पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन होता है कलर ऑफ द स्किन, हमारी चमड़ी का कलर. एसिडुअसली, डिलिजेंटली, लेबोरियसली, मेहनत से. बाय डिंट ऑफ फ्रेज है ये, बाय मीन्स ऑफ किसी भी कारण से, विद द हेल्प ऑफ उसकी मदद से. बोल्स्टर्ड, सपोर्टेड, मदद, मोटिवेटेड, प्रभावित. नेवीट, नेचुरल, प्राकृतिक. इनोसेंस इन स्पीच एंड बिहेवियर, जो कि व्यवहार और वाणी में बहुत ही शांत होते हैं. स्क्राइब, कंसिडर टू बी द कॉज और रीजन, किसी भी कारण से कुछ मानना. फॉरबियरर्स, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स. प्रेडिलेक्शन, कंपेशंस, वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम. विगोरसली, फोर्सफुली, शक्ति से, ताकत से. इंडिग्निटीज, इंसल्ट्स, अपमान, रिबप्स. अनकाइंड रिफ्यूजल, हिटिंग बैक, मारना एक तरह से. हर्ली बर्ली, नॉइजी कमोशन, डिस्टर्बिंग. हसल एंड बसल, यानी जल्दबाजी में परेशान होते हुए एक तरह से, हापादापी. नेक्सॉस्टिबल, नॉट एंडिंग, जिसका समापन न हो. ब्रूट, बीस्ट, जानवर. सबसर्वियंस, बोइंग डाउन इन रेस्पेक्ट, यानी सम्मान में. कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि. मैनियल, सुटेबल टू बी डन बाय अ सर्वेंट, एक नौकर के द्वारा काम किए जाना ज्यादा अच्छा. बिट्रेयल, ब्रेक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का टूटना. स्प्यूरियस, फॉल्स, झूठा. नॉट जेन्युइन, जो कि सच नहीं है. ग्लिब, अबाउट टॉकिंग स्मूथली बट इनसिंसियरली, यानी अनादर करते हुए बोलना. अनराइट, प्रोवाइड गारंटी एंड क्वालिटी, किसी बात को गारंटी दे.

0: ना प्रोटेस्टेशंस, डिक्लेरेशंस, घोषणा पत्र, रिफ्लेक्टेड थॉट सीरियसली, जिस पर सोचना था, सोचा था, ब्लेटेंट, नॉइजी, शोरगुल एंड रफ, प्रोन, हैबिचुअल, आदत से, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट और इसमें मतलब अच्छाई, परिवर्तन, पर कैपिटा, पर हेड यानी हर व्यक्ति, डिप्लोर्ड, कंडेम्ड, विरोध. तो दीज आर द वर्ड्स मीनिंग. विद दिस द लेसन हैज एंडेड. सो व्हाट कम्स नेक्स्ट, देखते हैं अब आगे क्या आता है. आज के लिए इतना ही, गुड बाय.
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां.
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: When I was young, I played for fun, made up the words nobody heard, but now I see all rise on me.

0: तो आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM में। अच्छा, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन है?
1: मेरा नाम है अर्षिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम है अमिक्षा, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम है अनुष्का, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम है कृष्णाली राणा और मैं 4 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd में पढ़ती हूँ।
0: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
6: मेरा नाम रूहानी है और मैं क्लास 8th में हूँ।
0: और आज हम करेंगे बच्चों की दुनिया में बच्चों से बातें। और आज बच्चों की दुनिया में हम मोबाइल रील्स वगैरह इसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो चलो बताओ कौन कौन फ़ोन में क्या क्या देखता है?
1: मैं फ़ोन में कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स देखती हूँ, कभी कभी रील्स, वीडियोस, मूवीज़ और बहुत कुछ देखती हूँ।
0: और आप लोग नहीं देखते?
2: हम लोग देखते हैं, अपन बहुत कम देखते हैं।
0: अच्छा, आप लोग फ़ोन नहीं चलाते?
5: मैं चलाती हूँ।
0: अच्छा, तो फ़ोन में क्या देखते हो?
5: मैं कार्टून देखती हूँ।
0: कौन सा कार्टून देखते हो?
5: वी।
0: अच्छा लगता है आपको? कितना अच्छा लगता है?
5: 500।
0: इतना ज़्यादा अच्छा लगता है? फेवरेट कार्टून है आपका। अच्छा, और क्या देखता है कोई? बताओ क्या देखते हो?
5: मैं डोरेमोन कार्टून देखती हूँ।
0: अच्छा, और आप नहीं देखते हैं? मिक्चा, आप नहीं देखते कुछ? अच्छा, तो आप बताओ।
3: मैं तो रील्स देखती हूँ।
0: हाँ, कौन से रील्स देखते हो?
3: आ जाती है, देखते हैं कोई।
0: अच्छा, खुद से नहीं लगाते?
3: कभी कभी खुद से लगा लेते हैं।
6: अच्छा, तो कभी मोबाइल में कुछ काम की चीज देखी है किसी ने?
2: हाँ, मैंने देखी।
1: हाँ, मैंने भी देखी है।
6: बताओ अपनी अपनी।
1: मैं ना कभी कभी ग्रामर देखती हूँ, कुछ समझ में नहीं आती, एजुकेशनल वैसे वीडियोस में कभी कभी देखती हूँ।
6: और अमिक्षा, आप?
2: मैं कभी कभार, मुझे अगर आर्ट सीखनी होती है तो मैं आर्ट की वीडियो लगाती हूँ। कभी कभार वैकेशन होते हैं उसमें मैं मेहंदी की वीडियोस देखती हूँ।
6: और कोई देखता है? क्या देखते हो?
3: किरण करते हैं,
6: साइंस के एक्सपेरिमेंट्स।
5: और मैं टेबल पढ़ने के लिए टेबल लगाती हूँ वीडियो।
6: वाह, बहुत अच्छे एजुकेशन के देखते हो रील्स। और अनुष्का, आप?
2: मैंने तो अभी कोई ड्राइंग अगर टीचर ने बोला है वो हमको नहीं आते तो हम वो फोन में देख के थोड़ा बना लेते हैं।
6: मतलब मोबाइल से सीखने की भी चीजें दिखती है ना?
0: हाँ। अच्छा, कितनी देर तक फोन चलाते हो?
1: मैं तो सिर्फ आधा घंटा चलाती हूँ।
0: आधा घंटा चलाते हो? आधे घंटे तक फोन में रील्स ही देखते हो बस?
1: नहीं, हम कभी कभी वीडियोस देखते, कभी कभी एजुकेशनल वीडियोस और बहुत कुछ।
0: अच्छा, आधे घंटे से ज्यादा भी हो जाता होगा कभी कभी तो?
1: कभी कभी 45 हो जाता है, फिर बाद में मम्मी डांटती है मुझे।
0: अच्छा, और कितने कितने टाइम तक देखते हो सब लोग?
2: और मैं तो बस 5 मिनट मोबाइल देखती हूँ।
0: बस 5 मिनट में हो जाता है?
2: हाँ।
0: अच्छा, और आप लोग?
5: मैं 8 घंटे के लिए।
0: 8 घंटे के लिए? 8 घंटे क्या देखते हो 8 घंटे में?
5: रील्स।
0: बस रील्स ही देखते जाते हो 8 घंटे तक? नींद नहीं आती? अरे, इतना फोन चलाते हो आप लोग?
5: मैं 1 घंटा चलाती हूँ।
0: 1 घंटा?
5: 1 घंटे में मैं ड्राइंग ही देखती हूँ और कुछ रीले देखती
0: हूँ। और आप?
2: मैं आधा घंटा।
0: आधा घंटा? हाँ, अच्छी बात है वैसे, पर ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए, फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं।
1: वो तो बराबर है, पर आधे घंटे से एक दिन में क्या होने वाला है?
0: ऐसे तो आप डेली चलाते होगे।
1: डेली मतलब जब स्कूल से आते कभी कभी लेट हो जाते तो फिर पढ़ाई करते, फिर रात को जितनी टाइम मिलता है उतनी टाइम चला लेते हैं।
6: थोड़ा मोबाइल देखना तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा नहीं देखना चाहिए। कौन कौन देखता है ज्यादा?
1: मैं तो आधे घंटे से ऊपर नहीं देखती, कभी कभी हो जाता है।
6: कभी कभी
1: मतलब कभी कभी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर मम्मी बहुत डांटती है।
6: सिर्फ 5 मिनट में डांट?
1: फिर।
6: और अमिक्षा, और कितना देखती है?
2: मैं तो बस अगर एजुकेशनल की वीडियो देख रही हूँ तो मैं बस 5 मिनट और एक्स्ट्रा करती हूँ।
6: अच्छा, तो एजुकेशनल के अलावा और क्या क्या देखते हो?
1: एजुकेशन के अलावा ऐसे बोले तो फिर हम कभी कभी गूगल पे सर्च करते कोई चीजें, कोई अगर क्वेश्चन होता है तो फिर हम गूगल पे सर्च कर लेते।
6: रील्स?
1: रील्स में नहीं, मतलब अगर सपोज मेरे को अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो चैप्टर मैम ने सिखाया नहीं और मुझे उसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं गूगल में सर्च कर लेती हूँ।
6: और अमिक्षा, आप?
2: एजुकेशनल के अलावा अगर हमारे स्कूल में अगर कोई होमवर्क दिया है तो मैं वो गूगल में से कर लेती हूँ।
6: और अनुष्का, आप?
3: हमको कोई अगर चीज रियल में वो होती है कि नहीं, अगर उनको विश्वास नहीं होता तो हम गूगल से पूछते।
6: अच्छा, मतलब न्यूज़ वगैरह। और आप लोग?
5: मैं कुछ वगैरह वगैरह देखती हूँ, ड्राइंग का, वैसे कार्टून का, जो कुछ बनाता है ना सीमेंट से, कुछ मिट्टी से, वो देखती हूँ।
6: और आप?
5: मैं जैसे कि
7: रील्स देखती हूँ।
6: रील्स में क्या देखते हो?
7: क्या क्या? रील्स में वीर का कार्टून रील्स।
0: अच्छा, आप लोग फनी वीडियोस भी देखते होंगे?
8: हाँ।
0: फनी वीडियोस किसको अच्छे लगते हैं?
8: मुझे।
0: सबको अच्छे लगते हैं फनी वीडियोस?
8: हाँ।
0: अच्छा बताओ, फनी वीडियोस कैसे देखते हो?
8: फनी वीडियोस में ना मैं आईयूपीयू का चैनल देखती हूँ ज्यादातर। उसमें ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं।
0: अच्छा, आपको चैलेंजेस देखना पसंद है?
8: हाँ, ऑफ कोर्स। वो ट्विन टेलीपैथी चैलेंज करते हैं और बहुत कुछ।
0: अच्छा, तो आपको तो चैलेंज कोई दे तो मजा आएगा करने में।
8: हाँ जरूर। वो तो एक्शन वाले चैलेंज भी मैंने देखा हुआ है, उसमें सब जन एक्शन करते हैं और वो एक्शन सेम होनी चाहिए भाई बहन की।
0: अच्छा, यानी कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है।
8: हाँ।
0: और आपको?
2: मुझे हेयर स्टाइल देखना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको फनी चीजें नहीं पसंद?
2: पसंद है।
0: अच्छा, मतलब आप हेयर स्टाइल, एजुकेशन वगैरह ऐसा ही देखते हैं?
2: हाँ।
0: आप?
3: वो तो जो रील्स होती है उसके अंदर जो कैट होती है उसको पता नहीं कैमरे से कैसे डांस करती है वो कैट, उसको बहुत बार बार देखने में मजा आता है।
0: अच्छा, आपको वो कैट देखने में मजा आता है। आपको कैट्स पसंद है? अच्छा,
3: कैट डॉग।

0: लोड आ जाता है तो उस टाइम में मोबाइल देखना बिल्कुल नहीं होता है।
1: टाइम निकालते हो उसके लिए?
0: नहीं मिलता है।
1: और अमीक्षा आप?
2: मैं तो एग्जाम के टाइम पे फोन ही नहीं चलाती।
1: किसी के मम्मी पापा मना करते फोन देखने का?
3: मेरे पापा और मम्मी मना करते हैं और मेरी नानी मना।
1: तब भी आप देखते हो?
3: हाँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ।
1: कोई डांटता है किसी को कभी?
3: मेरे पापा डांटते हैं।
1: फिर भी देखते हो?
3: हाँ,
1: 8 घंटे?
3: नहीं 8 घंटे नहीं, थोड़ा सा देख लेती।
1: और आप?
4: मेरे पापा कुछ नहीं कहते, ऐसे ही मोबाइल दे देते हैं और मम्मी चिल्ला चिल्ला के मारती है।
1: तो 8 घंटे मोबाइल देखते हो, तो स्कूल कब जाते हो?
4: 7 बजे।
5: अच्छा एक बात बताओ, किस किस को लगता है मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है? किसी को नहीं लगता मोबाइल इम्पोर्टेंट है?
6: बिल्कुल नहीं,
7: मैं बिल्कुल नहीं,
8: मुझे लगता।
5: अच्छा क्यों लगता है कि मोबाइल इम्पोर्टेंट है?
3: हमको कुछ क्वेश्चन जो स्कूल में से मिलते हैं ना, तो हमको नहीं आते, तो उसमें फोन में रिसर्च करके हम लिख सकते हैं उसमें।
5: लेकिन वो तो स्कूल में टीचर भी बता सकते हैं।
3: हाँ कभी कभी टीचर नहीं पढ़ाती तो हमारा रह जाता है, तो हम देख लेते हैं।
5: अच्छा आप हमेशा
2: फोन में और भी एजुकेशन की वीडियोस होती है, जैसे कि नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए एजुकेशन की वो होती है, वीडियोस होती है, उससे देख के हम लर्न भी कर सकते हैं।
6: पर फोन में अगर कभी कभी हम ऐसे ही चलाते बैठे तो 2-3 घंटे ऐसे आराम से निकल जाते हैं, इसलिए फोन कभी भी उसको टाइमर सेट करके चलाना चाहिए। और जब एग्जाम होती है, कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है, तब पहले फोन चला लूँ फिर बाद में कर लूँगा, वैसे करना नहीं चाहिए।
5: अनुष्का आपको नहीं लगता फोन इम्पोर्टेंट है?
9: लगता है।
5: क्यों लगता है?
9: क्योंकि उसमें कुछ जो हमको नहीं आता है वो बता देते हैं।
5: अच्छा इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है फोन। अच्छा तो यानी कि फोन होना चाहिए सबके पास।
1: यस। और किसको लगता है फोन हार्मफुल भी है?
0: मुझे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोन चलाते चलाते आराम से टाइम बीत जाता है, इसलिए आपको टाइमर सेट करके चलाना चाहिए।
1: हार्मफुल क्यों है?
0: हार्मफुल इसलिए क्योंकि अगर हम ज्यादा देर फोन चलाएंगे तो पहले बात तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी पढ़ाई नहीं होगी और हमारी आंखें भी खराब होगी, उसको चश्मा भी लग सकता है।
1: हाँ अनुष्का आप बताओ।
9: फोन चलाने से ज्यादा आंख तो खराब ही होती है, साथ में वो जो ज्यादा चलाते हैं तो आंख में कुछ धुंधला दिखता है।
1: हाँ और आप?
3: मैं कभी कभी ज्यादा देख लेती हूँ, इसलिए मुझे कुछ यहाँ पे डार्क सर्कल हो जाते हैं आंखें नीचे।
1: अमीषा आप कहना चाहते हैं?
2: हाँ, अगर हम फोन चलाते हैं ना तो हमारी आंखें दर्द होती है और हम आंखों को मसलना चालू करते हैं और मसलते तो हमें चश्मा लगता है।
1: और फोन से एडिक्शन नहीं होता?
0: हाँ जरूर होता है, बहुत सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा ऐसे ही फोन दे देते और वो चलाते बैठते, शाम बैठने के लिए मम्मी पापा फोन देते हैं और फिर क्या, वो चलाते हैं, उनको एडिक्शन हो जाता है। मेरे भाई को भी गेम की बहुत एडिक्शन है।
1: तो उसको दूर कैसे कर सकते, कोई आइडिया है?
0: हाँ है ना, जरूर मम्मी पापा की मतलब फिंगरप्रिंट जो होती है फोन का लॉक करने के लिए, वो वैसे कर देते हैं, इससे वजह से उसका कंट्रोल थोड़ा बहुत रहता है। अगर उसका कंट्रोल वैसे नहीं रहता तो फिर वो दिन भर फोन चलाता, 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे से वो चलाते बैठता अगर उसका कंट्रोल नहीं होता, उसमें मम्मी का अगर फिंगरप्रिंट नहीं होगा।
1: लेकिन आजकल के बच्चे तो कुछ ऐसे भी है कि उनसे मोबाइल ले लो तो भड़क जाते हैं।
0: हाँ ऑफकोर्स बहुत भड़कते हैं, मेरा भाई भी तो भड़कता है, वो मम्मी पापा भी नहीं भड़कता ऐसे, मम्मी वो बोलता है मम्मी दो ना मुझे 2 मिनट देख रहे हैं, भड़क जाता है। और उसकी वजह से उसका जो छोटा भाई है 2 साल का, उसको भी फिर लगता है कि भैया फोन में देख रहा है, फिर वो क्या देख रहा है, तो मुझे भी देखना है, वो भी फिर 2 मिनट मांगता है मम्मी से।
3: और मेरा भाई दिन भर गेम खेलता है फोन में, उनसे मम्मी ले लेती है ना तो ऐसे जीत करता है, तो मुझे दे दो क्यों लिया।
1: तो आप उसे समझाते नहीं हो?
3: नहीं, मेरी मम्मी इसको कहती है ते मारूंगी, सीधा बैठ जा, पढ़ाई करने बैठ जा, एग्जाम आ रहे हैं।
9: मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं है, मेरी मम्मी जब बाहर जाती है तो वो चलाता है, फिर मेरी मम्मी आती है तो अंदर उसको कुछ नहीं बोलती, अगर कोई ज्यादा देर हो जाती है तो चिल्लाती है पर मारती नहीं मेरी मम्मी।
2: कोई कोई बच्चे तो अपनी मम्मी को मारना चालू कर देते हैं कि मुझे फोन दो नहीं तो मैं मारूंगा।
1: हाँ और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद को ही हार्म करना शुरू कर देते हैं।
0: हाँ वो कभी कभी ऐसे चिड़चिड़ हो जाते फिर ऐसे खुद को ऐसे सिर पे मारने लगते जो छोटे बच्चे होते हैं।
1: हाँ लेकिन फोन को लॉक कर देना तो सल्यूशन नहीं है ना,
0: फिर वो चिड़चिड़ करेगी ऐसा हो सकता है, पर मेरी बुआ तो वैसे ही करती है, या फिर उनके एडिक्शन ये करने के लिए उनको ऐसे कभी कभी फोन के बिना रखने की उनको कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि फोन दूर ही रहे। वो जो बच्चे स्टडी करते थे उनके लिए एक मतलब उस पे आप टाइमर सेट कर दोगे ना तो 99 आवर्स वो फोन लॉक रहेगा, कितना टाइमर सेट करोगे उतना लॉक रहेगा। एक यूट्यूबर का वैसा ही हुआ था, उसे उस पे लॉक कर दिया, 99 आवर्स लॉक था और उसका पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट बहुत हो गया और उसने टॉप भी किया।
1: और आपका क्या ख्याल है?
4: जब मैं ज़्यादा देर के लिए मोबाइल देखती हूँ तो

0: दिल के लिए देखने देते
1: और देर के लिए देखने देते, बंद नहीं करते मोबाइल आपका।
0: एक दीदी थे उनने लॉक कर दिया था,
1: फिर आपने क्या किया?
0: मैंने छुपके से पासवर्ड देख लिया।
1: लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, फोन से एडिक्शन होता है।
2: अच्छा, कौन कौन फोन के लिए जिद करता है कि मुझे फोन देखना है?
3: मैं तो नहीं करती।
2: नहीं करते? नहीं, फोन मिले तो चलेगा, है ना ऐसा?
3: मतलब
2: आपको फोन नहीं मिले फिर भी आप रह सकते हो फोन के बिना?
3: हाँ, वैसे सब वाईफाई नहीं होता तभी कर सकते हैं। मतलब जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि फोन नहीं तो आप रह सकते हैं, और फिर कभी कभी मिलता है तो फिर हम थोड़ी देर देख लेते हैं, पर आधे घंटे से ऊपर नहीं जाता।
4: और अगर हमें फोन नहीं मिलता तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं या फिर और भी कोई चीजें कर सकते
2: हैं।
4: या फिर हम गेम्स खेल सकते हैं।
2: हाँ, और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। हाँ, फोन नहीं होगा फिर भी चलेगा क्योंकि हमारे पास कितने सारे गेम्स होते हैं। अच्छा, फोन में तो गेम्स भी खेलते होगे?
3: हाँ, फोन में गेम्स खेलते, पर नॉर्मली फोन में लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो के लिए हम बोर्ड लूडो खरीद सकते हैं, उस पर खेल सकते हैं। बिजनेस खेलते हैं तो बिजनेस हम घर पे भी खेल सकते हैं। जो भी चीज़ हम फोन में खेलते हैं ना, वो हम घर पे भी खेल सकते हैं।
2: और आप लोग भी फोन में गेम्स खेलते होंगे? हाँ, कौन कौन से गेम्स खेलते हो?
5: हम कार रेसिंग खेलते
2: हैं। हाँ, कार रेसिंग खेलते हो आप?
5: मैं जो बॉल आते है ना रंगीन, उसको वो कलर होता है ना, तो ब्लू वाला, तो ब्लू अगर बांधने का।
2: अच्छा, और आप?
0: मेरे को मेकअप सेट पसंद है इसलिए मेकअप वाला गेम खेलती हूं।
2: अच्छा, मेकअप वाला गेम खेलते हो? किसका मेकअप करते हो गेम में?
0: डॉल का।
2: अच्छा, डॉल का मेकअप करते हो? डॉल बहुत पसंद है आपको? अच्छा, बहुत सुंदर मेकअप करते होगे फिर तो। अच्छा, तो फिर हमारा भी मेकअप करना, ठीक है? अच्छा, तो यानी कि सबको गेम्स भी पसंद है फ़ोन में, और सब लोग एजुकेशन की वीडियोस भी देखते हैं। और क्या क्या पसंद है फ़ोन में आप लोगों को?
3: और ज़्यादा कुछ नहीं, पर सिर्फ थोड़ी देर यही देखते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं।
4: और मुझे ना, अगर हमारे पास कोई टाइम होता है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर सकते हैं।
2: अच्छा, फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं फ़ोन पे?
4: अगर हम बोर हो रहे हो तो।
2: अच्छा, आप लोग भी फ्रेंड से बात करते हैं?
5: मैं, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड है तो उसके पास से मैंने इसका नंबर ले लिया और फोन पे बात करती हूँ अभी।
2: अच्छा, आप भी फ्रेंड से बात करती हो?
0: बाहर मैं अपनी फ्रेंड से रोज जाती हूँ, वहीं से मैं उससे मिलती हूँ, तो उसकी मम्मी क्या कि नंबर लेती तो मैं उससे बात करती हूँ।
2: अच्छा, आप भी फ्रेंड से बात करते हो?
6: नहीं, हम फोन पे नहीं करते, स्कूल में या फिर कभी घर पे आते हैं तब करते।
2: अच्छा, फोन पे नहीं करते हो बात?
3: हमने सुना है कि थोड़े बच्चे ना फोन पे ऐसे नंबर ले लेते, कॉल करके पूछते कि हाँ आज का होमवर्क क्या है, फिर वो होमवर्क ले लेते। कुछ से तो करते ना, फिर एग्जाम के टाइम मुश्किल होता है।
1: और आप लोग फोन के बिना कितनी देर रह सकते हो ये बताओ, अपना अपना बताओ आप।
0: मैं 4 घंटे।
1: सिर्फ 4 घंटे रह सकते हो, बाकी और नहीं रह पाओगे? और आप?
5: मैं 10 दिन कर नहीं देखती हूँ। मैं
1: नहीं देखते हो?
5: नहीं, देखती नहीं हूँ, कभी कभी देखती हूँ फिर नहीं देखती हूँ।
1: और आप अनुष्का?
7: मैं तो 1 महीने तक भी नहीं देख सकती।
1: इतनी देर तक रोक सकते हो फोन को? और
7: टीवी तो है ही ना। टीवी तो है ही ना।
1: और अमीक्षा आप?
4: मैं तो 2 महीने तक रह सकती हूँ
1: बिना फोन के।
4: हाँ, क्योंकि मेरी नानी अगर कहीं जाती है तो अगर 2 महीने के लिए जाती है तो मैं रह सकती हूँ।
1: और आप?
3: मैं 2 महीने के आसपास। वैसे
1: तो आप सिर्फ 4 घंटे के लिए रह सकते हो, क्यों? आपको मोबाइल में इतना क्या पसंद है?
0: वीर कार्टून पसंद है।
2: अच्छा, आप वीर कार्टून देखे बगैर नहीं रह सकते, इसका मतलब इतना पसंद है आपको? हाँ। अच्छा, वीर करता क्या है?
0: वो वीर रोबोट है, तो अच्छा। उसके बाद सारे सूट्स है, एक का नाम है चोर है, एक का नाम है मैड मैक्स। वही एक रोबोट बना के वीर को खत्म करना चाहता है, लेकिन वीर उससे जीत जाता है।
2: अच्छा, आपको वीर को जीतते हुए देखना पसंद है? अच्छा, हम आपको वीर बनाते तो आप उड़ोगे अच्छे वीर के तरह, एक्शन करोगे? अच्छा, अच्छा लगेगा।
0: हाँ।
1: और क्या क्या पसंद है सबको फोन में?
3: बस इतना ही, जो भी हमारे एजुकेशन के वीडियोस होते हैं। पर मुझे तो गेम्स खेलना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि गेम से मोबाइल कभी कभी गर्म भी हो जाता है, और फिर गेम खेलते खेलते इतना एडिक्शन उसमें ज्यादा होता है गेम में।
5: मैं फोन में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, कभी कभी गाने अच्छे लगते हैं मुझे कभी।
2: अच्छा, गाने भी अच्छे लगते हैं, आप लोग गाने भी सुनते हैं?
3: हाँ।
2: अच्छा, कौन कौन से गाने सुनते हैं?
3: मैं कभी ना वो यमुना जी का, वो गंगा का, वो राधा रानी का जो गाना है ना, वो वाला देखती हूँ, वो बहुत अच्छा है।
2: अच्छा, आपको गाने सुनने से शांति मिलती है?
5: यस।
2: अच्छा, अच्छा लगता है गाना सुनना?
3: हाँ ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, और मेडिटेशन के टाइम पे भी हम सॉन्ग्स लगाते हैं, जो भी हमारे मेडिटेशन के सॉन्ग्स होते हैं उसमें भी अच्छे से मेडिटेशन होता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है।
1: अच्छा तो आप सभी बताइए हमारे श्रोताओं को कि फोन से बचने के लिए कौन कौन से टिप्स दे सकते हैं आप लोग।
3: पहले मैंने जो बताया था कि वो फोन का वो लॉक करने का एक आता है, वो 99 आवर्स की आगे लॉक कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए लॉक कर सकते हैं, वो आप बाय कर सकते हो, वो कभी भी नहीं खोला, चाहे आप उसको फोड़ो कुछ भी करो।
1: और अमित साहब,
4: हम अगर फोन ज्यादा ना चलाए तो हमें एडिक्शन नहीं हो सकता, हमारी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे लग सकता।
6: कोई फोन ज्यादा देखता है तो उनको कोई ऐसी वीडियो दिखानी चाहिए जिससे वो डर जाए और फोन ना चलाए, जैसे कि फोन चलाने में से आंखों में क्या हो जाता है ऐसे।
1: हाँ अच्छा आइडिया है। और आप?
5: मैं तो से वो लॉक कर देते हैं, जो पासवर्ड होता है ना उसमें उंगली लगाना फिर पासवर्ड ऐसे वो करना, तो वो ऐसे कुछ बता के नहीं है बच्चों को, ऐसे चुपके से लगा देते हैं,
1: मतलब पासवर्ड लगा देना।
5: हाँ पासवर्ड लगा देते। पर
0: मेरे को तो डर नहीं लगता फोन देखने से।
1: नहीं मतलब फोन ना चलाने के लिए कौन सी टिप्स कर सकते हैं हम लोग?
0: मैं तो अगर मेरा मन ना हो तो मैं नहीं चलाती।
1: अच्छा मन ना हो तो चलाने का, ना हो तो नहीं चलाने का।
4: ऐसे तो मन हमारा पूरे दिन होगा तो हम क्या पूरे दिन वो फोन चलाएंगे।
1: तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को पहले बच्चों के साथ खेले, क्या पता बच्चे लोनलीनेस में फोन चलाते हो।
3: और पहले से जो बच्चे छोटे होते हैं उनको फोन से दूर ही रखना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए कि फोन में क्या होता है।
1: हाँ, फिर बड़े होते होते एडिक्शन हो जाता है।
3: पर बड़े होने के बाद हम उनको बता सकते हैं कि फोन में क्या होता है, फिर उससे वो जो हम उनको बताएंगे कि बाद में फोन में इतना ही सर्च करना है, इतना ही करना है, वो कर सकते हैं। या फिर सपोज हम यूट्यूब को कैलकुलेटर से बदल सकते हैं, अगर वो यूट्यूब को खोले तो वो कैलकुलेटर आएगा, वैसे होता है भी है।
1: अब तो गुड बाय करने का समय आ गया है। आप लोग फोन देखते हो क्या? फोन देखते हो तो थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी चीजें भी आती है और बुरी चीजें भी आती है। आज के एपिसोड के लिए लेते हैं हम इजाजत, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से। इस बार तो दीदी नहीं आई है, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर आएगी दीदी। आज के एपिसोड में नहीं मिले, अगले एपिसोड में दीदी से भी बातें करेंगे। फिलहाल

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो, ठीक है?
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने हमें बार बार चेताया है कि हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें विचार शक्ति इसलिए दी है कि हम उसका यथा योग्य इस्तेमाल करें, इसलिए नहीं कि जिस प्रकार पशुओं को चाहे जो कोई हांक ले जाता है, उसी प्रकार कोई भी जोर शोर के साथ कुछ कहने लगे और हम चुपचाप उसके पीछे हो लें। इसीलिए हमें अपने अतीत और वर्तमान का सही मूल्यांकन कर उन्हीं के आधार पे भविष्य की योजना बनानी चाहिए। हमें केवल भावनाओं के द्वारा परिचालित नहीं होना चाहिए।
1: स्वामी जी के अनुसार सबसे आवश्यक बात है चरित्र। चरित्र के बिना कोई भी महान कार्य साध्य नहीं होगा। भारत का उत्थान चरित्रवान भारतीयों के द्वारा ही संभव होगा। इसके लिए हमें कई बलिदान भी देने होंगे। इस प्रकार के कार्यों के अध्ययन के लिए विवेकानंद साहित्य अत्यंत मार्गदर्शक सिद्ध होगा। वो हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय करा देगा। वे कहते हैं,
2: तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। ब्राह्मण इतर जातियों से मैं चाहता हूं ठहरो, जल्दी मत करो। ब्राह्मणों से लड़ने का मौका मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हो। समाचार पत्रों से कहा, और इन सब व्यर्थ वाद विवादों और झगड़ों में शक्ति क्षय न करके अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते न रहकर जो कि पाप है उससे लड़े। ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो, बस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा।
0: उन्होंने हमें बार बार फटकारा है, मुर्दा कहा है, ममी कहा है, ताकि हम उज्जीवित हो उठें।
2: तुम ऊंची जात वाले क्या जीवित हो? तुम लोग हो 10,000 वर्ष पीछे के ममी, जिन्हें सचल शमशान कहकर तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने घृणा की है। भारत में जो कुछ वर्तमान जीवन है वो उन्हीं में है, और सचल शमशान हो तुम लोग। तुम लोगों की अस्थिमय अंगुलियों में पूर्व पुरुषों के संचित कुछ अमूल्य रत्नांगुलिये हैं। तुम्हारे दुर्गंधित शरीरों को भेंटती हुई पूर्व काल की बहुत सी रत्न पेटिकाएं सुरक्षित हैं। उन्हें उत्तराधिकारियों को दो, जितने शीघ्र दे सको दे दो। तुम शून्य में विलीन हो जाओ और फिर एक नवीन भारत निकल पड़े।
1: स्वामी जी भविष्य दृष्टा थे। दलित शीघ्र ही जागकर अपना हक मांगेंगे, ये उन्होंने समझ लिया था।
2: ये निम्न श्रेणी के लोग जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर होने वाले तुम लोगों के अत्याचारों को समझ लेंगे, तब उनकी फूंक से ही तुम लोग उड़ जाओगे।

0: उन्हीं ने तुम्हें सभ्य बनाया है, उस समय वे ही सब कुछ मिटा देंगे। इसलिए कहता हूं, इन सब निम्न जाति के लोगों को विद्या दान, ज्ञान दान देकर इन्हें नींद से जगाओ, वे अवश्य जागेंगे। तब वे भी तुम लोगों के लिए उपकरों को नहीं भूलेंगे और तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हर एक अभिजात्य वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वो आप ही खोदे और जितना शीघ्र इसे कर सके उतना ही अच्छा है। जितनी ही वो देर करेगा उतनी ही वो सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी भयंकर होगी। अतः ये ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करे।
1: उन्हें स्वार्थ परता से घृणा थी। स्वार्थी लोगों को स्वामी जी बार बार चेताया करते थे कि वे निस्वार्थ बने, सबको साथ लेकर आगे बढ़े।
0: जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता, वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को स्वयं की तरह देखना, क्या यह वाक्य केवल पोथी में निबद्ध रहने के लिए है? लोग गरीबों को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते, वे फिर मुक्ति क्या दे सकते हैं? दूसरों के श्वास प्रश्वासों से जो अपवित्र बन जाते हैं, वे फिर दूसरों को क्या पवित्र बना सकते हैं? अस्पृश्यता एक प्रकार की मानसिक व्याधि है, उससे सावधान रहना।
2: सभी भारतीय हमारे अपने हैं, दलितों को अपनत्व चाहिए, उन्हें भी जीने का हक चाहिए।
0: उठो और अपना पौरुष प्रकट करो, अपना ब्राह्मणत्व दीप्त करो, प्रभु भाव से नहीं, अंधविश्वासों और पूर्व पश्चिम के प्रपंचों के सहारे पनपने वाले विकृत घातक अहम भाव से नहीं, बल्कि सेवक की भावना के साथ दूसरों को ऊपर उठाकर। धन विद्या या ज्ञान को प्राप्त करने में समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा रहनी चाहिए। सभी विषयों में स्वाधीनता यानी मुक्ति की ओर अग्रसर होना ही पुरुषार्थ है। जो सामाजिक नियम इस स्वाधीनता के स्फुरण में बाधा डालते हैं वे ही अहित कर्म हैं, और ऐसा करना चाहिए जिससे वे जल्द नाश हो जाएं। जिन नियमों के द्वारा सब जीव स्वाधीनता की ओर बढ़ सकें उन्हीं की पुष्टि करनी चाहिए।
1: पहले श्रेष्ठ वस्तु का दान करो, बचे हुए को अपना कहो, गण देवता की पूजा ही सच्ची पूजा है।
0: प्रत्येक वस्तु का अग्रांश दीनों को देना चाहिए, अवशिष्ट भाग पर ही हमारा अधिकार है। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, उसकी पूजा करो। वर्शिप ही इस संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थक है, अंग्रेजी के किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े, और जिस विराट को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही ना करें।
2: स्वामी जी कहते हैं हर जीव में ईश्वर का अंश है, उसकी अवहेलना मत करो। मानव देह ही सबसे सुंदर सृष्टि है, उसी में ईश्वर का वास है।
0: अतएव हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में व्यधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। यदि तुम अपने भाई मनुष्य की, नर ईश्वर की उपासना नहीं करते तो उस ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकोगे जो अव्यक्त है। किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है।
1: पद दलितों में ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रूप विद्यमान है। प्रेम, दया, भक्ति और सेवा यही बीज मंत्र हैं।
0: अपने तन, मन और वाणी को जगद्धिताय अर्पित करो। तुमने पढ़ा है, मात्र देव भव, पित्र देवो भव। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो। परंतु मैं कहता हूं, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। मैं अच्छी तरह जानता हूं, भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपनी श्रेष्ठ संतानों की बलि चाहती है। संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है।
2: उन्हें युवकों से बहुत आशा थी। भविष्य का भारत गढ़ने के लिए उन्होंने उन्हीं का आह्वान किया था।
1: अपने को दुर्बल मत समझो, मत सोचो हम क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो।
0: गांव गांव तथा घर घर में जाकर लोक हित एवं ऐसे कार्यों में आत्मनियोग करो जिससे कि जगत का कल्याण हो सके। चाहे अपने को नरक में क्यों ना जाना पड़े, परंतु दूसरों की मुक्ति हो। अरे, मृत्यु जब अवश्यम भावी है तो ईंट पत्थरों की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना क्या अच्छा नहीं। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह कासा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी ये देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी।
2: निस्वार्थ सेवा करना यही मूल मंत्र है। भगवान को ढूंढ रहे हो? आओ मैं बताता हूं वो कहां है।
0: केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वो भी एक बुद्ध बन जाएगा, और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को कहां ढूंढने चले हो? ये सब गरीब, दुखी, निर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं है? इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो।
1: अपना धर्म समझकर कर्म करो, निष्काम कर्म में ही मुक्ति है।
0: हम धन्य हैं जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनके लिए कर्म करें, उनको सहायता देने के लिए नहीं। इस सहायता शब्द को मन से सदा के लिए निकाल दो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। ये सोचना कि तुम सहायता कर सकते हो महा अधर्म है, घोर ईश निंदा है। केवल ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनों की मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम है, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। अपने को भूल जाओ, आस्तिक हो या नास्तिक, प्रत्येक के लिए यही प्रथम पाठ है। जब तुम सुख की कामना समाज के लिए त्याग सकोगे, तब तुम भगवान को पा सकोगे।
2: विवेकानंद जी ने लिखा है, क्या तुम अंधेरे में भटक रहे हो? प्रार्थना करो, प्रकाश दिख जाएगा।
0: आओ हम सब प्रार्थना करें। हे कृपामय ज्योति, पथ प्रदर्शन करो और अंधकार में से एक किरण दिखाई देगी। पथ प्रदर्शक कोई हाथ आगे बढ़ जाएगा। जो दारिद्र पुरोहित प्रपंच तथा प्रबलों के अत्याचारों से पीड़ित हैं, उन भारत के करोड़ों पद दलितों के लिए प्रत्येक आदमी दिन रात प्रार्थना करें। मैं धनवान और उच्च श्रेणी की अपेक्षा उन पीड़ितों को ही धर्म का उपदेश देना पसंद करता हूं। मैं न कोई तत्व जिज्ञासु हूं, न दार्शनिक हूं और न सिद्ध पुरुष हूं। मैं निर्धन हूं और निर्धनों से प्रेम करता हूं। ये 20 करोड़ नर नारी जो सदा गरीबी और मूर्खता के दलदल में फंसे हैं, उनके लिए किसका हृदय रोता है? कौन उनके दुख में दुखी है? ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं, ये ही तुम्हारे इष्ट बने। निरंतर इन्हीं के लिए सोचो, इन्हीं के लिए काम करो, इन्हीं के लिए निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएगा।
1: संवेदनशील बनो, दूसरों के दुख के बारे में सोचो। अपना दुख भुलाने के लिए दूसरे के दुखों को दूर करने की कोशिश करो।
0: बड़े काम करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला है हृदय की अनुभव शक्ति। क्या तुम अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम ये सब सोचकर बेचैन हो जाते? क्या इस भावना ने तुम्हें निद्राहीन कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया? क्या ईश्वर की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र, कलत्र, धन संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी सुध विसर गए हो? क्या तुमने ऐसा किया है? यदि हां तो जानो, तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हां, केवल पहली ही सीढ़ी पर। क्या इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या लोगों की भर्त्सना ना कर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेश वासियों को उनकी इस जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? क्या उनके दुखों को कम करने के लिए 2 सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है?
2: थको मत, हारो मत, बैठो मत, चलते चलो। कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो।
0: किंतु इतने से ही पूरा ना होगा। क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघ कर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? फिर भी तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे? क्या तुम में ऐसी दृढ़ता है? यदि तुम में ये 3 बातें हैं, तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है, जिससे उद्देश्य एवं लक्ष्य कार्य में परिणित हो जाए, उसी के लिए प्रयत्न करो। मेरे साहसी महान सदाशय बच्चों, काम में जी जान से लग जाओ। नाम, यश अथवा अन्य तुच्छ विषयों के लिए पीछे मत देखो। स्वार्थ को बिल्कुल त्याग दो और कार्य करो। आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य संपन्न होगा।
1: पुरुषार्थ की जरूरत है। बाधाएं तो आएंगी ही, उसे लांघना ही पुरुषार्थ है। स्वामी जी लिखते हैं,
0: मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूं वो है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो। बल, पुरुषार्थ, शास्त्र वीर्य और ब्रह्म तेज, आज्ञा पालन के गुण का अनुशीलन करो, लेकिन अपने धर्म विश्वास को न खो। गुरुजनों के अधीन हुए बिना कभी भी शक्ति केंद्रीभूत नहीं हो सकती, और बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किए बिना कोई महान कार्य नहीं हो सकता। जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो, सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर सफल हम अवश्य होंगे। इस तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम आ पड़ा है।
2: स्वामी जी हमेशा आशा की वाणी सुनाते रहे, निराशा ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं।
0: नीति परायण तथा साहसी बनो, अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो, प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मत मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथा पच्ची मत करो, कायर लोग ही पाप आचरण करते हैं, वीर पुरुष कभी पाप अनुष्ठान नहीं करते, यहां तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। इन दो चीजों से बचे रहना, क्षमता प्रियता और ईर्ष्या, सदा आत्मविश्वास का अभ्यास करना।
1: आशा, आशा और आशा, अच्छे की आशा, भारत को गौरवान्वित देखने की आशा, इसी आशा के सहारे वे कार्य करते गए। उन्होंने कहा था,
0: फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निस्तृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य ही होगी और साधारण तथा गरीब लोग सुखी होंगे। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वो जड़ की शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, वो भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है, वो केवल सो रही है। अतः यदि भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल करना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की, शक्ति संग्रह की, और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने।
2: स्वामी जी को भारत की भावी पीढ़ियों पर विश्वास था, उन्होंने उन्हें बार बार उसी अग्नि मंत्र में दीक्षित करना चाहा है, उठो, जागो, जागो।
0: पहले आदमी, मनुष्य उत्पन्न करो, हमें अभी मनुष्यों की आवश्यकता है, और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं। उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर और शाम का समय है। आप सभी अब एक चेंज ओवर माना एक समय के साथ साथ पूरे दिन में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त मिलता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। अपने मूड को अगर थोड़ा थोड़ा डल है तो रिफ्रेश कीजिए और एनर्जी के साथ भरपूर हो जाइए। तो सबसे पहले तो आप अगर थके हारे से महसूस कर रहे हैं तो बढ़िया सा जो है हाथ मुंह धो के पानी पीजिए एक गिलास। देखिए आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। और फिर रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा तेज करें और फिर मैसेज करके मुझे बताइए कि आप कैसे फील कर रहे हैं। तो आइए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं, सुनिए, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो काम हो जाएगा, है ना। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज हमारे साथ स्टूडियो

0: जो में काफी मेहमान जो है पुणे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। अभी मेरे साथ हैं गणपत राव बालवाड़कर। तो बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देखकर। और आप एक ट्रस्टी हैं, फाउंडर मेंबर हैं, एक स्कूल चलाते हैं पुणे के बालेवाड़ी में, और मुझे लगता है कि ये स्कूल आपका बहुत पुराना है, जहाँ पर 5000 से अधिक बच्चे जो हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी, और 350 से अधिक जो है स्टाफ है, और इन सभी को मैनेज करते हुए आप जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको और बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप?
1: मजे में।
0: जी जी जी, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी, गणपत महतो बालोडकर, बालेवाड़ी, माजी सरपंच।
0: जी जी जी,
1: प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राठणेला जे केंद्र चालवतात योगिता दीदी,
0: जी जी,
1: त्यांच्या ओळखीमुळं माउंट आबू या ठिकाणी 7 दिवस येण्याचा मी प्रयत्न केलेला।
0: अरे वा,
1: इथं आल्यानंतर असं वाटलं की आपण फार वेगळ्या ठिकाणी आलोय, अतिशय चांगल्या ठिकाणी आलोय, इथं खूप माहिती चांगली, याच्या अगोदर यायला पाहिजे असं वाटायला लागले, थोडं लेट झालं, हरकत नाही। मी श्री खंडेरा प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था बालेवाडी संस्थापक अध्यक्ष आहे। मी पहिली ते चौथी प्रथम गावातच शाळा शिकलो, आणि चौथी नंतर 3 वर्ष शाळा सोडून देऊन शेती केली।
0: अच्छा।
1: हो, शेती करताना खूप त्रास झाला, त्यामुळे पुन्हा असं वाटलं की आपण शाळेत जावं म्हणून 5वीला परत पिंपळे निलक या ठिकाणी शाळेत गेलो।
0: अच्छा अच्छा।
1: परंतु त्या काळामध्ये जाण्यायेण्याची साधनं नव्हती, गावाला जाण्याचा रस्ता नव्हता, अतिशय परिस्थिती कठीण होती, पावसाळ्यामध्ये सायकली खांद्यावर घेऊन जायला लागायचं। अशा परिस्थितीमध्ये मी 5वी ते 7वी पिंपळे नेलक येथे शिक्षण घेतलं, त्यानंतर 8वी ते 11वी जुनी 1971 हे पुण्यामध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय नानावडा या ठिकाणी शिक्षण घेतलं। ते करीत असताना श्री खंडेराय प्रतिष्ठान ही शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश एकच, आदरणीय रामभाऊ मोजे यांच्याकडे मी गेलो, मी सरपंच होतो, ZP ची निवडणूक लढवायची, जिल्हा परिषद निवडणूक लढवायची या उद्देशाने त्यांचा सल्ला घ्यायला गेलो। त्यांना सांगितलं की मी एक ॲम्ब्युलन्स घेतो, फुरता दवाखाना सुरू करतो, लोकसंपर्क वाढवतो आणि नंतर जिल्हा परिषद निवडणूक लढवायला मला सोपं जाईल। त्यांनी ऐकून घेतलं, परंतु जाताना सांगितलं तुमच्या गावच्या मुली 7वीपर्यंत शाळा शिकतात, 8वीला शाळेत जात नाही, जर तुम्ही शाळा शिक्षण संस्था सुरू केली तर मी तुम्हाला मदत करतो। आणि म्हणून मी तो विचार केला आणि त्यांनी हेही सांगितलं की ॲम्ब्युलन्स घ्यायची आणि लोकांची दुखणी वाहत बसायचं हा उद्योग कोणी शिकवला तुम्हाला, त्याच्यापेक्षा शाळा सुरू करा, मी तुम्हाला मदत करतो। म्हणून 1988 झाली, मला DEd BEd हे कुठल्याही प्रकारचं काही माहिती नसताना मी किर्लोस्कर कमिन्समध्ये 35 वर्ष नोकरी केली। नोकरी करता करता गावामध्ये सरपंच म्हणून अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलं आणि जिल्हा परिषद निवडणूक लढवायच्या उद्देशाने सल्ला घ्यायला गेलो, पण त्यांनी हे सांगितलं की शिक्षण संस्था सुरू करा।
0: ओके ओके।
1: म्हणून आमचा एक मित्र होता PS कुलकर्णी, त्यांना सांगितलं की मला मोजे साहेबांनी सांगितलं की शिक्षण संस्था सुरू करा, परंतु मला त्याच्यातली कुठल्याही प्रकारची माहिती नाही, तर काय करावं लागेल आपल्याला। मग त्यांनी सांगितलं तुम्ही खंडेरायाला दर महिना जात आहात, तर मग आपण श्री खंडेराय प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था नावाने संस्था सुरू करू, रजिस्टर करू। आणि त्यांचं ऐकून मी जून 1988 खंडेराय प्रतिष्ठान नावाने शिक्षण संस्था सुरू केली आणि 89ला 8वीचा वर्ग स्वतःच्या घरात सुरू केला।
0: ओके ओके।
1: त्याच्यानंतर क्रमांक 8वी 9वी 10वी एक एक पत्र्याची खोली बांधून 10वीपर्यंतची शाळा तिथं घरात सुरू केली आणि ज्या वेळेला 100% निकाल लागला 91ला,
0: अच्छा,
1: त्यावेळेला असं वाटलं की आपण हे चालू करू शकतो, आपल्याला हे जमल। परंतु तरी देखील किर्लोस्कर कमिन्स या ठिकाणची नोकरी मी सोडली नाही, नोकरी चालू होती, सरपंच म्हणून काम करीत होतो, शिक्षण संस्था सुरू केली होती आणि अशा प्रकारे मग ती 89ला सुरू केल्यानंतर 8वी 9वी 10वी केली, पुढं 5वी ते 7वी जोडून घेतली, त्यालाही रामभाऊ मोजेंनीच मदत केली, नंतर 1ली ते 4थी केली आणि आता KG to PG म्हणजे बालवाडीपासून एम बी एपर्यंत डीएड बीएड एम एड एम बी ए बी बी ए बी सी ए बी कॉम यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कोर्सेस साधारणतः 5,000 विद्यार्थी 3,500 स्टाफ आहे आणि सी एम इंटरनॅशनल स्कूल आज महाराष्ट्रात नावारूपाला आलेली आमची इंग्रजी मीडियम शाळा आहे. भारतामध्ये जी परीक्षेला आमचा एक विद्यार्थी भारतात 64 आलेला आहे.
0: अरे वा.
1: त्यामुळं ही संस्था ही केवळ रामभाऊ मोजे यांच्या मार्गदर्शनाने सुरू केली आणि आता मुलं आताशी आल्यामुळं त्याला चांगल्या प्रकारची गती आली. स्टाफ चांगला मिळाला आहे, कर्मचारी चांगले मिळाल्यात आणि म्हणून ही संस्था नावारूपाला आलेली आहे. तसंच मी नवचैतन्य ज्येष्ठ नागरिक संघाचा अध्यक्ष आहे. 850 सभासद आहे.
0: अरे वा.
1: हास्ययोग परिवाराचा मी अध्यक्ष आहे. रोज सकाळी 6:20 ते 7:30 पर्यंत हास्याचे प्रयोग घेतो.
0: अरे वा.
1: 11 चालू आहे. दर 2 महिन्यांनी एक टूर काढतो, साधारणतः 80 सिनियर सिटीजन घेऊन जातो.
0: अरे वा.
1: आणि अतिशय चांगल्या प्रकारचं प्रतिसाद आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांचा मिळालेला आहे आणि अशा प्रकारे आमच्या संस्थेची भरभराट आता चांगल्या पद्धतीने चालू आहे.
0: ओके ओके. गणपतराव साहेब, खूपच सुंदर आपने आपका अनुभव सुना है. मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो रहा है. मैं बता देता हूँ, इन्होंने अपना जो है पढ़ाई करना शुरू कर दिया और पढ़ाई में मन नहीं लगा तो खेती किया और खेती में जब उनको लगा कि अरे यार ये तो और हार्डवर्क है तो उन्होंने फिर से वापस पढ़ाई किया और इस तरह से फिर उनका जो है जब उनको लगा कि कुछ ऐसा समाज के लिए कुछ करना चाहिए और हमें जो है आगे कुछ इलेक्शन का जो कार्य है वो करने के लिए अच्छा रहेगा तो इस मन से वो अपने एक मित्र के पास गए और वहाँ पर उन्होंने बात रखी तो उन्होंने उस बात को सुना तो बोला कि एम्बुलेंस का जो सर्विस है वो तो ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि शिक्षण संस्थान को खोलकर लोगों को बच्चों को पढ़ाना. ये एक अच्छा चीज़ उनको लगा और इसके लिए उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था तो उन्होंने फिर इसके बारे में पूरी जानकारी अपने एक और मित्र से जुड़ कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा की और स्कूल शुरू किया. अब धीरे धीरे करते करते जो है इनके पास वो स्कूल में बच्चों का जो है बड़ा योगदान रहा. एडमिशन्स अच्छे हो गए और फिर इनके स्टाफ भी बहुत अच्छे मिले जो बच्चों को अच्छा पढ़ाते रहें तो आज जो है एक बहुत ही अच्छा नाम हो गया उनके स्कूल का और अलग अलग डिस्टेंस कोर्सेज भी जो है उनके पास चलते हैं. एमबीए के कोर्सेज वगैरह भी कराते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी सफलता उनको मिले हैं और सफलता के साथ साथ फिर अन्य संस्थान भी इनको जो है चाहते हैं कि ऐसा सफल व्यक्ति जो है हमारे संस्थान पर जुड़े रहें तो इसीलिए दूसरे संस्थान वाले भी उनको बुला के अपने अपने एक जो है पोस्ट पोजिशन देते रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी कहानी उन्होंने बताया. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही शुरुआत में ही, आपको याद हो तो उनको लग रहा है कि यहाँ ब्रह्म कुमारी इसमें आने के बाद ये परिसर देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि आई एम लेट, मतलब मुझे थोड़ा देर हो गया आने में, जबकि उनका इन्विटेशन तो काफ़ी पहले से मिल चुका था लेकिन व्यस्तता के साथ साथ कि वह अपना विश्वास या टाइम जो है आदमी को आध्यात्मिकता की तरफ ले आने के लिए एक टाइम निश्चित होता है, उसका भाग्य खुलना होता है, पुनर्जन्म का जो संचय है या आने वाले समय में जो उनका जीवन होगा उसको बेहतर बनाने का जब भाग्य खोलना होगा भगवान को तब वो चीज़ें सब सामने आ जाती हैं. बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ हुआ और आज वो इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं और अभी इस आध्यात्मिक समागम को देखकर इसी चीज़ को सीखना भी चाहते हैं और अपनी डेली रूटीन में अपने लाइफ में जिस तरह से हास्य योग लोगों को सिखाते हैं अब जाके राजयोग भी सिखाएंगे ऐसी शुभ आशा के साथ. चलिए गणपतराव, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा अनुभव अपना शेयर किया. एक छोटा सा मैसेज कोट कीजिए, एक संदेश क्या बताना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से, आपको सारी दुनिया सुन रही है.
1: माउंट आबूला प्रत्येक माणसाने येऊन बघितलं पाहिजे आणि या इथल्या जे चांगल्या गोष्टी त्या आत्मसात करायला पाहिजे आणि नेहमी येऊन या ठिकाणी काही ना काहीतरी योगदान देणं गरजेचं आहे.
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि हर व्यक्ति को एक बार माउंट आबू ज़रूर आना चाहिए और यहाँ जुड़ के अपना योगदान समाज के लिए और अपने लिए ज़रूर देना चाहिए क्योंकि यह संस्थान सामाजिक सेवा के लिए उपस्थित है और समाज के जो लोग हैं उनकी आत्मा उन्नति के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है. तो हमारा मूल जो है अध्यात्म है, भारत जो है अध्यात्म से ही पूरे विश्व में पहचान बनाती है तो उस संस्कृति को जानना समझना बहुत ज़रूरी है. तो बहुत बहुत धन्यवाद गणपत राव जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जी हाँ सफर कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। And it's a very, very comfortable journey. और जैसे ही वो spiritual journey से आप नीचे उतरते हो, तब आप jerk feel करते हो। So one of the purpose of life is, can I enjoy this spiritual journey? And that is what is very, very important.
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं साजिद हुसैन के बारे में। जी हाँ, भारत के हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर संगीतकारों में से एक इनका नाम आता है और अरबी शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर। साजिद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से ईजाद किए थे। ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनी के स्वरों का इस्तेमाल भी उनका पसंदीदा काम रहा और वे इस मामले में लीक से हटकर कुछ संगीत को बनाते थे जिन्होंने अपना समकालीन की राह से दूर हटते हुए कुछ तिरछा रास्ता पकड़ा। हिंदी में जिस तरह शमशेर बहादुर सिंह और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमीर खास साहब का मार्ग रहा, बिल्कुल इनमें से कुछ चीजें उन्होंने चुन ली थी। साजिद हुसैन का जन्म आज ही के दिन 1917 को हुआ था, 15 जून को, जो उस समय तत्कालीन भारत एजेंसी का एक गांव जिसमें अब मध्य प्रदेश कहा जाता है, एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपने पिता मोहम्मद अमीर खां द्वारा सितार सीख लिया। साजिद हुसैन ने अपने किशोरी अवस्था में रीना, वायलिन, बांसुरी और पियानो सीखा, एक सफल खिलाड़ी बने इन सभी चीजों के, और 1937 में मुंबई आगमन इनका हुआ, यानी आना हुआ। फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया और अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ मुंबई आ गए। पहला काम सौरभ मोदी के मिनर्वा मूवी टोन में 30 रुपए महीने पर वो काम करना शुरू कर दिया और बाद में वो वाडिया मूवी टोन में चले गए, जो कि उन्हें वहां पर 60 रुपए महीने पर उनका वेतन शुरू हो गया। और अगले कुछ वर्षों के दौरान साधु हुसैन ने संगीतकार मीर साहिब और रफीक गजनवी के सहायक और शौकत हुसैन रिजवी के साथ भी काम किया। तो इस तरह से उन्होंने काम करते हुए अपने जीवन को बेहद जो है बारीकी से सब चीजें सीखी और फिर अपना खुद का करियर बनाने में भी माहिर हो गए। संग दिल सैया, खेल हलचल जैसे फिल्मों में उन्होंने संगीत का अनूठा जो है प्रयोग करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और अधिकांश कलाकारों ने उनकी तबीयत के हिसाब से ही अपना बेहतर देने का काम किया। और स्वयं लता मंगेशकर का कहना था कि मैं साजिद साहब की संग दिल के गीतों को अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती हूँ। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा म्यूजिक जो साजिद हुसैन बनाते थे और किसी ने बनाया ही नहीं। साजिद हुसैन अपने गायन के करियर में कुछ सबसे कठिन गीतों का संगीत तैयार किया और ये दिलरुबा नजरें मिला लगभग ऑफ बीट संगीत का सुंदरम उदाहरण है। ये फिल्म एक हद तक साजिद हुसैन द्वारा संगीतबद्ध सबसे उल्लेखनीय फिल्म के रूप में याद किया जाता है, जिसमें संगीतकार ने लता जी के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण पार्श्व गायकों से दो अनोखे गीत गवाए थे। उसमें सुरैया की आवाज ये कैसी अजब दास्ता हो गई है और आशा भोसले की आवाज में अब देर हो गई वाला, इसको याद किया जाता है। और 1944 में आई दोस्त फिल्म में उनका और नूरजान का साथ कमाल का रंग लिया था। इस फिल्म का एक गीत बदनाम मोहब्बत कौन करे तो आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में एक महान गीत की तरह बना हुआ है। साजिद साहब के गर्म और अखंड स्वभाव के कई हिस्से चर्चित हैं, जो कहीं ना कहीं से उनके संगीत के प्रति दीवानगी का सबब ही लगता है। एक किस्सा तो बड़ा मशहूर हुआ, वे नूरजहां और लता मंगेशकर के अलावा किसी और को गाने के लायक मानते ही नहीं थे। ये अलग बात है कि उन्होंने कई गायक गायिकाओं से अपनी संगीतबद्ध फिल्मों में कुछ बेहद सुंदर गीत गवाए थे, तो ये है ना कमाल की बात। तो चलिए इसी के साथ, और ये संगीतकार के साथ साथ एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, यानी अच्छे वादक भी थे जो अलग अलग चीज़ों को बजाते भी थे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। लीजिए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बात करते हैं अभी एक और शख्सियत के बारे में, तारकनाथ दास के बारे में। जी हाँ, तारकनाथ जी का जन्म आज ही के दिन 1894 को बंगाल के 24 पैरागान जिले में हुआ था। तारकनाथ दास बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। छात्र जीवन में उनका संपर्क अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और चित्तरंजन दास जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं से हुआ और देशभक्ति के रंग में रंगने में नेताओं के संपर्क में आकर तारकनाथ दास क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होना ही था, क्योंकि इनका सहयोग मिलना मना देश के सिपाही बन जाना। अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी के कार्य में सक्रिय भाग लेने के लिए शीघ्र ही पुलिस उनके पीछे पड़ गई। फिर तो इस तरह से जब पुलिस पड़ गई तो कई बार जेल जाना हुआ और फिर विदेश गमन का भी इनको सौभाग्य मिला। 1905 में साधु का वेश बनाकर तारक ब्रह्मचारी के नाम से जापान चले गए और एक वर्ष वहां रहकर फिर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। यहां उन्होंने भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से विश्व जनमत को परिचित कराने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का आरंभ किया। उन्होंने गदर पार्टी संगठित करने में लाला हरदयाल आदि की भी सहायता की। पत्रकारिता तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों के साथ उन्होंने अपना छूटा हुआ अध्ययन भी आरंभ किया और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमए और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। है ना कमाल की बात। और पहला विश्व युद्ध आरंभ होने में वे शोध कार्य के बहाने जर्मन आ गए और वहां भारत में अनुशीलन पार्टी के अपने साथियों के लिए हथियार भेजने का प्रबंध किया। इसके लिए उन्होंने यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्रा की और बाद में जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनकी गतिविधियों की सूचना अमेरिका को भी हो गई। इस पर तारकनाथ दास पर अमेरिका में मुकदमा चला और उन्हें 22 महीने की कैद की सजा सुनानी पड़ी और ये 22 महीने तक जेल रहे। इसके बाद तारकनाथ दास ने अपने ध्यान ऐसी संस्थाओं स्थापित करने में लगाया जो भारत से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करें। इंडियन इंस्टीट्यूट और कोलंबिया का तारकनाथ दास फाउंडेशन दो ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। वे कुछ समय तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे और लंबे अंतराल के बाद 1952 में भारत आए और कोलकाता में विवेकानंद सोसाइटी की स्थापना की। इस महान देशभक्त का 22 सितंबर 1958 को अमेरिका में ही देहांत हो गया। तो ये थी कुछ खास बातें तारकनाथ दास के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए एक और खूबसूरत सा गीत आपके नाम सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार अगर है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बात करते हैं अब एक और फिल्मी शख्सियत के बारे में। जी हाँ, इनका नाम आपने सुना ही होगा, सुरैया। नाम सुनते ही आपको बहुत अच्छा लगा। तो आइए इनकी कहानी आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अपने जमाने की सबसे बड़ी हीरोइन मलिकाए तरन्नुम, नाम सुरैया जमाल शेख। नाम तो आपने इनका सुना है, अब देखिए सुरैया जी की जिंदगी की दास्तान।
3: चाची जी, वो आने।
2: जन्म 15 जून 1929 पंजाब के गुजरांवाला इलाके में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी।
3: जा रही हो बेटी, तो मेरी तरफ से भी नियाज करवा देना।
2: हालांकि इन्होंने कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया था संगीत का।
4: जरा धीरे धीरे बोलिए, मैं गीत सोच रही हूँ।
2: पर फिर भी ये सबसे बेहतरीन गायिका।
5: क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे।
2: और अदाकारा बनी।
4: क्यों नहीं, शहर जाकर लोग कड़वे ही हो जाते हैं।
2: सुरैया जी के वालिद एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान चलाते थे। बाद में गुजरांवाला से ये लाहौर आए और उसके बाद अपनी नानी और मामा की जिद पर सुरैया को मुंबई ले आया गया। मुंबई में इनकी पढ़ाई जेबी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स फोर्ट इलाके में हुई और घर पर ही इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान लिया।
3: दूध पीकर लिखे तो ज्यादा अच्छे गीत लिखे जाएंगे।
2: सुरैया ने बचपन में ही फिल्मों में शुरुआत कर दी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ये नजर आई सन 1937 की फिल्म उसने क्या सोचा, और उसके बाद 1941 की फिल्म ताजमहल में भी ये नजर आई। सन 1941 की ताजमहल का संगीत एसडी बर्मन ने दिया था, और ये सब मुमकिन हुआ सुरैया के मामा जान की वजह से, जिनका नाम जहूर, और वो फिल्मों में पहले से ही बतौर विलेन काम कर रहे थे। फिल्म ताजमहल को बनाने वाले नानू भाई वकील को 12 साल की सुरैया इतनी अच्छी लगी, इन्होंने मुमताज महल के बचपन का किरदार निभाया। बतौर सिंगर भी सुरैया की मदद करने पहुंच गए इनके दो मित्र, वो मित्र जिन्होंने आगे जाकर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया, एक महान संगीतकार मदन मोहन और दूसरे महान फिल्म मेकर और एक्टर राज कपूर।
6: रुत अलबेली मस्त समा, साथ हसी हर बात जमा।
2: राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे, और सुरैया की आवाज सुन इन दोनों बच्चों ने जरा सी जिद की कि क्यों नहीं तुम भी ऑल इंडिया रेडियो में चल के गाती।
7: जीवन द्वारे दिल ये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया, पिया पिया हो पिया पिया।
2: ऑल इंडिया रेडियो पर जब सुरैया की आवाज महान संगीतकार नौशाद साहब ने सुनी तो उन्होंने फौरन अपने मित्र कारदार की पिक्चर शारदा में इनसे गाना गवाया, और ये बात सन 1942 की है। ये बहुत छोटी थी और इन्हें बकायदा स्टूल पे खड़े होकर माइक पे गाना पड़ता था, और वो गाना इनसे उम्र में कहीं बड़ी हीरोइन महताब के ऊपर फिल्माया गया था। यहाँ से गायकी का सफर शुरू हुआ, और फिर तो स्टेशन मास्टर, कानून और एक लंबी फहरिस्त है जिन फिल्मों के लिए सुरैया ने गाने गाए।
7: आज कोई है आने वाला।
2: अभी वो वक्त दूर था जहाँ पर सुरैया की मुलाकात एक नए एक्टर देवानंद से होनी थी। उससे पहले ही सुरैया एक बड़ा नाम बन चुकी थी।
8: ओहो, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रानी।
2: 1942 में फिल्म तमन्ना के लिए सुरैया ने मन्ना डे के साथ अपना पहला डुएट गाया था। गाना था जागो आई उषा। ये बात भी गौर करने लायक है कि महताब ही इकलौती ऐसी हीरोइन रही जिन्हें सुरैया जी ने अपनी आवाज दी फिल्म शारदा, कानून और संजोग के लिए। 1943 में इन्होंने बड़ों के किरदार निभाने भी शुरू किए। फिल्म इशारा में ये नजर आईं। फिल्म अनमोल घड़ी में भी इनका काम बहुत सराहा गया।
9: हाँ।
2: और उसके बाद तो इन्होंने पलट के देखा ही नहीं। उस दौर की कोई भी हीरोइन इनके आसपास भी नहीं थी।
9: जलवे मेरी निगाह में दोनों जहाँ के हैं, मुझसे छुपेंगे आप ऐसे कहाँ के हैं?
2: ये बात भी गौर करने लायक है, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार सुरैया से जरा पीछे रहे। सुरैया पहली अभिनेत्री थीं जो एक फिल्म के लिए 1,00,000 रुपए की फीस लिया करती थीं और फिल्म इंडस्ट्री की ये त्रिमूर्ति वहाँ तक नहीं पहुँची थी।
9: अंगूर खट्टे हैं।
2: सुरैया जी का सफर जारी था और इसी बीच इनकी मुलाकात हुई देवानंद साहब से, जो उस वक्त धीरे धीरे अपना करियर बना रहे थे। इनका प्यार परवान चढ़ा।
8: ओहो, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रानी।
4: मैं तो नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई होगी।
2: इन दोनों ने 6 फिल्मों में काम किया। 1948 में विद्या, 1949 में जीत, 1949 में ही शायर भी और 1950 में अफसर। 1950 की एक और फिल्म आई थी नीली और 1951 में 2 सितारे।
4: पूरे 4 साल बाद आए हैं।
2: ये फिल्में तो बहुत कामयाब नहीं हुई, पर इनका प्यार कामयाब हो रहा था।
4: शहर जाकर लोग कड़वे ही हो जाते हैं, जो जाता है बदल जाता है। ना उसे कभी अपना घर याद आता है और ना घर वाले।
2: वो एक ऐसी मंजिल पर पहुँच गया था जहाँ पर देवानंद और सुरैया दोनों का ही दिल टूटा।
8: किसी का दिल तोड़ना बुरा होता है।
4: दिल तोड़ने का मतलब समझते हैं?
2: बात दरअसल ये थी, सुरैया जी की नानी जान ये कतई नहीं चाहती थीं कि देवानंद साहब के साथ इनका रिश्ता आगे बढ़े। बहुत मिन्नत करने के बावजूद इन दोनों की शादी नहीं हो पाई।
5: दिल की दुनिया उजड़ गई और जाने वाले चले गए।
2: देव साहब और सुरैया जी की आखिरी मुलाकात बड़ी दर्द भरी रही। ये दोनों मिले, एक दूसरे के गले लग के फूट फूट के रोए और फिर एक दूसरे से ना मिलने का वादा कर लौट गए। देव साहब ने इसके बाद अभिनेत्री कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंगा है, उनसे शादी कर ली, पर सुरैया ता उम्र कुंवारी रही। नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी जबरदस्त अभिनेत्रियां, पर उस दौर में जो मकाम सुरैया ने बनाया था अपने लिए, वो तब तक कोई और नहीं बना पाया था।
5: मस्त आंखों में शरारत कभी ऐसी तो ना थी।
2: इनकी जिंदगी से जुड़ी कमाल की एक और बात सामने आती है। 1954 की फिल्म वारिस में इनके हीरो थे महान गायक तलत महमूद।
10: आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की।
2: और 1953 की फिल्म माशुका में इनके हीरो थे महान गायक।

0: इन्होंने राज कपूर साहब के साथ तो एक फिल्म में जरूर काम किया, नाम था दास्तां। 1950 की ये फिल्म थी।
1: हाँ।
0: पर दिलीप कुमार के साथ इन्होंने काम नहीं किया। फिल्म का नाम था जानवर।
1: वो क्यों छुपा लिया? इस महफिल में शर्माना ही माफत है।
0: और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हो गईं।
1: तुम्हारी इज्जत इज्जत है और दूसरों की इज्जत खिलौना।
0: सुरैया जी ने यह तय किया कि ये फिल्म वो छोड़ देंगी और ठीक वैसा ही हुआ। 22 साल के लंबे करियर में सुरैया जी ने बहुत उम्दा काम किया। 1963 के बाद सुरैया जी ने फिर काम नहीं किया।
1: खबरदार, मेरे नजदीक मत आना, मुझ पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए।
0: और सन 2004 में वो दिन भी आ गया जब सुरैया इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। ये मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के कृष्ण महल अपार्टमेंट में रहा करती थी। इनकी उम्र 74 साल थी जब कैंसर से इनकी मौत हो गई। 3 मई सन 2013 को एक डाक टिकट जारी किया गया जिसपे सुरैया जी का चेहरा था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुरैया जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो मधुबन के साथ, और आशा करूंगा कि आपको हर एपिसोड में कुछ नई बातें सीखने को मिलता है। और जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ, सफलता वो नहीं जब आप हर बार जीतते हैं, बल्कि जब आप हार कर फिर से उठते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियाँ, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

107.8 FM सुन रहे हैं, आप कार्यक्रम है युवा मंच। युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, हर हफ्ते इंटरनेट से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, उन स्कैम्स के बारे में आपको बताते हैं, उन चीजों के बारे में आपको बताते हैं जिससे अवगत होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान बच सकता है। आपका नुकसान ही नहीं, किसी और का भी नुकसान बच सकता है। और उसके लिए सही हथियार है जानकारी। वो जानकारी आप तक पहुंचाता है रेडियो मधुबन, और वो जानकारी आज भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ, यानी कि रेडियो मधुबन 107.8 FM के साथ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवा मंच पे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको सही जानकारी मिली होगी। और भी ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। दोस्तों, कभी भी कोई भी मैसेज आता है या कोई भी व्हाट्सएप आपके पास आता है या कोई ईमेल आता है, लेकिन अगर सही जानकारी उसकी आप नहीं पाते हैं या डाउटफुल भी है, तो क्रॉस चेक करें, बिना रिस्पॉन्ड ना करें, क्लिक ना करें। सही जानकारी के लिए रेडियो मधुबन से जुड़े साइबर दोस्त को फॉलो करें। और अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो 1930 इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। फिलहाल देते हैं इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज की लघु कथा है डस्टबिन, अनीता ललित जी की लिखी हुई, लखनऊ से। आइए शुरू करते हैं। 6-7 वर्षीय पिंकी अपने गुड्डे गुड़ियों को लेकर कमरे में अपने सुंदर से डॉल हाउस के पास बैठकर मगन होकर खेल रही थी। छोटे छोटे बर्तन, मेज, कुर्सी और भी कई सारी चीजें उसके आसपास बिखरी हुई थी। कुल मिलाकर मानो छोटी सी गृहस्थी जमी हुई थी। नन्ही पिंकी वहीं बैठे बैठे अपनी माँ की चुन्नी लपेटे गुड्डे गुड़िया से वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बातें की जा रही थी। इतने में सुमन वहां से गुजरी। सुमन पिंकी की माँ। पिंकी को इतने प्यारे ढंग से खेलते बतियाते देख कर वो वहीं ठिटक गई और छुप कर उसे खेलते हुए देखने लगी। अपने जैसे बातें करते देख सुमन को अपनी बिटिया पर बहुत लाड आ रहा था। पिंकी छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने का खेल खेल रही थी और बातचीत किए जा रही थी। रवि आइए आइए, आपका पराठा बन गया, ये लीजिए। सुमन की हंसी ही फूट पड़ी। रवि उसके पति यानी पिंकी के पापा का नाम था। अरे ये तो ठंडा हो गया सुमन, इतना ठंडा नहीं खा सकता मैं। कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसे, मैं खा लूंगी और आपके लिए ला रही हूं ये गर्मा गर्म, ये लीजिए। कहते हुए पिंकी ने अपने गुड्डे के सामने से एक प्लेट हटाकर दूसरी प्लेट रख दी। फिर पलटकर अपनी गुड़िया से बोली, चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, नाश्ता रेडी है, ये लो पहले ये फ्रूट खाओ। क्या मन नहीं है? नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो आप बड़े कैसे होगे, हेल्दी कैसे होगे। चलो चलो चलो चलो जल्दी से खा लो, गुड गर्ल। फिर कांटे से झूठ मूठ के फल गुड़िया को खिलाने लगी। फिर उसने छोटी सी कटोरी से उसे कुछ खिलाया, उसके बाद प्लेट से। फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओफो मैं तो थक गई। अरे ये क्या बेटा, आपने इतना सब छोड़ दिया, फिनिश ही नहीं किया। वेरी बैड, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है ना। अच्छा लाओ मैं ही खा लेती हूँ। कहते हुए पिंकी ने अपनी सभी प्लेटों कटोरियों से कुछ समेटने का भी नहीं किया और झूठ मूठ की समेटी हुई सामग्री अपने मुंह में डाल ली। और ये सब देखते हुए सुमन के चेहरे पर हंसी की जगह अब सोच की लकीरें उभर आई थी। दोस्तों आप सुन रहे थे अनीता ललित जी की लिखी लघु कथा डस्टबिन। कई बार जब ये लघु कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा होता हूं तो इनके भीतर जो इतना सशक्त विचार होता है वो मुझे भी ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देता है। क्या क्या बना करके रखा हुआ है हमने घर की उस धुरी को, और जिससे जीवन का सौंदर्य है उसे मैं मानता हूं, शायद उसे तकलीफ ना भी होती हो, शायद वो अपने इस त्याग को कभी संकल्प में भी न लाती हो और इसी त्याग को अपना भाग्य समझती हो। ताजे हुए खाने को खा करके ही वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हो। पर हाँ, अगर खाना छोड़ना, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए। और अगर गर्म खाना खाना आपको पसंद है तो हर जीव को पसंद है, चाहे भले ही उसका पार्ट आपकी सेवा का क्यों ना हो। वो घर की मालकिन भी हो सकती है जो सेवाधारी बनकर के बिना कोई मेहनताना लिए सेवा कर लेती है, और वो घर का सेवक भी हो सकता है। हो सकता है इस जन्म में उसका पार्ट सेवक का हो, लेकिन आज सेवा ले रहे हैं तो कल सेवा देनी भी पड़ेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखने की है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अनीता ललित जी के लिए जो भी आप कमेंट करना चाहें आप जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो अब

गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह

0: आंगनवाड़ी में हर वर्ग के बच्चे अपने अपने ढंग से मनोरंजन कर रहे थे। कोई झूला, कोई चक्री, तो कोई रस्सी कूदने अथवा एक लंबी चूने की रेखा पर बारी बारी से अपनी आंखों में पट्टी बांधकर चलने का खेल खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की भी बड़ी ही तन्मयता के साथ चूने की पतली लाइन पर पारंगत तरीके से एक छोर से दूसरे छोर पर आ जा रही थी, लेकिन बच्चे उसे देखकर तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करने के बजाय उस पर कंकड़ मारकर हूटिंग कर रहे थे। लेकिन वो बड़ी ही एकाग्रता और शांत चित्त से चलने का क्रम कर रही थी और अपने क्रम पूरा हो जाने के बाद अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सभी बच्चों को झुककर मुस्कुराकर अभिवादन भी कर रही थी। यह नजारा देखकर वहां खड़ी एक सहायिका को अच्छा नहीं लगा और उसने उस लड़की से पूछा, बच्चे तुम्हें कंकड़ मारकर अपमानित करते हैं, तुम यहां से कहीं और क्यों नहीं चली जाती? लड़की बोली, बहन जी, दरअसल यहां से जाने के बाद मैं अपने पिता और छोटे छोटे भाई बहनों के साथ बाजारों में दो दो बांस के सहारे बंधी रस्सी पर अपनी आंखों में पट्टी बांध कर उस पर चलने का तमाशा दिखाती हूँ। यहां पर मिलने वाला आहार तो मेरे पेट की भूख मिटा देता है और ऐसे प्रदर्शन के लिए ऊर्जा भी देता है, लेकिन ये कंकड़ व फप्तियां मुझे बाजार में मेरे उस प्रदर्शन के दौरान दर्शकों से मिलने वाली तालियों व सिक्कों का एहसास कराते हैं, जो मेरे परिवार का पेट भरने में सहायक होते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे देवेंद्र काशिप जी की लिखी लघु कथा संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस। सोचिए, ये बच्ची जिसका जिक्र हुआ अपने अभ्यास के सहारे बांस पकड़कर लंबी बंधी रस्सियों पर चल लेती है। हां, तमाशा दिखाती है इसलिए चलती है, मगर जिंदगी के इस तमाशे में बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, ये कितनी अहम बात है, और हम इस संतुलन बैलेंस को बिल्कुल भूल बैठे हैं। हमारा हाल वही है, या तो हम हूटिंग कर रहे हैं या फिर हूटिंग का शिकार हो रहे हैं। अगर हूटिंग कर रहे हैं तो हम किस जगह हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हूटिंग का शिकार हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस छोटी सी लघु कथा में संतुलन क्या चीज होती है ये समझने की बात है। हमें क्या मिल रहा है और हमें किस नजरिए से उसे लेना है, बस इतनी सी तो बात छिपी हुई है इस कहानी में। कितनी सूक्ष्म बात इतनी सहजता के साथ इतने कम शब्दों में देवेंद्र काशिप जी ने लिख करके हमारे सामने रखी है। वाह, यही है लघु कथाओं का कमाल। अगले पड़ाव पर किसी कहानी या लघु कथा के साथ फिर होगी मुलाकात। कैसी लगी ये कहानी और उसमें छिपी हुई सबक वाली बात, जरूर शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि संतुलन जैसी अहम चीज बैलेंस हम सब अपना सकें। थैंक यू सो मच।
1: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: दुनिया शब्द विहीन हो जाए तो कैसा होगा, मन के अंतर में उथल पुथल, कोई आवाज ना सुनाई दे कहीं से, इन सारी उलझनों से, ऐसी कई कठिनाइयों से अकेले जूझती एक प्यारी सी लड़की। पता है वो उंगलियों की भाषा बोलती है, समझती है। मैं भी जब भी उसके पास रहता हूं तो शब्दों को जैसे किनारे रख उंगलियों की ही भाषा बोलता हूं। वो बहुत प्यारी है, उसके पास रहना अच्छा लगता है। हर छुट्टी के दिन उसे मिलने जाता हूं। मेरा घर सामान्य है, माँ बाबा, छोटा सा प्यारा सा परिवार। मेरी शादी की बात भी चल रही है, पर मेरा मन अक्षरा में लगा रहता है। मां के लाख मनाने पर मैं करुणा को देखने गया। भोली भाली, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार, घरेलू लड़की, जैसी मुझे और मां को चाहिए। मैं हां कर देता, पर अक्षरा का ख्याल मेरे जहन से जा नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके करुणा से मिलने के लिए रविवार का दिन मांगा। घर वालों ने भी छोटी बहन को साथ भेज दिया। हम तीनों होम केयर गए। वहां मैंने अक्षरा को करुणा से मिलवाया और बताया मैं अक्षरा को साथ रखना चाहता हूं। करुणा अक्षरा की मासूमियत को अपने में समेट रही थी। अक्षरा थी ही इतनी प्यारी, बस 5 साल की मासूम बच्ची। और करुणा अपने नाम के अनुसार करुणामयी थी, इस बात का एहसास मुझे उन दोनों के साथ बिताए समय से हुआ। पर करुणा ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। आखिर बात जिंदगी की थी। घर वालों के काफी नानुकुर के बाद करुणा ने हां में जवाब दिया। हमारी शादी धूमधाम से हुई। अक्षरा हर रस्म में हमारे साथ थी। अब हमने अक्षरा को गोद ले लिया है और हम सब साथ हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे सचिन बिलोरे जी की लिखी लघु कथा शब्द विहीन अक्षरा। ऐसी रचना जो कुछ भी टिप्पणी करने के लिए भी शब्द विहीन कर देती है। अगर ये कहानी सच है तो शत नमन। वैसे ऐसा हो सकता है कि ये कहानी सच्ची ही हो। कई शहरों में, कई जगहों पर कई लोग ऐसे।
2: वेल दोस्तों, बेहतरीन कुछ गीतों के बाद मैं मोना वापस आ गई हूँ। मेरे साथ है
3: रूहानी।
2: चलिए दोस्तों, ऊंट और सियार की एक बेहतरीन कहानी लेती हूँ। रूहानी, क्या बोलते हैं, एक अच्छी जो शाम है, या मैं कहूँ अच्छी छुट्टियों के बाद मैं सोमवार के दिन उड़ान लेकर आ गई हूँ। सिर्फ अकेली बिल्कुल मैं नहीं हूँ, मेरे साथ रूहानी भी और पलक भी साथ ही बनकर आए हैं। हम तीनों मिलकर आपके लिए ऊंट और सियार की कहानी लेकर आ रहे हैं। क्या बात है पलक, कैसी रही तुम्हारी छुट्टियाँ, कैसी बीत रही हैं?
3: बहुत अच्छी बीत रही है अभी।
2: बहुत अच्छी बीत रही है। और स्कूल कब खुलने वाले हैं ये तो बता दो।
3: स्कूल 20 तारीख से।
2: बस अभी भी चंद दिन बाकी है, मतलब एक हफ्ता और बाकी है, इसके बाद ये सब बिजी हो जाएंगे। और मैं तो रोजाना आपके बीच आती रहूंगी, पर हाँ रूहानी भी आती रहेगी, पलक भी आएगी। पर अभी फटाफट कहानी सुनते हैं आप और हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं उड़ान के साथ, आपके फेवरेट कार्यक्रम के साथ। सुनते रहो,
3: मुस्कुराते रहो।
4: ऊंट और सियार की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक मौका परस्त और धूर्त सियार रहता था। उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से उसकी मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे।
5: कहो मित्र, कैसे हो?
6: अभी तो अच्छा हूँ, पर तुम बताओ कि तुम कैसे हो?
5: मैं भी ठीक हूँ मित्र।
4: बातों ही बातों में समय कैसे कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक और धूर्त था, लेकिन ऊंट सीधा सादा और समझदार था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सियार को एक कौवे ने बताया,
6: अरे सियार, क्या तुम जानते हो कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं?
5: अच्छा, सच में?
4: मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह नदी पार कर जाने की तरकीब सोचने लगा। लेकिन उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था।
5: कितनी बड़ी नदी है, मैं कैसे नदी पार करूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, लेकिन तरबूज खाना भी तो जरूरी है।
4: वह तरबूजों का लालच अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई।
5: अरे याद आया, मेरा दोस्त ऊंट भी तो है, चलकर मैं उससे सहायता मांगता हूँ।
4: और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुँचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला,
7: आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे।
5: मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूँ।
7: क्या बताने आए हो?
5: मुझे पता लगा है कि वहाँ के सारे तरबूज पक गए हैं।
7: अच्छा,
5: और मैं जानता हूँ कि तुझे तरबूज काफी पसंद है।
7: हाँ हाँ, बहुत पसंद है।
5: ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे, और तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है। पता चलने पर मैं कैसे तुम्हें बताने नहीं आता, बस इसीलिए दौड़ा चलाया।
4: ऊंट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला,
7: धन्यवाद मित्र मुझे बताने के लिए, मैं अभी वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं।
4: ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। यह देख सियार बोला,
5: मित्र मुझे भी तरबूज पसंद है, मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकता ना। खैर कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया।
7: कैसी बात करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? अरे मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर नदी पार के खेत में ले चलूंगा और हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे, ठीक है?
4: ऊंट ने कहा तो सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगा।
5: अरे वाह ऊंट भाई, तुम नदी को कितनी आसानी से पार कर रहे हो, वाह मजा आ गया।
7: हाँ हाँ सियार भाई, शरीर बड़ा होने का कुछ न कुछ फायदा तो उठाना ही चाहिए ना।
4: कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुँच गए।
7: सही कहा था सियार भाई, वाकई तरबूज काफी अच्छे हैं।
4: वहाँ दोनों ने छक्कर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने की कोशिश करने लगा। तब ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया।
7: अरे रे रे रे, तुम शोर मत मचाओ सियार, अभी मेरा पेट भरा नहीं है।
5: लेकिन मैं क्या करूं? और मुझे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा पेट तो भर चुका है।
7: देखो मेरा पेट भरा नहीं है, थोड़ी देर और रुको, मुझे खा लेने दो। नदी पार करते समय जितना शोर मचाना हो मचा लेना।
5: लेकिन मेरा पेट तो भर गया ना, इसलिए अब मैं रुक नहीं सकता।
4: और सियार नहीं माना। वाँ। सियार की आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह खेत की तरफ दौड़ा।
8: अरे अरे कौन है, कौन है मेरे खेत में, अभी आ रहा हूँ।
4: दूर से किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था, लेकिन अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसीलिए वह वहीं खड़ा रह गया। अपने खेत में ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया।
8: अरे इस ऊंट ने तो मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया, अभी बताता हूँ इसे।
4: और किसान ने लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया।
8: अब कभी मेरे खेत में आने का साहस मत करना शैतान।
4: ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट दर्द से कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा था। मामला शांत होने पर पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। सियार को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा,
7: अरे सियार, जब तुमने तरबूज खा लिया तो इतना ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर ही वह किसान मेरे पास आ गया और मेरी पिटाई करने लगा, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हुआ।
4: तब सियार ने कहा,
5: ऊंट भैया माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ गई। अरे जब मैं तरबूज खा रहा था तो मेरा पेट पहले भर गया था यार, और जब मेरा पेट भर जाता है तो जब तक मैं हुआ हुआ की आवाज ना निकालूं मेरा खाना ही नहीं पचता।
7: लेकिन मेरा पेट तो भरा नहीं था ना, और तुम अपने भोजन पचाने की चिंता करने लगे, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया?
5: ख्याल तो था, लेकिन मैं क्या कर सकता था ऊंट भैया।
7: क्या कर सकता था, तुम्हें सिर्फ अपनी ही चिंता थी, मेरी नहीं।
4: सियार का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया था, लेकिन वह चुप रहा। ऊंट चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। पीछे से सियार भी नदी के पास पहुंच गया और ऊंट की पीठ पर बैठ गया। मार खाने के बाद भी ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठा लिया, लेकिन ऊंट मार पड़ने से बहुत दुखी था, जबकि सियार मन ही मन खुश हो रहा था।
5: ऊंट को मार खाता देख मुझे बड़ी शांति मिली। अरे कभी कभी ऐसे दिन भी देखने चाहिए। मैं तो बच गया ना मार खाने से।
4: नदी के बीच मझधार में पहुंचकर ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर गया और बोलने लगा,
5: अरे अरे अरे अरे यह क्या करो मित्र, अरे तुम जानते नहीं हो कि मुझे तैरना नहीं आता, इस तरह करोगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा ना।
4: गुस्से में ऊंट ने कहा,
7: डूब ही जाओगे तो मैं क्या करूं भाई, मुझे तो अब लौटने की इच्छा हो रही है।
5: अरे बाद में लौटना, पहले मुझे किनारे तक पहुँचा दो, दोस्ती में ये सब नहीं होता।
7: नहीं सियार, मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, और खाने को हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगाना भी जरूरी होता है सियार।
5: अरे अरे ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का जरा ख्याल नहीं करो।
7: क्यों ख्याल करो, ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था मुझसे दोस्ती करते समय, अब तो मुझे रहा नहीं जा रहा है।
4: अब सियार को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऊंट पहले भी सियार से कई बार धोखा खा चुका था।
7: तुम दोस्ती के लायक नहीं हो सियार, इसलिए अब नहीं रुक सकता।
4: और कुछ ही देर में ऊंट सियार को सबक सिखाने के लिए बीच नदी में बैठ गया।
5: आ, आ, आ,

सियार को तैरना नहीं आता था, इसीलिए सियार नदी में डूब गया और बह गया। फिर ऊंट ने बहुत आसानी से नदी को पार कर लिया। आज ऊंट ने सियार को उसके करनी की सजा दे दी थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा खुद के लिए भी बुरा ही होता है। जो बोगे वही काटोगे, यानी आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगी वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। साथ ही यह कहानी सिखाती है कि अगर कोई सिर्फ आपका फायदा उठाता है और तकलीफ में आपका साथ नहीं देता तो बहुत अच्छा बने रहने का कोई फायदा नहीं है। जैसे को तैसा की नीति अपनानी चाहिए और स्वार्थी व धूर्तों को उनके किए का सबक सिखाना ही चाहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेल दोस्तों, बेहतरीन कुछ कहानी सुनाने के बाद मैं मोना वापस आ गई हूँ और मेरे साथ पलक और रूहानी भी आते जरूर है। कुछ ऐसे क्वालिटी आप ऊंट के बता दो, 5 कोई क्वालिटी आपको याद है, बता सकती हो? हाँ बताओ।
3: ऊंट जो होता है उसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं।
2: अच्छा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज सिर्फ इस कारण नहीं कहा जाता कि वो तैरता हुआ कुछ नजर आता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इस कारण कहते हैं। आप अलग बता दो।
4: क्योंकि वो बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है।
2: या उसके अंदर एक स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, जो उसका हम्प रहता है उसमें कहते हैं पानी वो स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है, ऊंट की आंखों की क्षमता इस प्रकार की कि वो इतनी रोशनी को भी सह सकता है, क्योंकि रेगिस्तान की जो रोशनी होती है उसको सहने लायक क्षमता होनी चाहिए। बॉडी भी ऊंट का इस प्रकार है, साथ ही साथ वेजिटेरियन है, तो मोस्टली आप जब रेगिस्तान में हो छोटी छोटी कटीली घासें मिलती हैं और ऊंट इन घासों को खाकर, उनके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऊंट इन घासों को खाकर, इन कटीली झाड़ियों को खाकर भी अपने आप का पालन कर लेता है।
3: और ऊंट के जो पांव के तलवे होते हैं वो भी एकदम चपटे होते हैं, जिससे वो रेत पर आसानी से चल पाते।
2: बिल्कुल, वो गद्देदार जैसे होते हैं और इसी कारण वो जैसे ना गद्दा सस्पेंशन का काम अच्छा कर लेता है पूरा, पूरे रेगिस्तान में चलते हुए, और धसता नहीं है और काफ़ी लॉन्ग वो अपने रेगिस्तान से यहाँ से वहाँ जाता है, जा सकता है। इवन रात में भी ऊँट चलते हैं, लोग बाग ऊँटों को लेकर रात में तारों को देखते हुए चलते हैं, तो इतनी कैपेसिटी ऊँट के अंदर है। तो आपने कहानी भी सुनी, चलिए एक और बेहतरीन गीत सुनाते हैं, उसके बाद मैं, मोना, रूहानी और पलक सब वापस आएंगे। सुनते रहिए
5: मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन
3: 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: वेल दोस्तों, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: जी हाँ दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम के साथ आप जुड़ जाना कल 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे
1: गुड बाय।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव अंचल डाणी ढाणी में जाते हैं, फली फली में जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। अचानक में जाते हैं तो अचानक का जो पाठ देखने को मिलता है सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए शांतिवन से मैंने रेडियो मधुबन स्टूडियो से थोड़ा सा दूर गणका ग्राम पंचायत में पहुंचे और गणका ग्राम पंचायत जो पंचायत नूतन भवन है उसका पास ही एक छोटा सा फली है। वो फली का नाम भी हम जानकारी लेंगे और आज मावाड़ी केंद्र में पहुंचे। बच्चों को हम जो सुनते हैं तोतली तोतली आवाज में और कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं और उनका जो भाषा और कोई ना छल कपड़ कुछ नहीं, लेकिन आराम से बात करते हैं। बहुत खुशी लगता है। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा पास सार जी भी है, उपस्थित है, तो आज उनका सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। क्योंकि बच्चों को देखभाल करते हैं मावाड़ी केंद्र में, शिक्षक गिरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज बच्चों का आवाज भी थोड़ा थोड़ा लेंगे और साथ साथ सार का भी ऊपर चलेंगे। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ग्रामवासियों की तरफ से

0: नाम अमराराम, पिता का नाम लक्ष्मण राम, गांव गण का गुजरापली, मावाड़ी केंद्र गुजरापली गण का, योग्यता 12वीं, पंचायत गण का तहसीलाबू रोड, जिला सिरोही, राज्य राजस्थान, 1 से 5वीं गणका स्कूल की, 6 से 8वीं मानपुर, 9वीं-10वीं आकरपट्टा, 11वीं-12वीं तरबा स्कूल अबू रोड, BA सेठ मंगल सन चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज अबू रोड, यहाँ तक पढ़ाई की। 2013 से मावाड़ी केंद्र गुजरापली गणका में कार्यरत हूँ।
1: तो जो यूथ हमारा सुन रहे, जो बच्चे पढ़ रहे, कितने सुंदर में और निर्भय से भाई ने अपने बात को रखे, पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट। और जो दरबार स्कूल नाम लेते हैं तो एक गर्व महसूस होता है। दरबार स्कूल के जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई करके उत्तीर्ण होकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पोस्टिंग बाहर लग जाते हैं, कुछ ना कुछ बेकार नहीं रहते, तो बहुत खुशी लगा। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल को भी कभी सर जी को पूछते तो भाई कौन सा स्कूल में, तो अपना परिचय में सक्सेस स्टोरी में कहते हम दरबार स्कूल से उत्तीर्ण हुए। क्योंकि दरबार स्कूल जो है आबू रोड के पूरा नामी ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालय है सरकारी का, और आप वहां से उत्तीर्ण किए हमारे लिए गर्व का बात है। और आप इतना जो पढ़ाई किए, क्या पढ़ाई का समय में क्या चैलेंजेज है, क्योंकि हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, रेडियो के कार्यक्रम में भी बच्चे सुन रहे हैं, तो उनको एक प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले, वो भी अपना जीवन में पढ़ाई कभी रुकना नहीं चाहिए, जितना भी हो सके ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन तक किए तो इसमें सपोर्टिंग भी मिल होना चाहिए, क्योंकि हमारा आदिवासी ट्राइबल एरिया है अब रोड का TSP एरिया है, तो खासकर जो आदिवासी समाज के बच्चों को बा माता पिता को एक प्रेरणा में वो भी अपना बच्चों को पढ़ाए। जैसे आपको आपका माँ बाप इतना सुंदर में पढ़ाए, कभी हॉस्टल में रहे थे?
0: हॉस्टल में नहीं रहे सर।
1: क्यों, उसमें हॉस्टल के बाद छात्रावास का जो आदिवासी में आते हैं, आप आदिवासी में?
0: आदिवासी में आते हैं।
1: फिर भी आप छात्रावास का लाभ नहीं लिया और अपना खुद पैसा खर्च करके पढ़े, तो आपका मम्मी पापा माँ बापा क्या करते थे?
0: खेती करते,
1: कृषि। फिर भी आपको इतना पढ़ाया तो आपका इच्छा था?
0: इच्छा थी।
1: पढ़ाई में क्या तकलीफ आई होगी तो हमारा बच्चे भी सुनते, उनको तकलीफ ना, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा तो भी हम उसको चैलेंज करके पास होना चाहिए। तो ऐसे आपका जीवन में क्या तकलीफ है पढ़ाई के समय में?
0: पढ़ाई में सर आने जाने की तकलीफ थी और पैसे की कमी पड़ी।
1: मान लीजिए आर्थिक संबल रहता तो आप और क्या कर सकते थे,
0: आगे बढ़ सकते थे,
1: नंबर आता। जो राजकीय नौकरी के लिए भाई बीएड के लिए कभी ट्राई नहीं किए?
0: सर बीएड तो भी एसटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर अपीयरिंग चल रहा है।
1: के लिए क्या लक रखे एम?
0: टीचर्स के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनना।
1: आपका उम्र कितना है?
0: उम्र 30 वर्ष।
1: और कितने साल तक आपका अप्लाई करने का चांस है?
0: 5 साल।
1: 35 SC/ST के लिए 35
0: तक है,
1: 40 तक तो हो जाएगा। एक घंटा सा ब्रेक के बाद और कुछ जानकारी लेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, बच्चे भी सुन रहे, थोड़ा तोतले आवाज में मावाड़ी केंद्र में कुछ तोतले बात सुनाएंगे गीत, क्योंकि हमारा कार्यक्रम को हमारा बच्चे न हो तो अच्छा नहीं लगेगा। सर का साथ साथ मावाड़ी केंद्र में जब पहुंचे, सर का अनुभव का साथ साथ बच्चों का आवाज को सुनेंगे, कुछ बच्चे अपना नाम बताएंगे और गीत सामूहिक रूप में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज गण का स्थित मावड़ी केंद्र बुजराफली गण का हमें पहुंचे और हमें खुशी, ब्रेक का पहले हम सार जी से सुन रहे थे उनका करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर और एक नॉन स्टॉप मैंने शुरुआत कहाँ से किए और कहाँ तक पहुंचे और उनका एम्बिशन भी सुनाए। लेकिन जहाँ पर वो कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, वो बच्चों को भी हम देखें तो बहुत अनुशासित हैं और पूरा शांत स्वभाव है। और हमारा जो बालिका शिक्षा स्वयं में आज तीन कन्या है, छोटी तीन बालिका है, तो नाम सुनते हैं। तुम्हारा नाम
2: हिना।
1: कौन सा क्लास कक्षा?
2: चौथी।
1: थेमरो
3: गिना।
1: अच्छा, क्लास
3: तीसरी।
1: और आयरो हूँ नाम?
3: तेरा।
1: थेमरो
4: पायल।
1: और कौन सा क्लास?
4: तीसरी।
1: अच्छा, तुम्हारा सार का नाम बताओ।
4: अमरा।
1: तो सार जी के लिए ताली बजाओ, जोर से सभी ताली बजाओ, सार के लिए ताली बजाओ। काम हुआ, ताली जोर से बजाओ, बजा कर स्वागत किए। और हमारा बच्चियां भी कम नहीं है, तोतले आवाज में थोड़ा सा पहला बार आया ना, तो कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। कोई डर है?
2: नहीं।
1: घर में कौन कौन है?
2: मम्मी पापा भैया बहन।
1: पढ़ोगे तुम क्या बनेगी? सरपंच ना, कार्यकर्ता ना, दीदी क्या बनेगी? ना मैडम, जैसे सर बोल रहे हम बड़े होकर सरकारी नौकरी करेंगे, आप क्या करेंगे? पुलिस। धीरे बोले मैडम मैडम। हाँ मैडम बनना चाहिए, मैडम बनेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना? अच्छा चलिए शुरू करते हैं एक कविता, है ना, सुनाएंगे? अच्छा चलो श्रोता मित्र, हमारा बच्चे का आवाज सुनेंगे, पहला प्रस्तुति है और पहला बार जो मिलते थोड़ा झिझक करते, कोई झिझक नहीं, आराम से फ्री में बोलना चाहिए, है ना? चलो उनको स्वागत करते हैं, शुरू करते हैं एक कविता।
2: लाल लाल टमाटर कौन खाएगा?

0: गई, बच्चे जूत गई।
1: आजकल तो डंडा पड़ता नहीं स्कूल में, लेकिन आज तो बच्चे को ओसार मिलता है, फल मिलता है, दूध मिलता है, डंडा कहाँ मिलता है? डंडा तो वो तो गीत पुराना हो चुका है कि नहीं? आज डंडा मिलता है? मारते हैं सार? मारते हैं कभी?
0: नहीं
1: नहीं। और सार कभी हारते हैं? सार कभी हारेंगे
0: नहीं।
1: बच्चे जीत जाते हैं, सार हार जाते बोलते हैं, लेकिन सार कभी हारेंगे नहीं, हमको हरा देंगे, है कि नहीं? सार के पास बहुत गुण रहता है, शिक्षा रहता है कि नहीं? हमसे बड़े है, हमसे बड़े है, गुरुजन है, तो गुरु कभी हारेगा
0: नहीं।
1: मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा है कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, तो स्कूल का किताब में लिखा हुआ है, किन्तु बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चे भी कम नहीं है, शिक्षक से भी आगे कलेक्टर, सरपंच, कार्यकर्ता भी बन सकते हैं, सार से भी ऊंचा पोस्ट भी ले सकते, किन्तु पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई
0: चाहिए,
1: और क्या चाहिए? अच्छा खाना
0: चाहिए,
1: चाहिए, और क्या चाहिए? साफ सुथरा सुथरा रहना
2: चाहिए,
1: और क्या चाहिए तुम बताओ? अच्छा बनने के लिए माँ बाप और बड़ा भाई बहन से शिक्षा लेना
0: चाहिए,
1: और सबको सम्मान देना
0: चाहिए,
1: खराब कथा सुनना नहीं
2: चाहिए,
1: खराब चीज नहीं सुनना चाहिए, अच्छा चीज सुनना है, अच्छा चीज बोलना है, और अच्छे चीज देखना है, अच्छा चीज
2: देखना है,
1: देखना अच्छा है, और पहनना ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं
0: चाहिए?
1: अच्छा पहनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छे सुनेंगे, अच्छा बैठेंगे, तो हम बनेंगे अच्छे, है ना बच्चे? हाँ, जैसे सार तीन बंदर का नाम सुने होंगे, है कि नहीं? बुरा मत
3: देखो,
1: और बुरा मत कान देखा, कान में बुरा मत सुनो, कान बंद करो सभी बच्चे, कान दे कान में बंद करो, हाँ बंद करो, बुरा मत सुनो,
2: बुरा मत,
1: बुरा मत सुनो, कान बंद करो सभी, बुरा मत
2: सुनो,
1: सुनो, बुरा मत
2: देखो,
1: देखो,
2: बुरा मत देखो,
1: और बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, सोचो में सोच भी अच्छा होना चाहिए, और बुरा मत पहनो, बुरा मत पहनो, पहनना भी ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, और क्या रह गया? बुरा मत करो, बुरा मत करो, हाथ में बुरा काम नहीं करना है, बुरा मत करो, देखा सभी बच्चे हाथ ऐसे करो, बुरा मत नहीं करो, हाथ में अच्छा काम करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा पहनो, और अच्छा देखो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, है ना? तो हम मीठा बन पाएंगे, ताली बजा सभी बच्चे, ताली बजाने में तो होशियार है, ताली बजाने में पैसा नहीं लगता है, और चेहरा में खुशी आती है, बहुत अच्छा बात है। चलिए और एक कविता सुनेंगे बच्चों से, मावाड़ी केंद्र में बच्चे जो तुतुल तुतुल आवाज में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो एक गुड्डा हमारा साथ है, आ जाओ। हाँ देखो, अभी लड़का और लड़की में अंतर कोई नहीं है, लड़कियों के गीत का बाद एक लड़का भी आया है, क्या नाम है तुम्हारा?
0: सुनील।
1: सुनील, सुनील की ताली बजाओ जोर से, वाह लग रहा है, सबको खुशी लग रहा है, बोलो हाँ जी, खुशी लग रहा है,
0: हाँ जी,
1: जोर से बोलो हाँ जी,
0: हाँ जी,
1: खुशी लग रही है,
0: हाँ
1: जी, वेरी गुड। और सुनील, तुमको घर में क्या अच्छा लगता है, भोजन में, नाश्ता में क्या अच्छा लगता है तुमको सुनील? खाने में
0: हुँ?
1: खाने में कौन सा अच्छा लगता है, भोजन में कौन सा चीज अच्छा लगता है? रोटा,
0: दाल,
1: दाल रोटा, हा? दाल रोटा अच्छा लगता है। घर में कौन कौन है?
0: मेरा पापा मम्मी।
1: पापा मम्मी क्या करता है?
0: हा?
1: पापा क्या करता है?
0: काम जाता है,
1: काम में जाते हैं, पैसा लाता है, तुमको पैसा देते हैं, क्या करता तुम पैसे
0: खाते है,
1: पैसा खाते
0: है,
1: पैसे से क्या लाते हैं आप? बाजार में जाएंगे दुकान में, पैसा देंगे तो आपको क्या मिलता है?
0: केरी,
1: केरी, और
0: सेव,
1: सेव, और
0: केला,
1: केला, और वाह, और क्या मिलता है पैसे से? आपको पैसा अंगूर भी मिलता है, बहुत होशियार बच्चा है। अच्छा, अभी बहुत अच्छा बात बताए, और कौन सा कलर आपको पसंद है? कलर, कलर में रंग कौन सा रंग अच्छा लगता है? सफेद रंग है तुम्हारा, ये कौन सा रंग पसंद है?
0: लीला,
1: लीला। तो एक गीत सुना, कविता सुनाएंगे? हाँ सुना।
0: एक लड़की बेटी रो रही थी, पास कोई नहीं था, आग करके पाक जाओ लगी। सामने देखो पाक
1: तो क्या बोल रहा है?
3: बैठी बैठी लड़की रो रही थी, इसके साथ कोई नहीं था। सूरज सामने देखो आग बंदे पाक जाओ।
1: इसका माने क्या सार, क्या बोल रहे हैं?
4: एक लड़की सुनसान जगह पर बैठी थी, वो रो रही थी, इसके साथ कोई नहीं था, बच्ची अकेली बैठी हुई थी, सहायता करनी चाहिए।
1: ताली बजा भाई। सहायता करना चाहिए, कोई भी आवश्यकता जिसको है, जैसे लड़की चाहे लड़का हो तो सुनसान में अकेला होती है तो उनको डर लगता होगा, है कि नहीं? और चाहिए होगा कुछ, क्या कारण से वो अकेला हो गई, तो उनका माँ बाप है कि नहीं, उसका परिचय लेना है ना सुनील? तुमको मान लिया अभी छोड़ देंगे कहीं पर, तुम्हारे माँ बाप ने अकेला हो जाएंगे तो आप रोएंगे? क्यों रोएंगे?
0: डर पड़ता है।
1: क्या करना चाहिए सुनील? डर होता है इसको बुलाना चाहिए ना माँ बाप को, ना दोस्त को। किसको बुलाएंगे आप?
0: भगवान को।
1: भगवान को बुलाएंगे? भगवान क्या करता है? भगवान आ जाता है भगवान? अरे वाह, बच्चे सच्चे होते हैं। भगवान को जब दिल से बुलाएंगे तो प्रहलाद जैसे, प्रहलाद को भगवान जैसे मिला तो उनको भी, सुनील को भी मिल जाएगा। जब अकेला पड़ जाएंगे तो भगवान को बुलाएंगे, है ना? वाह, ताली बजा सुनील के लिए। वाह वाह, सुनील जैसे पूरा होशियार होना चाहिए। तो बड़े होकर क्या बनेगा सुनील? तुम बड़े होकर क्या बनेगा?
0: मास्टर।
1: मास्टर साहब, वेरी गुड। और गांव नाम बताओ। गांव का नाम बता। गांव कौन सा गांव है? फली का नाम
0: गुजरा फली कनका।
1: क्या बात बताए? और खेल खेलते हैं? तुम्हारे दोस्त का नाम बता देखिए, कोई अच्छा दोस्त।
0: गोपाल बोरिया।
1: बहनों में कौन आपको अच्छा लगते हैं?
2: कौन कौन बहन लगते हैं? क्या नाम है?
0: पायल।
1: पायल आपको अच्छा लगता है? पायल के साथ कभी डिसिंग डिसिंग होता है, मारपीट होता है, कभी कभी झगड़ा होता है? होता है। क्यों होता है? क्यों होता है?
0: कुटती थी। कुटे
2: मारती।
1: मारती तुमको? क्यों मारते? अच्छा पायल, तुम आज देखिए देखिए,
2: दोनों भाई बहन है।
1: अच्छा भाई बहन है? हाँ, पायल और सुनील दो भाई बहन है। लेकिन होता है घर में थोड़ा बहुत के लिए तो झगड़ा, फिर मिल जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। और है ना पायल, सुनील से मारपीट कभी कभी होता है खेल में? क्यों होता है?
0: बहुत मारता है मुझे।
1: क्यों मारता है सुनील? तुम बहन
0: मारती है पहले?
1: पहले वो मारते है, लेकिन मारना नहीं चाहिए, है ना? फिर भी मिल जाते हैं खाने का टाइम में। अच्छा कोई नया चीज आता ना घर में, पापा लेकर आते हैं, पैसे से लेकर आते हैं, नया सामान हो, आम नया फल होता है शुरुआत में, है ना फल? तो पहले किस पायल को मिलता है ना, तुमको मिलता है, पापा किसको देते हैं?
0: इसको।
1: वो बहन है ना, उसको मिलना चाहिए। भाई को नहीं मिलने से भी चलेगा, बहन को मिलना चाहिए, है ना? बहन आगे होना चाहिए, भाई पीछे होना चाहिए, है ना? मानते ना, तुम्हारा बहन है ना, तो बहन को तुमसे बड़ी है, बड़ी है ना? पायल का एक अच्छा गुण बता। पायल आपका जो है ना दोस्त नहीं, बहन है ना? तो पायल का क्या विशेषता, क्या गुण है जो अच्छा लगता है तुमको? उनका खुशी का चेहरा, खुशी देता है तुमको, अच्छा बोलता है? अच्छा पायल तुम बता देखिए, सुनील का अच्छा गुण बता देखिए। सुनील में भले मारे है आपको, लेकिन उसका अच्छा गुण है, तुम्हारा वो भाई है कि नहीं? पहला बात तुम्हारा है ना, तुम्हारा तो सबसे अच्छा है भाई, अच्छा है ना? हाँ, और क्या अच्छा गुण बता? पर तू जानते ना, वो उसको लोग देखते ना, उनको खुशी मिलता है, पढ़ता है, ये अच्छा गुण है ना, तो तुम अच्छा पढ़ता बोल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते सुनील और गुड़िया पायल और उनका दोस्त लोग को, है ना? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सार भी उपस्थित है तो उनका सक्सेस स्टोरी को भी कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन,
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी लग रहा है, बच्चों के साथ आज रूबरू हो रहे हैं और छोटे छोटे तुतले आवाज में हम भी थोड़े बच्चे बन गए आज। बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता, तब जाकर उनका अंदर में जो भावना है, जो दिल का बात को कहते हैं, जब हम थोड़ा बड़ा सोचकर करेंगे तो बच्चे, जैसे पायल और सुनील ने बताया भाई, हम थोड़ा घर में थोड़ा बहुत कभी कभी डिसम होते हैं, मारपीट होते हैं, लेकिन फिर मिल जाते हैं भोजन का टाइम में और विशेषता को देखना चाहिए। तो चलिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ अमरा राम जी भी है, तो जो शिक्षक है, तो उनको स्वागत करते हैं। सर, आपको बच्चों का साथ जब मिलते हैं, बच्चों को किस तरह आप संभालते, किस तरह पढ़ाई में उनको क्या आप जी जान माने 20 नाखून लगाकर बच्चों का प्रति, बच्चों को सर्वांगीण उन्नति के लिए बैठना उठना जैसे संस्कारित करने के लिए, सुशासन में रखने के लिए क्या क्या अटेंशन देते, जब शुरू में आपका दिनचर्या जब स्कूल में आते हैं क्या क्या आपका गतिविधि होती है? तो आपको पुनः स्वागत करते हैं, क्योंकि मावाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते तो सब चीज देखना पड़ता है, माँ बाप को भी संतुष्ट करना पड़ता है और खुद भी संतोष रहना पड़ता है। सर आपका वेलकम। बच्चों का उन्नति के लिए आप सुबह से जो आपका ड्यूटी पीरियड में क्या क्या गतिविधि कराते हैं?
3: प्रार्थना करवाते हैं, उसके बाद गीत बुलवाते हैं, फिर पढ़ाई करवाते हैं। प्रार्थना
2: करेंगे,
3: साथ में बोलना साथ में।

0: ओम शांति
1: शांति शांति शांति ओम शांति सही में माँ शारदा का जयगान और प्रार्थना हम लोग किस तरह करते, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। सरस्वती जगदम्बा सरस्वती माँ का जितना भी गान करे कम ही होगा, क्योंकि कहते हैं माँ सरस्वती बिना वादिनी है और सबका कंठ में सरस्वती माँ का आविर्भाव कहते हैं, क्योंकि उनका बिना हमारा शिक्षा अधूरा होगा। तो जब भी हम जाते हैं स्कूल में माँ सरस्वती को ध्यान करते हैं, जो कि ब्रह्मा की बेटी है माँ सरस्वती, और गणेश और सरस्वती को हम अग्रज मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और उनसे हम ज्ञान लेकर आगे बढ़ते, जिसे बच्चे प्रार्थना माध्यम से अपना भाव को माँ सरस्वती को याद करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसके चलते माँ सरस्वती जैसे बन पाएंगे विद्या, गणेश जैसे बन पाएंगे माँ सरस्वती जैसे बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते, इस तरह प्रार्थना होता है। सर ये तो प्रार्थना में बच्चों को ऐसे करते, ऐसे कितना नामांकन है आप इस आंगनबाड़ी में, और बच्चे कहाँ से आते हैं और किस वर्ग से आते हैं, और उनका जो आर्थिक स्थिति हो, जो पढ़ाई में जो रुचि है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र आप करिए, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए सरकार का जो योजना है, और हम चाहते हमारा जो आगे नई पीढ़ी जो ये बच्चे ही आगे भारत का कर्णधार बनेंगे, देश संभालेंगे, उनका भाग्य में क्या लिखा होगा, उनका ऊपर जो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो जरूर कोई कामयाबी हुई, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई सरपंच भी बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह मौका जब मिलता है तो सर बच्चों को यहाँ पर जब देखते हैं तो उनका जो स्थिति आर्थिक हो, चाहे पढ़ाई में जो रुचि है, उनका माँ बाप का सपोर्टिंग कैसे रहता है, क्योंकि एक वनांचल क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र में बच्चे जब आते हैं इस तरह कार्यक्रम में बच्चे जुड़ते, आज भी बच्चे आ रहे हैं तो बालिका शिक्षा में देख रहे तो बहुत अच्छा है, 1, 2, 3, 4 बालिका है, 2 बालक है, फिर भी बालिकाओं का कितना सम्मान हो रहा है, और बच्चे को भेजते हैं घर से, ये सबसे बड़ी बात है। छोकरा लोग तो कम आते हैं, छोकरी बहुत आते हैं, तो आपका स्कूल में नामांकन में, तो हमारा श्रोता मित्र की तरफ से हम चाहूंगा कि लोग का माँ बाप का आर्थिक स्थिति कैसे और बच्चे पढ़ाई में कितना रुचि रखते हैं, उस संदर्भ में आप क्या जानते हैं बच्चों का बारे में थोड़ा बताएंगे।
0: बच्चे नामांकन 30 सीमाबाड़ी केंद्र पर बच्चे पास में ये फले से आते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, बच्चों के माता पिता की, बच्चे रेगुलर आते हैं, वैसे थोड़े बहुत कम भी आते कभी से, उनके माँ बाप भेजते हैं, कोई नहीं भेजता, उनके लिए बुलाने जाते हैं घर पे, उनके आते हैं बच्चे 30 का पूरा चौथी तक।
1: बहुत धन्यवाद, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को डायल कीजिए 100 अपने फोन से सजग रहिए सुरक्षित रहिए रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। आज शिक्षा को लेकर हम सब तात्पर्य रहते, जब जीवन हमारा तब सुधरेगा जब हम शिक्षित होंगे। कहते हैं नीम बिना भवन नहीं, शिक्षा बिना जीवन नहीं। जितना हम शिक्षित होंगे हमारा परिवेश, हमारा परिवार और हम खुद सशक्त होंगे। भारत विश्व गुरु बने और महान बने उसलिए हम भारतवासी छोटों से लेकर हम अपना पढ़ाई में जितना ध्यान देंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। जहाँ अनपढ़ रहेंगे तो सभी हमको ठगेंगे। इस तरह भी गीत भी भाषा में है नहीं? तो पढ़ाई कितना आवश्यकता है हम भलीभांति जानते हैं और सारे दिन से इतना सुंदर रूप में पढ़ाए और ग्रेजुएशन तक किए, आदिवासी होते हुए भी पढ़ाई को ध्यान दिए और लक्ष्य रखें आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों का जो सर्वांगीण उन्नति के लिए माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए, माँ बाप हो कितना जिम्मेवारी से, आप लोग तो करते हैं 5 घंटा 6 घंटा आपके पास रहते तो आप जितना देना देते, लेकिन इसका बाद जब घर जाते हैं माँ बाप का पास परिवार में जाते हैं तो माँ बाप बच्चों को किस तरह मॉनिटरिंग किस तरह देखभाल करेंगे तो और सपोर्टिंग होगा, बच्चों भी क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे कि क्या नहीं, तो उनको भी एक पता चले। तो इस तरह पेरेंट्स मीटिंग भी आप कराते होंगे, उस संदर्भ में माँ बाप से क्या अपेक्षा रखते हैं आप?
1: माँ बाप से अपेक्षा रखते हैं बच्चों को नियमित स्कूल भेजे, बच्चों को नियमित स्कूल भेजे, साफ सफाई से भेजे, बच्चों को रेगुलर भेजे।
0: तो श्रोता मित्र और हमारे जो बच्चे का माँ बाप सुन रहे, सर का ये एक मैसेज है, कम से कम बच्चों को भेजो स्कूल में, इसके बाद हमारा काम हमको मिल जाएगा। हम क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए हमको मालूम, हम उसी सब ट्रेनिंग लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। किंतु पढ़ाई के लिए बच्चों को घर से भेजना माँ बाप का काम होता है। कभी कभी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं माँ बाप को सेवा देने के लिए, खेती बाड़ी में गाय व पशु जो पशु है बकरी है भेड़ है उसको चराने के लिए भी भेज देते हैं। कभी कोई छोटे बच्चों को भी मैंने पालन करने के लिए बड़ी बहन को रोक देते हैं, कहीं छोटे बच्चों को कौन संभालेगा घर में, और माँ बाप खेत में चला जाते हैं बा काम में चला जाते हैं, तो छोटे बच्चों को भी लालन पालन के लिए बड़ों को ध्यान देना पड़ता है जिसका चलते स्कूल आ नहीं पाते। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ड्रॉप आउट का मुख्य कारण होता है जो परिवार बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि बड़े बहन जैसे 5वीं क्लास में पढ़े उसका छोटा भाई हो चाहे बहन को घर में संभालने के लिए देखभाल करने के लिए रुकना पड़ता है, तो इसका चलते वो स्कूल नहीं आ पाते। तो इस संदर्भ में जो ड्रॉप आउट बच्चे न हो रेगुलर होने के लिए ये भी एक कारण बन जाता है। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए कि यह करने से माँ बाप बच्चों को रेगुलर भेज सकते हैं, जिसे उनका बहुत सारा कारण है, जिसमें एक एग्जाम्पल बताया छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए बड़ों को रुकना पड़ता है, ऐसे खेत में भी ऐसे भी काम करना। तो क्या करने से ये जो समस्या बा ये जो छोटा सा समस्या तो नहीं कहेंगे, जो थोड़ा सा जो हम लापरवाही करते हैं उसमें अवहेला करते हैं, तो उसमें कैसे मेकअप होगा, क्या करने से अच्छा होगा, उसका तो महत्व को जानना जरूरी है ना।
1: थोड़े बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे जाके थोड़े सही रहेगा, बच्चे शिक्षित होंगे तो उसके माता पिता को भी सिखाएंगे, शिक्षा अच्छी देंगे, ईमानदारी बताएंगे।
0: बच्चे जब जानेंगे जो है हमारा मूल्य क्या है, हम जब स्कूल नहीं जाएंगे हमारा ये नुकसान होगा, जब वो माँ बाप को समझाएंगे, माँ बाप बोले हाँ ठीक, बच्चे जो बोल रहे हैं वो ठीक, हम बोले एक काम को हम थोड़ा और 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर हम करेंगे, बाकी किसी से कराएंगे लेकिन बच्चों से नहीं कराएंगे, ऐसे सोचेंगे। जब बच्चे माँ बाप को समझाएंगे, बच्चे जब समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे और उसका महत्व को जानेंगे, शिक्षा का महत्व को जानेंगे, स्कूल का महत्व को जानेंगे, दोस्त लोग भी ढूंढेंगे आज हमारा दोस्त आज पायल आया नहीं, आज हमारा सुनील आया नहीं, हमारा फलाना आज आया नहीं, तो वो लोग भी जाकर घर से नहीं नहीं चलो चलो आज ऐसे उनको बुलाएंगे तो

0: जरूर आ जाएंगे मिलजुल कर, है कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? अचानक आपका स्कूल में हम पहुंचे और बच्चों का जो अनुशासन को भी देखें, बच्चे इस तरह आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाते हैं आप क्या क्या विषय पढ़ाते हैं?
1: सभी विषय पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश
0: इसमें ज्यादा रुचि?
1: अच्छा, हिंदी में,
0: हिंदी में
1: हिंदी
0: ज्यादा
1: में रखते हैं, इंग्लिश बच्चों को थोड़ी कम आती है।
0: आप स्कूल में जो आपका जो करियर जो बताए बहुत अच्छा लगा मुझे। और दरबार स्कूल में तो स्कूल पीरियड से आप भी एक दिन बच्चे थे, आज तो शिक्षक बन गए, लेकिन बच्चों का समय में आप भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे संगीत में खेलकूद में, किस में ज्यादा रुचि था आपका?
1: रुचि नहीं थी, खेलकूद में थी खाली।
0: तो आप कहाँ से बिलोंग करते, कौन सा गाँव?
1: गणका, गणका ही।
0: पढ़ाई का समय में कौन सा टीचर अभी भी आपको याद आता है, मैडम हो चाहे टीचर हो, कौन सा टीचर आपको अच्छा प्रेरणा दिया जिसका चलते आज थोड़ा सा आप अपना पैर पे खड़े हो पाए?
1: संतरी सिंह राठौड़
0: टीचर थे, क्लास टीचर। और क्या पढ़ाते थे?
1: इंग्लिश।
0: खेलकूद में बहुत पसंद है, गीत संगीत में इतना कम। गणका ग्राम पंचायत का बारे में जो मान लीजिए आपको कोई भाई भाई हमें पूछेंगे इंटरव्यू में, गणका ग्राम पंचायत का बारे में आप क्या जानते हैं? गणका ग्राम पंचायत को एक आदर्श मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं गांव में होना चाहिए, क्योंकि गणका भी बहुत अच्छा गांव है क्योंकि हाईवे का पास ही है, तो गणका के बारे में आप क्या जानते हैं? आसपास का गतिविधि किस तरह, समूह का लोग रहते हैं, उनका दिनचर्या, उनका जो जीवन शैली, जो काम धंधा क्या करते हैं और किस तरह लोग रहते हैं खासकर, और उसका जीविका निर्वाह किस तरह होता है? तो एज ए होल आप गणका निवासी है, तो हमारा सभी गांव भी ऐसे आदर्श गांव बने, तो गणका का बारे में आपका जानकारी हमें क्या जानते हैं वो बताइए।
1: गणका गांव में आदिवासी लोग रहते हैं, मुसलमान है थोड़े, पास में मजदूरी जाते हैं, काम पे जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी मॉडर्न वगैरह, इको में आबू रोड, होटलों पर, दुकानों पर काम पे जाते हैं। होली, होली को गीत गाते और ढोल बजाते और नाचते।
0: बच्चे भी होली खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं? बोलो हाँ जी कि ना जी, होली खेलते हैं?
2: जोर से बोला
0: होली खेलते हैं। और क्या खेल खेलते हैं? होली तो खेलते हैं, और गंगौर त्योहार, मेले, मेला भरता है? मेला भी भरते हैं। अच्छा, मेला में भी जाते हैं? मेला में क्या क्या होता है सुनील, तुम बताओ मेला में क्या क्या मिलता है मेले में जब जाते हैं? तो छोटा सा बच्चे तीसरी क्लास में पढ़ते हैं लेकिन आवाज बुलंद है, बड़े होकर तो बनेगा ही, मास्टर साहब की पुलिस बनेगा, लेकिन मेले में क्या देखने को मिलता है, कौन कौन जाते हैं मेले में?
3: मैं जा रहा हूँ।
0: आप जाता हूँ? मैं जा रहा हूँ। वेरी गुड। आप जाते हैं, किसका साथ जाते हैं? किस, अकेला जाते हैं ना, किसका साथ?
3: मेरे पापा साथ।
0: मेला में क्या देखने को मिलता है सुनील? मेला में क्या क्या देखने को मिलता है?
3: नाश्ता की दुकान, खिलौने की दुकान।
0: जाता है जाने से क्या मजा आता है? क्या खुशी मिलती
3: है?
0: झूला में झूला झूलना चाहिए। और पायल तुम आ जा, देखिए पायल आओ, पायल मेले में जाते हैं? हाँ। मेले में क्या क्या देखने को मिलता है? सुनील का बड़ा बहन है,
3: मेरी दोस्त, मेरी मम्मी, पापा।
0: तो मेले में गीत गाते हैं, मंगरा सा गीत गाते हैं? तुमको आता है थोड़ा बहुत ना गीत? आता है? कौन साथ देगा? थोड़ा बहुत आता है गीत, मंगरा सा गीत आता है? मेले में गाते हैं, गंगौर त्योहार में गाते हैं, होली में गाते हैं? आता है तुमको थोड़ा बहुत? कौन साथ देगा? ओ आ जा। क्या क्योंकि हमारा जो रेडियो प्रोग्राम में आदिवासी बच्चों का जो मिलते, तो छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी गा लेते हैं, है ना? तो और कौन आएगा साथ में आदिवासी गीत गाने के लिए? सोनेल तुम भी गाते हैं? गाता है तुम? आता नहीं तुमको? ये दोनों को आता है ना? पायल गाएगी कि बच्चे गाएंगे? बच्चे कौन गाएगा सुनील बताओ, गाते हैं ये गीत गाते हैं? सुनील बताए। हाँ तब तो ठीक है, सुनील बोला गाते हैं, चलो शुरू करते हैं। आप भी आ जाओ साथ में, आ जाओ कोई कोई, आ जाओ सभी, आ जाओ सभी, आ जाओ। हाँ कौन सा गीत गाएंगे? सुना होली वाला। और
3: होली बाई जाए रे, होली बाई रे जाए, होली बाई जाए रे जाए।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। आज हम मावाड़ी केंद्र पर जो गतिविधि हो रही है वो चीज रखें, तो खासकर सर मावाड़ी केंद्र में क्या क्या बच्चों को मिलता है? अभी तो मिलता है कि नहीं, और ये कोरोना का चलते हैं तो उसका बारे में थोड़ा सा बताएंगे, तो क्या क्या सामग्री آتا ہے اور اس کے بارے میں مارواڑی کیندر پر ناشتہ اور بھوجن بھی سمے سمے بھی بچوں کو دلاتے ہوں گے, تو اسی حساب سے بچے آتے ہیں کیونکہ مارواڑی کیندر میں کیا کیا بچوں کو اپلبدھ کراتے ہیں ان کا سواستھ کو دے کر ان کا بھوجن کو لے کر ہو نا, تو اس کے بارے میں تھوڑا
1: دیکھیے. ناشتے میں پوہے دیتے ہیں, دوپہر میں کھانا, شام کو بھی کھانا دیا جاتا ہے تین ٹائم. سوموار کو پوہے ناشتے میں, دوپہر کو بھوجن میں روٹی ہری سبزی, شام کو روٹی مکس دال. منگلوار کو سنے ناشتے میں, دوپہر کو مونگ کی دال روبی روٹی, ناشتے میں بسکٹ, شام کو کھانے میں روٹی ہری سبزی. بدھوار پوہے, دوپہر کا بھوجن مکس دال روٹی بسکٹ, شام کے بھوجن میں مکس دال روٹی. گروار سنے پلس پھل, ناشتے میں دوپہر کا بھوجن روٹی ہری سبزی بسکٹ, سائنکال روٹی مونگ دال چاول. شکروار ناشتے میں پوہے, دوپہر کے بھوجن میں روٹی دال چاول, ناشتے میں بسکٹ, شام کے بھوجن میں روٹی مکس دال. شنیوار تو ناشتے میں سنے, دوپہر کے بھوجن میں روٹی مکس دال, ناشتہ بسکٹ, شام کو بھوجن میں کھچڑی.
0: اتنا سننے کے بعد ہمارے بچے گھر میں کیوں رہیں گے, بچے تو مارواڑی کیندر ترنت بھاگ کر آئیں گے, کیونکہ جو چیز جو پوشٹکتا گھر میں نہیں ملتا ہے وہ مارواڑی کیندر اسکول میں ملتا ہے. اس لیے بچے کم سے کم سرکار کا جو یوجنا ہے بچوں کا سرواگین انتی کے لیے, اس کو کپوشت بچے نہ رہے, اس لیے سپوشت کے لیے بچوں کو اس طرح دھیان دینا پڑھائی کا ساتھ ساتھ ان کا بھوجن کا ویوستھا بھی ہوتا ہے. بہت اچھا لگا, جاتے جاتے سارے کو دھنیہ واد دیتے ہیں, بچوں کو بھی دھنیہ واد دیتے اس طرح کاریکرم میں جڑے ہوئے ہیں. تو آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پھر کل ملیں گے اسی وقت اسی سمے اور کسی بات کو لے کر. اچھا دھنیہ واد, آواز سنتے رہے کاریکرم میرا گاؤں میرا آنچل ریڈیو مدھوبن.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट केवल और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातें, और सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, आज 15 तारीख है, 15 जून, यानी कि इस महीने के 15 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन और बाकी है। मौसम में हल्की सी बदलाव तो आ गई है, यानी कि बादल छाए हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, सुबह में हल्की अच्छी हवाएं चलती है। आपके यहाँ के क्या मौसम के हालचाल है, आप ज़रूर से हमें बता सकते हैं कॉल करके। और आज का दिन भी बड़ा प्यारा रहा है, सोमवार है, और कई लोग जो नौकरी करते हैं, पेशे करते हैं, तो सुबह सुबह की वो आलस पूरे दिन की रहती है कि सुबह उठना, छुट्टी के बाद के दिन और फिर काम पर जाना। लेकिन जिनके खुद के काम है, बिजनेस है, या जो खेतों में है, या जो अपने खुद के कार्य करते हैं, उनके लिए तो क्या संडे और क्या मंडे, हर दिन एक जैसा ही है। रविवार हो या सोमवार, हर दिन अपने काम को तो जाना ही है। लेकिन जिनकी जॉब है, जो सर्विस करते हैं, उनके लिए की ये बात है। दोस्तों, एक और बात मेरे ध्यान में आई थी कि कल था 14 जून, 14 जून यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, यानी कि रक्तदान का दिन था, विश्व रक्तदान दिवस था कल। और सभी ने कल, जिन जिन्होंने भी रक्तदान किए हैं या जो करना चाहते थे, जिन्होंने किए हैं रक्तदान या कभी पहले रक्तदान किए, तो उनको कल सभी को सम्मान किया गया। और बात यही है कि रक्तदान करना बड़ा ही पुण्य का काम है। कहते हैं रक्तदान करना बड़ा महादान है, क्योंकि ये पता नहीं है कि हम किसको दान दे रहे हैं, कौन हमारा जो रक्त है वो ले रहा है, या रक्त जो ले रहा है उसे ये पता नहीं है कि ये किसका रक्त है, किसने मुझे रक्त दिया है। और हम बहुत सी जानें बचाते हैं, तो सभी से एक और अपील हम ये करते हैं कि अगर किसी ने अभी तक रक्तदान नहीं किया है अपने जीवन में, तो ज़रूर से एक बार रक्तदान करें। बिकॉज रक्तदान करने से ही कईयों की हम जिंदगी को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम परिवारों की या अपने परिवारों में करते हैं, लेकिन औरों की जान बचाना भी हमारा फर्ज बन जाता है। तो ये तो थी बात हमारे रक्तदान की, और अब बढ़ते हैं अपने शो की तरफ, क्योंकि आज की जो हमारी प्लेलिस्ट है, बहुत ही सुंदर प्लेलिस्ट हमने बनाई है। क्योंकि पहला ही नगमा आज हमने शुरुआत कर रहे हैं एक प्यारी सी गज़ल के साथ। तो चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर ये प्यारी सी गज़ल। सुनते रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: मुद्दतों गम पे गम उठाए है, तब कहीं जाके मुस्कुराए है, एक निगाह खुल्लस की खातिर जिंदगी भर फरेब खाए है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे सभी अजीज दोस्तों को मेरा यानी आपके हम सफर का सलाम। दोस्तों, खुशी के नगमे दिल की बातें, कभी कभी दिल की बातें थोड़ी गहरी हो जाती है, और जब बात जज्बातों की हो, यादों के झरोके की हो, तो गज़ल से बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए, गज़ल की बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सर जी, कैसे हैं? बढ़िया, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं, काम कर रहे हैं
0: जी,
1: बातें सुन रहे हैं
0: जी,
1: अच्छी गज़ल भी सुना दी, अच्छी शुरुआत कर।

0: गजल की आपने,
1: हाँ
0: तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि थोड़ी गजल है, थोड़ी शेर शायरी है, थोड़ा सा कोई कव्वाली है, तो
1: जी
0: ऐसे हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर।
1: जी कभी कभी कुछ नया
0: गाने,
1: होना
0: हाँ
1: जरूरी है, गाने
0: नया
1: के
0: होना
1: अलावा
0: चाहिए,
1: कुछ
0: नया होना
1: कव्वाली, कुछ
0: चाहिए,
1: गजल,
0: क्योंकि गाने तो
1: शुरुआत।
0: हम सुनते रहते हैं सर।
1: जी
0: बिल्कुल सर, और बहुत अच्छे हैं हमारे सभी मित्रों को, आपको भी नमस्ते सर।
1: जी हाँ
0: और जो आपने रक्तदान की जो बात की सर, कि हमने तो भी 2 बार रक्तदान किया है, ज्यादा तो नहीं किया लेकिन 2 बार तो जरूर किया है।
1: क्या बात है, कब किया था
0: और
1: आपने
0: आज
1: पिछली
0: तक
1: बार,
0: हमारे
1: लास्ट कब
0: पास
1: किया था?
0: इसका, हाँ आज का अच्छा सर्टिफिकेट भी है मेरे पास अभी, दो दो बार किया था। तो
1: तो पिछली बार
0: पहली
1: जब
0: बार
1: की,
0: तो जो पहली
1: लास्ट
0: बार
1: आपने
0: तो
1: कब
0: जो
1: किया
0: हम,
1: था?
0: हाँ जी,
1: लास्ट पिछली बार मतलब आखिरी बार आपने कब किया था?
0: हाँ वो तो याद नहीं, लेकिन हम लगभग कम से कम 4-5 साल हो गए,
1: अरे
0: 5-6 साल हो गए। तो अभी तो क्या है, साल मेरे 60 ओवर 64 है, तो अभी तो रक्तदान हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम तो 50 साल के अंदर है तब करते थे। तो
1: अच्छा
0: पहली बार जब हमने रक्तदान किया था तो थोड़ा सा डर तो लगता था, लेकिन पता नहीं कब पूरा होगा हमारा वो,
1: बिल्कुल
0: तो हाँ पता ही नहीं चला कि थोड़ी ही सेकंड में हमारा रक्तदान पूरा हो गया।
1: जी
0: और मेरे को सर की जब हम पहली बार रक्तदान करके घर पे आए थे, तो पट्टी लगाई थी, तो हमने किसी किसी को बताया नहीं था कि हम जा रहे हैं रक्तदान करने के लिए।
1: हाँ
0: तो जब घर पे आया तो बोला, देखा सभी ने कि ये क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो रक्तदान किया है। तो सब परिवार वाले बोलने लगे, डांटने लगे कि ये आपने क्या कर दिया, ये रख दे दिया, पैसा निकलना चाहिए, ऐसा होता है ऐसा
1: हाँ
0: होता है। तो
1: हाँ
0: मैंने बोला कुछ नहीं होता है, तो अस्पताल अच्छा होता है, उससे तो हमारा ब्लड भी शुद्ध होता
1: शुद्ध
0: है
1: होता
0: और
1: है, बिल्कुल
0: जरूरतमंद लोगों को हमारा ब्लड काम भी आता है। हम समय पे जो
1: बिल्कुल
0: ब्लड दान है, किसी को रक्तदान दे देते हैं तो किसी की जिंदगी बच जाती है। तो बाद
1: बिल्कुल
0: में पता चला, हाँ बाद में पता चला परिवार को कि नहीं ये
1: बिल्कुल
0: सही है। तो
1: बिल्कुल
0: कभी कभी पहले ऐसा हो जाता है, क्योंकि पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या किया आपने, क्योंकि
1: जी
0: समझ नहीं होती इसलिए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
0: हाँ तो दूसरी बार भी हमने ऐसे कर दिया, तो दूसरी बार तो पता ही नहीं चला कैसे पूरा हो गया। पहले बार घबराहट होता है, लेकिन दूसरी बार तो कुछ नहीं हुआ। तो
1: जी
0: जब हमारे माता जी की जरूरत पड़ी थी, जब हमारे माता जी गिर गए थे तो ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो हमको जब सर्टिफिकेट बताया तो हमको तुरंत ब्लड दे दिया। तो
1: हाँ
0: ये सर हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं लेकिन ब्लड डोनेट करना ही चाहिए।
1: लेकिन सही बात, बिल्कुल सही कहा कि ब्लड डोनेट तो करेंगे, बहुत सारे फायदे भी है, जैसे आपने कहा कि ब्लड शुद्ध
0: फायदे
1: होता है।
0: हमारा शरीर
1: हाँ
0: शुद्ध होता है, हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है, ब्लड तो 3 महीने में पूरा हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: कम्प्लीट सही हो जाता है शरीर में।
1: बिल्कुल
0: लेकिन कभी कभी लोग डरते हैं सर, इसलिए नहीं करते, लेकिन अब जब जागरूक हुए लोग तो करते हैं, सभी
1: जी
0: कई सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं।
1: बिल्कुल, अभी तो काफ़ी मुहिमें चल रही है ब्लड डोनेश करने के लिए, तो काफ़ी लोग
0: हाँ
1: सामने से आगे आते हैं
0: हाँ
1: और अपनी अपने अपने एरियाओं में कैंप लगा करके भी ब्लड डोनेशन की बात करते हैं और
0: हाँ
1: लोग
0: एक बात
1: रक्त भी।
0: बताऊँ सर, कि हमारे जो रेडी मुटवल के एक लिस्टनर है,
1: जी
0: सिपोर वाले हमारे बहुत चिटाकोर हैं, वो हर साल वहाँ आबू में आते हैं, जब वो ग्लोबर में आते हैं, और
1: जी
0: कई लोगों को लेते हैं, तो एक दो नहीं 10-10 लोगों को लेके आते हैं वहाँ ब्लड डोनेट
1: अच्छा,
0: करने के
1: अरे
0: लिए।
1: वाह क्या
0: हाँ
1: बात है
0: ये हमारे मधुबन के लिस्टनर हैं, बहुत अच्छी टाकोर हैं, जो सिपोर वाले हैं, तो
1: जी,
0: कई बार वहाँ आ चुके हैं लोगों को लेके और ब्लड डोनेशन करने के लिए।
1: क्या बात है,
0: तो
1: वाह बहुत
0: ये
1: बढ़िया,
0: भी बहुत अच्छी बात है, हमारे खास मित्र है वो, ये हमारे मधुबन के ही मित्र बने हुए
1: अच्छा
0: हैं। तो ये भी हमारे लिए खास खास बड़ी बात होती है, और करना ही चाहिए, रक्तदान करने से कई सारे फायदे
1: बहुत
0: हैं।
1: बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच
0: बहुत अच्छा लगा सर, आज
1: जी।
0: आपने बात छेड़ी तो मैं जब याद आ गया, तो चलो
1: हाँ
0: मैं भी आपसे बात शेयर कर दूँ। तो
1: जी थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपकी आज
0: बस
1: की
0: आप
1: फरमाइश।
0: गजल की शुरुआत की है, तो मुझे एक गजल और सुननी है,
1: जी
0: जो बहुत अच्छी गजल है, हमारे पंकज उदास जी ने गाई है।
1: जी
0: तो मैं आपको 2 लाइन सुना दूं सर की।
1: बिल्कुल
0: चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान हो गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान हो गोरी,
1: बाकी
0: बाकी
1: सब
0: सब कंगाल।
1: कंगा,
0: बहुत
1: क्या
0: अच्छी गजल है, बहुत
1: बहुत
0: अच्छी गजल गाई
1: जी,
0: है हमारे पंकज जी
1: बहुत ही
0: ने।
1: प्यारी गजल है ये। चलिए
0: बस
1: थैंक,
0: इतना देना सर हमारे सभी
1: बिल्कुल
0: साथियों को, आपको आज के दिन की शुभकामनाएं। सोमवार है, सोमवती अमावस्या है सर, आज बहुत सारे लोग जहाँ गए हैं वहाँ तीर्थ यात्रा में गए, कोई नहाने के लिए, कोई गंगा घाट पे हरिद्वार में गए हैं।
1: अच्छा।
0: कई सारे लोगों को आज ये मौका मिला है सौभाग्य अवश्य का।
1: अच्छा,
0: नमस्ते सर। नमस्ते,
1: चलो थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी सुन रहे थे उन सभी की तरफ से आपको भी नमस्कार। और ये थे हमारे सुरेश जी, और आज गज़ल की बात हुई तो गज़ल की फरमाइश एक और हमारी आई। लेकिन जब हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले गानों की, जो गाना हमने गज़ल सुना था, तो आज से ठीक 32 साल पहले यानी कि साल 1994 में संगीत की दुनिया में एक एल्बम आया था जिसका नाम था गुलफाम। जी हाँ, ये गुलफाम एल्बम का ये गाना था। इस एल्बम को अपनी जादुई आवाज़ से सजाया था उस्ताद गायक हरिहरन साहब ने, और इसके अल्फाजों को कागज़ पर उकारा था मशहूर शायर कुमार बारब का बावी ने, शायद ऐसे कुछ नाम है। इस एल्बम की गज़ल ऐसी है जो जब भी कानों में पड़ती है तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है, दिल के किसी कोने में दबी वो पुरानी यादें जिन्हें हम शायद भूल चुके थे या भुलाना चाहते थे, वो अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये कुमार साहब ने लिखा, क्या खूब गाना है, मुझे फिर वही याद आने लगे जिन्हें भूलने में जमाना लगने लगे। चलिए फिर से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े, उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: नमस्कार बाबू जी। नमस्कार।
1: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
2: बस जब आप आ जाते हैं तो हमारे दिल की कलियां कलियां खुल जाती है।
1: क्या बात है,
2: बस और रोम रोम में आप खड़े हो जाते हैं।
1: क्या बात है, अरे वाह, थैंक यू सो मच।
2: माल तो और छोटे होते हैं लेकिन आप उनसे भी छोटे हो यार।
1: अच्छा।
2: क्या कहना है, आपके सामने रोम रोम में बसे हुए आप तो।
1: अच्छा,
2: इसलिए आप के लिए मैं ऐसा गाना ढूंढ के लाया हूँ।
1: जी,
2: क्या कहना है,
1: क्या कहना है, वाह।
2: क्या तो गाने पे बोल सुना दे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुना दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके बोल को सुनने के लिए।
2: आप
1: अच्छा, ऐसे कहाँ से ढूंढ के लाए हो, बताइए कहाँ से ढूंढ के लाए?
2: ढूंढ के लाए मैं
1: जी,
2: मूल गगन के उड़ने वाले बादल।
1: हाँ, दूर गगन में
2: मूल गगन के उड़ने वाले बादल।
1: हाँ,
2: धूप में जलने वाले खेत।
1: हाँ,
2: धूप में जलने वाले खेत। ये फिल्म का नाम है छाया।
1: फिल्म का नाम है छाया।
2: हाँ,
1: अच्छा
2: ठीक है
1: ठीक है।
2: दूर गगन के उड़ने वाले बादल,
1: दूर गगन से उड़ने वाले बादल, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं हम आपके लिए गाना प्ले करें। जी जरूर से कोशिश करेंगे भूरीलाल जी, और थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपका दिन मंगलमय हो।
2: साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेश भाई जी, आवाज सुन रहा था लेकिन मैं हाथ पांव धो रहा था।
1: हाँ,
2: बराबर आवाज भी आई खेत से अभी आया मैं।
1: अच्छा, तो अभी अभी तो आपके खेत वगैरह में सब सब ठीक चल रहा है?
2: अभी उड़न बोए थे, उड़न बोए थे।
1: हाँ,
2: उनको खड़ा लेकर के अभी आया हूँ मैं घर पे।
1: अच्छा,
2: क्या
1: बात है, अरे वाह, थैंक यू सो मच।
2: रोंगटे के साथ में मैंने हाथ में ढेर मेरे रोंगटे भी सो गए। भूख के अंदर बात डालना, पहले कितनी घड़ी बोलोगे अच्छा रहेगा, कितनी घड़ी बात करोगे अच्छा रहेगा।
1: चलो थैंक यू सो मच बुरी जी आपका कॉल करने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए रेडियो मधुबन को। जी हाँ दोस्तों, तो यही बात है, जब हम बातें करते हैं रेडियो पे और लोग हमें इतना प्यार देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो अगला नगमा है, गाना है, कि आपने पहले भी सुना है, क्योंकि कई बार होता है कि किस्मत की हवा कभी कभी नरम भी हो जाती है और गर्म भी हो जाती है। चलते ही सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहा है टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माय लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10 ईयर ओल्ड बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट्स डिक्लेयर होने होता ना तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट्स, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, फिर से आप सभी को स्वागत है। अभी जो हमने गाना सुना ओ बेटा जी बाबू जी, आप सभी ने पहले भी इस गाने को सुना है और सभी को पता है फिल्म अलबेला का ये गाना है। श्री रामचंद्र जी इसके संगीतकार थे, गीतकार राजेंद्र किशन जी और गायक चित्रलकार जी थे जिन्होंने ये गाना गाया था और बहुत ही खूबसूरत सा यह गाना है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले नगमे की ओर, बिकॉज जब हम गज़ल की बात कर रहे थे और गज़ल हमने सुना था तो सुरेश जी ने हमें एक प्यारी सी नगमे की ख्वाहिश जताई थी और वो ख्वाहिश हम उनकी पूरी करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे पल। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातों पर। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। अभी जो हमने गाना सुना, गज़ल जो सुनी हमने, जफ़र गोरखपुरी जी की लिखी में, जिन्होंने इस गाने को लिखा है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तरीके से किसी की खूबसूरती को लिखा है, किसी की तारीफ को लिखा है। जी हाँ, सोने जैसे बाल है उसके, चांदी जैसा रंग, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बहुत ही बेहतरीन बोल लिखे हैं। जिस तरह किसी की खूबसूरती को तराशते हैं या किसी की तारीफ करते हैं, तो इससे बेहतरीन तरीके से हम कैसे किसी की तारीफ को कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वे में किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। ये भी हमारी एक फरमाइश थी हमारे प्यारे भूरीलाल जी की तरफ से, जिन्हें आज नीले गगन पर उड़ते बादल दिख गए और कहते हैं आ आ धूप में जलते खेत हमारे, कर दे तू छाए। बिकॉज आज भूरीलाल जी खेत में थे, जैसे उन्होंने बताया कि खेत से आए, हवाएं चल रही है, खेत में कुछ उन्होंने उगाया है, बोया हुआ है, तो आज उन्हें ये गाना पसंद आ रहा है। तो चलिए सुनाते हैं उनको अपना ये पसंदीदा गाना। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलते खेत हमारे कर दे तू छाया। यहाँ दोस्तों जब इतनी कड़ी धूप हो और धूप में काम करते जब हमारे किसान भाई काम करते और पूरे धूप से बदन जलता है, खेत पूरे जलते हैं, तब ये प्रार्थनाएं होती है कि नील गगन में जो उड़ते बादल है वो आ जाए और हल्की सी छांव दे दे ताकि हम काम अच्छे से कर सकें। यहाँ हमारे देश की मिट्टी में एक अलग ही सौंधी खुशबू है, हमारे खेत, हमारे किसान और नीला आसमान में गिरते बादल। ये सिर्फ प्रकृति का नज़ारा नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी का आईना है। जब कड़ी धूप में खेत जलते हैं तो एक किसान का दिल सिर्फ बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देखता है और वही उम्मीद एक खूबसूरत प्रार्थना बन जाती है जो अभी हमने इस गाने में सुनी। साल 1965 में आई फिल्म खानदान का ये नगमा जब भी बजता है मन पूरी तरह शांत और पवित्र हो जाता है। संगीतकार रवि जी का संगीत और राजेंद्र कृष्ण साहब के लिखे ये अद्भुत लव्स एक अलग ही जादू भी करते हैं और जब मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की पाक आवाज़ इसे मिलती है तो ऐसा लगता है मानो हर दुख दूर हो गया हो। और जब पर्दे पर सुनील दत्त साहब एक सीधे साधे किसान के रूप में और उनके साथ भोलेपन से भरी नूतन जी इस प्रार्थना को गुनगुनाती है तो मिट्टी की वो सच्ची पुकार दिल के पार उतर जाती है। ये गाना हमारी मिट्टी, हमारी खेती और ईश्वर पर हमारे विश्वास के एक हसीन गीत है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस गाने के बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। एक और नगमा है, हमारी फरमाइश आई है हमें मैसेज के द्वारा। हमारे एक खास मित्र है जो अहमदाबाद में रहते हैं और उन्होंने हमें ये फरमाइश भेजी है कि जब गगन की बात हो रही है, नीले नीले गगन पर उड़ते बादल की बात हो रही है, तो गगन पे एक चीज़ और है, वो है चांद, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, बहुत ही प्यारा नगमा अभी हमने सुना, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, फिल्म कलाकार का ये गाना। इंद्रवर जी इसके गीतकार थे, गायक किशोर कुमार साहब जी ने इसे गाया था, संगीतकार थे हमारे बप्पी लहरी साहब। ये वो दौर था 1983-80s का, वो दौर था जब बप्पी लहरी जी ने जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपने म्यूज़िक को एक मुकाम दिया था, जहाँ पे हिट गानों की लाइन लगी हुई थी और एक डांस स्टेप जो बहुत ही मशहूर हुए थे, जिसको हम हिप हॉप कह सकते हैं या फिर वेस्टर्न डांस की बात कर सकते हैं या फिर डिस्को डांस की बात करते हैं, हम डिस्कोस की बात करते हैं, ये गाने बहुत ही मशहूर हुए थे और बप्पी लहरी साहब थे उस वक्त उन सभी म्यूज़िक के पीछे। तो बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बिकॉज अगला नगमा है ये भी हमारी एक फरमाइश है, हमारे खास मित्र ने हमें इसे फरमाइश किया है, मदन लाल जी ने। और मदन लाल जी कहते हैं कि जाने हम सड़क के लोगों से क्यों लोग जलते हैं। चलिए सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये नगमा है और फिर हम लेते हैं आपसे विदा, फिर कल करने का करते हैं वादा, मिलने का करते हैं वादा, क्योंकि वक्त भी हो चला है। और जो अगला कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य, तो बैक टू बैक कुछ गाने हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जाने क्यों हम सड़क के लोगों से महलों वाले जलते हैं। आशा मूवी का ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आवाज़ थी दर्द भरी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब बिल्कुल दिल टूट जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी अपनी ज़िंदगी में हो जाती है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आवाज़ है बिल्कुल सुनने का मन होता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा है, इस गाने के बोल है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन लेकिन मन नहीं कर रहा अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। चलिए तो सुनते हैं आप सभी के साथ विदाई से पहले ये गाना, क्योंकि दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ से इस वक्त जाने का, लेकिन जाना तो है, समय हो चला है, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी वेट कर रहा है लाइन पे। लेकिन हम और आप यूं ही बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और कल फिर मिलेंगे, कल फिर आपसे बात होगी। कल आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर, अपनी फरमाइश हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय, थैंक यू।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, स्वास्थ्य को सहज बनाने की मुहिम अगर हर व्यक्ति झेल ले तो बीमार पड़ना मुश्किल हो जाएगा, स्वस्थ रहना आसान हो जाएगा। व्यक्ति जब स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना चाहता है तो प्राय यही चीज सुनने और देखने को मिलती है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा आहार हो, अच्छा विहार हो, अच्छा व्यवहार हो। लोग एक्सरसाइज करते हैं, सैर करने जाते हैं, वॉकिंग इत्यादि करते हैं, भोजन के प्रति भी बहुत सारे लोग परहेज करते हैं, मगर ज्यादातर लोग भोजन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में तब तक जागरूक नहीं होते जब स्वास्थ्य के कुछ एक चीजें गड़बड़ा न जाए। प्रायः ये देखा जाता है कि हम कमाई करने में, अपने रोज की दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को लास्ट नंबर पे रखते हैं, और इसकी वजह से जब शरीर बीमार पड़ता है तो हमारा धनोपार्जन या हमारा काम या जो भी चीज हम करते हैं उससे छुट्टी लेनी पड़ जाती है अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। क्या ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखें ताकि हमें स्वास्थ्य के लिए छुट्टी लेना ना पड़े। वैसे भी स्वस्थ रहना एक वरदान ही है। आइए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और क्या करने की जरूरत है, इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से ये एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां से आज ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली है कि व्यक्ति बीमार पड़ता है तो छुट्टी लेना पड़ता है कि भाई शरीर को आराम दें, ठीक करें गाड़ी को, तब जाके वापस मैं काम पे लौट सकूं। और अक्सर ये चीज देखा जाता है कि हम काम या मेरी पढ़ाई या जो भी चीज मैं कर रहा हूं धनोपार्जन के लिए, उसमें इतना ज्यादा मैं मशरूफ हो जाता हूं कि मैं ये भूल जाता हूं कि शरीर मुझे कोई सिग्नल्स भी दे रहा है कि भाई गाड़ी में थोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसे ध्यान देते तो शायद छुट्टी लेके अस्पताल जाके ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो छोटे सिग्नल्स को ही देख के मैं घर पे उसे रिपेयर कर लेता। क्या ऐसा संभव नहीं
1: भैया? सबसे पहली बात कि आदमी पहले अपना शरीर खर्च करता है पैसा कमाने के लिए, और फिर पैसा खर्च करता है अपना शरीर बचाने के लिए। तो हमारा और आपकी सोच ये है कि हम अपने शरीर को इतना न खर्च करें कि हमको बीमार पड़ना पड़े। हम अगर अपने शरीर को ऑप्टिमम भोजन, अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज और उसको अच्छी तरीके से रखेंगे तो हमारा शरीर अच्छी तरह से चलेगा। जैसे आपने, हमने मैकेनिक्स की बात की, गाड़ी की बात की, तो गाड़ी खराब होने से पहले ही अगर हम उसको समय समय पर सर्विस कराते रहें, उसको अंदर से पोछ के उसमें धूल न जमने दें, उसको साफ रखें, तो गाड़ी ज्यादा सुंदर से लगती है और लंबे समय तक चलती है। वही चीज हमारे शरीर के साथ है। अगर हम शरीर की देखभाल ठीक से करेंगे, उसे अच्छा भोजन देंगे, अच्छा व्यायाम देंगे और अच्छा आराम देंगे। सबसे जरूरी है कि कोई भी अगर मशीन रेगुलर चल रही है तो उसे आराम की भी जरूरत है। तो स्वास्थ्य अपने शरीर को देने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम और अच्छा आराम, ये तीन चीज अगर दे दीजिए तो पूरी उम्मीद है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर कोविड का एग्जाम्पल लूंगा, जिन्होंने अच्छी एक्सरसाइज की थी, जिन्होंने अच्छा भोजन किया था, उनकी सीवियरिटी कम रही। जिसको कोई साइडलाइन डिजीज थी, जो बीमार थे या जिनको कोई और बीमारियां चल रही थी, उनको ज्यादा परेशानी। तो ये हम देख चुके हैं कि अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो सुंदर शरीर भी रहेगा।
0: ये बड़ी मजेदार बात आपने कही, और गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई महामारी या कोई स्वास्थ्य संबंधी विश्वव्यापी समस्या भी हमारे सामने आती है, कोई नई मुसीबत भी आती है, तो भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, जिसका आहार अच्छा है, जो अच्छा व्यायाम कर रहा है, अच्छा आराम कर रहा है, वो बेहतर तरीके से नई समस्याओं को, नई बीमारियों को डील कर सकता है, बजाय उसके जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी न किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है या फिर उसके स्वास्थ्य संबंधी जो आदतें हैं वो ठीक नहीं है। अगर आप गलत भोजन करते हैं, गलत दिनचर्या आपकी है, तो ये आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक है, आपको एक रिस्क पर डाल देता है। दोस्तों ये हम सब के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात है और मैं समझता हूँ इस चीज को समझकर हम अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन अपने शरीर को ख्याल रखने के लिए लाना भी शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि आहार के बारे में जब बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं एक संतुलित आहार की आवश्यकता है, एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा किया, हमने प्रोटीन्स के बारे में भी चर्चा की। अब एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोग सुनते तो हैं और इस शब्द से कुछ लोगों को डर भी लगने लगता है, वो है फैट। और जब भी हम फैट कहते हैं तो अंग्रेजी में फैट शब्द को हम मोटापा कह के ट्रांसलेट कर देते हैं, अरे वो तो बहुत मोटा है फैट।

0: खा रहे हैं उसको हम फैट मानते हैं। जितना जरूरी हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी देने के लिए, जितना जरूरी प्रोटीन है हमारे लिए शरीर की संरचना बनाने के लिए, उतना ही जरूरी हमारे लिए फैट है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप मोटा मोटी ये समझिए कि जो मोटा होता है वो थोड़ा थुलथुला होता है, थोड़ा सा वो फ्लफी होता है। तो फैट का सबसे बड़ा जो काम है वो सारे अंगों को कुशन देना। जितने भी हमारे अंग हैं, जो हमारे शरीर की सुडौलता है, उसमें भी फैट का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी में फैट को वसा कहते हैं। और ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और ये हमारा भोजन का सुपर स्टोरेज है। आप देखिए, ठंडे देशों में कहा जाता है कि अच्छा फैट खाओ क्योंकि शरीर गर्म रहेगा। इवन हमारे इंडिया में भी ठंडक के समय फैट खाओ शरीर गर्म रहेगा। और आपके और हमारे राजस्थान में तो ये कहा जाता है, अरे घी डालो भाई, शरीर की ताकत कहां से आएगी। तो आप ये देखिए, ये बॉडी फ्यूल है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे बॉडी को शेप देता है। और हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ए डी ई के। अगर हमारे भोजन में फैट नहीं होगा तो ये चारों विटामिन हमारे शरीर में मिल ही नहीं सकते हमको, क्योंकि ये चारों विटामिन फैट में ही मिलते हैं, उनमें ही घुलते हैं, उनमें ही इनका या सॉल्वेंट फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इनकी हमको बहुत जरूरत है। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारे भारत के सैनिक जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, जो माएं बच्चा पैदा कर रही हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन सबको फैट की जरूरत है, उनको ताकत की जरूरत है। हर बढ़ते बच्चे को भी फैट की जरूरत है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी फैट की जरूरत है, क्योंकि जो विटामिन्स के बारे में मैंने बताया वो हमारे हार्मोन्स हैं, उनको फैट की जरूरत है। हमारी कुछ मेम्ब्रेन्स हैं शरीर में या झिल्लियां हैं हमारे शरीर के अंदर जिनमें हमको फैट की जरूरत है। तो इसलिए फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: ये तो बात समझ में आती है कि हाँ, फैट को मतलब कहते ही मोटा नहीं समझना होता है, ये भोजन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। और ये भी भोजन में अगर ना हो तो फिर ये भोजन का एक हिस्सा कम हो गया, ये समझ सकते हैं। और ये कैसे शरीर के लिए लाभदायक है, ये बात समझ में आ रही है। अब जब फैट की आवश्यकता हमें समझ में आ रही है कि भाई व्यक्ति के शरीर में गर्मी देने के लिए अंगों को जो कुशन देने का वो काम करता है, एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये बात समझ में आती है। जैसे आपने कहा, सर्दियों के दिनों में तो हम ये कहते ही हैं, और राजस्थान में जैसे सर्दियों के दिन आते हैं वैसे घी में बनी हुई मिठाइयां ज्यादा हो जाती हैं, हर चीज के ऊपर घी एक्स्ट्रा से लगा के आपको दिया जाता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये भी एक दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है कि फैट कितना खाया जाना चाहिए, भोजन में उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या हर दिन हमें फैट खाने की जरूरत है, वसा की मात्रा हर दिन चाहिए, अगर चाहिए तो कितना।
0: रोज भोजन में जितना इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उतना ही इंपॉर्टेंट फैट है। मोटा मोटी 12 से 14 ग्राम फैट प्रतिदिन एक वयस्क व्यक्ति को लेना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। फैट हमको दो मेजरली दो सोर्सेस से मिलता है, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। और प्लांट सोर्सेस में जितने भी ऑयल्स हैं, घी हुआ, हमारा सरसों का तेल हुआ, सूरजमुखी का तेल हुआ, वो उन सब में हमको फैट मिलता है। और कुछ बीजों में, जैसे जितने ड्राई फ्रूट्स हुए, बादाम हुआ हमारा, उसमें हेजलनट हुआ हमारा, काजू हुआ, उन सब में फैट है। और आप एनिमल सोर्स में चाहिए तो फिश ऑयल्स हैं, या जितने भी हम मीटी प्रोडक्ट्स खाते हैं, रेड मीट है, उसमें भी जरूर थोड़ा सा जो फैट है वो है। तो हमको एनिमल सोर्स, जानवरों से जैसे दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, उन सब में भी थोड़ा मोटापा है।

0: तुम, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स दोनों से हमें फैट मिलता है। ये देखा गया है कि प्लांट सोर्स इज मच मोर इजिली डाइजेस्टेबल देन द एनिमल सोर्स। और अब थोड़ा सा जो फैट की बुराई हुई है वो एक्सेसिव एनिमल सोर्स से लेने की वजह से हुई है, कि उसकी वजह से बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स लोगों को हुई है, इसीलिए फैट बदनाम हुआ। और फैट दूसरा बदनाम हुआ कि स्वाद के लिए जिन्होंने ज्यादा घी डाल लिया वो मोटे हो गए और उससे शरीर थोड़ा सा बिगड़ गया, और कुछ लोगों ने ज्यादा बिगाड़ लिया अपने आप को, तो इसीलिए फैट बदनाम हो गया। अगर हम देखा जाए तो पुराने लेक्चर्स में जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेकर भी हम मोटे हो गए, ज्यादा फैट लेके भी हम मोटे हो गए। तो हर चीज को अगर हम एक बैलेंस रूप में खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो अच्छा भी रहेगा और वो हमारे शरीर की सेहत को भी ठीक रखेगा।
1: जैसे आपने ये बात कही, ये बात समझ में आती है कि आज हम फैट की आवश्यकता को समझते हैं, फैट कहाँ से आता है ये भी चीज समझ में आता है। ज्यादातर लोग फैट को तेल के रूप में जब हम देखते हैं, वो सारे तेल बीजों से हमें मिलते हैं, मूंगफली का तेल हो गया या सूरजमुखी के बीजों का हो गया, अलग अलग चीजों से हम तेल निकालते हैं और उन तेलों को हम इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे पशुओं की बात अगर हम करें तो मक्खन घी इत्यादि तो हम दूध से निकालते ही हैं, जो गाय से भैंस से हमें मिलती है। अब भोजन के लिए जितना आवश्यक है, मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा इतने ग्राम की आवश्यकता है, 20 ग्राम से कम की आवश्यकता एक दिन में है। और मैं अगर अपने ही बारे में सोचूं तो मैं समझता हूँ मैं एक दिन में तो कई गुना ज्यादा फैट का इस्तेमाल मेरे भोजन में हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तेल में बनती हैं। अगर मैं दिन में 3 वक्त नाश्ता करता हूँ, दोपहर का भोजन करता हूँ, रात्रि का भोजन करता हूँ, तो हर चीज में लगभग तेल का इस्तेमाल है। सब्जियां बन रही हैं, दाल बन रहा है, नाश्ते की चीजें बन रही हैं, अगर उसके ऊपर मैंने पूरियां खा ली या फिर कुछ तले हुए पकौड़े खा लिए, तो उसमें तो फैट जितना आप कह रहे हैं उस लिमिट से तो बहुत ज्यादा ही हर दिन मेरे भोजन में जा रहा है।
0: अगर आप रोज पूरी और रोज पकौड़ी खा रहे हैं तब जा रहा है, और अगर आप रोज पूरी पकौड़ी और अच्छी अच्छी तली हुई चीजें खा रहे हैं और अपनी कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, पानी पीने के लिए भी कहीं दूसरे आदमी को आवाज दे के कह रहे पानी ले आओ, आप अपने जो आपके घर में आपके सेवक हैं या स्टाफ हैं उनको बोल रहे हैं अरे जरा पंखा चला दो, अरे ट्यूबलाइट बंद कर दो, तो इस तरीके की अगर आप काम कर रहे हैं तो सच्ची आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मगर आप जो भी खा रहे हैं उसको अच्छे से पचा रहे हैं और फिर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप जो मात्रा है उससे ज्यादा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फैट का इंटेक आपके भोजन में मौसम के ऊपर भी असर करता है। ठंडी जगह के लोग ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं एज कंपेयर टू गर्म जगह के लोग। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप जिस जगह रहते हैं उस तरह का फैट आप खाना शुरू करते हैं और वो चीज आपके लिए हमेशा लाभकर और हितकर रहती है। जैसे राजस्थान में घी का प्रचलन है, सनफ्लावर ऑयल का प्रचलन है, आप डाउन साउथ में जाइए तो आपको कोकोनट ऑयल का प्रचलन है, हमारे अप नॉर्थ में आपको सरसों का तेल और घी का प्रचलन है। तो जो चीज जिस एरिया में बनती है, आप बंगाल साइड चले जाइए वहां फिश ऑयल बहुत कॉमन है, जो चीज जिस एरिया में बनती है जिस एरिया में मिलती है वो आपके एरिया के हिसाब से बेस्ट है और आपके शरीर के लिए भी बेस्ट है। हम लोग जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो हमें भोजन का स्वाद अलग लगने लगता है और हमको लगता है अरे यार क्या बना दिया, इसमें तो ये डाल दिया, तो लोकल बना हुआ तेल उस एरिया के लिए बेस्ट माना जाता है।
1: ये बात समझ में आती है कि भोजन जो हम खा रहे हैं उसमें फैट या वसा एक आवश्यक चीज है और उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए वो हमें ध्यान रखना है, और जहां जो चीज मिलती है फैट के जो सोर्स हैं उसके आधार पर वो चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। और जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि अगर मैं अधिक मात्रा में वसा या फैट की चीजों को अपने शरीर के अंदर डाल रहा हूँ, खा रहा हूँ तली हुई चीजें इत्यादि, और अधिक मात्रा में तेल घी इत्यादि जा रहा है, तो उसी मात्रा में उसका खपत भी होना आवश्यक है, उतना खर्चा होना भी आवश्यक है। अगर मैं घूमता फिरता हूँ, फिजिकल वर्क ज्यादा करता हूँ, तो फिर वो चीज होती है। अगर हम बैठे रहते हैं या फिर हमारा काम ज्यादा फिजिकल नहीं है, शारीरिक क्रियाएं ज्यादा नहीं हो रही हैं हमारे से, हाथ पैर हम नहीं चला रहे हैं, तो फिर ये नुकसानदायक हो सकता है। अब जैसे आप थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि फैट के बारे में एक ऐसा कहा जा रहा है, यूं कहें सोशल मीडिया में हो या मीडिया में हो या लोग यहाँ जो चीजें सुन रहे हैं, आजकल फैट को एक बहुत ही बुरी नजर से देखा जा रहा है, उसको मतलब एक शत्रु की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अरे अरे ये तो बहुत तेल हो गया, अरे नहीं नहीं घी बिल्कुल नहीं खाना है, इसमें ये डालना नहीं है, इत्यादि चीजें कही जाती हैं। अक्सर लोग कभी घर पे मेहमान घर आ भी जाते हैं, कोई घी वाली चीज दे दी जाए या कोई तली हुई चीज दी जाए, तो भी वो कहते नहीं बस एक पीस काफी है, हम ज्यादा नहीं लेते। तो ये भी चीज एक बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है। आजकल के युवाओं में भी हम ये चीज देखते हैं, एक तरीके से कोई अच्छी भी चीज हो सकती है, मगर खासकर जो कन्याएं हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, वो अपने डाइट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, वो कुछ भी तली हुई चीजों को नहीं खा रही, कोई घी नहीं खा रहे हैं, वो बोलते हैं नहीं हम मोटा नहीं होना चाहते, हम बस सलाद पे जी रहे हैं, और ये सारी चीजें भी सुनने को मिलती है। तो ये चीजें क्या है
0: भैया? सबसे बुरी बात है स्पेशली फॉर कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, वो अच्छी चीज छोड़कर बुरी चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी भी कॉलेज की कैंटीन में चले जाइए, आपको वहां पे बर्गर और पिज्जा मिल जाएगा, आपको मैगी मिल जाएगी, आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी, आपको जूस की बोतल और डब्बे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी पूरी सब्जी अब बहुत कम कैंटीन्स में सर्व हो रहा है। हर कॉलेज कैंटीन एक पैक्ड फूड ही बना के बेच रहे हैं। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा, ओ प्लीज डोंट सर्व मी पूरी, इट हैज वेट। और वही बच्चा फिर मुझे किसी एक बड़े जॉइंट में जाके बर्गर खाते हुए दिख जाता है, आपको बच्चे मिठाई के लिए मना करते हुए दिख जाएंगे, और वही बच्चा एकदम एक कोल्ड ड्रिंक की बड़ा ग्लास पीते हुए दिख जाएगा। मैं सबको बोलता हूं, ईट गुड क्वालिटी फूड प्लीज। आपके घर का बना हुआ पूड़ी लाख गुना अच्छी है बाजार में बने हुए एक फ्राइड बर्गर से। आपके घर में मतलब जो मिठाई हम देसी मिठाई खा रहे हैं, वो लाख गुना अच्छी है उस कोल्ड ड्रिंक से। उसमें आप सरप्राइज होंगे, लोग बोलते हैं वो मैं चीनी का शरबत पी सकता हूँ, जरूर पीजिए सर। आप कोल्ड ड्रिंक में जहां 13 से 26 चम्मच चीनी है, वहां आप 2 चम्मच चीनी पी रहे हैं, एक जो शिकंजी बना के पी रहे हैं, आप घर में कोई शरबत पी रहे हैं, आप देखिए कितना डिफरेंस है उस चीनी में और इस चीनी में। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, और यू नीड फैट, बिकॉज अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो आपके 4 विटामिन आपके शरीर में नहीं जाएंगे, और प्लस आपके बहुत सारे हार्मोन्स नहीं बनेंगे जो आपके शरीर को ठीक करने में बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा फैट नहीं खाएंगे, आपके त्वचा खराब हो जाएगी, आपको जल्दी झुर्रियां पड़ जाएंगी। लोग क्या कर रहे हैं, वो आधा ज्ञान लेकर पूरा पागल हो गए हैं, और पीपल आर मच मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स। मैं एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। वाइल ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मुझे रशियन बैलेरिनास मिली जो कि बैले करती थी, और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उनके बॉडी में थी, एंड देन दे बिकेम योगा टीचर्स। तो वो फिजिकल आसन कर रही थी, वो अपने शरीर को बेस्ट मतलब हम लोग से ज्यादा अच्छा वो आसन कर दे रही थी, बट वो और वो कह रही थी दे आर वेरी गुड योगा टीचर्स, दे वर नॉट योगा टीचर्स, दे वर ओनली डूइंग वन पार्ट ऑफ योगा विच वॉज आसन। यम नियम के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम था, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में कुछ नहीं मालूम था, बस वो आसन और प्राणायाम पे लगे थे। तो वो जो कहते हैं ना योग का जो फिजिकल पार्ट है उसी पे वो कंसंट्रेटेड थे। तो हमारे यहाँ लोग फैट जो है उसको इसलिए हीन भावना से देख रहे हैं कि वो हमारे फिजिकल पार्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम एक्सरसाइज करें, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम घूमें टहलें, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात नहीं खाओ।
1: डॉक्टर साहब इसी मोड़ पर मुझे रुकना होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि घड़ी इशारा कर रही है कि बातों बातों में वक्त इतना हो रहा है। यानी ये बात आज की बातचीत से समझ में आती है कि फैट भोजन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये हमें पता है कि भाई हम एक दिन में 20 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं खाएं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए फैट क्या करता है, शरीर में गर्मी प्रदान करता है, साथ ही साथ वो बॉडी के अंगों को कुशनिंग प्रदान करता है, और साथ साथ फैट के प्रति ये जो घृणा का भाव है कि भाई ये बहुत नुकसानदायक, ये सही नहीं है, हेल्दी फैट्स भी हैं, उन चीजों को समझना है, जो लोकल वैरायटी है फैट्स जहां से आते हैं, जैसे पेड़ पौधों से आ रहा है, जो बीजों से आ रहा है, मूंगफली ही सरसों की बात की या सूरजमुखी के सीड्स की, या दक्षिण के क्षेत्रों में जहां पर नारियल से तेल इत्यादि निकलता है, इन सभी चीजों को हम समझ रहे हैं और सही मात्रा में फैट का इंटेक आवश्यक है और उतना ही कसरत करना भी जरूरी है, शारीरिक क्रियाकलाप भी करना जरूरी है। और भी फैट से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे और आज डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और फैट के बारे में इतनी अच्छी समझानी दी। मैं सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
0: धन्यवाद, ओम शांति।
1: दोस्तों आज फैट के बारे में जो चीजें समझी है उसकी उपयोगिता को समझकर सही इस्तेमाल करना सीखें। सिर्फ यहाँ वहां की जानकारियों को सुनकर किसी चीज को बुरा कहना सही नहीं है, ये हमारे संतुलित आहार का एक अभिन्न अंग है, वसा का होना आवश्यक है मगर उसकी मात्रा पर ध्यान दीजिए। अगर आप फैट खाते हैं, हर दिन आपकी मात्रा में फैट की मात्रा ज्यादा है, उसे कम करने पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ शारीरिक कसरत के बारे में, टहलने के बारे में, जो आप खा रहे हैं उसको पचाने के लिए जो मेहनत चाहिए उस पर भी ध्यान रखें। कल फिर होगी मुलाकात सहज स्वास्थ्य में, आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा।
1: चलो चलो बैठो रेडियो के पास, क्योंकि सपनों की सैर कार्यक्रम का वक्त हो गया है। 9:30 बज गए हैं और याद है ना बच्चों, आजकल हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं।
2: हाँ, तो आज हमारे एक प्यारे से बच्चे का ये प्रश्न है, सुनते हैं उसकी ही आवाज में।
1: ज्योत्सना ने भी बहुत अच्छा सवाल भेजा है।
3: मेरा भाई मेरी चीजें छीन लेता है, गुस्सा आता है, मम्मी कुछ नहीं कर।
2: अरे बच्चों, छोटे छोटे झगड़े तो भाई बहन में होते ही रहते हैं, और अगर प्यार से भी बात की जाए तो लड़ाई भी नहीं होगी।
1: और उससे कहो, भैया मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे करते हो, कभी कभी उसे अपनी चीज भी दे दो, देखना वो भी सीखेगा बांटना।
2: हाँ, मम्मी से भी बात करो, लेकिन अच्छे से, प्यार से, शांत स्वर में।
1: प्यार के बीज बो और भरोसे का पेड़ उगेगा।
2: और वैसे देखा जाए तो भाई बहन के झगड़े में तो प्यार होता ही है ना परी?
1: हाँ बिल्कुल मनी दीदी, झगड़े तो होते हैं लेकिन पीछे तो प्यार ही समाया होता है।
2: और आप जब बड़े हो जाएंगे तो अपने इन्हीं छोटे छोटे झगड़ों को आप याद करेंगे और खूब हंसेंगे।
1: हाँ तो चलो बच्चों, देखा अब ऐसे झगड़े मत करना, ये सभी के लिए है। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
2: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो
1: रेडियो मधुबन।

0: and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: चलो बच्चों, चलो चलो बैठो जल्दी जल्दी रेडियो के पास, कहानी शुरू हो रही है। तो बच्चों आज हम एक गधे की कहानी सुनने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था, वो देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। एक बार उसने भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी, वो मूर्ति उसे ग्राहक के पास पहुँचानी थी, इसलिए उसने कुम्हार से गधा किराए पर लिया। फिर उसने मूर्ति गधे के ऊपर लादी और चल पड़ा। रास्ते में जो उस मूर्ति को भी देखता पल भर रुककर मूर्ति की तारीफ करता था। कुछ लोग उस मूर्ति को देखते ही झुककर प्रणाम भी करते थे। ये देखकर उस मूर्ख गधे ने सोचा, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। वो तो अकड़ के सड़क के बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से रेंकने लगा। मूर्तिकार ने गधे को पुचकार कर चुप करने की कोशिश की। बच्चों बहुत कोशिश की लेकिन गधा तो रेंकता ही रहा। अंत में क्या हुआ पता है? उस मूर्तिकार ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। मार खाने के बाद गधे का सारा घमंड उतर गया, उसका होश ठिकाने पर आ गया और वो फिर से चुपचाप चलने लगा। देखा बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है और मूर्खों के लिए डंडा। हाँ बच्चों, अगर समझ नहीं आएगी तो फिर डंडे तो खाने पड़ेंगे ना। अगर आपको भी पढ़ाई में समझ नहीं आती तो टीचर पेरेंट्स का डंडा खाना पड़ता है, लेकिन आप तो समझदार बच्चे हो। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सै

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अरे बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं कहानी स्वर्ण पिंडों की पहेली, जिसमें महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंचा है और उसने अपने साथ में एक बक्सा रखा है जिसमें दो स्वर्ण पिंड हैं, और इन दो स्वर्ण पिंडों को वह व्यक्ति किसी एक स्थान पर लटकाने वाला है जहां से इसे सभी सभासद देख सकेंगे, और कोई भी सभासद बिना इन पिंडों के निकट आए, बिना इन पिंडों को छुए, यह बताए किनमें से कौन सा पिंड ठोस है अथवा कौन सा पिंड खोखला है, तो वह उसे ये दोनों पिंड मुफ्त में देने वाला है, और यदि वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा तब महाराज को इन दोनों स्वर्ण पिंडों के वजन के बराबर स्वर्ण दान करना होगा। तो ये चुनौती लेकर व्यक्ति पहुंचा हुआ है। अब इस विचित्र प्रस्ताव को सुनने के बाद महाराज ने सभी सभासदों की ओर उन सब का मंतव्य जानने के उद्देश्य से देखा। अब आगे क्या हुआ, चलो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तभी एक सभासद ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज, व्यापारी सोमदत्त का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको स्मरण होगा कि हमारे बीच ऐसे विद्वान भी है जो एक शिशु को देखकर अभी से ही उसकी कीर्ति पताका विश्व में लहराने का दावा कर सकते हैं। यह तो साधारण से स्वर्ण पिंडों की पहेली है, इसे भी यहाँ आसानी से हल करने की योग्यता उनमें अवश्य होगी। यह वही सभासद था जिसने तेनाली राम के विरुद्ध महाराज के मन में आशंका के बीज बोए थे। तो सभा कक्ष में बैठा तेनाली राम उस सभासद की बात सुनकर चौकन्ना हो गया। वो समझ गया कि महाराज ने कुछ दिन पूर्व उससे महामंत्री के पौत्र के प्रति की गई भविष्यवाणी के बारे में क्यों पूछा था। जरूर इसी ने महाराज के कान भरे थे, और आज भी यह महाराज को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। तेनालीराम ने तत्क्षण ही अपने मन में संकल्प ले लिया कि चाहे जो हो वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। तो बच्चों, अब आगे क्या होगा और कैसे तेनालीरामा इस चुनौती को हल करेगा, वो तो हमें पता चलेगा अगली कड़ी में। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: बच्चों चलो चलो बैठो फिर से रेडियो के पास। कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम पहुँच गए हैं। और याद है ना, पिछली कड़ी में हमने आपसे पूछा था कि ना मैं बोलूं ना मैं चलूं, पर सबको कहानी सुनाऊं, तस्वीरों में दुनिया दिखाऊं, सबको ज्ञान सिखाऊं, मैं कौन?
2: हाँ बच्चों, तो सही जवाब है किताब। ना वो बोलती है ना वो चलती है, पर सबको कहानी सुनाती है और अपनी तस्वीरों में दुनिया दिखाती है। तो है ना, ज्ञान सिखाने वाली है किताब।
1: बिल्कुल सही बच्चों। तो चलो अब नोट कर लो आज की पहेली, बहुत ही आसान है। दिन भर मेहनत करता हूँ, सबको रोशनी देता हूँ, रात को सो जाता हूँ, सुबह फिर जागता हूँ।
2: अच्छा, ये तो बहुत इजी है बच्चों, समझ ही गए होगे इसका सही जवाब क्या है। कौन है जो दिन भर मेहनत करता है, सबको रोशनी देता है और रात को सोता है और फिर सुबह जाग जाता है। तो चलो चलो जल्दी से हमें 94-14-15-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
1: हाँ, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और याद है ना, आगे क्या करना है, भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना नहीं भूलना।
2: हाँ, और भगवान जी की गोदी में सो जाना।
1: गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय। सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर,
2: सपनों की सैर को।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हाय, मैं हूँ यूवी सिंगर, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता।

0: जो
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग आशिया नामे पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। कैसे तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सारे गुणों का विकास भी हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताए कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबीन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसके विवाह में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन से ही कन्या सुबह सुबह उठ करके सोना धोबिन के घर जा करके साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापिस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर के सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो।

तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सुबह घर का सारा काम करके पलायन हो जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबीन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबीन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबीन ने जैसे ही अपने मांग सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या थी। उस दिन ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर के 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, ऐसे किवंदित्या है कि उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह वो ब्राह्मण की बेटी को भी सुहाग मिल गया और सोना धोबिन का भी वापस जो आते समय सोमवती अमावस्या की उसका पुण्य मिल गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कर भला तो हो भला। हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला तो उसमें समाया हुआ ही है, जरूर होगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से सुनते हैं एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

से जी मैं अजय कंसुरिया बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मोहम्मद सबना हार्दिक कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हो तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सब मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारे लोगों ना बोलूंगा कि आपने जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाएंगे। नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आज बात करते हैं पहाड़ों या ऊंचाई वाली जगहों पर चढ़ते उतरते समय आने वाले चक्कर की। बहुतों का ऊपर हाइट पर चढ़ते हैं तब जी घबराता है, चक्कर आता है, वॉमिटिंग होती है उतरते समय भी और चढ़ते समय ये समस्या हो जाती है। तो आइए बहुत ही सुंदर आपको उपाय देंगे कि देखिए ऊंचाई पर जाने पर एक तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए कुछ लोगों को चक्कर आना, सिर दर्द, थकान, सांस फूलना या मतली जैसी परेशानी हो सकती है। उतरते समय भी शरीर के संतुलन में अचानक बदलाव के कारण चक्कर महसूस हो सकते हैं। तो घरेलू उपाय आप जानेंगे। पहले तो ये बात कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे चढ़िए, एकदम तेजी से ऊंचाई पर नहीं जाना है। फिर दूसरी बात है कि पर्याप्त पानी पीजिए। शरीर में पानी की कमी से भी चक्कर आ जाते हैं, तो पर्याप्त पानी पीजिएगा। फिर अगली बात है नींबू पानी या शिकंजी पीजिएगा। शरीर को तरोताजा रखने के लिए नींबू पानी या शिकंजी पिएंगे तो कमजोरी दूर होगी और शरीर तरोताजा रहेगा। तो क्या करेंगे, नींबू पानी या फिर शिकंजी जरूर पीजिएगा। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है, मिश्री किशमिश या गुड़, ठीक है, ये लीजिएगा। ये क्या है, ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए आप या तो मिश्री लीजिए या किशमिश लीजिए या फिर गुड़ लीजिए, तो इससे ऊर्जा बनी रहेगी और ये चक्कर की समस्या नहीं होगी। फिर देखिए बहुत ही सुंदर उपाय, अदरक का छोटा टुकड़ा चबाइएगा। अदरक की चाय भी पी सकते हैं आप, इससे जी मिचलाना और चक्कर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अदरक का छोटा टुकड़ा चबाइएगा या फिर इसकी चाय भी ले सकते हैं आप, इसे जी मिचलाना और चक्कर आना कम हो जाएगा। एक और सुंदर बात आपको उपाय दे रही हूँ, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे लंबी सांस लेकर छोड़िए, इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। तो धीरे धीरे लंबी सांस लेकर के छोड़ना है, इससे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, नाश्ता थोड़ा हल्का करें, खाली पेट यात्रा नहीं करें लेकिन हल्का सा नाश्ता करके निकले, ठीक है। यदि चक्कर के साथ बहुत ज्यादा सांस फूलती हो, तेज सिर दर्द, उल्टी, भ्रम या बेहोशी जैसी स्थिति हो तो तुरंत नीचे आइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो कहा जाता है मंजिल की ऊंचाइयों का आनंद वही पाता है जो धैर्य के साथ कदम कदम बढ़ाता है। तो इसी प्रेरणा के साथ मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, घरेलू उपाय पर ध्यान दीजिएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, आज का प्रश्न है सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं। ये प्रश्न है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। हमारी प्यारी बहन उषा जी और रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र भाई बहन, सभी हमारे रेडियो परिवार, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति
0: जी। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, अभी घर पे हूँ, थोड़ा घर का काम निर्माण चल रहा है
0: जी,
1: तो वो भी काम कर रहा हूँ। और रेडियो मधुबन जैसे अभी अभी ऑन किया तो कार्यक्रम लाइव सुना तो मुझे भी लगा मैं भी अपनी उपस्थिति दरवाजे करवा लूँ और बहन से भी बात कर लूँ और श्रोताओं को भी हमारी आवाज सुनने को मिले
0: जी। तो आज के प्रश्न का जवाब देंगे
1: जी, बिल्कुल,
0: सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं, भले आप ऑफ एयर देंगे या मैसेज के द्वारा देंगे तो भी चलेगा
1: जी। जी आप जैसे चाहोगे मैं वैसे ही दूंगा,
0: ठीक है। तो अभी क्या है कि जो भी हमारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सोचने दीजिए
1: जी जी जी, उनको मैं उसको मौका देता हूँ, चाहे भी वो अपनी कोशिश कर ले, बाकी फिर बाद में जवाब देने के लिए मैं बैठा ही हूँ
0: जी।
1: और हमारे तो रेडियो परिवार के सभी जो सुनते हैं वो तो श्रोता एकदम जागरूक है और उनको तो वो तो कैसे भी करके उनको जवाब याद आएगा, वो दे जाएंगे
0: जी।
1: और सुनने वाले सभी मित्रों को और सभी हमारे रेडियो परिवार को, सभी हमारी आरजे बहने है, आरजे भाई है, हमारी दादियों है, हमारे जो कुमार भाई है, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, ओम शांति
0: जी। बहुत बहुत आभार, ओम शांति। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से और आइए अब अभी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज का विषय है, पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, अमावस्या की रात भले अंधियारी हो जाए, अमावस्या की रात भले अंधियारी हो जाए, पर मन का दीपक कभी न बुझने पाए। संकल्पों की ज्योति जब भीतर जलती है, हर काली रात भी उजियारी बन जाती है। तो फिर से संवती अमावस्या की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज विषय भी यही है कि कैसे अमावस्या आए चाहे पूनम आए, हमारे जीवन में उजियारा कैसे होगा, अमावस्या का क्या महत्व है, ये सभी बातें।
1: जी जी जी जी, पहले तो मैं बताऊं तो आज अच्छा दिन है, दान पुण्य का दिन है। अच्छा, हमारी कहते हैं कि हमारी बॉडी को तो हम नहा लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं जल से, लेकिन जो हमारे मन को शुद्ध करना है। लेकिन मन तो कोई, हमारा आत्मा तो शुद्ध ऐसे तो होता नहीं है पानी से। इसके लिए तो अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कार्य करना पड़ता है, अच्छा पुण्यदान करना पड़ता है। वही तो इसीलिए तो कहते हैं कि हम नहाते तो गाय नहा लिया, चलो भाई नहा लिया धो लिया, लेकिन नहाने से कोई ऐसे हो नहीं जाते। हमारे मन को जगाना है, मन को नहाना है, हमारा जो मैल है अंदर का जो मन का, उसको शुद्ध करना है, वही तो हम सब कुछ कर पाएंगे। और बहुत अच्छा दिन है, पुण्य का दिन है दीदी। आप देखो सुबह से कई लोग मंदिरों में इतनी भीड़ है
0: जी।
1: और कहीं नदियों में इतनी भीड़ है, लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं स्नान करने के लिए
0: जी।
1: तो
0: और आज पुरुषोत्तम मास, जिसका अधक मास भी कहते हैं, इसका लास्ट दिन है।
1: लास्ट दिन है, बस लास्ट दिन है, आज एक महीना पूरा हो गया
0: जी।
1: तो बस इसी हम तो ऐसे कहेंगे कि दान पुण्य करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे करियर कर्म करते रहो तो आपका जो तो कोई भी उजाला ही होगा, अंधेरा कभी होगा ही नहीं। अंधेरा कैसे होता है कि अंधेरा तो हम खुद करते हैं, लेकिन अंधेरे में रहना नहीं है, हमको उजाले में ही रहना है। अच्छे कार्य करेंगे तो हम उजाला ही समझ लो
0: जी।
1: देखो मेरा, मैं बताऊँ, मैं कहीं जाना, मैं कहीं भी ना जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी। मैं हर रोज सुबह मेरा कार्य जो होता है सुबह में
0: जी।
1: मेरा कार्य 5 बजे, 4-5 बजे से पुण्य का कार्य मेरा शुरू हो जाता है
0: जी।
1: और 2 घंटे मेरा एक कार्य चलता है, हर रोज की बात कर रहा हूँ, मेरा एक दिन की बात नहीं है मेरे
0: जी।
1: क्योंकि मैं तो हर रोज मेरा कार्य पुण्य का कार्य करता हूँ और करता ही रहूंगा जब तक मैं मेरा फिर स्टार्ट से तब तक
0: जी।
1: तो बस मुझे बहुत शुक्र मिलता है दीदी। अच्छा विषय भी ऐसा ही है कि बस दान पुण्य करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, वही तो आपके जीवन में, सबके जीवन में उजाला रहेगा
0: जी।
1: वरना तो देखो आज कई लोग ऐसे दीदी के कोई ऐसा कोई कार्य करते ही नहीं, और जिसको करते हैं उसका भी बोलते हैं अरे करने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप सब भगवान सबको दे देता है। दे देता है सही है, भगवान सबको देता है, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो ही तो देंगे ना
0: जी।
1: आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कैसे आप ये उजाले में न निकल लो, और अच्छे कर्म करो नहीं करो तो आप कैसे अच्छी, हमारी जो कहते हैं कर्म अच्छे करेंगे तो ही तो हम अच्छे जगह पे हम हमारा परमात्मा हमारा जन्म देता है
0: जी।
1: तो बस मैं तो दीदी यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहेंगे, अपने आप बस उजाला हो जाए, चाहे पूनम हो चाहे अमावस्या हो
0: जी।
1: ठीक है दी।
0: हाँ जी, चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे, अधिक मास का पावन अवसर आया है, भक्ति और सेवा का संदेश लाया है, मन को प्रभु स्मृति में लगाकर देखिए, जीवन में सुख शांति का दीप जगमगाया है। तो आप सभी को अधिक मास अभी जो लास्ट दिन है आज, इसके भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ही कम संजोग मिलते हैं जब अधिक मास होता है। तो आज हम बातचीत इसी पर करेंगे कि भाई आप इस अधिक मास को कैसे, चलिए पूरा महीना तो हो गया, आज के दिन को खास कैसे बना रहे हैं आप। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं। तो आप प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, विषय में आप अपनी बात भी रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप अपनी बात को रख सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो फिर दीजिएगा, आप चाहे तो मैसेज के द्वारा दीजिएगा, आप चाहे तो जुड़कर दीजिएगा, जैसे चाहे वैसे आप आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं ने पुरुषोत्तम महीने का व्रत रखा है। बहुत सारे भाई बहन मिले बता रहे थे कि हमारे व्रत चल रहे हैं दीदी और यह आज का दिन लास्ट है। बहुत अच्छी बात है। चलिए व्रत भी देखिए, एक तो हमारे आस्था को बढ़ाता है, भावनाएं श्रेष्ठ रखता है, स्वास्थ्य भी अच्छा करता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा भूखे भी रहना चाहिए। और बाकी तपस्या भी हो जाती है, साधना होती है, तो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है और विचार हमारे श्रेष्ठ बनते जाते हैं। क्योंकि व्रत उपवास हम करते हैं तो एक शुद्ध भाव के साथ करते हैं, ऐसे तो नहीं कि किसी के प्रति नेगेटिव भाव हो और हम व्रत उपवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ कहा सुना होता है तो भी व्रत उपवास करते हैं तब ऐसा लगता है कि जाने दो ना, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, बात ही ख़त्म कर दो, वहीं पर बात ख़त्म कर देते, उसको खींचते नहीं है, इसलिए भावनाएं भी शुद्ध होती है। और वो कहते ना कहावत, जग जाहिर है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल से, निर्मल मन से, सरल भाव से अगर हम व्रत उपवास करते हैं, सभी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो मन बड़ा अच्छा रहता है, खुशी बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है और सभी के प्रति अच्छे भाव होते हैं। तो कहते हैं ना ऐसे मन पर ही भगवान भी खुश रहते हैं कि भाई हाँ, और हमें खुद अच्छा लगता है, हमारे संपर्क में जो आते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि देखो ये कितने मतलब सरल हृदय के साथ बात करते हैं, कितने खुशनुमा चेहरे से जब भी मिलते हैं बात करते हैं। और बाकी तो आप सभी जानते हैं कि अधिक मास का तो पूछिए मत, अभी तो मंदिरों में इतनी भीड़ लगी है कि क्या कहे आपको, आज लास्ट दिन है, आज तो फिर अभी तक मंदिरों में चल ही रहा है। हमारे श्रोता बंधु भी शायद मंदिरों में ही है इसलिए जुड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। आप देखिए भक्ति करना भी जरूरी है ना। रेडियो का तो आपका अपना है रेडियो, आप जुड़ सकते हैं और भी समय मिल जाएगा, लेकिन ये आज लास्ट दिन है अमावस्या और पुरुषोत्तम महीना का लास्ट दिन, ये थोड़े ना आपको मिलने वाला है, इसलिए आप जितनी भक्ति चाहे करिए। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप सुरेश भाई?
2: हम अच्छे हैं, रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों को और भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की देवे शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सोमती अमावस्या की देवे शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, अमावस्या है ना
0: जी। आप रेडियो नहीं सुन रहे तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कभी के कि भाई सभी को
2: हम तो पहुंच जा रही है
0: जी। और आज का
2: कैसे भी करके हम तक पहुंच रही है
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और
2: नहीं सुन रहे हैं ना, जब टाइम मिलता है तब सुनता हूँ दोस्त के आवाज आके।
0: अच्छा अच्छा,
2: ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुनता हूँ।
0: जी जी जी,
2: जब भी टाइम मिलता है तब सुनता हूँ।
0: जी जी,
2: पास में हो तो वो फर्क पड़ता है, मगर फिर नहीं है तो फिर दोस्त के आवाज आके सुनते हैं
0: जी।
2: हाँ,
0: आज का प्रश्न है सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं? और
2: वैसे तो ये इस प्रश्न का सीधा उत्तर है,
0: आप घुमा के दीजिएगा, आप घा करके दीजिएगा, घुमा के दीजिएगा सीधे सीधे मत दीजिएगा
2: ठीक है।
0: हाँ,
2: जो अमावस्या आज के दिन वैसे आती है ना,
0: बस ठीक है
2: और समझ जाइए जी, ज्यादा नहीं बताता
0: जी। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे, कैसे पुरुषोत्तम महीना, आपने भी व्रत रखे क्या?
2: नहीं, एक्चुअली मैं दीदी उपवास तो नहीं रखा
0: जी। कोई बात नहीं, देखिए मन स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि आसपास का वातावरण बदल जाता है, मंदिरों में भक्तों की भीड़।
2: मैंने उपवास तो नहीं किया, बाकी वो रूटीन मेरा चालू ही है, सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद राजयोग करना, इसीलिए योग भी करते हैं, फिर उसके बाद पूजा ध्यान स्नान करके, पूजा ध्यान करके फिर अपने रोज के रूटीन पे चलते
0: जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
2: ये तो मेरे काम मतलब पहले से चालू है और अभी भी चालू है
0: जी। बहुत बढ़िया। तो सुरेश भाई, जैसे अधिक मास करते हैं, मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, कैसे क्या दान पुण्य किया जाता है, कुछ बताएंगे?
2: देखिए मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि देखिए आप परसोत्तम माँ की राह क्यों देखते हो, जब आप सदाई दूसरों के हित के बारे में अच्छा सोच सकते हो, आप पहली बात तो यही कीजिए ना कि किसी को दान देने से पहले किसी को दुख मत दीजिए। और देखिए परसोत्तम मास की बात हो रही है तो देखिए लोग मतलब पूरे महीने उपवास करते हैं, अपने ये जो जेठ महीने ज्येष्ठ महीने में जो ये परसोत्तम मास लगता है ना, इसमें बरगद की पूजा होती है बड़ वृक्ष की
0: जी,
2: और सभी वहाँ मतलब पूरे महीने ये पूजा करती है, फिर कथा सुनती है, वट वृक्ष को पानी भी पिलाती है, और अंत में क्या करते हैं वहाँ सोने का वट वृक्ष बनवाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, पुजारी को वस्त्र दान करते हैं, और वो मिठाई भी बनती है मालपुए की, वो भी दान दी जाती है, पुजारी को भी देते हो और पांजे को भी दी जाती है, पांजे हो या पांजा हो
0: जी,
2: और उसको वस्त्र वगैरह ये सब कुछ दिया जाता है
0: जी।
2: तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्येष्ठ महीने की राह मत देखिए, और आज सोमवती मासिया तो आज का दिन भी दान के लिए महत्वपूर्ण है
0: जी।
2: लोग आज तो हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे से मौन स्नान कर रहे हैं, कई हेडपंप पे जाके, कई बोरिंग होता है वहाँ पे जाके या कुएं पे जाके, मतलब नदियों में वगैरह कई मौन स्नान कर रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: हाँ तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर तबलीग मतलब तकलीफ होती है तब भगवान को क्यों याद करें, सदाई कीजिए ना
0: जी।
2: बारह मास भगवान के लिए द्वार खुले, आप उनके तो बच्चे सभी समान है ना
0: जी,
2: तो आप सदाई अपने पिता को नहीं भूल सकते हो ना। हाँ अगर आप भूलोगे तो भी पिता बच्चों को नहीं भूलेगा
0: जी।
2: बस तो पुरुषोत्तम मास भी खत्म हो गया, अब ज्येष्ठ दूसरा चल रहा है, असर आएगा फिर भगवान आएंगे सब कुछ आएगा
0: जी।
2: तो सबको शुभकामनाएं पुनः, बस आप खुश रहिए मस्त रहिए, ऐसी हम दुआएं करते हैं।
0: बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई।
2: मैं भी अभी गया था और गौ माता को सारा डाल के आया हूँ।
0: अच्छा
2: हाँ
0: बहुत बढ़िया,
2: तो मैंने अच्छी बात आया है। था तो दीदी को कॉल बैक कर देता हूँ, सुना कुछ नहीं
0: जी जी,
2: फिर कॉल किया मैंने कहा आगे
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छा,
2: प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऑफलाइन हाँ जी पड़ेगा?
0: नहीं मिल गया ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आइए यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। बहुत ही सुंदर आज का विषय है, अमावस्या सिखाती है जीवन का ये सार, अंधकार के बाद ही आता है उजियार, आशा का दीप जलाकर आगे बढ़ते जाइए, आशा का दीप जलाकर आगे बढ़ते जाइए, हर कठिनाई को मुस्कुराकर अपनाइए, हर कठिनाई को मुस्कुराकर अपनाइए। तो बहुत ही सुंदर विषय है पुनः आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, सोमवती अमावस्या किसे कहा जाता है, बहुत सरल प्रश्न है। तो इस सरल प्रश्न के लिए भी अगर आपको सोचना पड़ेगा तो कल तो मैं आपको बहुत मुश्किल वाला देने वाली हूँ। थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आप घबराइए नहीं, सरल ही है वो भी, ठीक है, लेकिन आज तो बहुत सरल है। तो आप जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज भेज सकते हैं। और आज का विषय भी बहुत सुंदर है, देखिए आज हम सोमवती अमावस्या मना रहे हैं और पुरुषोत्तम महीने का अधिक मास का आज लास्ट दिन भी है। और अमावस्या कहते हैं ना कि अमावस्या के दिन अंधकार होता है, चंद्रमा नहीं आते हैं, पूर्णिमा को रोशनी रोशनी हो जाती है, अमावस्या को अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो ये भी हमें काफ़ी कुछ सिखाता है ना, हर त्यौहार हर तिथि हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाती है कि अंधकार आया है तो अंधकार भी हटेगा और फिर से प्रकाश फैलेगा हमारे जीवन में। तो कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए तो उससे घबराना नहीं है। थोड़े समय के लिए तो समस्या आती तो ऐसे लगते हैं चारों खाने चित्त हो जाते हैं, कहीं इससे रास्ता नहीं दिखाई देता है और ऐसे घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे इन परिस्थितियों से हम बाहर निकलेंगे। उस समय दिमाग काम करना बंद हो कर देता है और घबराहट सी होती है, भय रहता है, डर बना रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब हम हिम्मत से काम लेते हैं तो सचमुच वो समय भी निकल जाता है और फिर हमारे जीवन में प्रकाश फैल जाता है। तब उन दिनों को याद करते लगता है अच्छा उन दिनों में क्या समस्याएं आई, पता ही नहीं चला कि कैसे निकलेंगे, लेकिन वाह भगवान ने हमें उन परिस्थितियों से निकाल दिया और आज हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। हर एक के जीवन में आते हैं, देखिए इंसान सामाजिक प्राणी है इसलिए कोई ना कोई समस्याएं हर एक के जीवन में बनी रहती है। एक दिन अच्छा निकल गया या दो दिन अच्छे गुजर गए, तीसरे दिन तो कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या आनी ही है ना। कहते ना यही जीवन है, समस्या आएगी तो समाधान भी मिलेगा और समस्याओं से पार भी हम हो जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ को ज़्यादा लेना नहीं है दिमाग में, भारी नहीं होना है और जीवन से उदास नहीं होना है, ठीक है। बाकी देखिए आज के दिन भले पूरे महीने दान तप जप तप किया नहीं किया, लेकिन आज के दिन बहुत करेंगे। जिन्होंने पूरा महीना नहीं किया वो आज के दिन पूरे दिन इसी में जाएगा, उनका पूरे दिन सुबह से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना, मंदिर जाना।

0: हवन करवाना, दान पुण्य करना, गाय को घास खिलाना, गरीबों को भोजन खिलाना, वस्त्र दान करना, अनेक प्रकार के दान होते हैं आज के दिन। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ही दान, नहीं, जिसको जो चाहे करते हैं। कोई जैसे सुरेश भाई बता रहे थे कि भांजे को ब्राह्मण को भी खिलाते हैं, बिल्कुल हमारे भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है कि बहन बेटी और भाणेज और भांजियों को बहुत महत्व दिया जाता है। कुछ दान पुण्य की बात आती है या कुछ श्रेष्ठ कुछ अच्छा करने का संकल्प आता है तो सबसे पहले हम अपनी बहन बेटियों को याद करेंगे या भांजी भांजियों को याद करेंगे कि भाई उनको बुला लो, उनको दे दो, उनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो। ननंद है, जेठ के बच्चे है, ननंद के बच्चे है, ऐसे इस तरह के रिश्ते याद आते हैं और अच्छी बात है। इनको देना भी बहुत पुण्य है। ब्राह्मणों का भी याद आता है, मंदिरों में भी बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पर तो इतना अच्छा होता है कि सोमवती अमावस्या के दिन मंदिरों में केसरिया भात बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। जैसे सुबह को तो सब हो जाता है, सेवा पूजा पाठ आरती सब हो जाती है मंदिर के नत नियम, ठीक है। फिर 12 बजे वापिस हवन होगा मंदिर में, ध्वजा चढ़ाई जाएगी और आरती होगी और केसरिया भात का भोग लगेगा और फिर वो केसरिया चावल भक्तों को बांटा जाएगा और भरपेट जिसको जितना चाहिए ले जाए और साथ ही साथ मिक्स सब्जी, जैसे हम अन्नकूट में 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह अन्नकूट आता है तब आप देखते होंगे कि अन्नकूट की सब्जी बनाते हैं उसमें कितनी सब्जियां मिक्स होती है। वही सब्जियां जो अभी गर्मी के मौसम में मिलती है वो सारी सब्जियां मिक्स बनाई जाती है और ठाकुर जी के केसरिया चावल के साथ मिक्स सब्जी का भोग लगाया जाता है और ये भक्तों में वितरित किया जाता है। इसमें लोग चंदा भी देते हैं, भाई मंदिर के लिए पुजारी कहाँ से लाएंगे, पुजारी का कोई खर्चा नहीं होने देते मंदिरों में। अक्सर मंदिरों में हमने देखा है पुजारी का कोई खर्चा नहीं होगा, पुजारी का तो उल्टा जो चढ़ावा आता है वो सब अपने घर पे लेके जाते हैं क्योंकि अमावस्या है, पूर्णिमा है, मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता है। तो इस तरह सभी कोई 300-300 कोई 500-500 रुपये इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके इस तरह ठाकुर जी के लिए ध्वजा भी चढ़ाते हैं और आरती भी करते हैं। केसरिया चावल बनाया जाता है भोग में, मिक्स सब्जी बनाई जाती है, इसका भोग भी लगाया जाता है। पूरियां 7 ब्राह्मणों के लिए तो पूरियां भी बनाएंगे, उनको खिलाएंगे और ये केसरिया चावल सब्जी पूरी और बाकी भक्तों में केसरिया चावल का प्रसाद बांटा जाता है। और जिसको सब्जी ले जानी हो या मिक्स सब्जी तो वो अपने अपने बर्तन, उनको पता है कि इस मंदिर में सब्जी मिलने वाली है तो वो अपना बर्तन लेके आते हैं, वो भर भर के लेके जाते हैं। तो इस तरह का भी माहौल होता है, इस तरह का भी होता है मंदिरों में। और देखिए आप सांवलिया धाम चले जाइए, आज के दिन कल भंडारा खुल गया, गिनती होती आज के दिन डिक्लेयर होता है कि कितना भंडारा खुला। सांवलिया धाम जो चित्तौड़ जिले में आया है भातसोड़ा के पास, और वहां पर करोड़ों रुपए का भंडारा खुलता है, उसको डिक्लेयर आज के दिन किया जाता है अमावस्या के दिन। अरे भक्त लोग सांवरिया जी के भंडारी में 4-व्हीलर की चाबियां भी रख के जाते हैं कि ये गाड़ी हमारी सांवलिया सेठ के नाम। फिर वो भंडारा खुलता है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा वो नई गाड़ी इतने दिन से खड़ी थी, इसकी चाबी ये रही, तो ये सांवरा जी का। और ये मंदिर गवर्नमेंट के अंडर में है, पहले पुजारी लोग ही चला रहे थे, अब ये गवर्नमेंट के अंडर में है। तो भक्त लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसी की मन्नतें होती है, कोई बाधा आकड़ी रखते हैं वो भी आकर के उतारते हैं। तो आज के दिन काफ़ी कुछ मतलब होता है, लोग दर्शन को जाते हैं, स्नान करने के लिए नदियां नालों में जाते हैं, मतलब नदियां है जैसे पुष्कर का स्नान करते हैं, आप द्वारका चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, ऐसे स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर लोग जाकर के स्नान भी करते हैं और वहाँ पर भी दान पुण्य करते हैं। तो इस तरह का महात्म है आज के दिन, और विशेष आज पुरुषोत्तम महीना भी है तो खास दिन। बाकी तो हर अमावस्या हर पूर्णिमा को जैसे बहुत सारे भक्तों ने नियम बना रखा है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो राजस्थान के लोग अपने अपने पास के एरिया में जाएंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे तीर्थ स्थान है यहाँ आबू में भी, जैसे ऋषिकेश है यहाँ पर भी नदी बहती है, तो उस नदी में अभी तो पानी कम है इसलिए भक्त लोग कम आते हैं, बाकी यहाँ भी स्नान करते हैं। फिर वहाँ मातृकुंडिया है, बहुत सारे ऐसे स्थान है, और दूर जाना चाहते हैं तो फिर पुष्कर स्नान करेंगे, उससे भी दूर जाना चाहते हैं तो हरिद्वार जाएंगे। गुजरात वाले इधर ज्यादातर द्वारका में जाते हैं स्नान करने, लेकिन सब अपने अपने अनुसार सभी भक्ति करते हैं और भक्ति करके मतलब अपने मन को शुद्ध रखते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। तो देखिए ये तो ठीक है, हम एक दो दिन करके शांत बैठ जाते हैं, लेकिन हमेशा भी पुण्य नहीं होता, ये भी सही बात है। लेकिन बहुत लोगों ने नियम बना रखा है कि पहली रोटी जब हम भोजन बनाएंगे, पहली रोटी गाय को देंगे, लास्ट की रोटी कुत्ते को देंगे। बहुत जने पहली रोटी कुत्ते को देते हैं, लास्ट की रोटी गाय को देते हैं। ये नियम उनका पक्का होता है, और गाय को घास खिलाना तो अच्छी बात है, जो भी नियम पकड़ो अच्छी बात है, इससे भी दान पुण्य हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दान पुण्य के साथ साथ अपने मन को भी अच्छा बनाए रखना है और कर्म भी श्रेष्ठ करना है। तो जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसमें डबल फायदा हो जाता है, एक तो दान पुण्य किया, दूसरी तरफ हम लोगों को कोस रहे, वो हमारा दान पुण्य फिर धुल जाता है। और दान पुण्य भी एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा मन अच्छा है, सभी के प्रति शुभ भावनाएं हैं, तो वो दान पुण्य और भी फलीभूत हो जाता है। ठीक है, और आइए अब इस विषय को यही समाप्त करेंगे, आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का प्रश्न है, सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यही पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि भाई आज अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या विशेष करके पुरुषोत्तम महीने का लास्ट दिन भी है, तो ठाकुर जी के भोग के लिए बनाया जाने वाला केसरिया भात मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है, जो बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। इसे कई जगह मीठे चावल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। आशियाना के किचन में पधारिए, पेन और डायरी लेकर के, और लिखेगा आप लिखे बासमती चावल, ठीक है, क्योंकि केसरिया भात बना रहे हैं इसलिए आप बासमती लीजिए। बाकी सादे चावल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चीनी ले लीजिए, फिर आप घी लीजिएगा, केसर लेना है आपको, दूध लेना है, इलायची पाउडर लेना है, बादाम ले लीजिए, काजू लीजिए, किशमिश लीजिए, लौंग लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई सामग्री। देखिए मैं मात्रा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मात्रा आपके परिवार के सदस्यों के अनुसार आप खुद ही निश्चित करिए। तो बासमती चावल, चीनी, घी।

0: केसर, दूध, इलायची पाउडर, बादाम, काजू, किशमिश और लौंग। ये तो हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, चावल की धुलाई करिए। धोने के बाद 20 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो के रख दीजिए, 20-25 मिनट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, अगर बासमती है तो। अगर सादे चावल है तो उसको भिगोइएगा मत, क्योंकि उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो 20-25 मिनट भिगोइए इस तरह। केसर को आप हल्के से गर्म दूध में भिगो करके रख दीजिए। चावल को लगभग 90% तक आप उबाल लीजिए, ठीक है, और अतिरिक्त जो पानी है उसको निकाल दीजिए, जो मांड होता है ना उसको निकाल दीजिए। अब आप कढ़ाई में घी गरम करिए, फिर काजू, बादाम और किशमिश इनको काट करके हल्के हल्के सुनहरी सुनहरी आप भून लीजिए। अब उबले हुए चावल डालिए और धीरे धीरे इनको हिलाइए। ऊपर से चीनी, केसर वाला दूध और इलायची पाउडर बुरका दीजिए। बहुत हल्के हाथ से मिला करके 5-7 मिनट धीमी आंच पर इसको ढक करके पकाइएगा। जब चीनी अच्छी तरह घुल जाए और चावल चमकदार हो जाए तब गैस बंद कर दीजिए। तो ये बन गया केसरिया भात, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी, ठाकुर जी के भोग के लिए। फिर से विधि दोहरा रही हूँ। चावल धोकर लगभग 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद आप चावल उबाल लीजिए, ठीक है। 90% तक आपको उबालना है, मतलब एकदम हाथ में लेते ही दाना फट से दब जाए ऐसा नहीं, हल्का सा कन्ना रखिए उसका, ठीक है, एक कन्ना बाकी रखिए। अब आप केसर को हल्के गर्म दूध में भिगो कर रखिए और कढ़ाई रखिए। अब गैस पर घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो उसमें काजू, बादाम, किशमिश ये सब हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब जो चावल हमने बना के रखा है, अगर उसमें आपने छुट्टे चावल बनाए, छुट्टे ही बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, अतिरिक्त जो मांड होगा वो निकल जाएगा। पानी निकाल करके अब यह चावल को आप डाल दीजिए कढ़ाई में। ऊपर से आप चीनी डाल दीजिए, केसर वाला दूध डाल दीजिए और अच्छी तरह हल्के हाथों से हिला दीजिए और 5 मिनट तक ढक के रखिए। इलायची पाउडर भी बुरका करके हिला देना है और जब चीनी घुल जाए, चावल चमकदार हो जाए तो बस गैस बंद कर दीजिए। तो ये बन गए केसरिया भात। भोग के लिए बनाते समय मन में शुभ संकल्प होने चाहिए और प्रभु स्मृति में बनाइएगा। इससे भोजन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। और इस तरह बन जाए बस, फिर आप अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हैं, उसके बाद आप स्वीकार कर सकते हैं। तो कहते हैं, केसर की महक, घी की मिठास, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम का विश्वास, भोग में भाव हो सच्चा और निर्मल, तो साधारण भोजन भी बन जाए दिव्य और मंगल। तो इस तरह के सरिया भात का महत्व है। आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
2: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ, अब तो बस करो।
4: बहू, क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
5: ओख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुनाई है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर आपने गौर किया होगा। आज का उपाय भी बहुत ही सुंदर बताए, अगर पहाड़ पर चढ़ते हैं उतरते हैं उस समय जी मिचलाता है, वोमिटिंग की तकलीफ हो जाती है, चक्कर आते हैं, तो ये सारे जो उपाय बताए हैं उन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, कैसे हम पुरुषोत्तम महीना मनाएंगे वो आपने जाना है। पूरा महीना पूरा हो गया है, आज सोमवती अमावस्या है। पुनः आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा महीना बहुत ही अच्छी तरह मनाया होगा। और जो रेसिपी में केसरिया भात आपको बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, भाई सोमवती अमावस्या किसे कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था, अगर इसका भी आप जवाब नहीं देने के लिए जुड़े हैं तो बहुत ही मतलब क्या कहेंगे आपको। तो सही जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, दयाराम जी का भी सही जवाब ही है, संगीता जी कपासन से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, अलका जी कपासन से। आप सभी का सही जवाब है। मदन भाई जुड़े हैं लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो पहले तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से और दयाराम जी। बस विषय को स्पष्ट करने के लिए आप दोनों जने जुड़े हैं, और सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, तो आप तीनों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, ये सत्य है मनुष्य दूसरों में वही गुण और अवगुण देखता है जो स्वयं उसमें विद्यमान होता है। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सजा इसमें है भक्तों का प्यार, श्रृंगार तेरा प्यारा लगे, कर लो प्रभु जी स्वीकार, श्रृंगार तेरा प्यारा लगे। रजनी गंधा और गुलाब मंगाया, चुन चुन भक्तों ने इसको सजाया, छाई मोतियों की प्यारी बहार, श्रृंगार तेरा प्यारा लगे, कर लो प्रभु जी स्वीकार, श्रृंगार तेरा प्यारा लगे, कर लो स्वीकार बाबा।

0: साथ क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, कार्यक्रम हिंसा को नो स्मार्ट संस्थान के सहयोग से। वैसे तो ये कार्यक्रम पहले भी आप सभी ने सुना था, लेकिन इस बार कुछ नए विषय और बदलाव की बातों को लेकर आए हैं हम आपके बीच। दोस्तों, अक्सर हम घर परिवार में लड़का लड़की को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। लड़का ये करे, लड़की वो करे, लड़की हो तो ये पहनेगी, लड़का है तो ये खेलेगा। हमारी सोच और नजरिए के अनुसार हम अपने बच्चे और समाज को भी ढलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी उनकी आवाज सुनने की कोशिश की? चलिए दोस्तों, आज उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन आवाजों में हमारी अपनी आवाज भी कहीं छुपी हुई तो नहीं है?

0: हरी हूँ।
1: ए मीना, जा भाई ने बुला, यो तगारो तो कन छत पे रखन आवे।
2: माँ, भाई की कटे जरूरत है, ला मैं राखे ना हूँ छत पे।
1: अरे तू रेवा दे बेटा, तू छोरी है, अत्रो वजन थारा सु कोनी तो की।
2: अरे माँ, ये छोरा और छोरी काई होवे, देख मैं उठा ली दियो वजन।
1: ध्यान सु बेटा।
3: मजबूत बने बचपन सबका, शक्ति है स्वरूप बेटियों का।
4: दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, आइए इसी कड़ी में आगे सुनते हैं।
5: सारी सारी रात जागी, नींद न आवे,

0: जागी।
1: सीमा, अरे काई वो जो थने आखी रात जागनो पड़ियो और चिंता वालो गीत भी गा रही, उदास भी लाग रही है। बोल सीमा, बोल काई भी हो सीमा।
0: ए मीना, मैं तने कई बताऊं, मारा घर वाला मन आगे पढ़वा ही ना दे रहा। अब मैं कई करूं, मन तो ठाक होनी पड़ रही, तू इस बता मीना, अब मैं कई करूं।
1: सीमा, ये बात तो वास्तव में चिंताजनक है, पर देख सरकार की योजना के अनुसार अपने साइकिल मिली, जो माने भी दादाजी दादी जी घर वाला सब मना कर दी दो कि या तो छोरिए इन्हें साइकिल चलावा कोनी देनी, पर मैं मारे वास्ते आवाज उठाई और जिद करी साइकिल चलावा की, तो देख ले मारे लिए कतरो आसान वे गयो साइकिल लेन, स्कूल जानो आनो घर रा दूसरा काम करना। आज मारा दादा दादी जी मने साइकिल चलाता देख कतरा खुश होवे। सीमा, आपने लिए तो आपने ही बोलनो पड़ी, आगे तू समझदार है।
0: थैंक यू मीना, अब मारा समझ में आ गई कि मारा कई करनो है।
2: जीवन के हर मोड़ पर नारी देती है परीक्षा, कोई रोके ना उसे लेने से अच्छी शिक्षा।
3: अक्सर हम खेल के बारे में सोचते हैं, लड़का ये खेलेगा लड़की ये खेलेगी, तो कहीं यहाँ पर भी इस तरह की बातें तो नहीं हो रही है? सुनते हैं।
1: मम्मी मम्मी, मारे टूर्नामेंट है, मैं क्रिकेट में भाग ले रही हूँ।
4: मीना, तू और क्रिकेट? अरे कोई छोरी वालो गेम पसंद कर, यो तो गेम छोरा को है, एड़ा उछल कूद करने वाला गेम आपने को नहीं खेलनो, समाज में बाता हो जाए।
5: अरे मीना की माँ, क्रिकेट में काई बुराई है? अरे भाई, अपने मिताली राज ने देख लो, राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर रह चुकी है। आपने मीना भी किकाऊ कम कोनी है। जा बेटा जा, खेल तू पूरी छूटे।
1: थैंक यू पापा।
2: लड़का हो या लड़की, दोनों को है खेलने का समान अधिकार।
3: बेटा और बेटी के प्रति कैसी सोच होती है हमारी, तो आइए हम देखते हैं माँ बेटी बेटे के बीच किस तरह की बातें हो रही है।
4: अरे राहुल बेटा, आज मारी तबीयत ठीक कोनी, थोड़ो सो सूप बना दे तो।
6: माँ तू मीना न बोला पे, मारे तो यारो कम नहीं वे, मैं सो रहा हूँ।
4: बेटा मीना अबानु ही आराम करवा गई है, और यो छोरा छोरी कहीं लगा रखियो, जा फटाफट सूप बना, मारे दवा लेनी है।
6: ठीक है माँ।
4: मने मीना का साथ साथ में राहुल ने भी घर को हर काम सिखानो पड़ी, ताकि काल का दिन मारी बहू का जीवन में कहीं भी समस्या नहीं आवे।
2: भूख सभी को लगती है, यह जग जाहिर है, फिर भी महिला ही खाना बनाएगी, ये कैसी लाचारी है।
7: तो बच्चों, अब इस तरह से आप लोगों ने जान लिया होगा कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। एक प्रश्न का मुझे जवाब दो कि आदमी और औरत में क्या अंतर होता है।
8: मैडम, आदमी कमान लावे, लुगाया तो घर को काम करे।
9: मैडम, आदमी पंचायत में बैठे और औरत बच्चा ने संभाले।
10: मैडम, औरत बच्चा ने जन्म देवे और पिता पालन करवा में मदद करे।
7: शाबाश बच्चों, आप सभी ने उत्तर देने की अच्छी कोशिश की है। आज के समय में तो औरतें भी पंचायत में बैठती हैं, सरपंच भी बनती हैं, औरत नौकरी भी कर रही है तो घर परिवार भी संभाल रही है, पुरुष खाना भी बनाते हैं तो बच्चों को भी संभालते हैं, तो ये सारे काम महिला और पुरुष बराबरी से करते हैं, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो कार्य करते हैं उसे जेंडर कहते हैं, और महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर है उसे सेक्स कहते हैं।
2: नर हो या नारी, दोनों को है जीवन जीने का अधिकार, दोनों के ही शरीर की बनावट में होता है अंतर।
3: दोस्तों, आपने मुलाकात की हमारी बहादुर मीना से। इस नाटक से स्पष्ट होता है कि महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में अंतर होता है, ना कि उनके कार्य में। आइए जेंडर और सेक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं आज की हमारी जेंडर एक्सपर्ट वीथिका जी से। दोस्तों, वीथिका जी यादव एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जिन्होंने मानव तस्करी, गुलामी, लैंगिक अधिकारों और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम किया है। वह लव मैटर्स इंडिया की कंट्री हेड है, जो सभी लिंग और कामुकता के लिए प्यार, सेक्स और रिश्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चलिए सुनते हैं वितिका जी से कि वह क्या कहती है जेंडर और सेक्स के बारे में।
11: तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम अधिकतर जो है जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ वो उस चीज के आपके शरीर के जो अंग हैं, जो आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको रेफर करता है। और इसमें आपके जो आपके शरीर पे जो बाल हैं, जो आपके स्तन हैं, जो भी आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका यूट्रस है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ आते हैं। और वही जब हम सेक्स की बात करते हैं तो वो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनरली उनको यूज करा जाता है, उनका इस्तेमाल करा जाता है पुरुष और स्त्री के शरीर को अलग अलग तरीके से समझने में। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को जन्म के दौरान ही एक सेक्स असाइन करा जाता है, और वो सेक्स असाइन करा जाता है इस बेसिस पे कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और जो उनके शरीर, जो शरीर के जो अंग जो महिलाओं के होते हैं, अगर वो उनके साथ पैदा होते हैं तो उनको लड़की बोला जाता है, और जिनके अंग लड़कों वाले होते हैं उनको लड़का बोला जाता है। लेकिन जरूरी ये समझना है कि जो हम उनको सेक्स असाइन कर रहे हैं जब उनका जन्म हुआ है, जो लिंग हम उनको दे रहे हैं, वो उससे विपरीत उनको महसूस कर सकते हैं जब वो बड़े हों, जिसको हम बोलते हैं कि एक बाइनरी से हटके जो जहाँ पे हम इंटरसेक्स की बात करते हैं, माना मानने की जो व्यक्ति जन्म में जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पुरुष के थे, हो सकता है कि वो बड़े होके महिलाओं जैसा महसूस करे, और उसी तरह से महिला जो है पुरुष जैसा महसूस करे। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें हमारा समाज, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चरल जो रोल्स हैं, जो हमारी बिहेवियर है, जो हम हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, चाहे मेल को लेके, फीमेल को लेके, या किसी और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, उसको हम जेंडर में डालते हैं। क्योंकि जेंडर, जहाँ पे सेक्स जो है वो आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके देखा जा रहा है, वहां पे जेंडर जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज ये एक तरह से एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये जो समाज ने एक जो ढांचा बनाया हुआ है जेंडर को, उसके मुताबिक देखा जाता है। क्योंकि अधिकतर जब हम समाज की जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि एक पुरुष और एक महिला की एक बहुत ही बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है जेंडर को लेकर। लेकिन जेंडर जो है वो सेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको, उसका अनुभव भी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, उनका जेंडर आइडेंटिटी जो है वो उससे विपरीत है जो उनको सेक्स जन्म के टाइम उन्हें दिया गया। बहुत सारे जब आजकल जिन टर्मिनोलॉजी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें हम जेंडर फ्लूइड होने की बात करते हैं या फिर जेंडर क्वेयर होने की बात करते हैं, ये वो वाली आइडेंटिटीज हैं जो अपने आप को केवल पुरुष और महिला वाले सेक्शंस में नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ अलग अपने आप, अपना जेंडर जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सेक्स, जहाँ पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, आपका आपका शरीर की जो बनावट है, जो आपके शरीर के अंग हैं, उनको लेकर ज्यादा रेफर करा जाता है, वहीं जेंडर जो है वहां पे समाज का, कल्चर का, हमारी सोच का, हमारे बिहेवियर का रोल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी डाइवर्सिटी को, विपरीतता को हम समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे जो लेबल्स हैं वो सेल्फ आइडेंटिफाइड लेबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, और उसके लिए हमारे समाज में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो जेंडर सिर्फ पुरुष और महिला वाला जेंडर नहीं होता, जेंडर उसके बियॉन्ड भी होता है।
3: दोस्तों, अभी हमने सुना वितिका जी को। उम्मीद करते हैं कि आप भी जेंडर और सेक्स के बीच के अंतर को बेहतर समझ सके होंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम अभी भी बाकी है। आरजे उषा आए और गीत ना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए 107.8 FM पर सुनते रहिए रेडियो मधुबन को, और कहिए
2: सुनो समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।

0: है गोलमाल है गोलमाल है।
1: घर का सारा काम महिलाएं करती है, फिर भी बाहर निर्णय की जरूरत पड़ती है तब कहते हैं तुम घर संभालो,

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। जी हाँ दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जहाँ दिलचस्प बातें तो होती हैं, लेकिन साथ साथ हमारा गीत संगीत का सफर कुछ इस प्रकार चलता है कि ऐसा लगता है हम लोग कहीं भी हों लेकिन साथ साथ चल रहे हैं। अब संगीत का असर कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, और आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि हमारे साथ गेस्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं। वो एक एनजीओ से आए हैं और वो एनजीओ जो चलाते हैं, जो इस नेक काम को कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यश अग्रवाल जी और हर्ष अग्रवाल जी, जो कि एक एनजीओ रन करते हैं बनारस में जिसका नाम है डिवाइन संस्कार शाला। उसके बारे में जानेंगे, बच्चों से भी बातें करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी सुनेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को एक बार आप अपने बारे में साथ साथ एनजीओ के बारे में भी कुछ बताएं।
1: हेलो, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है और मैं इस एनजीओ का ट्रेजरर प्लस को फाउंडर हूँ। और ये एनजीओ 2017 से चल रही है बनारस में, और स्टार्टिंग जैसे हमने घर से किया था, अब और थोड़े बच्चे हमारे यहाँ आते थे उनको पढ़ाना लिखाना। और जैसे कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी से 12 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ 11 साल से गीता पाठशाला भी चलती है, और ये उसके बाद से हम लोग ने एनजीओ स्टार्ट किया। तो बच्चों का हम लोग का मेन मोटिव था उनको संस्कार देना, स्किल डेवलपमेंट और एथिकेट्स और ये सब उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि बड़े लोगों के बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ऐसे ही करते करते आज 6 साल हो गए, हम लोग ने 6 बस्तियाँ भी अडॉप्ट की हुई हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रोग्राम किए हुए हैं, और हमारे यहाँ डेली 40-50 से लमसम बच्चे आते हैं बस्तियों के, उनको पढ़ाना लिखाना और मेडिटेशन और अच्छी बातें और खाना पीना, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसे चलती हैं। और हमारे यहाँ जैसे क्लब्स आते हैं उनको कुछ बांटना होता है, और जगह जगह हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं तो उसका भी हम लोग एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं,
0: काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जी यश जी, आप कुछ बताइए।
2: हेलो, मेरा नाम यश अग्रवाल है और मैं डिवाइन संस्कार शाला का सेक्रेटरी हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के समय में संस्कार की जरूरत बचपन से ही होती है, बड़े होने के बाद तो हम बन जाते हैं जैसा हमें बनाया जाता है। मगर जैसे कुम्हार होता है, वो कच्ची मिट्टी से तो घड़ा बना सकता है, मगर जब वो मिट्टी पक जाती है, वो घड़े का शेप ले लेती है, तो उसको किसी दूसरे फॉर्म में डालना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसी सोच के साथ ये एनजीओ की शुरुआत की, जो कि अभी एजुकेशन विंग से कनेक्टेड है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को बुला के उनका संस्कार बदलते हैं, उनके परिवार वालों का भी प्रोग्राम रखते हैं, और बच्चों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी कलाएं हैं जो सिर्फ पढ़ते रहने से वो कलाएं निखर नहीं पाती हैं। तो सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और इन सब के माध्यम से, ताकि बच्चे आगे चलकर उन चीज़ों के द्वारा अपना रोजगार भी बना सकते हैं, और प्लस वो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जितना ही ज़रूरी हमारा स्तर जो है वो फिजिकली हम जितना अच्छा बनते हैं, साथ ही साथ हमारा मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हर क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़ें, ये सारा हमारा एनजीओ देखता है। और हम विभिन्न स्कूलों में जाके भी वहाँ पे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग का कैसे बच्चों को कोर्स भी कराते हैं
0: जी।
2: और ये सारी चीज़ें हम लोग सब निःशुल्क करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही एक नेक पहल है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भविष्य की बात होती है तो बच्चों की बात होती है, क्योंकि वो ही है हमारे देश का, दुनिया का भविष्य। क्या आपको कोई चेंज नजर आया जो आपको लगता है कि हाँ ये इस तरीके से हुआ, एक प्रैक्टिकल कुछ अंतर आपको दिखा?
2: सबसे बड़ा अंतर तो ये दिखा कि जब बच्चे यहाँ आते हैं उसके बाद से उनका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, हर चीज बहुत बदलता है। यहाँ पे हम लोग इस बात पे फोकस्ड होते हैं कि बच्चे हमारे शुद्ध भोजन खाएं, जो कि उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नहीं तो ये बच्चे बाहर का खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो उससे उनकी हेल्थ भी खराब होती है। प्लस ये रोज राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं जिससे इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इनको पढ़ाई में मदद मिलती है, और इनकी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है जो यहाँ आने से धीरे धीरे चेंज होने से समाज के दूसरे बच्चों पे और उनके परिवार वालों पे भी असर पड़ता है, और फिर वो भी अपने बच्चों को यहाँ पे एंट्री कराते।
0: क्या बात है, तो बहुत सुंदर आपने बात कही। बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ आप लोगों से भी जानेंगे, लेकिन क्योंकि ये संगीत का कार्यक्रम है दोस्तों और बच्चों की बात हो रही है, तो चलिए आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना।

लौट कर आ गए हम कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और दोस्तों, जिन नन्हे नन्हे बच्चों की बात हो रही थी वो स्टूडियो में मौजूद है और उनकी आवाज आप सुन पाएंगे, उनसे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वो अपनी एक प्रस्तुति लेकर तैयार हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में। एक गाना गाने वाले हैं मिलके, तो आइए इन बच्चों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सैंड।
1: बहुत ही सुंदर गाया बच्चों ने और प्यारे प्यारे बच्चों की आवाज आपने सुनी, कितने प्यार से, कितने श्रद्धा से ईश्वर को याद कर रहे थे, शिव परमात्मा पिता को याद कर रहे थे और सब साथ में गा रहे थे, तो बहुत ही सुंदर एक माहौल भी बन गया था। तो आइए बच्चों से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है?
2: ओम शांति, मेरा नाम गुड़िया है।
1: आपका नाम क्या है?
3: ओम शांति, मेरा नाम है काजल।
1: गुड़िया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: और आप?
3: 4th में।
1: अच्छा, आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है? गाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है कि पढ़ाई अच्छी लगती है? पहले आप बता दो गुड़िया।
2: हमको डांस अच्छा लगता है।
1: अच्छा, और आप?
3: हमें भी डांस अच्छा लगता है।
1: आपको भी डांस अच्छा लगता है? ओके, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
2: मैथ।
1: आपको?
2: मैथ।
1: अच्छा, दोनों को सेम सब्जेक्ट भी पसंद है। अच्छा, आप लोगों को कोई पोयम याद है जो स्कूल में आपको सिखाई जाती है या फिर आप लोग यहाँ आते हो तो सीखते हो?
2: हाँ।
1: किसको याद है आप दोनों में से?
2: हमें।
1: आप याद है? ठीक है, चलो आप सुना दो।
3: रोज सवेरा सूरज आता, पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार को दूर भगाता, उसके स्वागत में ही देखो कमल तार खिल जाता। ओम शांति।
1: ओके, आपको याद है? सोचना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप सोचो। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग, अभी यहाँ पे समर कैंप चल रहा था ना, दोस्तों आपको भी बता दी कि ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में बच्चों के

0: बहुत ही सुंदर समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें सब बच्चे आए थे।
1: तो क्या क्या किया आप लोगों ने, मजा आया?
2: बहुत मजा आया।
0: क्या क्या किया आप लोगों ने?
2: हम लोगों ने डांस किया और खेला भी, खूब
0: खूब खेला भी,
2: ड्राइंग भी किए।
0: क्या बात है। और आपने क्या क्या किया?
3: हम भी बहुत खेले और ड्राइंग भी किए और डांस भी
0: किए। अच्छा, आप लोग आते हो यहाँ पे बनारस में, है ना, भैया लोग के पास आते हो, सबके पास आते हो, क्या सीखते हो, क्या सीखा आपने?
2: हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो पहले तो अच्छे से रहना सीखे हैं, खान पान का बहुत ध्यान रखे हैं, बाहर का भी नहीं खाते ज्यादा, लहसुन प्याज और नॉन वेज छोड़ चुके हैं हम लोग मध बनाने के लिए।
0: आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा आपको?
3: हम भी यही सीखे।
0: ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से आगे बढ़ना आप लोग, ठीक है?
3: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति। और भी प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आ जाइए आगे। अच्छा, आपका नाम क्या है?
4: हेलो, ओम शांति, मेरा नाम लकी है।
0: लकी, और दूसरे माइक पे कौन है हमारे साथ?
5: माई नेम इज मंजीत केसरी।
0: मंजीत, ओके। लकी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: क्लास 8।
0: और मंजीत?
5: मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है करना?
4: सबसे अच्छा शांति, मेडिटेशन
0: सबसे अच्छा लगता है। ओके, वेरी गुड।
4: और गेम भी है।
0: कौन सा गेम अच्छा लगता है?
4: गेम में हमको कबड्डी।
0: अच्छा, क्या बात है, कबड्डी में तो इंडियन टीम अभी बहुत अच्छा कर रही है। आप बताओ मंजीत।
5: और हमको योग करना पसंद है।
0: अच्छा, और क्या पसंद है? गाना गाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना,
5: खेलने में पकड़म पकड़ाई।
0: अच्छा, और पढ़ाई नहीं अच्छी लगती?
5: हाँ, लगती है।
0: लगती है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है?
5: सब्जेक्ट हिंदी।
0: हिंदी अच्छा लगता है। अरे वाह, तो आपको कोई कविता या कोई याद है?
5: हाँ, याद है, इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल।
0: ठीक है, सुना दो।
5: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर हाउ यू आर, अप सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई।
0: लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना? ओके, अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है?
4: हमको
0: इतिहास अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, डिवाइन संस्कार शाला में आप लोग जाते हैं, है ना, तो क्या सीखते हैं, क्या सीखा आपने?
4: हम डिवाइन संस्कार शाला में 6 साल से जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को अलौकिक पढ़ाई, जैसे कि स्कूल का पढ़ाई भी अलौकिक पढ़ाई भी होता है। हमको आध्यात्मिक पढ़ाई में सबसे अच्छा मेडिटेशन लगता है, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, पढ़ाई नहीं कर पाते तो मेडिटेशन करते तो इतने अच्छे से याद हो जाता है। और मेडिटेशन करने के लिए हमको अपने ब्रिगुटी के बीच में स्टार चमकता हुआ देखते हैं, और फिर अपना स्टार जो है ना, एक रेड आकाश में परम धाम में होते हुए जाता है। फिर वहाँ पे मेरे मतलब पिता शिव परमात्मा है ना, उनसे शक्तियाँ लेके फिर अपने वापस आते, तो हमको सब कुछ अच्छे से
0: तो याद हो जाता है आपको। तो क्या आप करते हो, आप रोज करते हो मेडिटेशन?
4: में इस समय उठ नहीं पाते, मगर ऐसे करते
0: जब उठते हो तो करते। बहुत अच्छी बात है, तो यानी उससे आपकी पढ़ाई बेहतर होती है। वेरी गुड। चलिए, आप लोग इतने यंग एज में मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे आपको सुनेंगे, है ना, वो भी फिर करने लगेंगे सीख के, है ना? ठीक है, वेरी गुड। आप कोई गाना गाना चाहते हो या कोई पोएम सुनाना चाहते हो? ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ओम शांति। तो आप दोनों के नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप लोग बताओ।
6: ओम शांति, आई एम नेहा सोनकर, आई रीड इन क्लास 10th।
0: ओके, आप 10th में पढ़ते हैं नेहा, और आप?
7: क्लास 8।
0: तो आप लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है करना, बहुत पसंद क्या है करना?
7: डांस।
0: डांस अच्छा लगता है? आप दोनों को डांस अच्छा लगता है? ओके, और कंप्यूटर यूज करना या फिर आता है?
7: नहीं।
0: आपको नहीं आता? स्कूल में नहीं पढ़ाते?
7: पढ़ाते,
0: पर इतना अच्छा नहीं लगता, बुरी लगता है?
7: लगता है थोड़ा
0: थोड़ा। अच्छा, आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
7: टीचर।
0: और आप क्या बनना चाहते हो?
6: एयरफोर्स।
0: एयरफोर्स में जाना चाहते हो? क्या बात है, तो बहुत अच्छे एम है आप दोनों के, टीचर भी अच्छा चाहिए हमें। तो आप लोग को डांस अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है किसी को?
7: सुनना
0: पसंद है। अच्छा, ठीक है, तो कोई गाना सुनाना चाहोगे आप लोग, जो आपको सुनना अच्छा लगता है? थोड़ा सा सुना दीजिए।
7: ओम शांति।

0: थैंक यू, वेरी नाइस. आपको अच्छा लगता है ये गाना? सुना अच्छा लगता है. ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है. तो आप लोग यहाँ पे आके क्या क्या किया, क्या अच्छा लगा?
1: यहाँ पे आने में तो बहुत खुशी है, और मतलब बहुत ही अच्छा जगह है. अब जितना भी दिल्ली बम्बई घूम लेंगे ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा, इतना तो पता चल ही गया है.
0: अरे वाह, तो यहाँ पे पहाड़ देखे? पहाड़ बहुत
1: बहुत कुछ जो आज तक लाइफ में कभी नहीं देखे.
0: ऐसा क्या देखा, सबसे अच्छा क्या देखा?
1: सबसे अच्छा तो यहाँ का मतलब जो फीलिंग होता है वो आज तक कभी हम नहीं किए.
0: यहाँ कुछ डिफरेंट फील होता है
1: बहुत.
0: चांदनी को कैसा लगता है?
2: तो एक ड्रेस में, वाइट ड्रेस में कितना अच्छा लगता है. मतलब उससे लगता है कि
1: बाई चांस कहीं अगर ढूंढेंगे ऐसा सुकून तो कहीं मिलने वाला नहीं,
0: कहीं और नहीं मिलता
1: कहीं.
0: तो आप लोग फिर आओगे फिर दोबारा से? बहुत बार आएंगे. ठीक है, वेरी गुड. और फिर आप लोग मेडिटेशन करते हो?
1: हाँ करते
0: हैं. करते हैं? मेडिटेशन से कोई बेनिफिट लगता है आपको? ऐसा लगता है फायदा होता है कुछ लाइफ?
1: हाँ, टेंशन दूर होता है सबसे पहली बात, और मन तो हल्का ही हो जाता है.
0: आप लोग को टेंशन होता है?
1: होता नहीं, बट फैमिली वाले एकदम थोड़ा हो जाता है.
0: और भी थोड़ा सा हो जाता है ना. स्कूल का भी होता है?
1: हाँ स्कूल का भी होता है,
0: थोड़ा थोड़ा नहीं होता. ठीक है, चलो मेडिटेशन हम जल्दी अर्ली लाइफ से सीखते हैं तो फिर आगे फायदा करते हैं ना. ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए. शांति, आपका नाम क्या है?
3: शांति, मेरा नाम पीयूष है. हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, और मेरे को खेलने में फुटबॉल बहुत ही पसंद है, और हम घर में पियानो बजाते हैं. और
0: अरे वाह, कब सीखा आपने पियानो?
3: ये मेरे को भैया सिखाए हैं. हम पे एक डिवाइन संस्कार शाला में पहले जाते हैं, उसमें अच्छा अच्छा सीखते हैं.
0: पियानो भी वहीं पे सीखा आपने?
3: हाँ, पियानो में भैया सिखाए मेरे.
0: क्या बात है. आपका नाम क्या है बेटा?
4: मेरा नाम भंती. मेरा नाम प्रथम है, और हम क्लास 9th में पढ़ते हैं. हमको खेलना फुटबॉल बहुत पसंद है, और हमको एनजीओ डिवाइस शाला पे जाना भी बहुत पसंद है. मेरे को बाबा
0: बहुत पसंद है. तो कभी होता है ऐसा नहीं जा पाते हो कि जाते हो हमेशा?
3: नहीं, हम हमेशा जाते हैं.
0: हमेशा जाते
3: हैं, रुकता है लेकिन नहीं जाते, तब भी जाते हैं. तब भी मिलता है.
0: अभी तो सबसे फ्रेंडशिप भी हो गई होगी आपकी, है ना? तो आप लोग क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
4: फुटबॉलर
0: बनना है.
3: मेरे को भी वही बनना है, फुटबॉलर.
0: दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है. और हम जानते हैं कि भाई इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो इस वक्त, पहले जैसे लोग नहीं भी जानते थे, अब सुनील छेत्री जी को जानते हैं, कई फुटबॉल प्लेयर्स को जानते हैं. आप किसकी तरह बनना चाहते हो? कोई प्लेयर है ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता है? रोनाल्डो सबको अच्छे लगते हैं भाई, वो इतने ग्रेट प्लेयर है, नो डाउट. कौन से?
4: मेसी.
0: और इंडियन प्लेयर कोई?
4: सुनील छेत्री.
0: अच्छा, आप लोग को कौन सा गाना अच्छा लगता है? कोई गाना गा के सुनाओगे हमें, या कोई पोएम अगर आती हो आप लोग को स्कूल? गाना प्रथम सुनाएंगे? ठीक है, सुना दीजिए.

0: खुश हो गए। हम गाना गाते तो सब खुश हो जाते हैं।
1: पहली बार गाना गाया? प्रथम कभी गाना नहीं गाते?
0: क्यों नहीं गाते आप कभी गाना? हुआ
1: नहीं, गाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा लगता है तो गाना चाहिए। अच्छा लगता है गाना?
0: हाँ तो कुछ
1: गाना चाहिए पर। है ना, आप नहीं गाते हो? बिल्कुल नहीं गाते हो। डांस करते हो?
2: डांस भी नहीं करते।
1: डांस भी नहीं करते? हाँ वो डांस तो सब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो दोनों फुटबॉलर बनने वाले हो अभी, है ना, बड़े होके। और पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? अच्छा ये बताओ आपको?
2: मेरे को इंग्लिश।
1: इंग्लिश अच्छी लगती है? ओके, आपके तो बोर्ड्स होंगे ना इस बार?
2: इस बार बोर्ड है।
1: पढ़ाई अच्छे से करते हो दोनों लोग की कभी कभी मस्ती करते हो फिर मिस कर देते हो पढ़ाई?
3: पढ़ाई तो करते हैं क्योंकि पढ़ाई के समय हम लोग को आगे चल के फ्यूचर अपना
1: बैठे। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है?
2: पढ़ाई करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं हम।
1: कम क्यों करते हैं? मस्ती करते हैं?
2: मस्ती ज्यादा, पढ़ाई कम करते हैं। अब इस बार करेंगे, 10 आ गया
1: इस बार करना है ना। फिर आपके बाकी सारे जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको फॉलो करने वाले हैं फिर वो तो देखेंगे, है ना, भैया पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम्स के लिए। अच्छे से पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। ओके, थैंक यू। आप दोनों के नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
4: मेरा नाम सपना है और मैं क्लास 7 से पढ़ती
1: हूँ। आपका नाम क्या है बेटा?
5: मेरा नाम प्रीति है और इस टाइम मैं BFA की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
1: ओके, क्या बात है। अच्छा BFA क्या होता है आप थोड़ा सा बताएंगे?
5: हाँ, ये एक तरह की डिग्री होती है, जैसे किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट हो और कुछ बेहतर स्तर पे वो करना चाहते हो तो उसे ये जरूर करना चाहिए। इससे तो एक तो अगर वो करता है तो उसके आर्ट में और भी डेवलपमेंट होती है और ऊपर से कुछ डिग्री मिलती है।
1: तो आपको ड्राइंग या पेंटिंग क्या पसंद है आपको? आपको
5: स्केचिंग
1: पसंद है? हमेशा से, बचपन से?
5: देखा जाए तो हाँ, ये तो है कि मुझे बहुत पसंद रहा है, लेकिन ये कि कभी ध्यान नहीं दिया था। स्टार्टिंग में तो बहुत पसंद था लेकिन पढ़ाई की वजह से उतना लगता था कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब 10th किया तो फिर ये हुआ लॉकडाउन के बाद से ड्राइंग में इंटरेस्ट पड़ा।
1: अच्छा, तो आपको किसने बताया कि कोर्स करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किसने गाइड किया आपको?
5: भैया लोगों ने डिवाइन संस्कारशाला के, जहाँ पर अभी हम लोग जाते हैं, और भैया लोग जो है
1: उन्होंने आपको गाइड किया। वेरी गुड, चलिए प्रिपरेशन करिए अच्छे से। और आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी मतलब कौन सी हॉबी है आपकी?
4: ड्राइंग बनाना।
1: आपको भी ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? क्या बनाते हो?
4: ऐसे कुछ भी लिख के।
1: कार्टून बनाते हो, सीनरी बनाते हो, क्या बनाते हो?
4: कार्टून, सीनरी, सब
1: सब कुछ बनाते हो, ठीक है। और पढ़ाई में सबसे अच्छा क्या लगता है?
4: हिंदी।
1: हिंदी, ओके। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके?
4: आर्टिस्ट।
1: आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मतलब आप पेंटिंग करना चाहते हो, ड्राइंग करना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों की जरूरत है हर फील्ड में। अच्छा, आप लोग कोई गाना गाते हो या कोई पोएट्री आपको या कोई कविता अच्छी लगती है आपको? कोई ऐसी पढ़ी हो आपने कभी क्लास में, या कोई गाना अच्छा लगता है जो गुनगुनाते हो, है कोई ऐसा जो आपको याद आ रहा हो?
5: एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है,

0: समझ सकती।
1: आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है, है ना? सबको अच्छा लगा?
0: लगा लगा,
1: सबको अच्छा लगा। सब लोग अपना सर हिला रहे हैं धीरे धीरे ताकि माइक में डिस्टर्बेंस नहीं हो, है ना? अच्छा ठीक है, आपको कोई पोएट्री याद है, कुछ सुनाना चाहते हो आप?
0: सुना दीजिए।

0: और सर्दी।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत प्यारा और बहुत भावना से गाया आप तुमने। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू शांति।
1: का नाम क्या है?
2: मेरा नाम विजया है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ।
1: विजया, ओके। आप?
3: मेरा नाम मनुषी कैसे है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ।
1: मनुषी, ओके, 2 में पढ़ते हैं। तो मनुषी, आपको क्या अच्छा लगता है करना? सबसे ज्यादा मजा क्या आता है करने में? खेलने में मजा आता है कि पढ़ने में मजा आता है?
3: पढ़ने
1: में मजा आता है आपको? सच्ची में क्या पढ़ना अच्छा लगता है?
3: मैथ
1: अच्छा लगता है। कि मैथ टफ नहीं लगता है? सब प्लस माइनस करना पड़ता है। अच्छा लगता है, मजा आता है। ओके, और आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
2: सब्जेक्ट।
1: हाँ, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है?
2: इकोनॉमिक्स।
1: इकोनॉमिक्स, वंडरफुल। और क्या करना अच्छा लगता है? आप हॉबीज क्या है आपकी?
2: स्पोर्ट्स।
1: स्पोर्ट्स क्या खेलते हो आप?
2: कबड्डी।
1: क्या बात है, वेरी गुड। और क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके?
2: इंडियन आर्मी।
1: इंडियन आर्मी में जाना है? वेरी गुड, आप लोग के एम तो बहुत अच्छे हैं। आप क्या करना चाहते हो मनीषी? बड़े होके क्या बनोगे?
3: इंडियन आर्मी।
1: इंडियन आर्मी में जाओगे? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। देश के लिए सेवा करना चाहते हो आप, देश के लिए कुछ करना चाहते हो। अच्छा, आपको कोई पोयम याद है मनीषी? कुछ याद है आपको स्कूल में? कौन सी वाली?
3: लाला जी ने
1: सुना दीजिए।
3: लाला जी ने केला खाया, केला खाके मुंह पिचकाया।
1: मुंह पिचका के क्या किया?
3: कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी के पड़े थे मुंह से निकला आयरन।
1: ओके, आपको गाना अच्छा लगता है? नहीं सर, बस पोएम अच्छी लगती है। ओके, और मैंने आपको?
2: हमको पोएम।
1: पोएम अच्छी लगती है? तो कोई याद है आपको, कोई कविता आपने पढ़ी हो स्कूल में? कौन सी?
2: क्लास 8 में पढ़े थे, पेड़ों पे।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, सुना दीजिए।
2: पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग जाना, पेड़ों के संग हिलना। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हरन भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही। तो विनती है यही हमारी, तुम ना इस दुनिया को खोना, पेड़ों को ना कटने देना, ना पंछियों को रोना।
1: ओम शांति। बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने, क्योंकि हम आज बहुत सारे डेज मनाते हैं ना, एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे। तो अगर हम सच में पेड़ नहीं लगाते तो फिर, या सच में हम पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी हम सोशल मीडिया पे ऐसे फोटो डाल देते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं होता, है ना? अच्छा मनीषी, आप भी बताओ, आप क्या करते हो जब आप डिवाइन संस्कार शाला में जाते हो? क्या करते हो वहाँ पे? पढ़ते हो कि बैठते हो, सबकी बातें सुनते हो? क्या करते हो?
3: पढ़ते।
1: पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? मैथ्स। और यहाँ क्या किया आगे? कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया आपने? कौन से? डांस किया। अरे वाह, किसने सिखाया डांस आपको? आपने खुद सीखा कि किसने सिखाया था?
3: प्रीति दीदी ने।
1: प्रीति दीदी ने, ओके, चलो ठीक है, प्रीति दीदी को थैंक यू बोल देते हैं फिर हम। मजा आया आपको यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से मैथ्स पढ़ना, अच्छे से इकोनॉमिक्स।
2: थैंक यू।
1: और अब दोस्तों, बच्चों से तो आपने बात की ही, लेकिन एक और प्यारा सा गाना तो बनता है जो उन बच्चों ने मिल के तैयार किया है। सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ बने रहिएगा।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। तो आइए इन बच्चों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। आपको सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना।

0: हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, हम और भी जैसे म्यूजिशियंस होते हैं या फिर स्टार्स होते हैं, वो कोई कोई बड़े घर से नहीं आते, ऐसी जगह से लोग आते हैं उठके निकल के, तो उनको भी कभी ना कभी किसी ने सपोर्ट किया है। तो अगर आगे भी अगर वैसे लोग चाहते हैं तो किसी न किसी को सपोर्ट करने से ही कोई आगे बढ़े।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे पास अगर भगवान ने दिया है तो ये सोच के दिया होगा कि आगे चल के हमको किसी को करें सब।
1: बिल्कुल। अगर हमें मिला है तो हम दूसरों को बांटे और वो ब्रिज शायद हम में से कोई भी बन सकता है जो बच्चों को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही हर्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: हम लोग जैसे 6 साल से सेवा कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, तुम्हें ये बनना है, तुम हम नहीं बन पाए तो तुम्हें हमारी ड्रीम्स को पूरा करना है। जबकि जो बच्चों को बेसिक चाहिए, उनको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, उनको खुशी चाहिए, वो चीजें न देके हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए वर्क करें क्योंकि हमने इनको जन्म दिया है। मगर अगर हम उनको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो हमारी सोच से भी ज्यादा करेंगे और हमारा नाम भी रोशन करेंगे, देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसलिए हमें बच्चों को किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट तो एक समय के बाद कोई पूछता भी नहीं कि आपने कितने नंबर पाए। आपका व्यवहार देखा जाता है, आपकी सोच देखी जाती है। और देखा गया कि बहुत सारे लोग बहुत गरीबी से निकल निकल के और बहुत ऊंचे ऊंचे पायदान तक, जैसे अब्राहम लिंकन है या बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसमें कोई मैटर नहीं होता कि कोई बड़े घर के लोग ही ये कर सकते हैं, कोई किसी भी एज में और किसी भी अवस्था में ये कार्य कर सकता है। और इस कार्य में भगवान की बहुत मदद मिलती है,
1: ये आपने फील किया?
2: हाँ, क्योंकि अगर आप ये काम उसका है, ये आपका काम नहीं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपका पर्सनल काम है, तो उसमें सारी मेहनत आपकी है। और जब आप समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं और बच्चों के लिए करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान का रूप है, तो भगवान अपने बच्चों के लिए कराने के लिए आपको मदद भी करते हैं, तो आपको किसी भी चीज की कहीं भी कोई हर्डल्स नहीं आते, कोई कमी भी नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल। और हम देखते हैं, मतलब जब हम किसी सोशल वर्कर से मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर या उनकी भावनाओं में बहुत स्ट्रांग होते हैं, या कई बार हम उनको देखते हैं कि वो इतनी आसानी से विचलित हैं। आज हम देख रहे हैं कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, कितनी बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, और जब हम देते हैं तो शायद वो हमें पहले मिलता है, तो उसकी खुशी अलग है। बहुत सुंदर बात आप दोनों ने कही और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी प्रेरणा मिली होगी। कहीं से वो लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, एक और कदम और आगे बढ़ाए, कुछ और किसी के लिए करें और मिलकर इस सफर को बढ़ाते रहें, यूं ही चलाते रहें। तो दोस्तों, फिलहाल इस कार्यक्रम का सफर तो यहीं तक था, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते भी इसी समय रविवार को, यानी रात 8 बजे। और अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए रेडियो मधुबन के नंबर, जो कि है 9414151415। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज विशेष बात करें तो सुरैया, सादत हुसैन, जिया फारुकुद्दीन डागर, तारकनाथ दास, राजेंद्र सिन्हा जी जाडेजा और अग्रवाल, देवी प्रसाद राय चौधरी, हन्ना हजारे, मनिका बत्रा, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ शिव दयाल साहब इनका पुण्य दिवस है। तो आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलके एक खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर और शाम का समय है। आप सभी अब एक चेंज ओवर माना एक समय के साथ साथ पूरे दिन में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त मिलता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, अपने मूड को अगर थोड़ा थोड़ा डल है तो रिफ्रेश कीजिए और एनर्जी के साथ भरपूर हो जाइए। तो सबसे पहले तो आप अगर थके हारे से महसूस कर रहे हैं तो बढ़िया सर जो है हाथ मुंह धो के पानी पीजिए एक गिलास। देखिए आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। और फिर रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा तेज करें और फिर मैसेज करके मुझे बताइए कि आप कैसे फील कर रहे हैं। तो आइए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं, सुनिए, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो काम हो जाएगा, है ना। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में काफी मेहमान जो है पुणे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। अभी मेरे साथ हैं गणपत राव बालवाड़कर। तो बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देखकर। और आप एक ट्रस्टी हैं, फाउंडर मेंबर हैं, एक स्कूल चलाते हैं पूना के बालेवाड़ी में। और मुझे लगता है कि ये स्कूल आपका बहुत पुराना है, जहां पर 5000 से अधिक बच्चे जो हैं वहां पर पढ़ रहे हैं अभी, और 350 से अधिक जो है स्टाफ है। और इन सभी को मैनेज करते हुए आप जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको और बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप?
3: मजे में।
2: जी जी जी, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए।
3: जी, गणपत महतो बालोडकर, बालेवाड़ी, माजी सरपंच।
2: जी जी जी।
3: प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरे विश्वविद्यालय राठणेला जे केंद्र चालवतात योगिता दीदी,
2: जी जी,
3: त्यांच्या ओळखीमुळं माउंट आबू या ठिकाणी 7 दिवस येण्याचा मी प्रयत्न केलेला।
2: अरे वा।
3: इथं आल्यानंतर असं वाटलं की आपण फार वेगळ्या ठिकाणी आलोय, अतिशय चांगल्या ठिकाणी आलोय। इथं खूप माहिती चांगली, याच्या अगोदर यायला पाहिजे असं वाटायला लागले। थोडं लेट झालो, हरकत नाही। मी श्री खंडेरा प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था बालेवाडी संस्थापक अध्यक्ष आहे। मी पहिली ते चौथी पर्यंत प्रथम गावातच शाळा शिकलो।
2: अरे
3: वा। आणि चौथी नंतर 3 वर्षे शाळा सोडून देऊन शेती केली।
2: अच्छा।
3: हो, शेती करताना खूप त्रास झाला, त्यामुळे पुन्हा असं वाटलं की आपण शाळेत जावं म्हणून 5वीला परत पिंपळे निलक या ठिकाणी शाळेत गेलो।
2: अच्छा अच्छा।
3: परंतु त्या काळामध्ये जाण्यायेण्याची साधनं नव्हती, गावाला जाण्याचा रस्ता नव्हता, अतिशय परिस्थिती कठीण होती। पावसाळ्यामध्ये सायकली खांद्यावर घेऊन जायला लागायचं। अशा परिस्थितीमध्ये मी 5वी ते 7वी पिंपळे नेलक येथे शिक्षण घेतलं। त्यानंतर 8वी ते 11वी जुनी 11वी 1971 मी पुण्यामध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय नानावडा या ठिकाणी शिक्षण घेतलं। ते करीत असताना श्री खंडेराय प्रतिष्ठान ही शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश एकच, आदरणीय रामभाऊ मोजे यांच्याकडे मी गेलो। मी सरपंच होतो, ZPC निवडणूक लढवायची, जिल्हा परिषद निवडणूक लढवायची या उद्देशाने त्यांचा सल्ला घ्यायला गेलो। त्यांना सांगितलं की मी एक ॲम्ब्युलन्स घेतो, फुरता दवाखाना सुरू करतो, लोकसंपर्क वाढवतो आणि नंतर जिल्हा परिषद निवडणूक लढवायला मला सोपं जाईल। त्यांनी ऐकून घेतलं, परंतु जाताना सांगितलं तुमच्या गावच्या मुली 7वीपर्यंत शाळा शिकतात, 8वीला शाळेत जात नाही, जर तुम्ही शाळा शिक्षण संस्था सुरू केली तर मी तुम्हाला मदत करतो। आणि म्हणून मी तो विचार केला आणि त्यांनी हेही सांगितलं की ॲम्ब्युलन्स घ्यायची आणि लोकांची दुखणी वाहत बसायचं हा उद्योग कोणी शिकवला तुम्हाला, त्याच्यापेक्षा शाळा सुरू करा, मी तुम्हाला मदत करतो। म्हणून 1988 झाली, मला DEd BEd हे कुठल्याही प्रकारचं काही माहिती नसताना मी किर्लोस्कर कमिन्समध्ये 35 वर्षे नोकरी केली। नोकरी करता करता गावामध्ये सरपंच म्हणून अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलं आणि जिल्हा परिषद निवडणूक लढवायच्या उद्देशाने सल्ला घ्यायला गेलो, पण त्यांनी हे सांगितलं की शिक्षण संस्था सुरू करा।
2: ओके ओके।
3: म्हणून आमचा एक मित्र होता PS कुलकर्णी, त्यांना सांगितलं की मला मोजे साहेबांनी सांगितलं की शिक्षण संस्था सुरू करा, परंतु मला त्याच्यातली कुठल्याही प्रकारची माहिती नाही, तर काय करावं लागेल आपल्याला। मग त्यांनी सांगितलं तुम्ही खंडेरायाला दर महिना जात आहात, तर मग आपण श्री खंडेराय प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था नावाने संस्था सुरू करू, रजिस्टर करू। आणि त्यांचं ऐकून मी जून 1988 खंडेराय प्रतिष्ठान नावाने शिक्षण संस्था सुरू केली आणि 89 ला 8वीचा वर्ग स्वतःच्या घरात सुरू केला। त्याच्यानंतर क्रमांक 8वी 9वी 10वी एक एक पत्र्याची खोली बांधून 10वीपर्यंतची शाळा तिथं घराच सुरू केली. आणि ज्या वेळेला 100% निकाल लागला 91ला त्यावेळेला असं वाटलं की आपण हे चालू करू शकतो, आपल्याला हे जमल. परंतु तरी देखील किर्लोस्कर कमिन्स या ठिकाणची नोकरी मी सोडली नाही. नोकरी चालू होती, सरपंच म्हणून काम करीत होतो, शिक्षण संस्था सुरू केली होती. आणि अशा प्रकारे मग ती 89ला सुरू केल्यानंतर 8वी 9वी 10वी केली. पुढं 5वी ते 7वी जोडून घेतली, त्यालाही रामभाऊ मोजेंनीच मदत केली. नंतर 1ली ते 4थी केली आणि आत्ता KG to PG म्हणजे बालवाडीपासून MBAपर्यंत DEd, BEd, MEd, MBA, BBA, BCA, BCOM हे शिवंतरावचा उन्मुक्त विद्यापीठाचे कोर्सेस. साधारणतः 5000 विद्यार्थी, 350 स्टाफ आहे. आणि CM इंटरनॅशनल स्कूल आज महाराष्ट्रात नावारूपाला आलेली आमची इंग्रजी मीडियम शाळा आहे. भारतामध्ये जी परीक्षेला आमचा एक विद्यार्थी भारतात 64वा आलेला आहे.
4: अरे वा.
3: त्यामुळं ही संस्था ही केवळ रामभाऊ मोजे यांच्या मार्गदर्शनाने सुरू केली. आणि आता मुलं आताशी आल्यामुळं त्याला चांगल्या प्रकारची गती आली, स्टाफ चांगला मिळाला आहे, कर्मचारी चांगले मिळाल्यात आणि म्हणून ही संस्था नावारूपाला आलेली आहे. तसंच मी नवचैतन्य ज्येष्ठ नागरिक संघाचा अध्यक्ष आहे. 850 सभासद आहे.
4: अरे वा.
3: हास्योग परिवाराचा मी अध्यक्ष आहे. रोज सकाळी 6:20 ते 7:30 हास्याचे प्रयोग घेतो.
4: अरे वा.
3: 11 वर्ष चालू आहे. दर 2 महिन्यांनी एक टूर काढतो, साधारणतः 80 लोक सिनियर सिटीजन घेऊन जातो.
4: अरे वा.
3: आणि अतिशय चांगल्या प्रकारचं प्रतिसाद आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांचा मिळालेला आहे. आणि अशा प्रकारे आमच्या संस्थेची भरभराट आता चांगल्या पद्धतीने चालू आहे.
4: ओके ओके. गणपतराव साहेब, खूपच सुंदर आपने आपका अनुभव सुना है. मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो रहा है. मैं बता देता हूँ, इन्होंने अपना जो है पढ़ाई करना शुरू कर दिया और पढ़ाई में मन नहीं लगा तो खेती किया, और खेती में जब उनको लगा कि अरे यार ये तो और हार्डवर्क है, तो उन्होंने फिर से वापस पढ़ाई किया. और इस तरह से फिर उनका जो है जब उनको लगा कि कुछ ऐसा समाज के लिए कुछ करना चाहिए और हमें जो है आगे कुछ इलेक्शन का जो कार्य है वो करने के लिए अच्छा रहेगा, तो इस मन से वो अपने एक मित्र के पास गए और वहाँ पर उन्होंने बात रखी. तो उन्होंने उस बात को सुना तो बोला कि एम्बुलेंस का जो सर्विस है वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि शिक्षण संस्थान को खोलकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाना. ये एक अच्छा चीज़ उनको लगा और इसके लिए उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था. तो उन्होंने फिर इसके बारे में पूरी जानकारी अपने एक और मित्र से जुड़ कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा की और स्कूल शुरू किया. अब धीरे धीरे करते करते जो है इनके पास वो स्कूल में बच्चों का जो है बड़ा योगदान रहा. एडमिशन्स अच्छे हो गए और फिर इनके स्टाफ भी बहुत अच्छे मिले जो बच्चों को अच्छा पढ़ाते रहे. तो आज जो है एक बहुत ही अच्छा नाम हो गया उनके स्कूल का. और अलग अलग डिस्टेंस कोर्सेज भी जो है उनके पास चलते हैं, MBA के कोर्सेज वगैरह भी कराते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छी सफलता उनको मिले हैं. और सफलता के साथ साथ फिर अन्य संस्थान भी इनको जो है चाहते हैं कि ऐसा सफल व्यक्ति जो है हमारे संस्थान पर जुड़े रहे, तो इसीलिए दूसरे संस्थान वाले भी उनको बुला के अपने अपने एक जो है पोस्ट पोजिशन देते रहे हैं. तो ये बहुत ही अच्छी कहानी उन्होंने बताया. और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही शुरुआत में ही, आपको याद हो तो उनको लग रहा है कि यहाँ ब्रह्म कुमारी इसमें आने के बाद ये परिसर देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि आई एम लेट, मतलब मुझे थोड़ा देर हो गया आने में, जबकि उनका इन्विटेशन तो काफ़ी पहले से मिल चुका था. लेकिन व्यस्तता के साथ साथ कि वह अपना विश्वास या टाइम जो है आदमी को आध्यात्मिकता की तरफ ले आने के लिए एक टाइम निश्चित होता है, उसका भाग्य खुलना होता है. पुनर्जन्म का जो संचय है या आने वाले समय में जो उनका जीवन होगा उसको बेहतर बनाने का जब भाग्य खोलना होगा भगवान को, तब वो चीज़ें सब सामने आ जाती हैं. बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ हुआ और आज वो इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं और अभी इस आध्यात्मिक समागम को देखकर इसी चीज़ को सीखना भी चाहते हैं और अपनी डेली रूटीन में, अपने लाइफ में जिस तरह से हास्य योग लोगों को सिखाते, अब जाके राजयोग भी सिखाएंगे, ऐसी शुभ आशा के साथ. चलिए गणपतराव, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा अनुभव अपना शेयर किया। एक छोटा सा मैसेज कोट कीजिए, एक संदेश क्या बताना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से, आपको सारी दुनिया सुन रही है।
3: माउंट आबूला प्रत्येक माणसाने येऊन बघितलं पाहिजे आणि या इथले जे चांगल्या गोष्टी त्या आत्मसात करायला पाहिजे आणि नेहमी येऊन या ठिकाणी काही ना काहीतरी योगदान देणं गरजेचं आहे।
4: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि हर व्यक्ति को एक बार माउंट आबू जरूर आना चाहिए और यहाँ जुड़ के अपना योगदान समाज के लिए और अपने लिए जरूर देना चाहिए, क्योंकि यह संस्थान सामाजिक सेवा के लिए उपस्थित है और समाज के जो लोग हैं उनकी आत्म उन्नति के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। तो हमारा मूल जो है अध्यात्म है, भारत जो है अध्यात्म से ही पूरे विश्व में पहचान बनाती है, तो उस संस्कृति को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गणपत राव जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जी हाँ, सफर कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। And it's a very, very comfortable journey. और जैसे ही वो spiritual journey से आप नीचे उतरते हो, तब आप jerk feel करते हो। So one of the purpose of life is, can I enjoy this spiritual journey? And that is what is very, very important.
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं साजिद हुसैन के बारे में। जी हाँ, भारत के हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर संगीतकारों में से एक इनका नाम आता है और अरबी शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर। साजिद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से ईजाद किए थे। ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनी के स्वरों का इस्तेमाल भी उनका पसंदीदा काम रहा और वे इस मामले में लीक से हटकर कुछ संगीत को बनाते थे, जिन्होंने अपना समकालीन की राह से दूर हटते हुए कुछ तिरछा रास्ता पकड़ा। हिंदी में जिस तरह शमशेर बहादुर सिंह और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमीर खान साहब का मार्ग रहा, बिल्कुल इनमें से कुछ चीजें उन्होंने चुन ली थी। साजिद हुसैन का जन्म आज ही के दिन 1917 को हुआ था, 15 जून को, जो उस समय तत्कालीन भारत एजेंसी का एक गांव, जिसमें अब मध्य प्रदेश कहा जाता है, एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपने पिता मोहम्मद अमीर खान द्वारा सितार सीख लिया। साजिद हुसैन ने अपने किशोरी अवस्था में वीणा, वायलिन, बांसुरी और पियानो सीखा, एक सफल खिलाड़ी बने इन सभी चीजों के, और 1937 में मुंबई आगमन इनका हुआ, यानी आना हुआ। फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया और अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ मुंबई आ गए। पहला काम सौरभ मोदी के मिनर्वा मूवी टोन में 30 रुपये महीने पर वो काम करना शुरू कर दिया और बाद में वो वाडिया मूवी टोन में चले गए, जो कि उन्हें वहाँ पर 60 रुपये महीने पर उनका वेतन शुरू हो गया।

और अगले कुछ वर्षों के दौरान साधु हुसैन ने संगीतकार मीर साहिब और रफीक गजनवी के सहायक और शौकत हुसैन रिजवी के साथ भी काम किया। तो इस तरह से उन्होंने काम करते हुए अपने जीवन को बेहद जो है बारीकी से सब चीजें सीखी और फिर अपना खुद का करियर बनाने में भी माहिर हो गए। संग दिल सैयां, खेल हलचल जैसे फिल्मों में उन्होंने संगीत का अनूठा जो है प्रयोग करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और अधिकांश कलाकारों ने उनकी तबीयत के हिसाब से अपना बेहतर देने का काम किया। और स्वयं लता मंगेशकर का कहना था कि मैं साजिद साहब की संग दिल के गीतों को अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती हूँ। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा म्यूजिक जो साजिद हुसैन बनाते थे और किसी ने बनाया ही नहीं। साजिद हुसैन अपने गायन के करियर में कुछ सबसे कठिन गीतों का संगीत तैयार किया और ये दिलरुबा नजरें मिला लगभग ऑफ बीट संगीत का सुंदरम उदाहरण है। ये फिल्म एक हद तक साजिद हुसैन द्वारा संगीतबद्ध सबसे उल्लेखनीय फिल्म के रूप में याद किया जाता है, जिसमें संगीतकार ने लता जी के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण पार्श्व गायकों से दो अनोखे गीत गवाए थे। उसमें सुरैया की आवाज ये कैसी अजब दास्ता हो गई है और आशा भोसले की आवाज में अब देर हो गई वाला, इसको याद किया जाता है। और 1944 में आई दोस्त फिल्म में उनका और नूरजान का साथ कमाल का रंग लिया था। इस फिल्म का एक गीत बदनाम मोहब्बत कौन करे तो आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में एक महान गीत की तरह बना हुआ है। साजिद साहब के गर्म और अखंड स्वभाव के कई हिस्से चर्चित हैं, जो कहीं ना कहीं से उनके संगीत के प्रति दीवानगी का सबब ही लगता है। एक किस्सा तो बड़ा मशहूर हुआ, वे नूरजहां और लता मंगेशकर के अलावा किसी और को गाने के लायक मानते ही नहीं थे। ये अलग बात है कि उन्होंने कई गायक गायिकाओं से अपनी संगीतबद्ध फिल्मों में कुछ बेहद सुंदर गीत गवाए थे, तो ये है ना कमाल की बात। तो चलिए इसी के साथ, और ये संगीतकार के साथ साथ एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, यानी अच्छे वादक भी थे जो अलग अलग चीज़ों को बजाते भी थे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। लीजिए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बात करते हैं अभी एक और शख्सियत के बारे में, तारकनाथ दास के बारे में। जी हाँ, तारकनाथ जी का जन्म आज ही के दिन 1894 को बंगाल के 24 पैरागान जिले में हुआ था। तारकनाथ दास बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। छात्र जीवन में उनका संपर्क अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और चित्तरंजन दास जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं से हुआ और देशभक्ति के रंग में रंगने में नेताओं के संपर्क में आकर तारकनाथ दास क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होना ही था, क्योंकि इनका सहयोग मिलना मना देश के सिपाही बन जाना। अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी के कार्य में सक्रिय भाग लेने के लिए शीघ्र ही पुलिस उनके पीछे पड़ गई फिर तो इस तरह से जब पुलिस पड़ गई तो कई बार जेल जाना हुआ और फिर विदेश गमन का भी इनको सौभाग्य मिला। 1905 में साधु का वेश बनाकर तारक ब्रह्मचारी के नाम से जापान चले गए और एक वर्ष वहां रहकर फिर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। यहां उन्होंने भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से विश्व जनमत को परिचित कराने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का आरंभ किया। उन्होंने गदर पार्टी संगठित करने में लाला हरदयाल आदि की भी सहायता की। पत्रकारिता तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों के साथ उन्होंने अपना छूटा हुआ अध्ययन भी आरंभ किया और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमए और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। है ना कमाल की बात। और पहला विश्व युद्ध आरंभ होने में वे शोध कार्य के बहाने जर्मन आ गए और वहां भारत में अनुशीलन पार्टी के अपने साथियों के लिए हथियार भेजने का प्रबंध किया। इसके लिए उन्होंने यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्रा की और बाद में जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनकी गतिविधियों की सूचना अमेरिका को भी हो गई। इस पर तारकनाथ दास पर अमेरिका में मुकदमा चला और उन्हें 22 महीने की कैद की सजा सुनानी पड़ी और ये 22 महीने तक जेल रहे। इसके बाद तारकनाथ दास ने अपने ध्यान ऐसी संस्थाओं स्थापित करने में लगा जो भारत से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करें। इंडियन इंस्टीट्यूट और कोलंबिया का तारकनाथ दास फाउंडेशन दो ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आई। वे कुछ समय तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे और लंबे अंतराल के बाद 1952 में भारत आए और कोलकाता में विवेकानंद सोसाइटी की स्थापना की। इस महान देशभक्त का 22 सितंबर 1958 को अमेरिका में ही देहांत हो गया।

0: ओम शांति, नमस्कार। मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार अगर है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बात करते हैं अब एक और फिल्मी शख्सियत के बारे में। जी हाँ, इनका नाम आपने सुना ही होगा, सुरैया। नाम सुनते ही आपको बहुत अच्छा लगा। तो आइए इनकी कहानी आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अपने जमाने की सबसे बड़ी हीरोइन मलिकाए तरन्नुम, नाम सुरैया जमाल शेख। नाम तो आपने इनका सुना है, अब देखिए सुरैया जी की जिंदगी की दास्तान। जन्म 15 जून 1929 पंजाब के गुजरांवाला इलाके में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी।
3: तो
2: हालांकि इन्होंने कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया था संगीत का।
4: जरा धीरे धीरे बोलिए, मैं गीत सोच रही हूँ।
2: फिर भी ये सबसे बेहतरीन गायिका।
5: क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे।
2: और अदाकारा बनी।
4: क्यों नहीं, शहर जाकर लोग कड़वे ही हो जाते हैं।
2: सुरैया जी के वालिद एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान चलाते थे। बाद में गुजरांवाला से ये लाहौर आए और उसके बाद अपनी नानी और मामा की जिद पर सुरैया को मुंबई ले आया गया। मुंबई में इनकी पढ़ाई जेबी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स फोर्ट इलाके में हुई और घर पर ही इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान लिया।
3: दूध पीकर लिखे तो ज्यादा अच्छे गीत लिखे।

0: सुरैया ने बचपन में ही फिल्मों में शुरुआत कर दी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ये नजर आई सन 1937 की फिल्म उसने क्या सोचा, और उसके बाद 1941 की फिल्म ताजमहल में भी ये नजर आई। सन 1941 की ताजमहल का संगीत एसडी बर्मन ने दिया था, और ये सब मुमकिन हुआ सुरैया के मामा जान की वजह से, जिनका नाम जहूर, और वो फिल्मों में पहले से ही बतौर विलन काम कर रहे थे। फिल्म ताजमहल को बनाने वाले नानू भाई वकील को 12 साल की सुरैया इतनी अच्छी लगी, इन्होंने मुमताज महल के बचपन का किरदार निभाया। बतौर सिंगर भी सुरैया की मदद करने पहुंच गए इनके दो मित्र, वो मित्र जिन्होंने आगे जाकर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया, एक महान संगीतकार मदन मोहन और दूसरे महान फिल्म मेकर और एक्टर राज कपूर। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे, और सुरैया की आवाज सुन इन दोनों बच्चों ने जरा सी जिद की कि क्यों नहीं तुम भी ऑल इंडिया रेडियो में चल के गाती।
1: जीवन द्वारे दिल ये पुकारे, पिया पिया हो पिया पिया, पिया पिया हो पिया पिया।
0: ऑल इंडिया रेडियो पर जब सुरैया की आवाज महान संगीतकार नौशाद साहब ने सुनी तो उन्होंने फौरन अपने मित्र कारदार की पिक्चर शारदा में इनसे गाना गवाया, और ये बात सन 1942 की है। ये बहुत छोटी थी और इन्हें बकायदा स्टूल पे खड़े होकर माइक पे गाना पड़ता था, और वो गाना इनसे उम्र में कहीं बड़ी हीरोइन महताब के ऊपर फिल्माया गया था। यहाँ से गायकी का सफर शुरू हुआ, और फिर तो स्टेशन मास्टर, कानून और एक लंबी फहरिस्त है जिन फिल्मों के लिए सुरैया ने गाने गाए।
1: आज कोई है आने वाला।
0: अभी वो वक्त दूर था जहाँ पर सुरैया की मुलाकात एक नए एक्टर देवानंद से होनी थी। उससे पहले ही सुरैया एक बड़ा नाम बन चुकी थी।
2: ओहो, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रानी।
0: 1942 में फिल्म तमन्ना के लिए सुरैया ने मन्ना डे के साथ अपना पहला डुएट गाया था। गाना था जागो आई उषा। ये बात भी गौर करने लायक है कि महताब ही इकलौती ऐसी हीरोइन रही जिन्हें सुरैया जी ने अपनी आवाज दी फिल्म शारदा, कानून और संजोग के लिए। 1943 में इन्होंने बड़ों के किरदार निभाने भी शुरू किए। फिल्म इशारा में ये नजर आईं। फिल्म अनमोल घड़ी में भी इनका काम बहुत सराहा गया।
3: हाँ।
0: और उसके बाद तो इन्होंने पलट के देखा ही नहीं। उस दौर की कोई भी हीरोइन इनके आसपास भी नहीं थी।
3: चलवे मेरी निगाह में दोनों जहां के हैं, मुझसे छुपेंगे आप ऐसे कहां के हैं।
0: ये बात भी गौर करने लायक है, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार सुरैया से जरा पीछे रहे। सुरैया पहली अभिनेत्री थी जो एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए की फीस लिया करती थी, और फिल्म इंडस्ट्री की ये त्रिमूर्ति वहाँ तक नहीं पहुँची थी।
3: अंगूर खट्टे हैं।
0: सुरैया जी का सफर जारी था, और इसी बीच इनकी मुलाकात हुई देवानंद साहब से, जो उस वक्त धीरे धीरे अपना करियर बना रहे थे। इनका प्यार परवान चढ़ा।
2: ओहो, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो रानी।
4: मैं तो नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई होगी।
0: इन दोनों ने 6 फिल्मों में काम किया। 1948 में विद्या, 1949 में जीत, 1949 में ही शायर भी, और 1950 में अफसर। 1950 की एक और फिल्म आई थी नीली, और 1951 में दो सितारे।
4: पूरे 4 साल बाद आए हैं।
0: ये फिल्में तो बहुत कामयाब नहीं हुई, पर इनका प्यार कामयाब हो रहा था।
4: शहर जाकर लोग कड़वे ही हो जाते हैं, जो जाता है बदल जाता है, ना उसे कभी अपना घर याद आता है और ना घर वाले।
0: वो एक ऐसी मंजिल पर पहुँच गया था जहाँ पर देवानंद और सुरैया दोनों का ही दिल टूटा।
2: किसी का दिल तोड़ना बुरा होता है।
4: दिल तोड़ने का मतलब समझते हैं?
0: बात दरअसल ये थी, सुरैया जी की नानी जान ये कतई नहीं चाहती थी कि देवानंद साहब के साथ इनका रिश्ता आगे बढ़े। बहुत मिन्नते करने के बावजूद इन दोनों की शादी नहीं हो पाई।
1: दिल की दुनिया उजड़ गई और जाने वाले चले गए।
0: देव साहब और सुरैया जी की आखिरी मुलाकात बड़ी दर्द भरी रही। ये दोनों मिले, एक दूसरे के गले लग के फूट फूट के रोए, और फिर एक दूसरे से ना मिलने का वादा कर लौट गए। देव साहब ने इसके बाद अभिनेत्री कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंगा है, उनसे शादी कर ली, पर सुरैया ता उम्र कुंवारी रही। नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी जबरदस्त अभिनेत्रियां, पर उस दौर में जो मकाम सुरैया ने बनाया था अपने लिए वो तब तक कोई और नहीं बना पाया था।
1: मस्त आंखों में शरारत कभी ऐसी तो ना थी।
0: इनकी जिंदगी से जुड़ी कमाल की एक और बात सामने आती है। 1954 की फिल्म वारिस में इनके हीरो थे महान गायक तलत महमूद।
5: आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की।
0: और 1953 की फिल्म माशूका में इनके हीरो थे महान गायक

0: इन्होंने राज कपूर साहब के साथ तो एक फिल्म में जरूर काम किया, नाम था दास्तां। 1950 की ये फिल्म थी, पर दिलीप कुमार के साथ इन्होंने काम नहीं किया। फिल्म का नाम था जानवर।
1: मुंह क्यों छुपाइए, इस महफिल में शर्माना हिमाकत है।
0: और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हो गईं।
1: तुम्हारी इज्जत इज्जत है और दूसरों की इज्जत खिलौना।
0: सुरैया जी ने यह तय किया कि ये फिल्म वो छोड़ देंगी और ठीक वैसा ही हुआ। 22 साल के लंबे करियर में सुरैया जी ने बहुत उम्दा काम किया। 1963 के बाद सुरैया जी ने फिर काम नहीं किया।
1: खबरदार, मेरे नजदीक मत आना, मुझ पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए।
0: और सन 2004 में वो दिन भी आ गया जब सुरैया इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। ये मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के कृष्ण महल अपार्टमेंट में रहा करती थी। इनकी उम्र 74 साल थी जब कैंसर से इनकी मौत हो गई। 3 मई सन 2013 को एक डाक टिकट जारी किया गया जिसपे सुरैया जी का चेहरा था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुरैया जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो मधुबन के साथ, और आशा करूंगा कि आपको हर एपिसोड में कुछ नई बातें सीखने को मिलता है। और जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ, सफलता वो नहीं जब आप हर बार जीतते हैं, बल्कि जब आप हार कर फिर से उठते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियां, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: Imagine that your body is being held tightly. So tightly, it can't move. As you relax each and every part of your body, you will become free.

0: with peace.
1: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

शांति। आज 16 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। गीत में आगे कहा गया है कि बताएं राह भूले हम कहां से, तो बाबा भी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम राह कब से भूले, या द्वापर से भूले या सतयुग से भूले। तो कई बच्चों ने कहा द्वापर से भूले, कोई बच्चों ने कहा सतयुग से भूले। वास्तव में बाबा कहते तुम बच्चे राह भूले हो सतयुग से, क्योंकि ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान दे करके फिर चले जाते हैं तो ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर सतयुग से ही हम बाप को याद नहीं करते, न बाप को जानते हैं, तो वहां से ही धीरे धीरे राह भूलना आरंभ हुआ। सीढ़ी नीचे उतरने लगे और जैसे जैसे सीढ़ी नीचे उतरते गए, द्वापर के बाद तो और भी भटक गए, अनेक प्रकार के कर्मकांड में भटक गए। तो राह भूले हम सतयुग से, लेकिन भटके हम द्वापर के बाद। फिर बाबा आकर के संगम पर हम बच्चों को मिलते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं राजाई पद के लिए, और हमें श्रेष्ठ राज ऋषि राजयोगी बनाते हैं या योगी राज बनाते हैं। सहजता से हम बाबा को याद करके पुनः अपने आप को उस योग्य बनाते हैं, उस लायक बनाते हैं कि हम सतयुग के देव पद को प्राप्त कर सके। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है, राज ऋषि माना ही पवित्र। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, बाबा कहते जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। जब खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे तब दूसरों को निकाल सकेंगे, और निकले हुए की निशानी है कि इस पुरानी दुनिया में कोई भी इच्छाएं नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीजें खाएं, ये लालच न हो। क्यों? बाबा कहे तुम पूरा ही वनवा में हो, इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ तुम कब से राह भूले हुए हो? गीत में आगे की लाइन आती है, कब से राह भूले हुए हैं? तो बाबा पूछते बताओ तुम कब से राह भूले हुए हो? कोई ने कहा द्वापर से, तो कोई ने कहा सतयुग से। तो बाबा कहते जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वह रॉन्ग है, सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले तो कोई नहीं जानते, सतयुग में भी राह बताने वाले को कोई नहीं जानते। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, वो या भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा कहते भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, फिर से बाबा आकर के हमें राह बताते।
कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं, बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। कब से राह भूले हैं ये प्रश्न जो बाबा ने पूछा, बाबा कहे ताकि बच्चों की बुद्धि चले। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। यह ज्ञान ही निराला है ना, ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सन्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर सुख का सागर मैं ही हूं। तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं कि परमात्मा एक है। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए। बाप ही आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूं, पाठ बजाया है। ड्रामा को वो जानते ही नहीं, करके लाखों हजारों वर्ष कहे फिर भी ड्रामा तो है ना। चलो अगर 5000 साल के बदले लाखों हजारों वर्ष कह दिया, लेकिन है तो ड्रामा। ड्रामा रिपीट होता है, यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। इस समय बाबा सन्मुख मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया,

जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने, 84 जन्मों में आए, बाइबल कुरान वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, बाबा कहते अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो अर्थात योगी राज हो, राजयोगी राज ऋषि हो अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है, स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो, योगी नाम ही उनका है, इनका जो पवित्र होते हैं। तुम सब राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो, भगवान पढ़ाते हैं ये समझे तब तो नशा चढ़े। बाबा कहे भगवान हमें पढ़ाते हैं ये समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्मों के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, सत्युग में भी पढ़ना तो फिर भी होगा, यहां पढ़ते हो सत्युग के लिए 21 जन्मों के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद भी बाबा के पढ़ना तो फिर भी होता है। क्या पढ़ेंगे? राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सत्युग से हम ये राह भूलनी शुरू हो करते हैं। राह कब से भूले? सत्युग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका यानी एक एक पौड़ी स्टेप सीढ़ी एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है कैसे हम चढ़ते हैं कैसे हम उतरते हैं, ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है, आत्मा कितनी छोटी है। पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए सुख शांति पाए। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है। सुख धाम में सुख शांति दोनों है, वहां कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान है, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है। बाबा कहते ये पढ़ाई है, तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं, तुम जानते हो हम यहां पाठ बजाने आए हैं फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं। बाबा कहे खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी है पाठ बजाने में, शांति में बैठने की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह न सके, कर्म बिगर रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख तो हो नहीं सकता। यही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को

भूल गए हैं, मनुष्य शांतिधाम सुखधाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, वहां कोई हंगामा नहीं तो शांत हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो, जब स्वधर्म में स्थित है तब शांति में रहते हो। यहां तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है, यहां आते ही है कर्म करने, कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवान वाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है। परमात्मा माना परमात्मा, उनको ये आत्मा बुलाती है, आत्माएं परमात्मा को बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया है। अब हम जाते हैं पियर घर, जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है। स्वर्ग बेहद के बाप की सौगात है, और क्या सौगात है? बेहद के बाप की सौगात है बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। अब वह तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती हैं, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महतत्व है जिसमें आत्माएं रहती है, बाप भी वहां रहते हैं, वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें? आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप में याद किया। बाबा कहे, बच्चे कहते हैं बाबा बिंदी रूप को कैसे याद करें, आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया। वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी का मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, बाकी आत्माओं का यादगार शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, कहीं बच्चे कहते पहले क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई के भी तो कायदे है ना, कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चलकर समझ लेंगे, एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना, सारी बातें एक ही टाइम में तो नहीं सुनाएंगे, ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्र में जो है
बाप बैठ सार बताते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है। फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे, ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे ऋण के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी सुहैनी यानी बहुत आकर्षक है, भक्ति भी सुहैनी आकर्षक बहुत है। बाप कहते ये ऋण का पानी है, मृत तृष्णा के समान, इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, बाबा के कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना, अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुतों की है, तीर भी ये ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। और कोई की याद तो नहीं आती है, अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती, यहां अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा, हमको यहां तो वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ, यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या, दलदल से बाहर निकले उसकी निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते तुम यहां जेवर आदि भी नहीं पहनो, ऐसे क्यों कहते हैं बाबा, क्यों कहते हैं कि जेवर आदि भी नहीं पहनो? इसके भी अनेक कारण है। क्या कारण है? कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आई है, और फिर चोर चकार भी रास्ते में चलते छीन लेते हैं। आजकल माया भी लूटने वाली बहुत निकली है, फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल विशालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ, वह सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मैं फलाना हूं, और तुम्हारी आत्मा कहती हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई है ये भूल जाते हैं। बाबा कहते दैहिक संबंध ये मेरा है ये याद रहता है, और हम आत्मा भाई भाई है ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, पहले मैं सुनता हूँ
भले मैं भी सुना सकता हूं, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूं। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूं, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। पहले नंबर में नहीं तो कैसे जाएंगे, बाबा कहते अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहां बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरी पॉइंट, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ है और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। आज का स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाप दादा कहते, जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो, हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति।